कृष्ण शब्द का अर्थ ही श्याम अथवा सांवर श्याम मानते हैं और सांवर मानते हैं कृष्ण के हाथों में तो बाल अवस्था से ही जबकि

तो कुछ समय भी मोह ममता को भूलकर उस कृष्ण के प्रतिरूप

तो आज है गोकुल अष्टमी, जिसको जन्माष्टमी कहते हैं। तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। श्री कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद है, क्यों जरा विचार करिएगा। और जी हाँ, किशमिश कैसे फायदा करती है और माखन भी कैसे फायदा करता है, बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ, जरूर आप सुनिएगा। और आज हम रेडियो मधुबन में जन्माष्टमी ही मनाएंगे, इस त्यौहार को धूमधाम से मनाएंगे, तो आप जुड़ने के लिए तैयार रहिएगा। आज के दिन विशेष क्या कर रहे हैं क्या नहीं जरूर बताइएगा, और रेसिपी में क्या पसंद करेंगे। भाई आज मक्खन का दिन है तो आपको मक्खन निकालना सिखाएंगे कि मक्खन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मीरा के गिरधर नागर, यशोदा के नंदलाला और हम सब के कृष्ण कन्हैया के जन्म का उत्सव है प्यार का, निर्मलता का और आनंद का। रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: तो पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अर्चना कार्यक्रम में। आज का सुंदर सा विचार है, भगवान श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है माखन मिश्री। तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। देखिए, माखन क्या है? मन ही माखन है। भगवान को मन रूपी माखन का भोग लगाना है, क्योंकि भोग तो भगवान लगाते हैं, भक्त तो प्रसाद ग्रहण करता है। इसलिए हम भोगता न बने, बस मन माखन जैसा कोमल हो, कठोर न हो। कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय नवनीत अर्थात माखन के जैसा कोमल होता है। इसलिए भगवान संतों के हृदय में वास करते हैं और वे उनके हृदय को ही चुराते हैं। अगर हमारा मन नवनीत जैसा है तो भगवान तो माखन चोर है ही, वह हमारा मन चुरा ले जाएंगे। माखन को नवनीत भी कहते हैं। ये नवनीत बहुत सुंदर शब्द है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। नवनीत का एक अर्थ है जो नित्य नया है, मन भी रोज नया चाहिए। बासी मक्खन भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए शोक और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाओ। पर ऐसा कब होगा? जब वर्तमान में विश्वास कायम करेंगे। कहते हैं ना, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर है, कृष्ण नाम मिश्री तो गोर गोर पी। अर्थात राम जी का नाम लड्डू जैसा है, जिस प्रकार यदि लड्डू एक साथ पूरा खाया जाए तभी आनंद आता है, और राम जी का नाम भी पूरा मुंह खोल कर कहे तभी आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार गोपाल नाम खीर है, अर्थात यदि हम गोपाल गोपाल गोपाल जल्दी जल्दी कहे तभी आनंद आता है, मानो जैसे खीर का सरपट्टा भर रहे हो। ठीक इसी तरह कृष्ण नाम मिश्री, जैसे मिश्री होती है, यदि मिश्री को हम मुंह में रखकर एकदम चबा जाएंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, जितना आनंद मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसने में आएगा। और जब हम मिश्री को मुंह में रखकर चूसते हैं तो हमारा मुंह भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, मिश्री का स्वाद मीठा होता है। ठीक इस प्रकार मीठे स्वाद की तरह ही मिश्री भी वाणी और व्यवहार में मिठास घोलने का संदेश देती है। जिस तरह इसको चूसने से अधिक आनंद मिलता है, ठीक उसी तरह मीठे बोल भी निरंतर सुख ही देते हैं। इसी तरह कृष्ण जी का नाम है धीरे धीरे कहो, मानो मिश्री चूस रहे हो तभी आनंद आता है, और जब हम कृष्ण कहते हैं तब हमारा मुंह भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो माखन का कोई भी हिस्सा नहीं बचता, उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। ठीक इस प्रकार से श्री कृष्ण को प्रिय माखन मिश्री से तात्पर्य है ऐसा हृदय जो प्रेम रूपी मिठास संपूर्णता पूरित हो। मिश्री के माखन के साथ खाने की बात है तो इसका अर्थ यह है कि माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। लेकिन माखन स्वाद में फीका भी होता है, उसके साथ मीठी मिश्री खाने का अर्थ है कि जीवन में प्रेम रूपी माखन हो तो वह प्रेम फीका यानी दिखावे से भरा न हो, बल्कि उस प्रेम में भावना और समर्पण की मिठास भी हो। ऐसा होने पर ही जीवन के वास्तविक आनंद और सुख को पाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री पसंद है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, आपने रख दिया है तो फिर से जुड़ सकते हैं, और यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: If we want to taste an essence of what it means when we say Krishna, the consciousness that we refer to as Krishna, if we have to be touched by this, we need Leela.

0: bring some Leela into your life. Just Leela through your life, that's all that matters. You just have to handle the immediate playfulness. I will handle the ultimate.
1: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, माखन मिश्री की मधुर सुगंध गूंजे हर गली गली। बांसुरी की तान सुनाकर प्रेम का संदेश दिया, जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण ने जग को हर्षित किया। तो राधे कृष्ण की कृपा से सभी का जीवन सुखमय रहे, शांतिपूर्ण बना रहे। और आइए, बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। माखन, जिसको हम मक्खन भी कहते हैं, किस तरह हमारी हेल्थ को ठीक करता है, कौन सी बीमारी ठीक करता है जानेंगे। देखिए, त्वचा की नमी के लिए थोड़ा सा सफ़ेद मक्खन चेहरे या सूखी त्वचा पर लगाइए, इससे त्वचा को नमी मिलेगी। त्वचा की नमी के लिए थोड़ा सा सफ़ेद वाला मक्खन चेहरे और सूखी त्वचा पर लगाइए, इससे त्वचा को नमी मिलेगी। फटे होठों के लिए आप क्या करेंगे, होठों पर थोड़ा मक्खन लगाइए, इससे रूखापन कम हो जाएगा। होठों पर मक्खन लगाने से होठों का रूखापन कम होता है। जलन में भी आराम पहुंचाता है। कैसे? तो हल्की जलन होने पर ठंडे पानी से धोने के बाद थोड़ी मात्रा में मक्खन लगाने का पारंपरिक उपाय बहुत जने अपनाते हैं, लेकिन गंभीर जलन में डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, ठीक है? बाकी हाथ थोड़े बहुत जल गए हो तो आप पहले ठंडे पानी से धुलाई कर लीजिए, उसके बाद आप मक्खन लगा दीजिए, तो आपको ठंडक पहुंचेगी, राहत मिलेगी जलन में। और घर का ताज़ा मक्खन सीमित मात्रा में खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। कोई भी चीज़ लिमिट में ही फायदा करती है, ठीक है ना? लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ नहीं खानी है। तो घर का ताज़ा मक्खन सीमित मात्रा में खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। गले की खराश में क्या करेंगे आप, मक्खन और मिश्री का थोड़ा सेवन करिए, गले को आराम मिलेगा और इसकी खराश ठीक होगी। तो गले की खराश के लिए आप मक्खन और मिश्री खा सकते हैं। तो ये गले और मतलब गले की खराश को ठीक करेगा, और वो गीला रहेगा ना तो गला अच्छा रहेगा। तो इस तरह मक्खन फायदेमंद है। तो किशमिश का कल सुना देंगे आपको, आज आपको मक्खन का सुनाया है। ज़रूर आप इन नुस्खों को आजमा सकते हैं। कोई भी उसमें यह है नहीं है नुकसान जैसी कोई बात कि भाई शरीर को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए आप इसको आजमा सकते हैं। लेकिन गंभीर बीमारी है तो फिर आप डॉक्टर से राय जरूर लीजिएगा। कहते माखन चुरा कर जिसने सबका मन जीत लिया, वही नटखट कन्हैया आज हर हृदय में बस गया। तो पुनः आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर से सुन लेते हैं एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर। आज कृष्णाष्टमी के दिवस के ऊपर मैं बहुत बहुत सबको बधाई देता हूं, और भगवान श्री कृष्ण सबको सुख में आनंद में रखे, क्योंकि संगीत के साथ बहुत ही गहरा कृष्ण जी का संबंध रहा है। बांसुरी बजाते थे और सारे विश्व को आनंद देते थे। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि सबका जीवन अच्छा और सुखमय जाए। धन्यवाद।

0: जहाँ शांति की धारा बहती रहे, जहाँ प्रेम की ज्योति जलती रहे, वहाँ कृष्ण की याद जब आए, मन की हर उलझन मिटती रहे, मन की हर उलझन मिटती रहे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम जन्माष्टमी मनाएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं और आज के आनंद की बातें कर सकते हैं। इसके पहले मैं आज आपको टंग ट्विस्टर सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और आपको 3 से अधिक बार नहीं बोल के सुनाना है और 2 से कम बार नहीं बोलना है। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। अब मैं थोड़ा सा स्पेस दे करके सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। ये आज का टंग ट्विस्टर है। तो आपको 3 से अधिक बार नहीं बोलना है और कम से कम 2 बार तो आपको बोल के सुनाना ही है। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज का टंग ट्विस्टर भी आप बोल के सुना सकते हैं। क्या बात है हमारे श्रोता बंधु, तो आज लगता है सुबह से ही जन्माष्टमी मनाने में बिजी हो गए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। आज का दिन तो खास है, जितना आनंद लिया जाए इस त्यौहार का उतना ही कम है। तो क्या आप, चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
1: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शांति, सरोज भाई बोलता हूँ जताना से। कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी,
1: तो आपको, हमारे सभी मित्रों को, मधुबन परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा दिन है। देखो हर रोज हमारा और किसी का जन्मदिन आता है, लेकिन आज भगवान का खुद का जन्मदिन है।
0: जी जी जी।
1: तो भगवान को भी हम हैप्पी बर्थडे तो जरूर कहना चाहिए, क्योंकि हर दम हमारे साथ में रहता है और हर दम हमारी मदद में तत्पर रहता है। तो भगवान को कैसे हम बोल पाते हैं। तो भगवान को भी शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान सबकी दुआएं पूरी करे, सबके मनोकामना पूरी करे और सबको एक सबकी मदद में भगवान रहे, ऐसी शुभकामना दे दी।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल जी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का टंग ट्विस्टर भी आपने सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ दीदी 3 बार।
0: हाँ जी।
1: कान्हा की काली कमली, कमले में कन्हैया, कन्हैया की कजरी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमले में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमले में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया।
0: क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर
1: जी। और विषय के तो जो आज दिन है तो दिन की ही बात है।
0: जी
1: जी।
0: तो
1: पहले तो बताओ दीदी कि हमारे जो रात को भी मंदिर में 12 बजे इतना जोर शोरों से कार्यक्रम होगा, यानी कि कार्यक्रम तो 9 बजे से शुरू हो जाएगा, 8-9 बजे से, लेकिन 12 बजे इतनी धुन बजेगी फटाखों के साथ, कन्हैया का जो जन्म उत्सव मनाया जाएगा।
0: जी जी जी।
1: और कई सारे महिलाएं, भजन मंडली और कई गांव के जो हमारे मंदिर है, राम जी मंदिर, रामचंद्र भगवान मंदिर है, वहाँ इकट्ठा होता है
0: जी।
1: और इतनी अच्छी तरह से हम भगवान का जन्मदिन मनाता है। हम हर दिन जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान का तो हमारा मनाते हैं हर साल, हम तो भगवान का ही मनाना ही चाहिए।
0: जी जी।
1: रात को रामधन होगी, कन्हैया का जो नारा गूंजेगा और मटकी का भी कार्यक्रम रहता है हमारे यहाँ।
0: जी जी।
1: छोटे बच्चे को तो मटकी में, मटकी का फोड़ का कार्यक्रम रहता है और छोटे कन्हैया भी, छोटे बच्चे को कन्हैया भी बनाते हैं
0: जी,
1: और कन्हैया का भी अच्छा एक कार्यक्रम करते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसा कार्यक्रम आज पूरे दिन रहेगा दीदी
0: जी।
1: और देखो हम गए थे वहाँ हरि, यहाँ जो वृंदावन में और गोकुल में और जो मथुरा में, कई सारे दीदी, इतने सारे कार्यक्रम होते हैं कि भगवान पता नहीं, इतने सारे भक्त, इतनी भीड़ रहती है वहाँ तीनों की जगह पे। और जो वहाँ राजा रानी का मंदिर है परसाना में, वहाँ भी राम बहुत धुन होगी वहाँ कन्हैया की जरों से
0: जी।
1: तो वहाँ तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, लेकिन गाँव भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बस हम तो दीदी ऐसा कहेंगे कि कन्हैया जैसा हम विचार करेंगे, कन्हैया जैसा तो हम बन नहीं पाते, लेकिन कन्हैया की जो बताई बात पर हम चल सकते हैं, अच्छा करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना और अच्छे कर्म करना, अच्छी मदद करना। देखो कन्हैया ने कितने लोगों की मदद की थी
0: जी, उनको ऐसे ही याद नहीं करते हैं, उनके गुणों को याद किया जाता है, उनके कर्मों को याद किया जाता है।
1: बस हम भी ऐसा कर्म अच्छा करेंगे तो हम जाने के बाद भी हम हमारी यादें सबके पर रहे और वो सभी बोले कि मैंने वो अच्छा था, बस ऐसा कहला कि हमको जाना है दीदी।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छी तरह बोल के सुनाया है, तो विषय को भी स्पष्ट किया है, कैसे आप मनाने वाले, क्या होता है आपने बताया है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि आप किससे इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं, कैसे मनाने जा रहे हैं। और लीला जी चित्तौड़गढ़ से जुड़ चुके हैं, वो टंग ट्विस्टर बोलना चाहेंगे। चलिए, उन्होंने वो इस रिकॉर्डिंग करके भेजा है तो सुन लीजिए।
2: कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो लीला जी आपके लिए भी ढेर सारी तालियां। तो आप अगर इस तरह जुड़ नहीं पाते हैं तो वो इस मैसेज करके भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज तो वैसे ही जन्माष्टमी हम धूमधाम से मना रहे हैं। ये त्यौहार तो वैसे ही बच्चे भी, बड़े भी, वयस्क, युवा, बुजुर्ग सभी इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सचमुच में ये त्यौहार तो है ही अनोखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो सभी याद करते हैं और सभी प्यार करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी को बच्चे के रूप में ले लीजिए, युवा के रूप में ले लीजिए, श्री कृष्ण जी से सभी प्रेरणा ही लेते हैं और हर माँ यही सोचती है कि मेरे कृष्ण जैसा बच्चा हो। तो अब ऐसे ही तो नहीं सोचते हैं ना, जैसे कि आपने मक्खन और मिश्री के विशेषताएं जानी है विचार के द्वारा कि श्री कृष्ण जी को क्यों पसंद है। तो ऐसे ही देखे हम श्री कृष्ण जी को ऐसे ही याद नहीं करते हैं, ऐसे उनसे कोई प्यार नहीं करता है, उनके गुणों को, उनके कर्तव्यों को, उनके अच्छे कर्मों को याद किया जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें भी यही प्रेरणा देती है कि हम भी सभी के साथ प्यार से रहे, जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करें, और कुछ नहीं करें तो कम से कम प्रेम से तो रह ही सके, इधर उधर की बातें ना करें और सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखे, तो भी हमारी जन्माष्टमी मनाने का सार्थक हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो कितनी भले हम चिकनी चुपड़ी बातें करें, लेकिन हमारा मन अगर निर्मल नहीं है, साफ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। खाली बातों से, कहते हैं ना, कितने लोग बातें करके बस बातों में उलझाए रखते हैं लोगों को, तो फिर क्या कहते हैं, कह रहे बातों से थोड़े ना पेट भरता है, कुछ करोगे तभी पेट भरेगा। तो कोई कोई की ऐसी आदत होती है कि वो बातों से रिझाने की कोशिश करते हैं, बाकी करते कुछ नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें कुछ करके बताना है, रहम दिल होकर के रहना है, नम्रता से पेश आना है, मीठी मधुर वाणी अगर हम बोलेंगे और किसी के काम में, दुख दर्द में हम सहयोग करेंगे, तभी सही मायने में हम जन्माष्टमी मना पाएंगे। हेलो हेलो, नमस्ते। चलिए, जो भी फोन करते हैं नहीं बात हो पाती, फिर से कोशिश कर सकते हैं। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: अर्जुन।
0: अर्जुन कैसे हो?
3: बढ़िया।
0: बहुत समय के बाद जुड़े हो, और सब ठीक है परिवार में?
3: जी।
0: अच्छा, और बोलो,
3: आज का प्रश्न,
0: आज का टंग ट्विस्टर है, टंग ट्विस्टर बोल के सुना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया, ये दो बार या तीन बार बोल के सुनाना है।
3: काले में वापस बोलिए।
0: कान्हा की काली कमली, कमली में,
3: की काली कम,
0: कमली में कन्हैया,
3: कमली में कन्हैया,
0: कन्हैया की कजरारी आंखें,
3: कन्हैया की कजरा की कजरारी आंखें,
0: आंखों में कन्हैया,
3: आंखों में कन्हैया।
0: अब बोल के सुनाओ
3: जी। काना के काली कमली, कमली में कन्हैया,
0: कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया,
3: कन्हैया की कजरा की आंखें, आंखों में कन्हैया।
0: एक बार और बोलो।
3: काना के काली कमली, कमली कमलियों में कन्हैया, कन्हैया की आंखें कजराली, आंखों में कन्हैया।
0: चलिए, फिर भी अच्छी कोशिश की है, बहुत बहुत आभार, अच्छी कोशिश की। और आज क्या कर रहे हो आठम पर? आज क्या

0: कर रहे हो आज? जन्माष्टमी मना रहे हो?
1: जी।
0: कैसे मनाओगे?
1: आज बाहर जाएंगे, घूमने वगैरह जाएंगे।
0: अच्छा, घूमने जाओगे?
1: और कुछ नहीं, खाना वगैरह खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे।
0: और मटकी फोड़ोगे?
1: जी।
0: अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। उपवास भी किया है क्या?
1: जी।
0: व्रत किया? व्रत
1: नहीं।
0: अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि इस त्योहार को आप भी धूमधाम से मनाएंगे, पूरा आनंद लेंगे। चलो, बहुत बहुत आभार अर्जुन। तो ये थे अर्जुन, पहले बहुत जुड़ता था, अभी बहुत समय के बाद जुड़ा है। चलो, अच्छी बात है कि हमारे बिछड़े हुए वापिस लौट करके आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और चलिए, यहाँ पर फिर से हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः इसी विषय पर बात करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन।
3: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें। धन्यवाद।
2: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मोह माया से मन को हटाए, आत्मिक शक्ति को पहचाने। कृष्ण के गीता यही पुकार, कर्म करो मत सोचो हार, कर्म करो मत सोचो हार। तो पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष है। आज तो हम सभी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं खास इस त्योहार पर, जरूर आप जुड़ करके बता सकते हैं। और इस त्योहार से आपको क्या मिलता है, किस तरह की शिक्षाएं मिलती है। त्योहार तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो हमें लेना ही चाहिए, अच्छे गुणों को धारण करना ही चाहिए। तो कैसे क्या कर रहे हैं जुड़िएगा जरूर। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा अच्छा है। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। यह आपको तीन से अधिक बार नहीं बोलना है और दो से कम बार नहीं सुनाना है। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और सुनाते हैं आज का टंग ट्विस्टर। और देखिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो मना रहे हैं, मनाइएगा इस त्योहार को, लेकिन कुछ बातें मुझे यहाँ याद आ रही। अक्सर क्या है, लोग शिकायत करते हैं प्रभु से, हे ईश्वर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने वैसा क्या किया। कुछ हमारे साथ गलत होते हैं तब ही हम ईश्वर को दोष देते हैं, और अच्छा होता है तब हम नहीं कहते कि हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना कुछ दिया हमें, वो कहना हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे एक बात याद आ रही महाभारत की, जो आपके समक्ष रखना चाहूंगी। कहते हैं कि देखिए कर्ण, कृष्ण जिसे पूछते हैं

माँ ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए अंततः मुझे सच बताया। मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ वह दुर्योधन की दानशीलता से प्राप्त हुआ, तो फिर मैं उसका पक्ष लेने में गलत कैसे हूँ? श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, कर्ण, मेरा जन्म एक जेल में हुआ था। मृत्यु मेरे जन्म से पहले मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मैं अपने जन्मदाता माता पिता से अलग हो गया। आप बचपन से ही तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और बाणों का शोर सुनकर बड़े हुए। मुझे केवल गाय के झुंड का शेड गोबर मिला और मेरे जीवन पर कई प्रयास हुए, यहाँ तक कि हर जगह मुझे कपटी बताया गया। न सेना न शिक्षा मैं लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि उनकी सभी समस्याओं का कारण मैं हूँ। जब आप सभी की वीरता की सराहना आपके अध्यापक कर रहे थे, तब मैंने कोई शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। मैं केवल 16 वर्ष की उम्र में ऋषि संदीपिनी के गुरुकुल में शामिल हो गया। आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की से हुई। मुझे वह लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्रेम करता था, और इसके बजाय मैंने उनसे शादी कर ली जो मुझे चाहते थे या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के किनारे से जरासंध से दूर समुद्र तट पर ले जाना पड़ा। भागने के कारण मुझे कायर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीत गया तो आपको बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, यदि धर्मराज युद्ध जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और उससे जुड़ी सभी समस्याओं के लिए केवल दोष। एक बात याद रखना कर्ण, हर किसी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन किसी के लिए भी उचित और आसान नहीं है, लेकिन क्या सही धर्म है यह आपके दिमाग मन विवेक को पता है। चाहे हमारे साथ कितनी भी नाइंसाफी हुई हो, हम कितनी बार अपमानित हुए, हमारा पतन हुआ, महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या हो। जीवन की अनुचितता आपको गलत रास्ते पर चलने का लाइसेंस नहीं देती। सदैव याद रखना, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वार पहने गए जूतों से नहीं बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। तो ये सिर्फ श्री कृष्ण और कर्ण की ही वार्तालाप नहीं है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, यह हम सभी पर लागू होता है। हम क्या है, अक्सर अपने जीवन का दोष देते हैं ईश्वर को। हे प्रभु, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, आपने अगर ऐसा करते तो मेरे साथ वैसा हो जाता। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। कहते ना कि इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही तुरंत ही 2-3 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कभी किसी को दोष न दे, हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहे, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे कि हे भगवान, आपने मुझे स्वस्थ तन दिया, स्वस्थ मन दिया, दिव्य बुद्धि दी, परिवार बहुत अच्छा दिया। हम इतना धन्यवाद तो कर ही सकते हैं ना। जो चल नहीं सकते उनको पूछिए उनकी कैसी हालत है, जो देख नहीं सकते क्या वो इस दुनिया को देखना नहीं चाहेंगे, जो बोल नहीं सकते तो क्या वो बोलना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर से ही परेशान है, और जिनको स्वस्थ शरीर मिला है फिर भी वो अगर दूसरों को दोष देता रहे तो क्या कहा जाए फिर। इसलिए देखिए, हम भगवान से भी शिकायत नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी ने भी अपनी समस्याएं बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी धर्म के रास्ते पर चलता रहा, फिर भी नेकी करता रहा, अच्छे कर्म करता रहा। तो यह हम सब पर निर्भर करता है, हम सब पर भी यही लागू करता है कि हम भी अच्छे कर्म करते रहे, चाहे हमारे साथ कैसा भी हुआ हो। ठीक है, कुछ जन्मों का भी हिसाब किताब होता है, कुछ जन्मों का विकर्म बना होता है, वो भी रिटर्न होकर के आता है। तो ये सब कुछ समझ करके हमें भी अच्छे कर्म करना है, श्री कृष्ण जी की तरह श्रेष्ठ कर्म करना है, हमें गलत राह पर नहीं चलना है, बस तो ही ये त्योहार मनाने का फायदा है। बाकी तो क्या है, आनंद मंगल तो वैसे ही ले लेते हैं। और हाँ ठीक है, त्योहार आया है, त्योहार पर थोड़ा झूम जाते हैं, भक्ति में कान कर्णप्रिय हो जाते हैं तो मन अपने आप थिरकने लगता है और यह शरीर नाचने लगता है, तो हम भजन कीर्तन करते और बड़े खुश हो जाते हैं कि आज तो हमने बहुत कुछ कर लिया, आज तो बहुत भक्ति कर ली, लेकिन हमने दिया क्या लोगों को, समाज को दिया क्या।

0: ज्ञान हमारी भक्ति तभी सार्थक होगी जब हम औरों को देंगे और दूसरे बोलेंगे कि वाह भाई वाह, इंसान हो तो आपके जैसा। तब सही मायने में हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। फिर भी उसका अभिमान नहीं करना है। ठीक कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, इस हाथ से करो तो उस हाथ को भी पता मत चलने दो। तब जा करके हमारा पूर्ण रूप से जुड़ेगा और हमारा भाग्य का दरवाजा खुलेगा। तो चलिए पुनः आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बात है, आज तो आठम मनाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपको समय ही नहीं मिल रहा है जुड़ने का। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप इस त्योहार का आनंद लीजिए। और आज का टंग ट्विस्टर सुना रही हूँ, ध्यान दीजिए। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। अगर आपको जुड़ने का समय नहीं है तो आप वॉइस मैसेज करके भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, अभी मैं और भी आपको सुनाना चाहूँगी जिन्होंने वॉइस मैसेज करके भेजा है। मयूरी जी अहमदाबाद से, इनके द्वारा टंग ट्विस्टर सुनेंगे।
1: कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया।
0: क्या बात है, बहुत फास्ट आपने 3 बार बहुत ही अच्छी तरह बोल के सुनाया है। और चलिए हमारे श्रोता बंधु इंतजार करे भाई, कोई बोल रहे होते हैं तो आप फोन पर बने रहिए, काटिए मत, आपका भी फोन उठाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट स्पीड में मयूरी जी ने बोल के सुनाया है टंग ट्विस्टर। और अब हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग
0: जी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
2: चल रहा है लेकिन फोन बराबर लग नहीं रहे थे, अभी लग गया। बहुत ही शुक्रिया भगवान का कि रेडियो भी अच्छा चल रहा है और कनेक्ट हो रहा था दीदी, लेकिन आवाज ही नहीं आ रहा था। शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, इश्यू होगा। तो आज गोकुल अष्टमी की, जन्माष्टमी की सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, रेडियो मधुबन परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी
0: जी। आपको भी
2: थैंक यू, शुक्रिया।
0: अच्छा, टंग ट्विस्टर बोल के सुनाएंगे? टंग ट्विस्टर
2: नहीं मैं बोल नहीं सकता, सॉरी दीदी, सॉरी।
0: चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। और अब दीपा जी कपासन से जुड़े हैं, वो टंग ट्विस्टर बोलना चाहेंगे, तो उनका सुन लेते हैं।
3: शांति, जय श्री कृष्णा। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। जय श्री कृष्ण।
0: बहुत सुंदर, तो दीपा जी के लिए भी ढेर सारी तालियां। आप भी इस तरह वॉइस मैसेज करके भी भेज सकते हैं या फिर जुड़ करके बोल के सुना सकते हैं। अब यहीं पर श्री कृष्ण जी का एक प्यारा सा भजन सुनने के बाद पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
4: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर, आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में मदन भाई मेहसाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते मदन भाई।
1: नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप?
0: हाँ जी, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बिल्कुल, मैं तो हमेशा अच्छा ही हूँ, अच्छा ही रहता हूँ। ईश्वर की आपने या हमारे सभी दोस्त हैं जो बोलते हैं उनसे भी, नहीं बोलते उनसे भी अच्छे रहते हैं हम। और आपको नमस्कार करते हैं और आज जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामना उषा दीदी को, आशियाना को और हमारे सभी शो को और हमारे जो दोस्त सुन रहे इन सभी को। मना रहे होंगे शायद, मटकी फोड़ रहे होंगे तो
0: अभी तो इतनी जल्दी मटकी कहाँ फोड़ेंगे?
1: हम मटकी यादों में फोड़ते हैं वो यादों में फोड़ते हैं कि भाई हम कृष्णा की मटकी फोड़ते हैं। अब तो पहले जाता था और सब इंतजार करते थे, अभी तो उतना ठीक है, कोई कोई है, वरना पहले बहुत मजा आती थी। जो हमारे जो दोस्त है वो भी नहीं है अभी
0: जी जी जी
1: जी। और आपको नमस्कार करते हैं और
0: चलिए, बहुत, बहुत बहुत आभार आपका।
1: जी जी जी,
0: हाँ जी। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में बहुत ही सुंदर आज का टंग ट्विस्टर है जो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे तो वो इस मैसेज के द्वारा भी आप भेज सकते हैं। नंबर हम बार बार दोहराते रहते हैं, 9414154145 पर आप या तो फ़ोन कॉल्स करिए या फिर इसी नंबर पर आप मैसेज भी भेज सकते हैं। वो इस मैसेज, कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। ठीक है, ये आज का टंग ट्विस्टर है। और आइए अब आज आपको आशियाना के किचन की तरफ ले चलते हैं, मक्खन बनाना सिखा देते हैं। देखिए, वैसे तो आजकल क्या है, हमारी बहनें मलाई ज़्यादा निकालती है, दूध में से उसका मक्खन निकालती रहती है। बाकी प्रॉपर मक्खन हम दही में से, है ना भाई, जिसके गाय भैंस है वो तो दही का बिलोना ही बिलोते हैं, उसमें से मक्खन निकालते हैं। ठीक है, तो दही आप पहले के समय में तो दही क्या है, बड़ा सा मटका होता था, मटका में ही दही जमाते थे और जमा करके उसमें बिलोना करते थे। हाँ, पहले तो दूसरे बर्तन में भर लेते थे भगोने में, फिर वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता, हल्का सा नवसेका रहता, मटके में डाल देते थे, फिर मटके में जावन डाल करके दही जमा देते थे। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में आप दही जमा कर देखिए, उसका स्वाद भी अच्छा होगा तो दही भी बहुत ही अच्छा गाढ़ा जमेगा। फिर बिलौना के लिए लकड़े का बिलौना हुआ करता था, जिसको एक खम्भे से बांध दिया जाता था बीच का पोर्शन, और फिर माताएं बहनें उसको गोल गोल वो रस्सी बांध करके गोल गोल घुमाते थे। दोनों रस्सी के छोर पर लकड़े की वो गिल्ली की तरह बंधे रहते थे डोर, उन दोनों को खींचते थे और बिलोना अंदर मटके में, और बिलोते थे और बिलोते बिलोते मक्खन ऊपर आ जाता था और छाछ नीचे बैठ जाती थी। सर्दी का मौसम होता तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते जिससे मक्खन जल्दी ऊपर आ जाए, और सर्दी का मौसम नहीं है तो ऐसे ही नॉर्मल पानी थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो मक्खन जल्दी से अलग हो जाए छाछ से। फिर इस मक्खन को निकाल लिया जाता है और मक्खन खाओ, चाहे इसको गर्म करके इसका घी निकालो, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है। और आज माताएं बहनें देखिए, आज तो पशुपालन तो वैसे ही समाप्त होता जा रहा है, तो जो दूध होता है उसकी मलाई निकाल करके माताएं बहनें उस मलाई का मक्खन निकालती है, तो मलाई इकट्ठी करती जाती है। तो मलाई के साथ आप थोड़े थोड़े छाछ या दही डालते रहिए ताकि आपकी मलाई खराब भी नहीं होगी और इसमें खटास बढ़ता जाएगा, तो ये बाद में आप जब फेरोगे तब काम आएगा, आपको फेंकना नहीं पड़ेगी छाछ। फिर आप इस छाछ की कड़ी बना सकते हैं, आप हांडवा बना सकते हैं, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब चीज़ फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में एकदम सेफ रहता है। तो मलाई आपने निकाल दी, ठीक है, मलाई में थोड़ा थोड़ा आप छाछ या दही डालते रहे, ठीक है। अब इसको आजकल तो मैंने वैसे ही या तो हैंड मिक्सी से घुमाती है या फिर मिक्सर में, लेकिन आपको सिंपल तरीका सिखा रही हूँ। आप मलाई फेरने जा रहे हैं तो एक चम्मच ले लीजिए सब्जी का गोल वाला, फिर आप उसको एक ही दिशा में हिलाइए, एक ही दिशा में आप हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, धीरे धीरे धीरे वो छाछ अलग हो जाएगी, मक्खन आ जाएगा। फिर आप थोड़ा सा बर्फ डाल सकते हैं या एकदम फ्रिज का पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो मक्खन और भी अलग हो जाएगा छाछ से। फिर वो मक्खन को निकाल दीजिए, छाछ आप काम ले लीजिए और मक्खन का घी बनाइए, भले मक्खन खाइए। तो इस तरह मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, बहुत आसान तरीका आपको सिखाया है, तो ज़रूर इस तरीके को आजमा सकते हैं। और अब यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा। हाँ, ये कहना चाहूँगी, श्री कृष्ण जी के मक्खन का भोग जरूर लगाइएगा आज। ठीक है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: बहू बहू, जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
3: जी आई माँ जी।
2: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
3: जी माँ जी, आ गई, चलिए।
2: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
4: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
2: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है,
4: सोनोग्राफी। मगर क्यों?
2: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
4: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू, क्या तुम भी यही चाहती हो?
3: जी वो न, न,
2: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
4: देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
5: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
0: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर आपको विचार दिया गया, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए मक्खन पर। और जन्माष्टमी भी सभी ने अच्छी तरह धूमधाम से मनाई है, तो मक्खन निकालना भी आपको सिखाया है कि कैसे मक्खन निकाला जाता है। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा अच्छा है, जिसको मैं अब फास्ट गति से बोल के सुना रही हूँ। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी, आंखें आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी, आंखें आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी, आंखें आंखों में कन्हैया। तो चलिए, मैं पहले तो अपने लिए तालियां बजाना चाहूंगी। कहते ना, कभी कभी खुद के लिए भी तालियां बजा लेनी चाहिए। ठीक है, और ये जो टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है, उनका नाम लेना चाहूंगी, सुरेश भाई जोटाना से, और लीला जी चित्तौड़गढ़ से, मयूरी जी अहमदाबाद से, दीपा जी कप्पासन से, और अर्जुन, आप सभी ने बोल के सुनाया है, इसके लिए ढेर सारी तालियां। विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से, फिर आज और कोई जुड़े नहीं है, सुभाष भाई ने शुभकामनाएं दी है और बाकी सभी ने मैसेज के द्वारा भेजा है टंग ट्विस्टर। तो चलिए, सुरेश भाई के लिए ढेर सारी तालियां। और देखिए, आज के जन्माष्टमी हमें यही संदेश देती है, मैं श्री कृष्ण जी के लिए यही कहना चाहूंगी, सुदर्शन जैसा, देखिए सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो श्री कृष्ण है। पहली गाली पर सर

काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य रखते हैं तो वो श्री कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो श्री कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो श्री कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो श्री कृष्ण है। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का मीठा मोती भी दोहराना चाहूँगी जो बहुत ही सुंदर है। और देखिए जो भी आज जन्माष्टमी मनाई है वो भी बस त्यौहार का आनंद ज़रूर लीजिए, लेकिन अपने गुणों को, अपने कर्तव्यों को, श्रेष्ठ कर्मों को अपनाए रखें। ईश्वर को सर्व का पिता कहते हैं। अगर वही सभी के अंदर है तो हर कोई पिता हो गए, फिर किसी को पुत्र कहना तो असत्य हो गया। अब मैं आपको अपना स्वरचित प्यारा सा भजन सुनाऊंगी श्री कृष्ण पर। आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे। कल क्या है? शनिवार है। और कल अंताक्षरी कार्यक्रम में थीम रहेगी श्री कृष्ण भजन, छंद दोहे भजन आप सुना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

इधर देखूं आओ उधर देखूं, मोए नजर न आए घन श्याम। गुजरी के घर गयो, माखन चुरायो मोरी माय। फिर भी मैं हाथ न आयो तो मटकी फूड़ाई मारी माय। अरे नहीं नहीं श्याम, ऐसी उधम नहीं करो। क्यों क्यों, सारी सखियों के बीच मेरी लाज तो रखो। इन्हीं उधम से हुई पागल में, इन्हीं उधम से हुई पागल में। तुम तो हो नादान, इधर देखूं आओ उधर देखूं, मोहे नजर न आए घन श्याम। माते यशोदा ढूंढन लागी, कहाँ गयो मेरो लाल। इधर देखूं आओ उधर देखूं, मोहे नजर न आए घन श्याम।

गुजरी बांधे, गुजर को बांधे भगवान, गुजरी के चीर खींचू, झपट के दही छीनू, फिर भी मैं बाज न आयो तो गुजरी रोवे मोरी माय। अरे नहीं नहीं श्याम, ऐसी उधम नहीं करो, सारी सखियों के बीच मेरी लाज तो रखो, इन्हीं उधम से हुई पागल में, तुम तो हो नादान, इधर देखूं आओ उधर देखूं, मोहे नजर न आए घनश्याम, मात यशो।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, कब कहेंगे कि हम ये जो जीवन जी रहे हैं, इसी को जीना कहते। खास करके जब महिलाओं की बातचीत करते हैं तो एक मानसिक चित्र होता है कि महिला का मतलब शादीशुदा हो, बच्चे पाल रही हो, घर का काम कर रही हो या फिर नौकरी कर रही हो। इससे ज्यादा तो हम ज्यादा उम्मीद या फिर ज्यादा चित्रण नहीं कर पाते हैं या ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, महिलाओं का काम या महिलाओं की जो प्रोफेशन इतना तक ही सीमित है या महिलाएं यहाँ तक सीमित है? नहीं, महिलाएं देश के हर वो काम करने के लिए तत्पर रहती हैं। न सिर्फ देशभक्ति लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी वो बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भावना है वो बहुत उनको आगे बढ़ाती है। दोस्तों, आध्यात्मिकता और हमारी जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहे कि हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो वो जीवन बहुत ही नीरस या दिशाविहीन होता है। ऐसे में आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपना कर ना सिर्फ अपने जीवन को लेकिन अनेकों को मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय कविता दीदी जी आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में हैं। वो अपनी आध्यात्मिक जीवन से आप सभी को रूबरू कराएंगे और हम जानते हैं कि एक महिला होते हुए उन्होंने कैसे ये सादगी समर्पण जीवन को चुना है और वो कैसे इस जीवन में सफल रहे हैं। कविता दीदी जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति दीदी। हम सबसे पहले ही आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लौकिक जीवन है, आपने कहाँ जन्म लिया और आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली, और क्या आपकी जीवन में या आपके बचपन में आपके परिवार में धार्मिक परिवार से थे? क्या वो जीवन रहा आपका बचपन और लौकिक जीवन?
1: हम लौकिक जन्म तो महाराष्ट्र गोंदिया में लिए हैं, जो नागपुर के बाजू में ही है, महाराष्ट्र में, और वहाँ से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। लौकिक में, हमारे लौकिक में चाचा जी और चाची ज्ञान में चलते थे। बचपन से ही वो गीता पाठशाला चलाते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो वो भी बहुत छोटे आयु में ज्ञान में आए। उनके बाद में उनका विवाह हुआ तो जो हमारी लौकिक चाची थी उनको भी ज्ञान में लेके आए और दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तो उसके बाद में लौकिक चाचा जी, उनका गाँव जो गोरेगांव था, तो इस कारण से वो गोंदिया में रहते थे और गोंदिया में हमारे पास रह करके प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर की। तो उस समय हमारी जो मम्मी थी बहुत भावभक्ति में पूजा आदि करती रहती थी। तो मात्र मेरी आयु जो 7 वर्ष की थी, तो जैसे वो पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, आरती करती थी, तो मैं उसको देख देख के वैसे ही करती रहती थी। तो चाचा जी को एक दिन बहुत संकल्प चले कि बाकी सब बच्चे तो सोए पड़े हैं लेकिन यही मतलब मम्मी के पीछे पीछे जाके सब कुछ करती है, इसको लगता है बहुत इंटरेस्ट और इन सब बातें इसको अच्छी लगती है। तो देखते देखते मेरे एक बार मम्मी को कहा कि भाभी मैं घर जा रहा हूँ अपने, तो मैं इस गुड़िया को लेके जाऊँ, कुछ दिन मेरे पास रहेगी। तो छोटी थी तो उस समय को कोई बात नहीं, भाई के बेटी है तो भाई के पास ही जा रही है। तो बड़े इजीली माता पिता ने छुट्टी दिया और वो मुझे लेके गए। लेकिन वहां देखा तो लौकिक में तो पूजा आराधना चलती थी, लेकिन जब चाचा जी के पास गई तो वो सारा दिन बाबा को याद करना, मुरली पढ़ना, कोर्स करना, शिव बाबा के गीत सुनना, शिव बाबा करते रहते थे। तो मुझे कुछ परिचय नहीं था, कुछ समझ में नहीं, छोटी आयु के कारण। तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो बात हर बात मुझे सिखाते थे, समझाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो जैसे जैसे मुझे गाइड करते थे मैं वैसे करती जाती थी।
0: तो ये क्या उम्र रही है?
1: 7 साल की उम्र थी मेरी मात्र आयु।
0: जी, मतलब आपकी लौकिक और अलौकिक जीवन में बहुत सारा अंतर नहीं रहा, बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग से चलने लगे।
1: जी,
0: तो फिर आपकी पढ़ाई और ये सब चीजें कैसे आगे बढ़ी?
1: पढ़ाई चाचा जी के पास भी हुई और लौकिक माता पिता के पास भी हुई, क्योंकि जब मम्मी पापा के पास में थी तो गर्मी की छुट्टी में जो है तो चाचा अपने पास लेके चले जाते थे, बाकी तो मम्मी पापा के पास रह के पढ़ाई किया और कुछ पढ़ाई वहाँ किया। तो लेकिन ज्ञान में लगातार चलती रही हूँ, वो आते रहते थे, वहीं आते थे, एक सेंटर पर मुझे लेके जाते थे। और उस समय जो मेरा नाम था लौकिक में, तीजा नाम अच्छा। था मेरा अभी तो जो कविता नाम है मेरा अलौकिक नाम है। okay. तीजा बाई बिसेन करके मुझे जाना जाता था। okay. मेरी सरनेम है बिसेन और मुझे तीजाबाई, क्योंकि तीजाबाई जो नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरा जो जन्म है, जो हरतालिका होती है ना, माताएं व्रत करती है, कन्याएं बहनें व्रत करती है, तो उस समय महाशिवरात्रि के लक्ष्य में भी करती है, तो हरतालिका बहुत ही धूमधाम से दुनिया में मनाई जाती है। तो मेरा उसी दिन सोमवार का दिन था, जन्म हुआ, तो उस त्योहार का नाम है तीज। तो तीज के बाद कहा कि इसका नाम हम तीज ही रखेंगे, क्योंकि गौरी पूजा के दिन इसका जन्म हुआ, तो हमारे घर में गौरी ने जन्म लिया, ऐसे करके वो मानते थे हमारे महाराष्ट्र में। तो जब उन्होंने कहा कि गौरी माना देवी आई हमारे घर में, तो इसका नाम ही हम तीज रखते हैं, तो मेरा नाम ही तीज है। तीजा से फिर तीजा कर दिया।
0: अच्छा।
1: स्कूल में जा करके
0: दीदी, फिर जैसे आप इस तरफ घर में आते हैं तो भक्ति मार्ग चल रहा था, और अब चाचा के पास जाते हैं तो फिर आध्यात्मिकता, मेडिटेशन और ये सारी जीवन, तो दोनों की चीजों की बैलेंस कहे, या फिर आपकी घर में भाई बहन ने आपकी, उनका कैसा रहा आप लोगों
1: का? वो ज्ञान में नहीं चलते थे, काफी विरोध होता था। जैसे मुझे भोजन करने में बहुत तकलीफ होती थी, तो जैसे चाचा जी ने एक बात बताते कि जो ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान सुनते हैं वो तामसिक भोजन नहीं करते, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं जब घर में आती थी तो दूध के साथ भोजन लेती थी, या तो दही होता था घर में उसके साथ भोजन लेती थी। तो माता पिता बहुत विरोध करते थे कि ये कौन सा ऐसा धर्म है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, ऐसा तो हमने कभी कोई धर्म देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बहुत पूजा करते, परिवार पूरा धार्मिक था, वो भी शिव की पूजा करते थे, देवियों को मानते थे, आराधना करते थे, लेकिन वो लहसुन प्याज बहुत प्यार से खाते थे, कहते थे लहसुन प्याज मैंने औषधि है, और मुझे भी जबरदस्ती वो करते थे कि आपको खाना ही चाहिए, और नहीं खा देती तो थोड़ी सी डांट तो पड़ती ही थी, लेकिन फिर भी मैं बाबा बाबा करके चुपके चुपकाते करते बाद में खा लूंगी करके, ज्यादातर हमारे घर का ही दूध होता था, खेती के कारण गाय वगैरह रखी थी, तो घर के दूध में ही दही इसी के साथ में रोटी खा लेती थी।
0: फिर आपकी कितने भाई बहन हैं? वो
1: तो हम चार बहनें और एक भाई, पांच लोग थे
0: जी।
1: तो सभी लोग मतलब मम्मी पापा के साथ मिल करके मुझे छेड़ते रहते थे, और मैं फिर उनको ज्ञान सुनाती रहती थी कि देखो बाबा ऐसे कहते, बाबा वैसे कहते, तो पंडिता इन करके मुझे छेड़ते रहते थे, देव जो तो पंडिता इन लोग ज्ञान सुनाती है। मैं पढ़ाई भी करती थी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इसमें होता था, क्योंकि हमारे लौकी चाचा ने एक ही बात सुनाई कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं ये सतयुग की पढ़ाई नहीं आएगी, लौकिक दुनिया में काम आएगी, लेकिन अगर हम नई दुनिया सतयुग के लिए जाते हैं तो उसमें ये पढ़ाई तो काम नहीं आएगी। तो इसलिए अधिक महत्व बाबा की मुरली में देना है, बाबा से योग करना है,
0: बाबा
1: तो
0: मतलब मैं
1: अधिक परमात्मा के ऊपर परमात्मा का चिंतन करना है, और परमात्मा जो शिक्षाएं देते हैं और उसी अनुसार चलना है। तो ये बात मैंने अपने दिल में गांठ बांध ली कि जैसे परमात्मा की वाणी में बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं मुझे ऐसे ही चलना है। और मुझे एक लक्ष्य मिल गया था कि जैसे चाचा जी ने एक ही बात मुझे सिखाई थी कि छह कर्म करते हैं तो हम देवी देवता बनते हैं, और थोड़ा भी गलत कर्म करते हैं तो आसुरी वृत्ति के कारण हमारे पद भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण हमारा जीवन व्यर्थ चला जाए। और उन्होंने फिर एक बात मुझे बहुत अच्छा सिखाया था कि हम कुछ भी काम करते हैं तो सोचते भी है, लेकिन भगवान सब देखते हैं, सब सुनते हैं। तो जब बचपन में भी ये बातें मुझे बहुत याद रहती थी कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ भले मुझे कोई ना देखे, लेकिन भगवान मुझे देखते हैं। तो ये बात मुझे आज तक याद रहती है कि परमात्मा की संपूर्ण नजर हम पर होती है, और हम क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या सुनती है, क्या करते है, वह हर प्रकार के हम पर अटेंशन रखते है। और
0: तो बाल्यकाल में ही आपको इन चीजों का अटेंशन था।
1: हाँ जी।
0: तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी छोटी हूँ, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपके भाई बहनें भी वो भी अपनी जीवन एंजॉय कर रहे हैं, और मैं पता नहीं क्या कौन सी रास्ते में जा रही हूँ?
1: नहीं, खेलती तो थी उनके साथ में, खेलती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उनके साथ जो वो भोजन करते थे उस समय अपने आप को साइड कर लेती थी, क्योंकि वो चाचा ने बड़े प्यार से समझा के बताया था, चाची ने भी, कि आप खेलना जरूर लेकिन भोजन उनके साथ बैठ के नहीं करना है, भोजन अलग से करना है, वो भी घर में जो कुछ हो तो बाबा, और वो भी बाबा की याद करना है, पहले योग करना है तभी खाना है। तो विरोध सब करते थे, लेकिन फिर मैं बाबा की मदद मिलती है तो बाबा की मदद से ही चलती थी, बाबा पर अटूट विश्वास। उन्होंने जिस मुझे कोर्स कराया तो कोर्स में ही मेरा निश्चय हो गया, और मुझे समझ में आने लगी सारी बातें, और मुझे भी लक्ष्य, और फिर मुझे सेंटर पर लेके जाते थे, जो बड़ा सेंटर था हमारा, आश्रम था गोंदिया में, आज भी है, तो वहाँ लेके जाते थे, और वहाँ दीदी लोग मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर वो भी मुझे सिखाती थी ऐसे करना ऐसे करना, तो मैं उसी अनुसार करती थी। फिर हमारे चाचा जी बताते, देखो ये ऐसे बनना है, ऐसी ड्रेस पहननी है, ऐसी सेंटर की सेवा करनी है, तो ऐसे तुम दीदी बन जाओगी। तो ये मुझे जैसे आकर्षण हो गया था।
0: तो ज्ञान में वो कौन सी बात थी जिसे आपको लगा कि ये सत्य ज्ञान है, यही मेरे जीवन परिवर्तित करेगा और मुझे ये फॉलो करना है?
1: अपनापन बहुत लगा मुझे, दीदियों से, जैसे कोई परिचय नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन दीदी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मेरे तो मुझे स्कूल के लिए तैयार करना, मेरे बाल ठीक करना, मुझे ड्रेसेस तैयार करके देना, और वो अपने बेड पर भी बिठा के अपने साथ सुला लेती थी, मुझे गोद में का प्यार देती थी। और फिर जब भी डांस सिखाती थी सेंटर पर, जब इस प्रोग्राम होते थे तो मुझे डांस सिखाती थी, मैं स्टेज पर डांस करती, वेलकम डांस करती थी। और दीदियाँ जहाँ जाती थी मुझे अपने साथ साथ लेके जाती थी और कुछ मुरली की बातें अच्छी अच्छी सुनाती थी, तो वो मुझे बहुत आकर्षण किया।
0: लेकिन एक उम्र के बाद तो आपको समझ में आया होगा ना, वो तो बचपन में प्यार मोहब्बत अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्ञान के ऊपर जो निश्चय है, जब आप थोड़ी सी उम्र आई और ज्ञान को समझने लगे, तो वो कौन सी बात थी जिसे आपको निश्चय
1: हुआ? जब मैं स्कूल में गई एक बार, स्कूल में मेरी फ्रेंड थी, मतलब बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन उनके ना सातवीं क्लास में थे हम दोनों, तो उन दोनों के जुड़वा बहनें थी और दोनों की शादी हो गई। तो शादी हुई और
0: छोटी उम्र में
1: दोनों की शादी हो गई। सातवीं क्लास में पढ़ते थे हम लोग, मतलब हम 14 साल की तो थी, नहीं 14 साल की भी नहीं थी, 12 साल की थी। तो 12 साल की उम्र में दोनों बहनों की शादी हो गई। फिर एक साल जैसे हम आठवीं कक्षा में गए, तो आठवीं कक्षा में गए और गर्मी के दिन में छुट्टी दिन होते हैं, तो उनकी शादी हुई। तो शादी हुई तो मुझे भी बुलाए, मैं भी देखने के लिए गई। मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, वो सब देखते हुए पता नहीं ऐसा लग रहा था ये गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ज्ञान योग करती हूँ ये भी करना चाहिए। फिर 6 महीने भी शादी को हुए नहीं और उनको दोनों को जला के मार डाले, और दहेज के कारण मार डाले। जब मैंने वो सीन पहले सुना और फिर मैं उनको देखने के लिए गई, तो पूरी तरह से जल के उनकी लाशें पड़ी हुई थी। जैसे वो देखा मैंने सीन, और जैसे मुझे मन में एक संकल्प चला कि आज के बाद तो शादी का कभी जिंदगी में नाम भी नहीं लेना चाहिए। शादी के बाद देखो कितनी अच्छी थी दोनों, मैं बहुत रोती थी उनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी थी वो, बहुत ही दैवी संस्कार वाली आत्माएं थी, पर परिवार था, ज्ञान में चलते नहीं थे, तो उनकी शादी हो गई और उनको जला के मार दिए दहेज के लिए। उस समय मैंने संकल्प लिया दृढ़ता, चाहे मुझे परिवार कितना भी प्रेशर दे, कितना भी मुझे गलत ठहरा दे, लेकिन मैं तो शादी नहीं करूंगी, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। और मुझे तो ज्ञान वैसे मिल चुका था और मुझे पता चल गया था कि विकार क्या चीज है, शांति क्या चीज है, अच्छाई क्या, बुराई क्या। तो ये सातवीं क्लास में तो फिट बैठ गया था, और फिर आठवीं क्लास के बाद तो मैं संपूर्ण चाचा के पास सेंटर पर ही आ गई थी। फिर उसके बाद में मैं
0: तो फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई की?
1: पढ़ाई तो 12वीं तक क्लास में गई, लेकिन 12वीं के एग्जाम नहीं दे पाई। क्यों? कि 12वीं की जिस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरे परिवार वाले बहुत प्रेशर देके, और क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी तो उनकी भी शादी करनी थी, वो मेरे से कद काटे में छोटी लग रही थी और मैं थोड़ी हेल्थ में अच्छी लग रही थी, तो सारे परिवार में एक ही कह रहे थे कि दोनों बहनों की शादी साथ में कर दी जाए। अब उनकी तो शादी जुड़ी नहीं रही थी, तो कहा कि छोटी वाले की शादी जोड़ो तो बड़ी वाले की शादी जुड़ जाएगी। मेरी फोटो, मैं चाचा के पास रहती थी, तो फोटो दिखा के उन्होंने शादी जोड़ लिया। अब शादी जोड़ लिया तो मुझे कहा देखिए आपको आना पड़ेगा। मुझे कुछ भी नहीं पता, हम तो नॉर्मली फ्रॉक पहनते थे। फिर बहुत सारे लोग आए देखने के लिए, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हमको देखने के लिए आए करके। तो पूरे परिवार में मेहमान आदि बैठे हुए हैं, मुझे कहा गुडे चाय लेके आओ, पानी लेके आओ। तो मैं जैसे गई, कहा आप भी बैठिए, तो हम भी बैठे। तो जब हम बैठे साथ में, तो मुझे पूछा, मेरा नाम पूछा, तो हम तो बाबा के ज्ञान में चलते थे, तो बाबा का नशा था। तो मैंने जैसे आपका नाम क्या है, तो हमने कहा मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम तीजाबाई बिसेन है। तो आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मैंने कहा मैं परमधाम निवासी हूँ, मेरे अलौकिक परमात्मा का नाम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो परमात्मा शिव कहते हैं, और मेरा जो नाम है वो कविता बिसेन है। तो वो कंफ्यूज हो गए कि बोल क्या रही है, आत्मा परमात्मा। तो मेरे पिताजी गुस्से से मुझे देख रहे थे कि आप ऐसे कुछ नहीं बोलो, बस अपना सीधा सीधा नाम बताओ कि आपका अमुक नाम है। तो मैंने कहा मेरा ऐसा ही नाम है, मेरे को ऐसे ही बोला जाता है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये देह आपसे मिली है, तो आप देहधारी पिता हो, आत्मा तो परमात्मा की है। तो वो सारे परिवार वाले मुझे देखने लगे। फिर कहा आपको खाना बनाना आता है, तो मैंने कहा हाँ जी बनाना आता है, मैं तो पहले खाना भगवान के लिए बनाती हूँ, फिर भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं, फिर हम सब खाते हैं। तो कहा कौन से भगवान को खिलाती हो, तो मैंने कहा निराकार शिव परमात्मा, जिस परमात्मा की अब शिवलिंग के रूप में पूजा करते, उस परमात्मा को हम भोजन स्वीकार कराते हैं, उसके बाद हम और उन्हीं याद में बनाते हैं, तो भोजन शक्तिशाली बनता है, फिर हम भोजन खाते हैं। फिर कहते हैं कि आपने खाना बनाया हो तो आपको पता है कि अगर 1 किलो चावल होगा तो उसमें कितने दाने हो सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत प्यार से, मैंने कहा कभी गिनती तो नहीं किया है मैंने, लेकिन गिनती करके मैं जरूर बताऊंगी आपको कल। ऐसे मैंने कहा
2: जी।
1: फिर उसके बाद में उन्होंने और कोई सवाल किया, तो मैंने सोचा सवाल का ये करते ही जा रहे हैं, तो मैं बाबा को याद करने लगी, बाबा मुझे इनके जाल में फंसना नहीं है, मैं आपकी हूँ, आप आओ बाबा मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे इनके कोई सवालों के जवाब अभी देने नहीं, आप कुछ तो ऐसा युक्ति रचो कि ये मुझे इस जगह से मुक्त करे और मैं जल्दी चाचा के पास चली जाऊँ। तो ऐसे देखने लगी, जस्ट दो चार लोगों के पास मुझे पेन दिखाई दी उनके जेब में, तो मुझे कभी संकल्प भी नहीं आया कि मुझे कुछ सवाल पूछने भी आएगा, पर जस्ट बाबा को याद किया और जस्ट टचिंग हुआ और उनका पेन को देखते हुए मुझे जैसे याद आया कि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ, तो मेरे जो पेरेंट्स बैठे थे मुझे आँख दिखाने लगे, बिल्कुल आपको अधिकार नहीं पूछने का, मैंने कहा बस मैं एक ही बार पूछना चाहती हूँ, तो कहा भले पूछो क्या पूछना है, वो बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने कहा पूछो, मैंने कहा आपके जेब में ना पेन है, आप इसे कितने अक्षर लिख सकते हो आप बताएंगे इसमें, तो एकदम से गुस्से में आके खड़े हो गए, ये कैसे बेहुदा सवाल है। मैंने कहा सही बात है,
2: आप चावल पूछ सकते
1: हैं, 1 किलो चावल आज तक किसी ने गिनती नहीं की है, दाने छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो वो कोई गिनती आज कर भी नहीं सकता, तो एक पेन है जिसमें कितनी स्याही होगी और कितने अक्षर आप लिख सकते हो, अगर आप हिसाब बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं भी कल चावल गिनती करके बताऊंगी। तो एकदम गुस्से में आके वो लाल चेहरा हो गया और खड़े हो गए, मेरे माता पिता भी साथ में थे, बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर, ये कैसे हमारी इंसल्ट कर दिया, इनको बहुत बुरा लगा, अभी क्या सोचेंगे। जैसे वो दरवाजे के बाहर विदाई करने के लिए गए, फिर मेरे पिताजी आए और बहुत गुस्सा होकर मुझे चमाट मारी, कहा आज के बाद तो तुमको बिल्कुल बाहर नहीं लेके आना, अब तो तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, अब जो भी मिले। तो बोले रिश्ता तो पक्का हो ही गया है, फिर उनके पास जाके मेरे पिताजी हाथ पैर जोड़े कि मेरी बेटी ने बहुत गलत सवाल किया, मेरी बेटी से आपने परेशान हुए होंगे, मैं माफी चाहता हूँ। मैं सब देख रही थी, रोते जाके देख रही थी क्या क्या हो रहा है। माताजी ने तो सर ही छोड़ दिया था, फिर पिताजी क्या किए, हमको घर में बंद कर दिए सारी बहनों को।
2: माताजी ने कब शरीर,
1: माताजी ने मुझे लगता है 25-30 साल हो गए सर ही छोड़ दिया था,
2: मतलब छोटी थी, बारहवीं से पहले,
1: हाँ बारहवीं से पहले माताजी ने सर ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में पिताजी ने क्या किया, हम सब बच्चों को घर में के दिन चले, सब बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिए, और घर के अंदर सब कुछ था, तो वाड़ा था हमारा, तो उधर से क्या किया उन्होंने, पूरा घर बाहर से बंद करके चले गए और खेत में चले गए का

0: लड़कियों को बच्चों को घर के बाहर निकलना नहीं है। तो सब रोने लगे, आपस में छोटे छोटे थे तो रोने लगे, अभी दीदी आपके कारण हमको ऐसे पनिशमेंट मिली, हम बाहर खेलने भी नहीं जा सकते हैं, ऐसे करके। तो मैं बोली बाबा है ना, उनको कुछ कुछ बातें सुनाने लगी अच्छी अच्छी। उसी बीच में हमारी पड़ोस में एक चाची रहती थी जिनको चाबी देके गए थे कि भाई मैं तो जा रहा हूं, तो बीच में आप बच्चों का ध्यान रख लेना करके। तो वो आई और जैसे दरवाजा खोला और सब बच्चों को पूछने लगी कैसे हो, कुछ खाए नहीं खाए, और मैं रोने लगी। फिर मेरे को कुछ खिलाने लगी तो कुछ फल रखे हुए थे, अमृत रखा हुआ था, वो कहते तुम ये खा लो, तुम तो खाना नहीं खाओगे ना लहसुन प्याज का, तुम ये खा लो। तो मैंने वो खा लिया। फिर करते करते मुझे अचानक याद आया कि कुछ तो मैं करूं ऐसा और यहीं से छुटकारा पाऊं। तो बाजू में किराना की दुकान थी हमारे घर के सामने, तो बहुत अच्छे थे हमसे रिलेशन में, तो जस्ट वहां गई और ट्रिंग ट्रिंग वाले पहले टेलीफोन होते थे और चाचा का नंबर मालूम था मुझे, तो वहां जाके फोन किया और फोन करके तुरंत बोला कि चाचा ऐसे ऐसे हुआ, सारी कहानी सुनाई। तो कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मेरी दादी थी पापा की मौसे भाई, क्योंकि चाचा जो थे पापा के मौसे भाई थे और वो ज्ञान में चलते थे। तो मेरी दादी, मेरी बुआएं, मेरे चाचा चाची फोर व्हीलर से आए। फिर जैसे वो चाची थी 15 मिनट लगते थे आने में, तो बैठी थी। तो कहा क्या हुआ कैसे हुआ? तो कहा हम तो इसको लेके जाएंगे गुड़िया को। तो कहा नहीं नहीं इसके पिताजी है नहीं, आप इसको कैसे लेके जा सकते हो? तो मेरे चाचा ने लेटर लिखा लेटर पैड पर, कहा देखो ये बेटी हमारी है और हमने इसको गोद ले लिया है और अब हम इसको लेके ही जाएंगे क्योंकि ये नहीं रहेगी यहाँ पर। और मैंने भी कहा मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ पर, ना मैं शादी के लिए तैयार हूँगी, अगर यहाँ रहूंगी तो फिर तो वो शादी कर देंगे मेरी और मुझे नहीं करनी शादी। बाबा मुझे पक्का निश्चय हो गया था। फिर उसके बाद में चाचा जी, और मैंने भी लिख दिया कि अभी मैं वापस कभी नहीं आऊंगी।
1: फिर समर्पण का कैसे हुआ?
0: फिर उसके बाद में चाचा के पास में रहने लगी। तो फिर शाम को, जैसे शाम हुई तो गांव के कुछ लोगों को मेरे पापा आए लेकर के कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए करके। तो चाचा ने तब तक मुझे बुआओं के पास छोड़ दिए थे, घर में थी नहीं, तो का बेटी यहाँ है पर वो चली गई है, यहाँ है नहीं। तो बहुत विरोध किया, झगड़े हुए कि हमारी बेटी वापस दो, को आपकी बेटी नहीं है, वो तो परमात्मा की बेटी है और वो हो गई है। तो काफी दिन चाचा और पापा से विरोध रहा, बातचीत नहीं रही। फिर रहती रही सेंटर पर, उसके बाद फिर बड़े सेंटर पर, मेरी बुआ भी सेंटर इंचार्ज थी तो उनके पास, मेरी बुआ के पास भेज दिया था, वहां पर ही रही। जब मेरा समर्पण होने का दिन आया तो समर्पण, चाचा बोले समर्पण कराना जरूरी है और जो भी खर्चा लगेगा तो हम करेंगे लेकिन हम तो करना है। तो माता जी आई थी एक बार मिलने के लिए कि इसके पिताजी बहुत विरोध कर रहे हैं, हम साइन नहीं देंगे, तो कभी सिग्नेचर नहीं देंगे, माता पिता की साइन तो फाड़ के फेंक देंगे, ऐसे ऐसे। और फिर आए एक दिन मिलने के लिए, दोनों भी समझाने लगे। तो मैंने कहा मैं तो शादी शिव बाबा से करूंगी। तो कहा ये फोटो से शादी करूंगी? ऐसे ऐसे मुझे बोलने लगे। तो मैंने कहा फोटो नहीं है, ये परमात्मा शिव है, निराकार है, कितनी सारी बहने परमात्मा से शादी करके ब्रह्मा कुमारी बनी, सेंटर के उदाहरण दिए, नहीं मान रहे थे। फिर भी मैंने चाचा चाची को, मैंने कहा चाचा मैं तो करूंगी। ये चाचा चाची ने सिग्नेचर किया, सब कुछ किया, माता पिता का कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मेरी चाची गीत बहुत गाती थी तो मुझे भी गीत गाना सिखाया, तो मुझे कवि बोलती थी बहुत प्यार से। तो चाचा कहते हैं ऐसा करते हैं, इसके माता पिता तो सिग्नेचर देने वाले नहीं है, इसका नाम भी बदल देंगे, फिर तो क्यों इसका नाम रखे लौकिक नाम, तुम तो कवि कहती हो, इसको ता जोड़ देते हैं, बन गई बाबा की कविता। तो इस तरह से मेरा एक अलौकिक नाम हो गया और तब से मेरा सेंटर से लेके आज तक अलौकिक नाम ही चलता है।
1: बहुत सुंदर। तो फिर आप जब समर्पित हुए, आपकी भाई बहन भी आपसे मिलने आए?
0: हाँ मिलने आए, लेकिन जब समर्पण हुआ माउंट आबू में हुआ, दादी प्रकाशमणि जी के रहते, लेकिन मेरे परिवार से, लौकिक परिवार से कोई भी नहीं आए, बल्कि वो और भी नफरत करने लगे कि ये क्या किया, पिताजी मान नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे है, फिर भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो चाचा जो ज्ञान में भाई बहने चलते थे, गीता पाठशाला थी, और कुछ रिश्तेदार तो जो ज्ञान में चलते थे वो सब आए। फिर क्या हुआ, जब स्टेज पर आए तो दादी जी कहने लगी कन्या के माता पिता को बुलाओ, कन्यादान करे, हाथों में हाथ देवे दादी जी के। जब मैं सभी बहनों को देख रही थी, सभी बहनों के साथ में उनके माता पिता साथ में थे और मेरे माता पिता तो थे ही नहीं जो मेरे हाथ में हाथ देवे। तो जैसे मैं चाचा को देखी और मैंने कहा मेरे तो माता पिता है ही नहीं जो दादी के हाथ में हाथ, और मुझे अचानक ही रोना शुरू आ गए और मैं रोने लगी। तो दादी कहती क्या क्यों रो रही हो? मैंने कहा दादी सबके माता पिता है, मैं तो कितना अच्छा काम कर रही हूँ परमात्मा से शादी, तो भी मेरे माता पिता नहीं आए हैं, तो मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ ना उनकी नजरों में, तो ऐसे करके मैं रोने लगी। तो फिर दादी प्रकाशमणि ने देखा कि ये रो रही है, तो कहा क्यों रो रही है आपकी लड़की, क्या हुआ? कहती इसके माता पिता नहीं आए ना, तो बोले क्यों इसके माता पिता नहीं ज्ञान में चलते? तो फिर दादी ने थोड़ा शॉर्ट में बताया कि विरोध करते हैं वो, और ये पक्की चलना चाहती है, लेकिन हमें ना इनके साथ में, ये चाचा चाची इसके माता पिता के रूप में ही है, और हमें हाथ में हाथ देंगे, और ऐसे करके फिर दादी ने समझाया और फिर मेरा समर्पण हुआ, डायमंड हॉल में हुआ।
1: बहुत सुंदर। तो आपके जीवन में रोल मॉडल कौन थे, किनको आप ज्यादा आदर्श मानते थे?
0: तो मैं सेंटर की दीदियों को ही देखती थी, अपने लक्ष्य को देखती थी कि ऐसे बनना है, और जो लौकिक चाचा चाची थे तो मुझे समय प्रति समय बहुत अच्छी अच्छी धारणा की और मधुबन की मुरली की बातें सुनाते रहते थे, और जो प्रोग्राम होते थे तो आए दिन मुझे चाचा सेंटर पर लेके जाते थे, नागपुर सेंटर पर लेके जाते थे, तो पुष्पा रानी दीदी से मिलना, सावित्री दीदी जो हमको बहुत प्यार करती थी, और हमारी सेंटर की बहनें बड़ी बड़ी जो माला दीदी है अपने, उनको देखती थी, बड़ी बहनों को देखती थी कितना सुंदर जीवन है, तो उनकी ड्रेस मुझे बहुत भाती थी, जो व्हाइट साड़ी पहनती थी ना दीदी लोग, तो मुझे भी ऐसे बनना, मैं इनके जैसे सेवा करूंगी, इनके जैसे भाषण करूंगी, ऐसे मुझे बहुत आकर्षित मैं तो हुआ, और तब मुझे बहुत पक्का मान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगी। तब से मेरे परिवार से, मेरे परिवार वालों ने फिर मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया, तो कहा आपके बाद आप मर गई हमारे लिए, कभी नहीं आना हमारे पास। तो 7 साल तक कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा घर से, कुछ भी नहीं रहा।
1: चाहे आप उनकी पसंद की शादी करो या फिर अपनी पसंद की शादी करो, एक महिला के जीवन में संघर्ष तो देखना ही है
0: जी।
1: चाहे वो मायके से हो या फिर ससुराल से हो, हर बात में खुद का निश्चय, खुद के जीवन के प्रति खुद का मार्गदर्शन। तो आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी क्लैरिटी कि मुझे यही जीवन जीना है और इसी को जीवन जीना कहते हैं, ये कब महसूस हुआ?
0: मुझे ये महसूस तब हुआ जब मैं अमृत वेला मेरे लौके चाचा चाची करते थे, और वो बाबा से बहुत दृष्टि लेके, शक्ति लेकर कि वो जो भी कहते थे वो सिद्ध होता था। बाबा की बातें सुनाते थे, गांव-गांव जाते थे, सेवा करते थे, गरीब आत्माओं को देखते थे, दान धर्म करते थे, अनेक आत्माओं के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाया, खुद भी परिवर्तन करते थे अपने जीवन में, और वो बातें सब मुझे देखती थी मैं आंखों से, और सीखती थी, खुद भी करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि ये जीवन बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन है। तो धीरे धीरे मुझे बहुत निश्चय होने लगा, और ऐसा लगता था जैसे बाबा की मुरली रोज मुझे पढ़ने के लिए देते थे, मैं स्टेज पर बैठ के मुरली पढ़ती थी, और एक बार तो ऐसा होता था हमारे लौकिक चाचा चाची कितना मतलब ध्यान खिंचवाते थे, जब प्रचंड मार्ग लगाई जाती थी तो मेरे लौकिक परिवार के कम से कम 10 लोग बैठे होते थे। अब मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ ना, तो लौकिक में बोलती थी हिरण दादी, शालिकराम चाचा जी, सावित्री चाची, कहती थी कौन है आपका यहाँ चाचा चाची, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हम आत्मिक रूप से बैठे हैं, इस दीवार के बाद जाओगी ना तुम्हारा लौकिक परिवार आएगा, यहाँ कोई लौकिक नहीं, यहाँ सब अलौकिक और बाबा के बच्चे बैठे होते, जब तक तुम हम शालिकराम भाई नहीं बोलोगे, हिरण बहन नहीं बोलोगे, तब तक हम ओम शांति भी नहीं बोलेंगे, इतना मुझे उन्होंने पक्का कराया था। तो जब मैं अपने लौकिक चाचा चाची का नाम लेती थी, दादी का, मेरे फूफा जी, मेरे मौसा जी सब बैठते थे, जब तक हमारा नाम नहीं लोगी तुम, हम ओम शांति नहीं करेंगे, बाकी सबका नाम लेती हो तो हमारा भी नाम लो, तो इतना उन्होंने आत्मिक स्थिति को भी पक्का कराया। तो मुझे एक दृढ़ निश्चय हो गया कि परमात्मा आए हैं हमारे लिए, और हमें अपना संपूर्ण जीवन इतना सच्चाई से, अच्छे से, श्रेष्ठ जीवन जीना है ताकि हम अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सके।
1: बहुत सुंदर। तो जब आप इतनी दृढ़ता और इतनी क्लैरिटी के साथ अपने जीवन का निर्णय लिया और उस पे अडिग रहे हैं, और पिछले 4 दशकों से अधिक समय से आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, इस पवित्र जीवन को जी रहे हैं, सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसी क्या उपलब्धियां या प्राप्तियां या जीवन में ऐसे कौन से परिवर्तन को आप देखते हैं?
0: कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी मुझे चिड़चिड़ापन होता था, तो जब कोई भी कुछ कहता था तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता था, लेकिन जब मैं माउंट आबू आई, मैंने दादियों को देखा, जब माउंट आबू सेंटर पर रहने लगी, बाद में मेरा परिवर्तन हो गया, माउंट आबू आने लगी, और माउंट आबू मैंने मनोहर दादी, दादी प्रकाश मने, दादी ईशो जी, मैंने सब दादियों को देखा, तो सब दादियों में जैसे ना गुणों की खान, इतना प्यार, इतनी शांति, इतनी सुकून, हर प्रकार से जब उनको जीवन को देखती थी तो लगता था कि दादियों को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता है, न कभी जोर से भी नहीं बोलते हैं, कभी इसे गुस्से में आंख भी नहीं दिखाते, कितना प्यार। तो उनकी सब दादियों को देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि इन जैसे बनना है, ऐसे दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करना, और निश्चय मेरा बढ़ता गया कि जो दादियों ने बाबा की शिक्षाओं को लेके इतना ऊंचा जीवन बनाया, आज विश्व में नंबर वन जीवन जी आदर्श जीवन है सभी दादियों का, दादी ने कहते लेकिन दादी माँ के रूप में प्रत्यक्ष हो गई है, तो बस ये मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे दादियाँ, और आज भी वही है कि उन जैसा बनना है और बाबा की शिक्षाओं को जो बाबा शिक्षा देते उनको संपूर्ण रीति से अपने जीवन में धारण करना है। ऐसी कोई

0: कि जो सेवाएं सुचारू रूप से दादी जी के कॉटेज में चलती थी कि काफी भाई बहने मिलने आते हैं, उनसे हम मिलते हैं, ज्ञान की रोरियान करते हैं और आध्यात्मिक रीति से जो भी स्टूडियो में बुलाते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, कई जगह मुरली सुनाने के लिए जाते हैं, ज्ञान की रोरियान चलती रहती है। तो जहाँ भी बुलाते हैं ऑल इंडिया में, वहाँ भी हम जाते रहते हैं और हमारी सेवाएं हम देते रहते हैं।
1: बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच दीदी जी। आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए और एक महिला और उसमें भी खास एक छोटी सी बच्ची को जब आध्यात्मिक ज्ञान की स्पष्टता जब मिलती है, उनके अंदर एक दृढ़ता और उनकी अपनी जीवन को सजने संवारने की एक ताकत क्या होती है और वह कैसे आगे बढ़ती है, आज हमने आपके जीवन से देखा और इसे ही कहते हैं जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच दीदी।
0: ओम शांति।
1: दोस्तों यहीं पर हम आप सभी से विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए अनुभव एक नए योगी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
2: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
3: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
4: अभी बजे हैं 12:00 PM, 1 मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
1: प्रेम धारा जमुना का प्यारा वो किनारा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुण के बारे में जिसकी जरूरत शायद हमें हर रिश्ते में पड़ती है, वो है कामनेस, यानी कि शांत चित्तता। क्योंकि हर बार कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो हमें लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी हमारी प्रतिक्रिया उससे बना देती है अक्सर उतनी बड़ी समस्या होती नहीं है। इसी विषय को समझने के लिए हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ओंकार चंद जी। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ब्रह्मा कुमारीज के साथ आप बाल्यकाल से ही जुड़े हुए हैं। देश विदेश के साथ साथ कॉरपोरेट वर्ल्ड में हर जगह पर जाकर के आपने अपने मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं। बहुत सारे युवा वर्ग को आपने मोटिवेट किया है। इसके साथ साथ आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो प्रोफेसर ओमकार चंद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, ओम शांति।
2: ओम शांति। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कामनेस है, यानी कि हम शांत रहना कह सकते हैं, शांत चित्तता, इसे आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्या सिर्फ चुप रहना ही शांत रहना?

0: शांत रहना केवल चुप रहना नहीं कहा जा सकता। चुप तो व्यक्ति अक्सर रहता भी है, कभी बोलता है कभी चुप भी रहता है, पर कामनेस का मतलब है कि जब कोई नेगेटिव, कोई अपोजिंग सिचुएशन आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए जो हमें अच्छी नहीं लग रही, जो हमारे अनुसार सही नहीं है, उस वक्त अपने मन को शांत रखना, वो कूलनेस या कामनेस या शांत जो आपने कहा, शांत चितता हिंदी में अगर शुद्ध कहें तो उसको कहें। इसमें मुख के मौन से ज़्यादा मन का चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मन अगर शांत है तो कैसी भी सिचुएशन होगी उसका हम सामना कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम मन से उस वक्त पॉजिटिव रहें, सही सोचें, उसे हम कामनेस कह सकते हैं।
1: जी, मन से पॉजिटिव कैसे रहें, कैसे सही सोचें, इस विषय पर हम जानेंगे, आगे जानते जाएंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स के द्वारा। तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारे रिश्तों में अक्सर छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल जाती है। हम कहते हैं कि हम राई को पहाड़ बना देते हैं कई बार, तो ऐसे क्या होता है कि एक छोटी घटना के बाद हमारी भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती है और हम सहन नहीं कर पाते छोटी छोटी बातें?
0: ये अक्सर हम सबके साथ होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हम उसमें उलझ जाते हैं और नेगेटिव वे में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसे हम रिएक्ट करना कह सकते हैं। अब बातें तो होती हैं, कोई ना कोई जीवन में रुकावटें आएंगी, समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से सिचुएशन का सामना ना कर सके, नेगेटिव वे में उसका सामना करें, तो उसे रिएक्ट करना कहा जाता है। और वो हमारे लिए, खुद के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो चीज़ हमें दर्द देगी। अगर हम उसको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम उसको नॉर्मल वे में लेंगे, और अगर उस सिचुएशन को देख के हम घबरा गए, डर गए, और उसका कारण भी ये है कि हम अंदर से कमज़ोर हैं, मन हमारा मजबूत नहीं है। अब वही सिचुएशन 10 आदमी अगर उसको फेस कर रहे हैं, एक जैसी सिचुएशन, तो क्या 10 वे एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? सबका रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होगा। कोई उसको राई को पहाड़ बना देगा, कोई राई को और रूई बना देगा, कहेगा कोई भी बात, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगी, आज प्रॉब्लम है, आज कुछ हुआ है, कल को ठीक हो जाएगा। एक तरीका ये है उसको रिएक्ट करने का, और एक तरीका है, अरे इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो इंसल्ट हो गई, मैं कैसे दूसरों को मुंह दिखाऊंगा, तो ये तो मुझे समझते कुछ नहीं है, तो वो भी एक तरीका है। तो इसका मतलब हमारे मन में उस वक्त क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि हम उस सिचुएशन में पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेंगे या नेगेटिव वे में करेंगे।
1: ओके, तो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, अक्सर एक दिन में तो वो थॉट्स नहीं क्रिएट होते होंगे ना
0: जी,
1: तो कई दिनों के प्रैक्टिस या कई सालों के प्रैक्टिस
0: हैबिट में जो आ जाता है।
1: जी जी
0: जी,
1: ओके। तो मान लीजिए जब हमें किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो पसंद नहीं आता, तो हमारे मन में तुरंत जैसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो क्या हमारी सोच से ही हमारे रिश्तों की दिशा तय होती है, ऐसा लगता है?
0: हर चीज सोच से ही डिसाइड होती है, चाहे वो रिश्तों की दिशा हो, चाहे जीवन की दशा हो, चाहे हमारे जीवन में हम जो भी सुख या दुख महसूस कर रहे हैं, वो हर चीज का आरंभ तो सोच से ही होता है। सोच ही हमें कुछ भी बना सकती है। वो कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है।
1: जी,
0: तो मानना और ठानना, हार और जीत, सुख और दुख, जो भी है तो सोच ही।
1: जी,
0: तो सोच अगर सही हो जाए जीवन में तो हर चीज सही हो सकती है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए किनारे मिल जाएंगे।
1: क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत ये पोएम है। तो जानना चाहेंगे कि सोच को बदलने के तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
0: पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जब भी हम सोचने लगें तो चेक करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ,
1: क्या इतना मुझे चेक करने का टाइम मिलेगा?
0: वो टाइम आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि मैं ये जो सोच रहा हूँ इस सोच से मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर मैं सही फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सही सोच नहीं है, वो नेगेटिव सोच है, वेस्ट सोच है। और अगर मैं उस सोचने के बाद मैं लाइट, खुश, हल्का और सुख की फीलिंग आ रही है, गुड फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स वो सही सोच है। तो जैसे ही आपको फीलिंग से आपको पता चल जाएगा कि मेरी सोच सही है या खराब है। अगर फीलिंग खराब है तो सोच खराब है, तो उसी वक्त रुको और अपने मन को पूछो, क्या मैं ऐसे ही सोच सकता हूँ या इसके अलावा भी इस घटना में मैं कोई और तरीके से भी सोच सकता हूँ। जैसे ये घटना घटी तो क्या मैं इसी तरीके से सोचूंगा तो दुख मिलेगा क्योंकि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, तो उसके अपोजिट क्या हो सकता है जो मैं सोच लूं। मान लो आज मुझे किसी ने नौकरी से निकाल दिया या मेरा कोई और नुकसान हो गया, अब मैं भगवान को कोस रहा हूँ, भगवान तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, या मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूँ कि मेरे भाग्य में, मेरे मुकद्दर में सही नहीं लिखा, एक दरवाजा था जीवन में जिससे कुछ आ रहा था वो भी बंद कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहीं का नहीं रहा, तो ये होगी नेगेटिव थॉट।
1: तो यही तो हम देखते हैं।
0: उसके बजाय अगर उस वक्त हम ये सोच लें कि कोई बात नहीं, एक दरवाजा बंद हुआ, मैंने सुन रखा है कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो 10 खोल देता है, लगता है 10 और खुलने वाले हैं।
1: ओके, तो अपने तरीके को
0: एक नई होप पैदा हो जाएगी। मेरे एक दोस्त हैं विवेक भाई, बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं,
1: बिल्कुल रेडियो मधुबन पर भी काफी
0: बार पहले आते हैं, सुनते रहे और
1: आपकी बात विवेक के साथ।
0: हाँ जी, तो उनके साथ 2-3 साल पहले वो दिल्ली गए हुए थे, तो दिल्ली में वो मार्केट में गए किसी शॉप में, तो कार में अपना सामान ब्रीफकेस रखा हुआ था, वो कार में रखा हुआ था और चले गए। जैसे वापस आए तो कार का शीशा टूटा हुआ था, ब्रीफकेस गायब था, उनके सारे पहनने के कपड़े और कीमती चीज़ें गायब हो गई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उनको थोड़ा हिम्मत देने के लिए कहा कि ऐसा ऐसा करो, तो वो कहते नहीं नहीं कोई गलत बात नहीं हुई है, अगर एक थोड़ा सा लॉस हुआ है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब कुछ बड़ी चीज मिलने वाली है। तो वो उल्टा मेरे को हिम्मत देने लग गए
1: जी।
0: हिम्मत मैंने उनको देनी थी पर वो मुझे हिम्मत देने लग गए, क्योंकि मुझे भी बुरा लगा कि चोरी हो गई तो अब क्या किया जाए। तो हम उस सिचुएशन को इस तरह से भी ले सकते हैं कि मेरा लॉस हुआ है तो लॉस के बाद जरूर भगवान अब बहुत बड़ा प्रॉफिट करने वाला है, अब मेरी बहुत कहीं से बड़ी चीज आने वाली है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आप सोचेंगे हो भी जाता है, आप सोचेंगे कि कहीं से कोई बड़ी चीज आने वाली है तो आ भी जाएगी, अगर आप सोचेंगे जाने वाली है तो चली जाएगी। तो क्यों ना हम अपनी सोच को वो वाली करें जो हम देखना चाहते हैं, जो हो रहा है वो वाले बात पे चिंतन करने के बजाय हम उस बात पे फोकस करें जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो हम मन को ट्रेनिंग दे दें, समझा दें कि अब ऐसे भी सोचा जा सकता है।
1: राइट,
0: पहले हम सोचते नहीं थे, हमें लगता था यही तरीका है, किसी ने कुछ किया, मान लो किसी ने मारा आपको, आप कहेंगे जी इसने एक मारा, 4 आप मारो, दुनिया में यही सिखाया जाता है, उसके अलावा कोई सोच ही नहीं है कि और भी कोई तरीका होता है
1: जी।
0: लेकिन अगर हम अपने पास पॉजिटिव थॉट्स रखें, सही थॉट्स रखें, तो उस लॉस को भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं। कितना भी बड़ा लॉस हो जाए तो मन में सोच लिया करो कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग, ये घटना मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ लेगी, तो हम भी सोच लें कि ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या बिगाड़ा जाएगा।
1: राइट,
0: पॉजिटिव सोचा जा सकता है ना। आपको मैं एक असली कहानी सुनाता हूँ, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था
1: जी,
0: तो जैसे ही उनकी दीक्षा पूरी हुई तो वो गुरुजी के पास, महात्मा बुद्ध बाबा के पास गए कि मुझे आपकी शिक्षाओं का प्रचार करना है, एक इलाका मैंने ढूंढ लिया है, वहां आज तक आपका कोई शिष्य नहीं गया है, मैं वहां जाके आपका प्रचार करूंगा, तो मुझे परमिशन दीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसकी परीक्षा लेनी चाही। महात्मा बुद्ध ने कहा, आप जानते हो कि आज तक वहां दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं गया? वो कहता, जी मैं नहीं जानता। अरे भाई, वो बहुत बिहार का एक ऐसा इलाका है जहां बहुत खतरनाक किस्म के लोग रहते हैं उस गांव में, तुम जाओगे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उल्टा फुल्टा बोल देगा, कोई गाली देगा, कोई इंसल्ट करेगा, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं उनका धन्यवाद करूंगा, मैं कहूंगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपने शब्दों से मेरा अपमान किया, मेरे ऊपर हाथ तो नहीं उठाया, तो मैं उनका थैंक यू करूंगा। महात्मा बुद्ध ने दोबारा प्रश्न पूछा, अरे भाई उस गांव में ना ऐसे भी कोई होंगे जो हाथ भी उठा सकते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम धर्म की बात करोगे, वो लोग उल्टे दिमाग के हैं, कोई हाथ उठा देगा, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने वही जवाब दिया, मैं कहूँगा उनका थैंक यू करूँगा, कहूँगा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, हाथ से मारा पर मुझे डंडे से तो नहीं मारा। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, अरे भाई तुम बात समझ नहीं रहे, वहाँ के लोगों का दिमाग कब पलट जाए कोई बात का पता नहीं है, कोई ना कोई डंडे से भी मार सकता है। तो शिष्य ने फिर वही जवाब दिया कि मैं कहूँगा जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत काइंड हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे डंडे से मारा, आपने मुझे तलवार से तो नहीं मारा
1: जी,
0: आपने मुझे जान से तो नहीं मारा। महात्मा बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया कि भाई कोई पता नहीं उस गांव के लोगों का, हो सकता है कोई तुम्हें जान से मार दे, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने फिर वही जवाब दोहराया कि मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपने मुझे खुद ही मोक्ष दे दिया, अगर मैं खुद मरता तो आत्महत्या होती, आपने तो मुझे फ्री में ही मोक्ष दे दिया
1: जी,
0: मुक्ति दे दी
1: जी।
0: तब भी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई तुम पास हो, तुम अब कहीं भी जाके धर्म के प्रचार का काम कर सकते हो। तो शिष्य ने देखो आप कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं छोड़ी, उसने सोचा कि इन्होंने इतना नुकसान किया पर इतना बड़ा तो नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी जान भी चली गई
1: जी।
0: तब भी उसने यही कहा कि जान भी चली जाए तब भी क्या हो जाएगा, आत्मा तो अविनाशी है और खुद तो मर नहीं सकते, अगर किसी ने मार ही दिया तो भी मुक्ति तो मिल ही जाएगी मुझे।
1: तो ये शांत रहने से पॉजिटिव सोच सकते हैं।
0: हाँ, पहले तो शांत रहना है
1: जी।
0: अगर आप डिस्टर्ब हो गए फिर तो नेगेटिव ही थॉट चलेंगे। अगर आपने किसी घटना को देख के, सिचुएशन को देख के, जरा भी आपने दर्द की फीलिंग आपके अंदर आई तो उस दर्द की फीलिंग में फिर आप उल्टा सोचेंगे, सही नहीं सोचेंगे।
1: ओके।
0: तो उसी वक्त जब दर्द की फीलिंग आने लगे अपने मन को समझाओ, रोको कि नहीं भाई मुझे दर्द में नहीं रहना है, मैं इस घटना को इस तरह से भी तो ले सकता हूँ
1: जी। ओके।
0: मैं इस सिचुएशन में ऐसे भी तो सोच सकता हूँ। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आम तौर पे आदमी जिनसे उनके विचार नहीं मिलते, जब कुछ टकराव हो जाता है तो लोग दुश्मनी ले लेते हैं, एनिमिटी की फीलिंग, शत्रुता की फीलिंग के साथ चलते हैं और बदला लेने के थॉट्स मन में आते हैं। अब जब हमारे मन में बदला लेने के थॉट्स आते हैं, नफरत के थॉट्स आते हैं, उस वक्त कैसी फीलिंग है? बिल्कुल दुख वाली फीलिंग है, दर्द वाली फीलिंग है। उस वक्त अगर हम चेहरा अपना देखें तो अपना चेहरा ही अच्छा नहीं लगेगा मिरर में,
1: है ना? राइट।
0: लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमें सिखाया ही गया कि कोई आपका करे तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, बदला लेना है, लेकिन वो सही चीज नहीं है। पर आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छा शेर सुना, वो इस चीज को बड़ा अच्छा से डिफाइन करता है, और जिसके मन में भी अगर बदले की भावना आए इस शेर को जरूर याद कर लेना कि मेरे दुश्मन को इस बात का पता ही नहीं जो दुश्मनी मेरे से रखता है, मेरे दुश्मन को इस बात का पता ही नहीं कि दुश्मनी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं।
1: जी।
0: तो यही सजा है
1: दुश्मनी,
0: और मित्रता रखना
1: जी
0: सजा के उल्टा है
1: जी,
0: गुड फीलिंग वाली बात है, सुखद फीलिंग आपको फीलिंग देगा। और अगर आपने किसी से शत्रुता रखी तो वो तो कर गया जो उसने करना था, और आपने जब तक बदला नहीं लिया तब तक आपको लगेगा, तब तक आपको ना नींद आएगी, ना चैन आएगी, ना सुकून की फीलिंग आएगी, क्योंकि वही बदले का भाव। तो सजा तो आपको मिल रही है,
1: गलती उसने की,
0: सजा आप प्राप्त कर रहे हैं तो समझदारी नहीं है। तो सजा से बचने का तरीका है, उसको भूल जाओ, माफ करो, जो उसने किया क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा हमारा, याद कर लो भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, कितना बड़ा नुकसान कर देगा। जो हमारे भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है आया हुआ भी भाग जाएगा।
1: राइट,
0: तो फिर काहे की चिंता
1: जी, जो
0: काहे को किसी से शत्रुता रखनी, जो हमारा है वो आना ही आना है, कितना भी कोई ले जाए, जो गया समझो मेरा
1: नहीं था
0: ही नहीं, तो है ही नहीं, तो उसका दुख क्या बनाए।
1: सही बात,
0: जो मेरा है वो मेरे पास रहना है, मेरा भाग्य दूसरा नहीं बिगाड़ सकता। देखो कितना बड़ा ज्ञान है, हमने ब्रह्मा कुमारीज में आके सीखा, हम खुद अपने भाग्य विधाता है। हमें दुख की फीलिंग तब आती है, हम रिएक्ट तब करते हैं, क्योंकि उस वक्त लगता है कि मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन ज्ञान ये कहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता सिवाय मेरे। आत्मा अपना खुद का मित्र खुद है, अपना शत्रु भी खुद है, मेरे सिवाय मेरा कोई कुछ ना बना सकता है
1: ना
0: बिगाड़ सकता है। मेरे अपने कर्म ही मेरा भाग्य बनाएंगे, मेरे अपने कर्म ही मेरे भाग्य बिगाड़ेंगे, दूसरे के कर्म मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकते। मान लो उसने चोरी करके ले गया, हम कहेंगे मेरा भाग्य तो बिगड़ गया, मेरी चीज ले गया, चोरी उसने की, पर उसके पीछे गहराई ये है कि वो वही ले गया जो उसका था, वो मेरा था ही नहीं।
1: राइट,
0: तभी वो मुझे गलत फहमी थी कि मेरे पास है तो मेरा है, वो मेरा था ही नहीं, वो उसका था तो ले गया।
1: तभी मन को शांत रख सकते हैं
0: ऐसे
1: पॉजिटिव विचार से।
0: तो ऐसे विचार जब तक मन में नहीं आएंगे तब तक हम रिएक्ट करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे
1: जी।
0: तो मन को समझाना आना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये है कि हम अपने मन को समझाएं कि वो वाले थॉट्स लाओ जो हमें सुखद फीलिंग देते हैं।
1: ओके, मेडिटेशन के द्वारा पॉजिटिव चिंतन बढ़ती है
0: क्योंकि मेडिटेशन में हम मन को यही तो ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, ऐसे पॉजिटिव विचार लाने हैं, और वो आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है
1: जी।
0: लेकिन परिस्थिति को देख के घबराना नहीं है, आगे मैं उसका बताता हूँ। कई बार हम घबरा जाते हैं
1: जी,
0: तो फिर गड़बड़ होती है।
1: ओके, मान लीजिए घर में किसी ने हमारी बात नहीं मानी
0: जी,
1: और हमें गुस्सा आया और हमने तुरंत कह दिया कि आप मेरी बात कभी समझते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कामनेस को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सकता है?
0: सपोज किसी ने हमारी बात नहीं मानी और हम गुस्से में आ गए कि आप तो मुझे समझते ही नहीं, आप मेरी बात सुनते ही नहीं, यही आप कह रहे हैं
1: जी,
0: तो उस वक्त भी मन को समझाना है कि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति मेरी बात माने, हर वक्त माने, ये संभव है ही नहीं इस दुनिया में
1: जी।
0: चाहे मेरे बच्चे क्यों नहीं है, और मेरी पत्नी या मेरा पति क्यों नहीं है, कोई भी कितना मेरे क्लोज है, मेरा दोस्त है, ये इस दुनिया में संभव नहीं है कि दूसरा व्यक्ति मेरी बात माने और हर वक्त माने। कभी मान सकता है, कभी नहीं मान सकता है, और क्योंकि हर एक का सॉफ्टवेयर अलग है, हर एक का सोचने का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, तो क्यों वो मेरी बात मानेगा? अब मेरे से कोई एक्सपेक्ट करे कि आप मेरी हर बात मानो तो मैं मानूंगा? नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा जी मेरे को भी सोचने की शक्ति है, मेरे पास भी दिमाग है, मुझे भी सही गलत का पता है,
1: मुझे भी स्पेस चाहिए,
0: मुझे भी फ्रीडम चाहिए, तो जो मैं चाहता हूँ दूसरा भी चाहता है, तो दूसरे को अगर नहीं मानता बात, उस वक्त भी अपने मन को समझाना है, कोई बात नहीं। लेकिन हम समझाते नहीं, हमें लगता है मेरा बेटा है, गलती है, उसको डराएंगे, कर गलती, भुगतेगा, सजा मिलेगी ना, जब गिरेगा तो पता चलेगा
1: जी।
0: ऐसा हो कोसने लग जाते हैं पेरेंट्स, कोसना भी नहीं है, हर एक को गलतियां करेगा, मान लो गलत भी कर रहा है तब भी क्या हो जाएगा, गलतियों से भी तो आदमी सीखता है, जरूरी थोड़ी है हर चीज पढ़ने से सीख लेता आदमी, या सुनने से या समझाने से सीखता है, कई चीजें हम गलतियां करने के बाद सीखते हैं।
1: राइट राइट जी। तो कई बार सामने वाले गुस्से में ऐसी बात कह देता है लेकिन कि बहुत हर्ट करती है वो बात, तो उसी मोमेंट में पहले शांत रहना चाहिए कि तुरंत अपनी बात क्लियर करनी चाहिए?
0: जब वो कुछ उल्टा कह रहा है सामने वाला, उस वक्त तो पहली चीज तो शांत ही रहना चाहिए।
1: ओके जी।
0: अगर हम क्लियर करने लगे तो वो अभी सुनने के मूड में ही नहीं है, उसे गुस्सा उसके ऊपर हावी है, तो उसे हमारी बात सुनाई भी नहीं देगी, तो पहला स्टेप तो शांत रहो। जब उसका मूड सही हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए वो, तो फिर अपनी बात उन्हें समझाई जा सकती है तुरंत, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो चांसेस ये है कि हम भी पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड कम करेंगे

0: हम भी
1: नेगेटिव
0: इरिटेट
1: वे
0: होके
1: में
0: हो सकता
1: करें,
0: हम भी रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट
1: रिएक्ट
0: कर
1: कर
0: जाएं,
1: लें
0: ऐसे चांस ज्यादा है।
1: ज्यादा।
0: तो बेहतर तो यही है कि वो जब बोल रहा है वहां से 9-2-11 हो जाओ, उसकी बात सुनी अनसुनी करके, ज्यादा ध्यान ना देके, ज्यादा उसको सीरियस ना लेके, उसके अगर सीरियस लिया तो आपको लगेगा कि ये होता कौन है मुझे बोलने वाला, इतना सारा सुना गया मुझे, मैं कोई बहरा हूं, मुझे नहीं सुनाई देता, सबके सामने बोली जा रहा है बोली जा रहा है, ऐसे थॉट्स आते ना मन में,
1: राइट राइट
0: तो इसको तो अभी करेक्ट किया जाए। नहीं, उसको उस वक्त करेक्ट नहीं करना है, उस वक्त तो करेक्ट करने के मूड में नहीं है,
1: ओके,
0: बाद में जब आप भी सही हो और वो भी सही हो
1: तभी
0: तो भी
1: बोलना
0: बात करें तो ज्यादा अच्छा है।
1: जी। तो क्या आप कोई 10-30 सेकेंड्स के टेक्निक्स बता सकते हैं, जब सामने वाला मतलब गुस्सा आने पर हम क्या अपने मन को थॉट्स दे उस टाइम, क्या इस्तेमाल करें ऐसे टेक्निक्स?
0: जब सामने वाले की गलती से हमें गुस्सा आ रहा है उस वक्त हम तर्स करें, हम सोचें ये गलती कर रहा है, बेचारा है, इसे समझ नहीं है, तो उसको छोटा समझ के उसके ऊपर मर्सी दिखाएं, रहम दिखाएं।
1: जी
0: मर्सी इज़ द बेस्ट एंटीडोट टू एंगर। उसे सोचें कि इसे समझ नहीं है, कोई बात नहीं, इग्नोर करें। पहला स्टेप तो ये है,
1: इग्नोर करना।
0: इग्नोर करें और उसके ऊपर दया खाएं कि ये बेचारा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा, ये कितना दर्द में है। ये अगर हम मन में आएगा कि ये गुस्सा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आत्मा बहुत दर्द में है, परेशानी में है, ये मेरे साथ तो अभी बोल रहा है लेकिन ये अंदर ही अंदर इसके जो गुस्सा है 24 घंटे इसे परेशान कर रहा है, तो ये आदमी कमज़ोर हो गया है। गुस्से का जवाब इसके साथ गुस्से से दिया तो इसे और दर्द होगा, और परेशान ये व्यक्ति होगा, तो वो तरीका नहीं है उसको हील करने का। उसका तरीका ये है, ये गुस्सा करे, मैं उससे प्यार से बात करूं या प्यार से मुस्कुराऊं या बाद में उससे प्यार से बात करूं, ताकि उसका जो घाव है, जो दर्द है, जो चोट उसको लगी है कहीं ना कहीं से, वो ठीक हो जाए। वो कमज़ोर आत्मा है तो कमज़ोर आत्मा को मुझे पावरफुल बनाना है, और पावरफुल बनाने का तरीका है कि मैं उसको पावर दूं, और वो पावर है प्रेम की,
1: जी
0: वो पावर है उसको माफ करने की, उससे उसकी हीलिंग होगी तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी के जख्म हो रखे हों शरीर में, तो जख्म हो जाते हैं ना किसी को, तो बेचारा ज़्यादा चिल्लाता है, आपने देखा हो कभी स्ट्रीट डॉग हो तो उसको कहीं से कुछ हो जाए तो बेचारा और दर्द में चिल्लाता है, ज़्यादा भौंकता है, अब कोई नमक डाला है वहाँ तो बेचारा और चिल्लाएगा, तो हम यही करते हैं, वो गुस्से में चिल्ला रहा है हम भी गुस्सा करते हैं, तो गुस्से का जवाब गुस्से से देना मतलब घाव के ऊपर
1: नमक
0: नमक
1: छिड़कना।
0: नमक छिड़कना। तो सोचो कि ये वो है, हम क्या कहें, अनकंट्रोल में है बेचारा, इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है इसलिए गुस्सा कर रहा है, इसे समझ नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है, ये बीमार है।
1: जी
0: जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो या कोई पागल व्यक्ति हो तो हम रिएक्ट थोड़ी करते,
1: जी
0: हम खुद किनारे हो जाते हैं, भैया पीछा छुड़ाओ ये तो पागल है।
1: सही बात जी।
0: तो आप सोचो कि वो थोड़ी देर के लिए, एंगर इज टेम्परेरी मैडनेस, वो थोड़ी देर के लिए पागल हुआ होता है, तो पागल से टकराओगे तो फिर आपको भी पागल बनना पड़ेगा, वो आपको खुद तो डिस्टर्ब है, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा। तो
1: राइट
0: उसका तरीका है कि टकराना नहीं है उससे, किनारा कर लो, और पागल हाथी को ही आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो आप टकरा खड़े हो गए तो फिर तोड़ा के फेंकेगा हो, या
1: जी
0: फिर आप ही हाथी की तरह ताकतवर बन जाओ, या फिर दोनों भिड़ेंगे तब भी दोनों का नुकसान हो गई। कई
1: जी
0: बार हाथी हाथी से भी टकरा जाता है, बैल बैल से लड़ते देखे होंगे आपने,
1: जी
0: तो फिर भी दोनों का नुकसान ही है, तो टकरावने से कोई फायदा नहीं है। उसके ऊपर रहम करो कि ये बेचारा है, तर्स करो, जैसे बड़े लोग होते हैं ना वो छोटों पे तर्स करते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट के क्रॉस पे चढ़ाया गया, उन्होंने उनको गुस्सा नहीं किया कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा ओ गॉड फॉर गिव दिस पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि इनको पता ही नहीं है ये बेचारे हैं, इनको माफ़ करो।
1: जी
0: तो आप भी उनको बेचारा समझ के आ जाओ। तो अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि वो गुस्सा कर रहा है, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ, अपने आप से पूछो कि मैं उसकी नकल करूँ, वो गुस्सा कर रहा है तो मैं भी अगर गुस्सा कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसकी बैड क्वालिटी के प्रभाव में आ गया, और मेरे अंदर जो गुड क्वालिटी थी प्यार वाली वो मैंने छोड़ दी
1: राइट
0: उसके इम्प्रेशन में आके, होना ये चाहिए कि मेरी जो अंदर प्रेम भरा है वो इतना ताकतवर हो कि वो गुस्सा करे और मेरा प्रेम पावरफुल हो, मेरे प्रेम से प्रभावित होके वो अपना गुस्सा करना छोड़ दे और वो भी प्रेम से बात कर ले। तो क्या इतनी ताकत मेरे प्रेम में है? अगर नहीं है तो मतलब मैं भी खाली हूँ, मुझे भी प्रेम भरने की जरूरत है अपने अंदर, मुझे भी अपनी एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। तो मुझे अपने को इतना पावरफुल बनाना है कि मेरी अच्छाई को देख के वो अपनी गुस्से की बुराई छोड़ दे, ना कि मुझे इतना कमजोर बनाना है कि उसकी गुस्से की बुराई को देख के मैं भी उसकी बुराई को अपने अंदर ले आऊं, उसको कॉपी कर लूं। मुझे लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना। वो गुस्सा कर रहा है, उसको देख के मैं गुस्सा कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं फॉलोअर हूं। वो गुस्सा कर रहा है, मैं प्रेम कर रहा हूं और मेरे प्रेम को देख के वो भी प्रेम करने लग गए तो वो मेरा फॉलोअर बनेगा, मैं लीडर बनूंगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: लेकिन इसके लिए शक्ति चाहिए।
1: हाँ,
0: अगर शक्ति नहीं होगी, हम बाहर बाहर से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला।
1: शक्ति के लिए मेडिटेशन चाहिए।
0: मेडिटेशन चाहिए, नहीं तो एक मुझे कहानी याद आती है, तो अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
1: जी बिल्कुल।
0: अभी महीने दो महीने वाले रामलीला आएगी, कल मैंने योग शिविर में भी ये बताई थी, बड़ी हंसने वाली बात है। रामलीला में क्या होता है कि लोग सब रामलीला देखने जाते हैं, आप लोगों ने भी बचपन में देखी होगी। तो उस रात को सीता की खोज का प्रसंग आना था, हनुमान जी सीता की खोज में जा रहे थे। अब दिन में जो हनुमान बना था व्यक्ति, वो बीमार हो गया
1: जी।
0: उसकी तबीयत खराब हो गई, तो जो रामलीला के ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हें चिंता हुई कि आज रात को अब हनुमान किसको बनाया जाए। तो वो चले, उन्होंने कहा ढूंढना तो पड़ेगा कोई ना कोई, तो मार्केट की तरफ चल पड़े माउंट आबू की मार्केट में कि किसी को ढूंढा जाए, इसको रोल दिया जाए
1: जी,
0: जो उसके हनुमान की तरह दिखे भी। तो देखा कि एक हलवाई समोसे तल रहा है, मोटा ताजा। उनको लगा ये व्यक्ति कर सकता है, देखने में तो लग रहा है हनुमान की तरह। तो उससे पूछा आपका नाम क्या है, कहता जी कल्लू हलवाई
1: जी।
0: तो कल्लू हलवाई जी से रिक्वेस्ट की गई कि आज आप हनुमान बनेंगे। जैसे ही हनुमान का नाम सुना उसने, वो घबरा गया, डर गया, कहता सॉरी सॉरी सॉरी भाई, मैं आज तक स्टेज पे नहीं गया, मेरी तो टांगे कांपती है, मैं कभी हनुमान नहीं बना
1: जी,
0: तो मेरे से नहीं होगा। ऑर्गेनाइजर्स ने उसको हाथ पैर पकड़े, बार बार कहा कि भाई इमरजेंसी है, कोई मिल नहीं रहा, आप बन जाओ, कोई ज्यादा आपने नहीं करना, आपने बस एक दो डायलॉग आप ले बताएंगे आपको, वो आप रट लो, बस आपने वो बताने हैं वहाँ। कहता क्या बोलना है, कहते आप रावण के सामने जाएंगे, रावण पूछेगा तुम कौन, आपने बस एक लाइन बोलनी है कि मैं पवन पुत्र हनुमान, इतना तो बोल सकते हो। कहता हाँ जी इतना तो बोल सकता हूँ। कहता फिर दूसरा रावण आपसे पूछेगा क्यों आए हो यहाँ रावण के दरबार में, तो आपने कहना जी मैं सीता माता की खोज में आया हूँ। कहता भाई इतना तो बोल सकते हो। कहता जी हाँ इतना बोल दूंगा
1: जी।
0: अब वो चले गए, लेकिन उसको चिंता होने लगी कि क्या बोलना है। उसने समोसे रखे दूसरी तरफ, तलने बंद किए, शटर किया बंद, और डायलॉग रटने शुरू किए कि क्योंकि आज भाई उसकी परीक्षा होनी थी, स्टेज फियर सबको होता है। तो रटता गया कि मैं पवन सुत हनुमान, मैं पवन पुत्र हनुमान, मैं सीता माता की खोज में आया हूँ, सीता माता की खोज में आया हूँ, पूरे रट लिए उसने। अब जैसे ही रामलीला स्टार्ट हुई रात को
1: जी,
0: तो उसको चोगा पहना दिया गया हनुमान का और गदा भी दे दी गई। तो वो एकदम हनुमान बन के स्टेज पे जैसे ही गया तो देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी रावण बना हुआ है
1: जी,
0: और वो रावण बड़े ऊंचे सिंहासन पे है, उससे भी 4 फुट ऊंचा, हनुमान से भी ऊंचा, और भयंकर सी शक्ल, बड़ी बड़ी मूछें, और जोर से रावण चिल्लाया मैं लंकापति रावण तुम कौन। तो कल्लू हलवाई भूल गया मैं कौन हूँ
1: जी,
0: वो घबरा गया, कहता जी मैं कल्लू हलवाई। तो रावण को और गुस्सा आया क्यों आए हो यहाँ पर। कहता जी मैं माफ करना, मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। वो भूल गया मैं हनुमान हूँ। जैसे ही जीवन में उसके परिस्थिति आई, समस्या आई, चुनौती आई, वो अपनी आइडेंटिटी भूल गया, वो भूल गया कि मैं अंदर से क्या हूँ, आज हनुमान बन के आया हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। ऐसे तो हम कहते हैं मैंने गुस्सा नहीं करूँगा, मैं जी पॉजिटिव बोलूँगा, अच्छा करूँगा, सब ठीक है, लेकिन जब समस्या आती है तो हम अपनी असली चीज को भूल जाते हैं और जो हमारी कमजोरी है वो याद आ जाती है, और उसी के दोबारा से शिकार हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि अगर जीवन में, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आए, जब भी कोई समस्या आए और वो आपसे पूछे तुम कौन
1: जी,
0: तो घबराना नहीं, डरना नहीं, सीना तान के खड़े हो जाना और कहना मैं अपने जीवन का असली हीरो हूँ, मैं हर समस्या का सामना कर सकता हूँ। तब अपने अंदर के हनुमान को जगा देना। तो हम सब हनुमान की तरह ताकतवर हैं,
1: राइट,
0: पर हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं
1: जी, और सही टाइम पे भूल जाते हैं।
0: अब बस वो नहीं भूलना, उसका तरीका यही है कि मन अपना पावरफुल बनाना है, अंदर तक उस चीज का अभ्यास करना है कि मैं गुस्से को मैंने छोड़ दिया, अब गुस्से के मैंने शिकार नहीं होना है। बार बार ये अभ्यास करें, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, तो वो अंदर तक तब जाएगी जब बात, तो फिर मुझे दूसरों के दुख दर्द दूर करने हैं, दूसरों के दर्द दुख को देख के खुद दर्द में नहीं आना है, दूसरों के गुस्से को देख के खुद गुस्सा नहीं करना है, मुझे उसे छोड़ना है, उसका भी छुड़ाना है। इतनी ताकत अपने अंदर भरनी है कि मैं बुरे व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित कर सकूं, और बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता,
1: बुराई को अच्छाई से खत्म किया जा सकता,
0: अच्छाई से, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल
1: प्यार से ही मिटाया जा सकता है। जी, तो इसके लिए जैसे आपने कहा कि निरंतर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, शक्ति अपने अंदर होगा तब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि नॉलेज तो हम बहुत सारे आजकल यूट्यूब पॉडकास्ट और इसके माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाते हैं।
0: वही है कि नॉलेज सही टाइम पे याद ही नहीं आती।
1: तो क्यों नहीं याद आती है?
0: क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते, बार बार याद
1: करना पड़ेगा। इसीलिए हनुमान कैरेक्टर जो है वो कल्लू हलवाई,
0: बार बार उस करेक्टर को, नहीं तो हम जो कल्लू हलवाई वाली जो करेक्टर है वो याद आएगा, जो हमारी कमजोरियां हैं, जैसे भी हम बुराइयों के अधीन हैं वो वाली आएंगी। अच्छाइयों को इतनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, बार बार नॉलेज को रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे दर्द में नहीं आना है, मुझे दूसरों का दर्द दूर करना है, मुझे सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। हर दिन इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, तो राइट टाइम पे राइट बात याद आएगी। अब हमारे पास अस्त्र शस्त्र सब हैं, पर जब दुश्मन हमला कर रहा है तो मिल ही नहीं रहे कौन सा निकालें, ना तलवार मिल रही है, ना धनुष बाण मिल रहा है, और हम युद्ध हार जाएंगे
1: जी।
0: तो ये ज्ञान के हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आई, अब उसका तोड़ क्या है, सोच का तोड़ सोच है, बुराई बुरी सोच का तोड़ अच्छी सोच है। जब बुरी सोच एक सोच है तो उसकी विपरीत भी तो कुछ होगी, तो मुझे वो ढूंढ के ले आनी है, लोगों की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कहेंगे अरे तुम कमजोर हो, तुमने हार मान ली, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया, और तुम एक भी लाइन नहीं बोले, उनको कहना मैं बोलता ही नहीं, उनकी बातों में नहीं आना, कहना जी मैं बोलता नहीं, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैंने गुस्सा छोड़ रखा।
1: ओके जी, तो हमें जैसे हम कोई कोई चीज़ों से परहेज करते हैं खाने पीने में, तो हम कहते हैं कि हम नहीं खाते हैं, तो हम नहीं खाते हैं, तो वैसे ही
0: कहना जी मैं करता ही नहीं, मैंने गुस्से को छोड़ रखा, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, ये भी अपना ही भाई है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब होगा। एक बार हमारे दादी जी थे यहाँ, मेरे ख्याल मनोहर इंदिरा दादी जी, उनसे कोई व्यक्ति उनके पास आया और बड़ा कुछ उनको बोल के चला गया, तो तीसरे ने बाद में पूछा कि दादी आपके लिए इतना कुछ बोल गया तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? दादी कहती मैंने सुना ही नहीं क्या बोल रहा था,
1: फिल्टर लगाए हुए थे,
0: मुझे लगा कि ये व्यक्ति डिस्टर्ब है, इतना पता चला कि दुखी है, तो मैं मन ही मन उसको शक्ति दे रही थी कि भगवान इसके दुख दूर हो जाए और ये शांत हो जाए।
1: राइट,
0: तो हम भी यही सोचे कि कोई जब ऐसा करता है तो सोचो ये अपसेट हो रखा है, डिस्टर्ब हो रखा है, ये बीमार हो रखा है, मुझे इसे ठीक करना है, भगवान से भी दुआ करो कि इसको सद्बुद्धि मिले, ये सही हो जाए।
1: तो इस प्रकार के चिंतन से हम अपने जो शांतता है उसे डेवलप कर सकते हैं। जी, तो जैसे आपने कहा कि हमारी भाई है ना, और हमने कई बार सुना है कि कितने भी नेगेटिविटी हो लेकिन हर एक के अंदर उसकी अच्छाइयाँ, यूनिकनेस को देखने की कोशिश करो, लेकिन जो व्यक्ति लगातार आपको हर दिन परेशान कर रहा हो तो उसकी अच्छाई देखना प्रैक्टिकली कैसे संभव है?
0: प्रैक्टिकली है, पानी मान लीजिए महात्मा बुद्ध वाली बताई ना, वो हर दिन उसको बड़े से बड़े नुकसान करने वाले भी आ गए, यहाँ तक कि मारने के लिए भी बात तैयार हो गई, फिर भी उसने कहा कि उसको भी पॉजिटिव लिया। तो जो हमें बार बार हमारे पीछे ही पड़ गया है, हर बार ही कर रहा है, सोचो कर्मों का हिसाब किताब है, मैंने दुख दिया होगा वही दुख लौट के आ रहा है।
1: तो उस टाइम दुख की फीलिंग भी ना हो और आप शांत भी रहो। मान लो घर में आपकी सास है, ननंद है, या फिर आपके पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं और आपको उनके साथ ही रहना है, तो कैसे डील करेंगे
0: वो परेशान आपको तब करेंगे जब आप परेशान होंगे। वो परेशान करें और आप परेशान नहीं होंगे तो वो हीरो परेशान करना छोड़ देंगे। उनका एक ही उद्देश्य है कि वो ऐसा काम करें जिससे आपको दुख मिले, पर आपने मन को समझा दिया कि ये कुछ भी कर दे, मैंने दुखी होना ही नहीं है, मैंने नॉर्मल रहना है, तो वो फिर उस हथियार को यूज करना बंद करेगा, कहेगा भैया इतनी तंग किया मैंने इनको, फिर भी तंग नहीं हो रहे।
1: जी बिल्कुल। तो इस प्रकार
0: उसका उद्देश्य तो यही है ना कि मुझे दर्द देना चाहता है, पर अगर मैंने कसम खा ली है कि मैंने दर्द में आना ही नहीं है, तो वो कब तक दर्द देगा।
1: जी ओके।
0: वो दर्द देने वाला नहीं रुक रहा तो मैं दर्द लेना मैं भी ना रुकूं, मुझे भी बैड फीलिंग लेने से
1: तो अच्छे अच्छे चिंतन के स्टॉक जमा करना पड़ेगा।
0: तभी हम अच्छे थॉट्स आपके आपके दोस्त आपके थॉट्स ही हैं, वही आपको साथ निभाएंगे। बाकी लोग थोड़ी देर के लिए आएंगे जाएंगे, कोई साथ देंगे कोई साथ नहीं देंगे, कोई रास्ता रोकेंगे कोई रास्ते में मदद करेंगे, पर सबसे ज्यादा जो आपकी मदद करेंगे आपके विचार हैं,
1: अच्छे विचार
0: हैं, आपकी सोच है। चंगी सोच मन चंगा, कटौती पे गंगा। मन को ही तो सही करना है। मन सही हो गया, मन शुद्ध हो गया, दुनिया कुछ भी करे लेकिन हम ठीक हैं तो हमें देख के वो भी तो सही हो जाएंगे, कब तक करेंगे। आखिर हार उनको माननी पड़ेगी, हमें नहीं हार माननी पड़ेगी।
1: राइट।
0: एक प्रेयर है बड़ी अच्छी, मैं याद करता हूँ कभी कभी, बचपन में हम सब गाते थे, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। कि हम नेकी पे चलते जाएं, बुराई से बचते रहें, तब हंसते हुए इस दुनिया से जाएंगे।
1: राइट।
0: और इसका ही अगला अंतरा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि जब जुल्मों का हो सामना, आप भी कह रहे हैं ना कि वो बार बार तंग कर रहा है, तो जुल्म कर रहा है, बेइंसाफी कर रहा है, जो भी कर रहा है, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करें हम भलाई भरें, ना ही बदले की हो कामना। वो बुराई करता जाए, वो बुराई करने से ना थके, और हम भलाई भरे, मतलब हम भलाई करने से ना थके।
1: जी।
0: और फिर भी वो बुराई करे पर हमारे मन में बदले की भावना ना पैदा हो, इतनी शक्ति हमें देना
1: दाता।
0: तो प्रेयर में गर कह रहा है। हम सब गाते आए इस प्रेयर को,
1: जी,
0: कितनी बार ये भजन हमने सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग इतना गहरा है कि हम बदले का भाव फिर भी ना लाएं, हम अच्छाई के रास्ते पे चलते रहें, सामने वाला कितना भी बुरा करेगा आखिर झुकना उसे पड़ेगा, हमें नहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम तो हैं अच्छे रास्ते पे, उसे ही झुकना पड़ेगा और उसे बुराई छोड़नी पड़ेगी।
1: उसके लिए निरंतर शक्ति की आवश्यकता है परमात्मा से।
0: हाँ, बस हम परमात्मा से जुड़े रहें, वो हमारी हर मुसीबत हर कठिनाई में मदद करेगा और हमें ताकत देगा कि हम अच्छाई पे चलते रहें।
1: जी। और हम दूसरों को जज भी ना करें।
0: हम कई बार जज करना,
1: छोटी छोटी बातों पे जज कर लेते हैं, तभी अगर जज नहीं करेंगे तो भी हम शांत रहेंगे।
0: हाँ, ये भी एक कारण है, हम हर किसी को चलते चलते सबको जज कर रहे हैं, सबके मुकद्दर का फैसला कर रहे हैं, ये ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसे ये नहीं ये करना चाहिए, ये ऐसा है वैसा है। भाई उसकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, जो मेरे लिए सही है जरूरी नहीं है सबके लिए वही सही हो। हर एक की सही और गलत की डेफिनेशन भी तो अलग अलग है, या एक ही है। एक व्यक्ति 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो दूसरा कहता है बहुत स्लो चला रहे हो, दूसरा 120 की स्पीड से गाड़ी चलाता है वो कहता है बड़ी फास्ट चला रहे हो, फिर राइट स्पीड क्या है।
1: जी।
0: इसको कहेगा जी 100, किसने डिसाइड किया कि 100 से राइट स्पीड है, उसी ने किया ना
1: जी,
0: क्योंकि उसके हिसाब से 100 सही है, 80 वाला स्लो है, 120 वाला ज्यादा है। और कोई मेरी तरह हो वो कहेगा जी 60 की स्पीड स्लो है और 100 की ज्यादा है, 80 की ठीक है
1: जी,
0: तो मेरे हिसाब से 80 राइट स्पीड है, दूसरे के हिसाब से 100 राइट स्पीड है, तो सबके अपने अपने हिसाब है
1: जी,
0: कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि वही राइट है वही रॉन्ग है। तो हम कोई हेडमास्टर तो लगे नहीं कि चलते चलते सबको करेक्टर सर्टिफिकेट देते चले कौन सही है कौन गलत है,
1: उससे हमारे मन ही डिस्टर्ब होता है।
0: हम डिस्टर्ब होंगे, हम अपने को ही देख लें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, बजाय उसके कि दूसरों को देखते रहें। सारे मसरूफ हैं यहाँ दूसरों के नुक्स निकालने में
1: जी,
0: सारे मसरूफ हैं यहाँ दूसरों के नुक्स निकालने में, इतनी शिद्दत से अगर खुद को घड़ते तो फरिश्ते बन जाते।
1: क्या बात है, राइट। तो ज़रूर हमारे जो श्रोता मित्र सुन रहे हैं, तो पूरी शिद्दत के साथ अपने को गढ़ने की कोशिश हम कर ही रहे हैं निरंतर, आज से थोड़ा बेहतर तरीके से करेंगे। तो आपको लगता है जो एक्सपेक्टेशंस भी हम कर लेते हैं ना एक दूसरे से, तो वो भी कई बार मन की शांतता को हानि पहुँचाती है?
0: हाँ, जब हम दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएँ रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो दुख देती देती हैं, और उसमें भी कईयों की ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ज़्यादा परेशानियाँ पैदा
1: करेगी। मतलब हमारा अगर बेटा है तो उसको ये करना चाहिए, पति है पत्नी है तो हमारे लिए ये करना चाहिए।
0: हर जगह ही हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होना कोई गलत भी नहीं है, पर ज़्यादा जब एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं तो डिस्टर्बेंस तो होगी ही होगी। तो उन एक्सपेक्टेशंस को दूर करने का तरीका है कि हम एक्सेप्ट करना सीखें,
1: स्वीकार कर लें,
0: चीज़ें ऐसी हैं ऐसी ही रहेंगी, सब चीज़ें वैसी नहीं होंगी जो मैं चाह रहा हूँ, ये दुनिया माई वे इज द हाईवे, ये इस कंसेप्ट पे नहीं चलती कि जहाँ से मैं चल रहा हूँ वही हाईवे बन जाएगा। हर एक ने अपने अपने हाईवे बना रखे हैं, वो अपने हाईवे से चलेंगे, मेरे वाले से क्यों चलेंगे? माई वे इज द बेस्ट वे नहीं, दूसरे का भी बेस्ट हो सकता है। दूसरे को स्वीकार करो और उनको फ्रीडम दो कुछ नया करने की, अगर फ्रीडम नहीं देंगे तो कुछ न्यूनेस होगी नहीं दुनिया में, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करके एक्सेप्टेंस को लाना है, और तो जी फिर हलचल मन में नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हमारा मन अपसेट नहीं होगा। जिसका माइंड सेट है उसकी लाइफ सेट है, और लाइफ सेट करने का तरीका है अपने एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज करो, इच्छाओं को कम करो, इच्छाएं कभी भी आपको सुख नहीं देंगी।
1: ओके,
0: क्योंकि इच्छाएं हैं ही ऐसी, कभी हम खिलौने वाली कार से भी खुश हो जाते थे, आज असली वाली कार से भी खुश नहीं हो रहे, कभी हम दो जोड़ी कपड़े पहन के खुश थे, आज अलमारी भरी पड़ी है फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं।
1: राइट,
0: पहले हम थोड़े में संतुष्ट हो जाते थे, आज सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है और चाहिए और चाहिए। तो समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कम है, हमारे पास कम मिला है जीवन में, समस्या ये है कि जो मिला है उसको एंजॉय करना हम छोड़ देते हैं,
1: छोटी छोटी चीजों पे खुशियां मनाना
0: छोटी चीजों से खुशियां छोड़ देते हैं, बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। इसलिए खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला है उसका गम नहीं
1: जी,
0: जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है।
1: क्या बात है जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार हम एक दूसरे को सुनते नहीं है शायद, तो इसलिए रिलेशनशिप्स में वो कामनेस और अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं?
0: अच्छा, हम एक दूसरे को सुन ही नहीं पाते,
1: आजकल कोई सुनने को रेडी नहीं होता, जवाब देने के लिए रेडी सब होता है, तो इसीलिए शायद हम शांत चित होकर के उनकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो रही है।
0: ये बात तो सही है, लिसनिंग भी एक कला है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, इसके ऊपर भी लेक्चर्स दिए जाते हैं कि किसी को अगर सुन लिया जाए आधी समस्या उसकी हल हो जाती है। अगर डॉक्टर पेशेंट की बात ध्यान से सुन ले तो आधी बीमारी उसकी दूर हो जाती है। अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, इतने डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर होता है, पेशेंट बहुत होते हैं, वो अभी पेशेंट बता ही रहा होता है कि जी मुझे ये है, उससे पहले वो 10 दवाइयाँ लिख के दे देता है, जाओ भाई हो गया तुम्हारा काम, सुनने का टाइम ही नहीं। वही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, दवाई वही लिखेगा डॉक्टर, और वो आपको बैठाएगा, हाँ भाई क्या हुआ, पूरी डिटेल लेगा आपसे, आपको लगेगा तसल्ली भी, मेरा पूरी बीमारी सुन ली गई है।

0: फटाफट उसको पैसे भी दे देंगे क्योंकि प्राइवेट है, तो सुनने से आपको लगेगा कि ठीक हो गया मैं। तो सुनना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि सुनना सुनेंगे नहीं किसी की तो समझेंगे कैसे, तो दूसरे की बात क्या, जो भी दर्द है हम क्या करते हैं, कोई सुनाता है हम फटाफट रिएक्ट कर देते हैं, उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, या पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये यही कह रहा है, तो उसका जवाब पहले ही देना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति हमसे क्लोज नहीं आता, हमसे खुलता नहीं है, और उसे अपनापन नहीं लगता है, वो कहता है इन्होंने तो मेरे लिए एक इमेज बना रखी है बस वही है। और उसके बजाय अगर हम उनकी बात सुने प्यार से, चाहे वो कितना भी हमारे एंटी भी हो कैसा भी हो, वो सुनाना चाहता है तो उसकी बात सुन ली जाए, और सुनने के बाद जब वो सुनाना बंद कर दे तो फिर उससे अगली बात की जाए
1: जी।
0: सुनना बहुत जरूरी है,
1: सुनना बहुत जरूरी है। कामनेस पर सवाल तो बहुत है लेकिन समय धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, कोई भी मैसेज हमें बुरा लगे तो रिप्लाई करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे शांत रहना चाहिए?
0: सोशल मीडिया में क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही, हम उसमें रिएक्ट करें ही ना, हमारा काम ही नहीं है रिएक्ट करना। पहले तो फालतू की चीज़ें पढ़ें ही ना, फिर भी अगर आपके आ जाती हैं तो इन्हें इग्नोर करें। ये तो ज़्यादा कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि किसी ने कुछ लिखा और हम उसको रिस्पॉन्ड करने लग गए, इसका मतलब तो ये है कि वो छेड़ रहा है, हमें तंग कर रहा है, और हम तंग होके हम जवाब देने लग गए। उसे इग्नोर करें, वो जो करता है करने दो उसको, उसकी फ्रीडम है, हम उसमें ज़्यादा ना उलझें, हम रील के बजाय रियल लाइफ में रहें
1: जी,
0: वो ज़्यादा बेहतर है।
1: बिल्कुल, तो रियल लाइफ में रहे रील के बजाय वो बेहतर है, हमारे शांतता के लिए भी और सोशल मीडिया पे शांतता को बरकरार रखने के लिए।
0: हर ओपिनियन पे, हर मैटर पे अपनी ओपिनियन देना जरूरी नहीं,
1: जरूरी नहीं होती।
0: कोई हम उस फील्ड के चाहे कितने भी एक्सपर्ट हों, जब आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है तो आप क्यों अपनी ओपिनियन दे रहे हैं,
1: क्यों कमेंट दे रहे,
0: क्यों कमेंट दे रहे हैं
1: जी?
0: लोगों को लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते हैं तो एक चिल्लाएगा फिर दूसरा चिल्लाएगा फिर तीसरा चिल्लाएगा, गली में आप गुजरते हैं हाथी गुजरता है, एक कुत्ता भौंकता है फिर दूसरा भौंकता है फिर तीसरा भौंकता है, अब हाथी उनका जवाब देने लग जाए तो हाथी किस चीज का
1: राइट।
0: इसलिए कहते हैं हाथी चले मस्त होके बाजार में और कुत्ते चाहे कितने भी भौंकते रहे, हम चलो उनको कुत्ते भी ना कहें, किसी को कहना ही नहीं कुछ, उनका कहने दो जो कर रहा है, उनका अपना रोल है, मुझे हर जगह रिएक्ट नहीं करना है। अब दुनिया इतनी बड़ी है, किसकी जुबान पकड़ोगे आप, किसको रोकोगे?
1: राइट,
0: आपने रिएक्ट कर भी दिया तो आपका दिमाग खराब होगा, वो उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसमें ना उलझा के ज्यादा उस चीजों में ना जाके अपने काम से काम रखो, वो ज्यादा बेहतर है,
1: तो ही कामनेस को बरकरार।
0: हालांकि वहां जो उलझाते भी हैं वो लास्ट में उनको भी यही करना पड़ता है।
1: राइट, तो एक क्वेश्चन ये है कि कामनेस का मतलब हर बात सह लेना है, या फिर कोई अगर बार बार गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें थोड़ा सा शांत रहते हुए अपने आप को स्पेस देना है, बाउंड्रीज मेंटेन करना है, थोड़ा किनारा भी कर लेना है?
0: हमें किनारा भी कर सकते हैं, बाउंड्रीज भी मेंटेन कर सकते हैं, मेन बात है कि हम मन से डिस्टर्ब ना हों, हम शब्दों से दुश्मनी ना करें, शब्दों से कुवचन ना बोलें, पीड़ा वाले वचन ना बोलें दूसरे के बिहेवियर को देख के। हाँ, अगर अवॉइड करना भी पड़ जाता है तो अवॉइड भी किया जा सकता है, फिर भी उनके मन में यदि कि अवॉइड कर दिया, बाहर से कह दिया मैं आपसे बात नहीं करूँगा, और अंदर बात उसी की हो रही है, मन में वही सोचा जा रहा है, और होता ऐसा ही है, इसको हम कह देते ना कि मैंने इसको इनसे मैंने कटी कर लिया, अब इनसे कोई बात नहीं होगी, मन ही मन सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति से बात होती है, जिसको हम ब्लॉक कर देते हैं, वो ब्लॉक बाहर से तो हो जाता है पर मन में वही चलता है, तो बाहर से कुछ होने वाला नहीं है, मन ही मन, मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस मेन ध्यान ये रहना है कि कैसे भी करके इग्नोर करो, शांत रहो, जो भी करो, पर मैंने मन में उसके लिए ना नेगेटिविटी लानी है, ना मन में उसके लिए, मन में उसको ज़्यादा स्पेस देना है। स्पेस देने का मतलब उसके बारे में अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं उसको स्पेस दे रहा हूँ, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट ना बनाओ, अटेंशन से हटा दो, इतना इम्पोर्टेंट ना बनाओ कि वो आपके मन पे ही हावी हो जाए।
1: राइट,
0: अगर मन पे हावी नहीं होगा तो फिर आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा।
1: बिल्कुल, तो शांत रहने का मतलब ये नहीं है केवल कि सह जाओ सब कुछ, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप किनारा कर सकते हैं अपने वाइब्रेशन।
0: सहना है पर खुशी से सहना है,
1: खुशी से सहना।
0: सहन करना अच्छी चीज है पर मजबूरी से नहीं, कि अब क्या करें कोई चारा ही नहीं है, चलो चुप रहो कहीं नुकसान ही ना कर दे मेरा, तो वो हो गया मजबूरी से। और एक है खुशी से, समझ से सहन करना कि इसमें सहन करना ही बुद्धिमता है।
1: जी ओके, क्योंकि उस टाइम अगर हम बोलेंगे तो कुछ का कुछ और हो जाएगा,
0: और बात बिगड़ेगी, और बात बिगड़ेगी, जो अभी एक बात है वो 10 बातों में फैल जाएगी।
1: राइट जी, तो अभी वक्त हो गया यहाँ से अलविदा कहने का, तो लास्ट में इस कार्यक्रम में शांतता को लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे?
0: हम यही कहना चाहेंगे कि अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को शांत रखो। जितना हम शांति की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, ये दुनिया शांतमय बन जाएगी, शांति की दुनिया बन जाएगी। और चारों तरफ अभी जो नेगेटिव बिहेवियर करते भी हैं वो कलयुग में कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शांत रहेंगे ये दुनिया सतयुगी दुनिया बनेगी। हमारा सतयुग आएगा, हमारे मन में सतयुग आएगा, हमारे घर परिवार में सतयुग आएगा, और हमारा जीवन स्वर्गमय बन जाएगा, सुखी बन जाएगा। शांत रहने का ये सबसे बड़ा फायदा हमें होगा।
1: बिल्कुल, तो इसी नोट के साथ यहीं पर रुकना चाहेंगे, क्योंकि शांत रहने से हमारे मन में पहले सतयुग आएगा, फिर बाद में घर और दुनिया में है। तो मन में सतयुग लाने के लिए शांतता को बरकरार रखना पड़ेगा, कभी कभी बीच बीच में छोटा सा पॉज लेने की भी जरूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं,
0: उसको थोड़ा ब्रेक लगाओ,
1: ब्रेक लगा
0: और उसकी जगह सोचो कि इसकी जगह क्या मैं इससे बेहतर वो सोच सकता हूँ जो मुझे खुशी देगा,
1: खुशी देगा,
0: जो मेरे इस दर्द की फीलिंग से मुझे दूर करेगा।
1: जी बिल्कुल, तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। प्रोफेसर ओंकार चंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, ओम शांति।
1: ओम शांति, उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे लिसनर्स को ऐसे ही गाइड करते रहेंगे।
0: थैंक यू जी, वेलकम
1: जी।

0: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
1: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
2: बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीके पवन सर उपस्थित हैं। आप शाश्वत योगी खेती करते हैं और काफी लंबे समय से आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी से भी आप काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो बीके पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आपका। नमस्ते।
3: नमस्कार भाई
2: जी। जी और इसके साथ में आज हमारे साथ दर्शना जी भी जुड़ गई हैं और रिक्शा चला रही हैं, पिंक रिक्शा जो है गुजरात में सूरत में चलाती हैं और साथ ही साथ हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। वहां का ट्रैफिक भी वो दिखा रही हैं और मैंने कहा एक जगह आप रुको, थोड़ी सी अपने बारे में जरूर बताइए हमें बात की। ट्रैफिक काफी है वहां पर रिक्शा चलाते हुए हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए। जी दर्शना जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्ते।
4: नमस्ते
2: जी। जी जी
4: अमरोली।
2: चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारे साथ दर्शना जी।
4: हाँ जी
2: जी जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें।
4: इसके बारे में
2: अपने बारे में बताइए, जैसे कल आपने बताया था वैसे बताइए अपने बारे में।
4: ओ, मेरा नाम दर्शना बेन है और मैं पिंक ऑर्डर चलाती हूँ और मैं पिंक ऑर्डर चला के मेरे को बहुत खुशी मिलती है।
2: अच्छा।
4: और एक जब जब जब मैं ऑटो ले रही थी तो घर का सब नाराज हो गए थे कि तू ऑटो चलाएगी, जैसे मर्दों को काम करता है तुम ये चलाओगी ये करोगी, सब अपने लिए सब ऐसा करते थे, नाराज थे। अब नाराज नहीं है, मैं अब नाराज नहीं है, क्यों? मैं कमा रही हूँ, अपने बल पे जी रही हूँ, मैं किसी के पास हाथ फैलाती नहीं हूँ।
2: बहुत बढ़िया
4: जी।
2: जी जी दर्शना जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप अपना काम करते रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुन, धन्यवाद। तो आइए दर्शना जी सूरत में पिंक रिक्शा चला रही हैं, आप उन्हें देख रहे थे लाइव। और कई बार कोई नया चीज शुरू करते हैं तो घर वाले या फिर समाज उसे कहते हैं कि भाई ऐसा काम थोड़ी होता है लेकिन हिम्मत करके जब हम उसका रिजल्ट देते हैं, कमाते हैं, परिवार को पालन पोषण करते हैं तो फिर लोगों को लगता है नहीं अच्छा काम कर रहे हैं आप, फिर उनके प्रति जो है लोगों की आस्था बढ़ती है और लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो आइए अब मैं बीके पवन सर से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा। पवन जी।

0: बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। जी,
1: ओम शांति भाई साहब।
0: ओम शांति
1: मैं
0: जी।
1: वर्तमान समय में कृषक भी हूँ, जो
0: जी
1: खेती कर रहा हूँ। घर गृहस्थ में रहते हुए सामाजिक सेवाएं भी कर रहा हूँ, और पिछली पंचवर्षीय योजना में हमारी माताजी सरपंच रही, उनके मैं प्रभारी भी रहा हूँ। अभी वर्तमान समय हम लोगों ने जो खेती लगाई है वो चने की लगाई है।
0: अच्छा
1: जो आज आज जो हम देख रहे हैं कि हमारा भारत देश ही नहीं, विश्व में हर जगह जो है किसानी को जो बताया गया है वो एक आधारशिला बताया गया और किसान को अन्नदाता बताया गया। तो आज किसान जो है किस ओर जा रहा है, आज किसान जो होड़ में लगा हुआ है रासायनिक खादों की खाद डालने के लिए, जैसे यूरिया डाल रहा है, आज 1 एकड़ में 4 4 बोरी यूरिया किसान डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है। तो हमें 2007 से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जो एक प्रोजेक्ट मिला शाश्वत यौगिक खेती का, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है जिसमें
0: जी जी
1: हम स्वयं को भी और हम देखें हमारी खेती को भी, दोनों को हम बहुत ज्यादा उपजाऊ कर सकते हैं, अपने आप को भी हम चार्ज कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा हमें बताया गया कि कैसे हमें बीज जो हम डाल सीधे जाकर हम वो आते थे, पहले खेत में जाकर पटक जाते थे रासायनिक खाद के साथ, वो पद्धति हमारी जो कहा गया है कि सारी माएं जो है वो माँ हमें पाल रही, जैसे गौ
0: जी
1: माता के गौमूत्र के गोबर के द्वारा हम जैविक खाद बनाते हैं, और उसमें मेडिटेशन के द्वारा खास राजयोग के माध्यम से उसे चार्ज करते हैं। और बीज को जब हम अपने एक-एक बीज को उस गोबर जीव अमृत जिसे कहा गया, बीज अमृत कहा गया है, बीज अमृत को सारे बीजों में लपेटने के बाद में हम मेडिटेशन रूम में रखते और रूम में रखकर उसे परमात्मा की शक्तियों से उसे चार्ज करते हैं,
0: जी जी जी
1: जिसमें उगने की क्षमता जो है 99% हो जाती है। वैसे रासायनिक खादों के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे बीज उपचार करते हैं, मगर वो कंपनियां भी कहती है कि भाई 70% 80% आपका जो है बीज उगेगा, मगर यहाँ हमने जब देखा महात्मा की याद में और जब बीज अमृत बनाया और बीज अमृत बनाने के बाद में उसे बोया गया, तो जो
0: जी
1: हमने
0: जी
1: दाने डाले हैं उसमें से 99% पूरा उपजाऊ होते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है आखिरी समय तक दीमक नहीं लगता है, जिसको आज सबसे फंगस लग रहा है तो वो फंगस की मात्रा जो है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि गौमूत्र में जो है वो अनेक प्रकार की सारी उपजाऊ भूमि को उपजाऊ करने की और दीमक को मारने की शक्तियां हैं, मगर आज हमारा किसान जो है उस ओर नहीं जा रहा है। तो मैं उनसे कहूंगा कि आप आए और आकर प्रैक्टिकल करके देखें, कहीं भी आपके आसपास हमारी संस्था है और उस संस्था के माध्यम से आप कहिए कि बहन जी या भाई वहां जो खेती करते हैं उनसे कहें कि भाई हमें शाश्वत योगी खेती करना है, आप देखेंगे कि आप फसल कितनी हरी भरी हो जाएगी, आपका खेत जो है वो उपजाऊ हो जाएगा, जो 16 तत्व जो हम मार चुके हैं रासायनिक तत्वों यूरिया डीएपी और भी जो है हरियाली नाशक दवाइयां जो डालते हैं, चारा खरपतवार नाशक जिसे कहा गया उसे खत्म करने के लिए, तो
0: जी
1: उससे जो हमारे जो है वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रहे हैं और विषाणु जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप देखिए, पहले हम जो दवाइयां डालते थे वो 10% डालते,
0: जी बिल्कुल
1: और जो होती
0: जी नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ विशेष पवन जी जुड़ गए हैं, लेकिन पवन जी का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया जिसके वजह से वो फिर वापस जुड़ेंगे और वो योगी खेती के बारे में अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे बड़े अच्छी तरह से। तो आइए बात करते हैं फिर से। पवन जी फिर से एक बार स्वागत है जी।
1: तो हम सभी उस ओर जा रहे थे कि आज 55 HP का ट्रैक्टर भी, 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी रो देता है
0: जी
1: जमीन को भरने के साथ। ये स्थिति आज तैयार हो गई। आने वाले समय में जैसे पंजाब का कुछ क्षेत्र हम देखें कि रासायनिक इतनी ज्यादा डाल दी गई है जिससे अनेक प्रकार की विषैली बीमारियां हो रही है। जो तो बठिंडा से लेकर जयपुर तक एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन दिया गया। तो ये सारी बीमारियों को अगर हम न्योता दे रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं किसान भी दोषी है। तो किसानों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जीरो बजट की खेती तैयार करें। जीरो बजट की खेती में खुद की गाय, खुद का गोबर, खुद का गोमूत्र, इन सब के माध्यम से हम जीव अमृत बीज अमृत बनाएं और 10 अर्थ की जो दवाइयां, जो कीटनाशक, जो कीट लगते हैं उसे खत्म करें।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: ये धीरे धीरे, आज मुझे 2007 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मुझे करीब 16 वर्ष के समथिंग हो गए हैं। पहले मैंने 1 एकड़ खेत को लिया और मैंने सब प्रकार की फसलें उसमें उगाया। ऐसा नहीं है कि
0: बिल्कुल।
1: उसमें एक ही फसल आप उगा सकते हैं। आप दलहन में उगाया, चना उगाया, अरहर उगाया, उसी प्रकार हल्दी का भी एक बार काम किया। अगर आप मसाले में चले जाओगे तो भी वहां फायदा मिलेगा, दलहन में चले जाओगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। और आप चाहे अपने जो भोजन करने के लिए जो है, मक्का कहो, ज्वार कहो, बाजरा कहो, गेहूं कहो, जो भी उगाना चाहते हैं, या फलदार भी जो भी उगाना चाहते हैं वो हो सकता
0: जी
1: है। सबसे अच्छा फायदा जो हमें मिला है वो योग के माध्यम से मिला। योग जो
0: अच्छा
1: है
0: अच्छा
1: वो ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न करता है। आज जैविक खेती बहुत लोग कर तो रहे हैं मगर करते करते कहीं उन्हें नहीं मिल पाता है और वो थक जाते हैं। 2 साल 3 साल के अंदर में क्या है, किसान वापस रसायन की ओर भाग रहा है। तो ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य, कहा गया है कि धरती माता जैसा धैर्य उसके पुत्र में और किसान उसका प्रथम पुत्र। अगर वो भी
0: बिल्कुल
1: थोड़ा धैर्य इस खेती को करे तो आप ही नहीं खुशहाल होंगे, आपके गांव खुशहाल होगा, शहर खुशहाल होगा। तो जो अनेक बीमारियों को हम जो रोजगार दे रहे हैं, परोस रहे हैं, पीले चावल दे रहे हैं कि भाई हम रासायन डाल रहे हैं और बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, तो वो खत्म होगी। उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को भी चार्ज करें। हम लोग, मैं आपको अपना थोड़ा सा शेयरिंग करूंगा अपने, कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। जहाँ पहला किसान जो है 4 बजे उठा करता था, आज वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसान, जहाँ किसान पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने खेतों में जाकर अपने बैल को चराता था, पेड़ पालता था, 6 बजे से हल जोतता था, आज वो प्रथा कहीं ना कहीं बंद हुई। मैं मानता हूँ ये मशीन का युग है, मगर मशीन के युग में अपने आप को तो चार्ज कर सकते, अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में जाइए और 5 बजे 4 से 5 के बीच में आप चाहे अपने घर पर बैठकर या फिर
0: जी
1: जिस भूमि आप जोत रहे हैं, जिस भूमि को आप तैयार कर रहे हैं, बीज जिसमें डाल रहे हैं, उस भूमि को कम से कम आप 1 हफ्ता पहले योगदान दें।
0: अच्छा
1: योगदान सहज विधि है। आओ मैंने चलो थोड़ा आपको योग की ओर, कि आप को ज्यादा कुछ नहीं करना है। योग माना अपने पॉजिटिव विचारों को देना। जब हम अच्छे विचार करेंगे और
0: जी
1: अच्छे
0: जी
1: विचार जब भूमि में देंगे तो वो भूमि अपने आप सूखा। आप जब भूमि हल चलाते हैं तब पहले कहीं ना कहीं हम संध्या आरती या भजन हम शुरू खेत में गाया करते थे, प्रभात की जो फेरी होती थी वो कहीं ना कहीं भजन करके खेत में लगाया करते थे, तो वो उसका प्रभाव हमारी परंपरागत खेती जिसे कहा गया है था, और आज हम उससे दूर हुए हैं कि आज रासायनिक इसलिए अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करें, इस प्रकार चार्ज करें, अपने आप को ले जाएं, स्वयं को देखें कि जैसे पांच तत्वों की दुनिया बनी है ऐसे ये शरीर भी पांच तत्वों का बना। इस पांच तत्वों के शरीर में बैठकर इस भूमि को मैं जहां तक भी यहाँ बैठकर देख रहा हूं, वो भूमि 16 ही तत्वों से भरपूर हो, चाहे मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, जो भी तत्व है वो इस भूमि का अपने आप इसके अंदर की शक्ति जो है वो मैं परमात्मा से ले रहा हूँ, और उस परमात्मा की शक्ति मेरे माध्यम के द्वारा इस मैं जहां तक भी बैठ रहा हूँ, जहां तक भी चल रहा हूँ, इस भूमि पूरी चार्ज हो रही। देखिए आप एक सप्ताह तक करेंगे और उस भूमि पर बैठकर जहां पर आपने ये योग किया है, विचार किए, उस भूमि की आप उर्वरक शक्ति उस भूमि की मैं कहूं कि वहां का जो फल जो निकलेगा, जो अनाज जो निकलेगा, आप उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराए, उसका प्रोटीन विटामिन आप जो भी है, चाहे जैविक खेती आप कर रहे हो, रासायनिक खेती कर रहे हो, उससे बहुत अच्छा निकल रहा है। आज हमारा पूरा करीब 12 वर्षों से शाश्वत जैविक खेती का अनाज खा रहा है। कोरोना काल में भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, कोरोना काल में भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि हमें अंदर रहना पड़ा होगा, हम सब खेत में, जब दुनिया अंदर थी हम खेत में आराम से भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। तो ये बनी कैसे, ये कहीं ना कहीं हमने विषाणु जो फैला दिए हैं रासायनिक तत्वों से, तो इसको हमें वापस जैविक खाद के माध्यम से और यौगिक पद्धति के माध्यम से वापस, आप हर प्रकार की फसल इसमें ले सकते हैं। आज कीटनाशक मैं आपको बताता हूँ, हमारे इधर अभी मूंग ग्रीष्मकालीन मूंग होती है भाई, ग्रीष्मकालीन मूंग में इतना जो पहले कहता था डॉक्टर के भाई बीमार हो तो दाल रोटी खाओ, मूंग की दाल और रोटी को खाओ, मगर मैं कहूंगा सब डॉक्टरों से मना कर दूंगा मूंग की दाल भी खत्म मत दूंगी, क्योंकि मूंग में अभी इतना जहर डाला जा रहा है आपको अनुभव नहीं होगा, कोर्बोजोन नामक एक दवा है, उसमें हर सप्ताह में एक दिन मुंह में रासायनिक दवाइयों का और हम लोग जहां जैविक योगिक खेती कर रहे हैं वहीं हम उसी से कंट्रोल कर रहे हैं, गौमूत छाछ नीम के पत्ते और अकौवा के पत्ते और धतूरा के पत्ते, इन सबको सड़ाकर 15 दिन में और उसे स्प्रे कर कंट्रोल से भी किया जा रहा है, मगर आज किसान है कि मुझे दुकान पर जाऊं बोतल खरीदी चाहे वो कितने में भी आ रही, आज उसकी कीमत 16,000 रुपये लीटर, और यहाँ 16 पैसा खर्च नहीं लग रहा है। गाय आपका घर में है तो दूध निकल रहा है, उसका मही मठा बन रहा है, रोज वही गाय तुमको गौमूत्र दे रही है जितना चाहो रो, रोज एक दिन में गाय 5 लीटर गौमूत्र दे रही थी सारे दिन, मगर हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। कहते हैं एक गाय जो है करीब 5 एकड़ जमीन को आराम से सब प्रकार के खाद दे सकते, मगर आज उस गौ माता जो है वो दर दर भटक रही है, अगर जितने किसान है अगर दो भी अगर पूरी बांध ले तो वो गौ माताएं सब अपने अपने स्थान पर चली जाएंगी, और ये रासायनिक दवाई जो हम डाल रहे हैं वो अपने और सबको जो हम मेरे देश के किसान हैं, मेरे देश के नौजवान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, वो आराम से अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आपको स्वस्थ रख सकते हैं और किसान भी आज स्वस्थ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से पसीना नहीं आता। जब तक
0: जी पवन जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया। आशा करूंगा कि आप सभी शाश्वत योगी खेती के बारे में आप बात कर रहे थे, और निश्चित तौर पे आपके यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, तो कोई नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका नेटवर्क आ जाए फिर से एक बार, और आप वापस रीज्वाइन करें और हमें योगी खेती के बारे में जो बातें आप शेयर कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक गाय आपको अगर आपके पास है तो 5 एकड़ जमीन का आपको हर प्रकार से जो खाद चाहिए वो मिल सकता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि ये चीजें हम लोग कर पाए, और पवन जी वापस जुड़ गए हैं, और दर्शना बहन अपनी रिक्शा जो है चला रही हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो आइए पवन जी, मैं चाहूंगा कि आप ये शाश्वत योगिक खेती का ट्रेनिंग वगैरह आपने कहाँ से लिया और कैसे आपने शुरुआत की, क्योंकि कई बार होता है कि हम सभी को मन करता है कि हम भी ऑर्गेनिक या योगिक फार्मिंग करें, लेकिन पहले से आदत है और कम हो जाएगा या फिर नहीं होगा तो 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसे समझ के भी कई लोग जो है इस ओर नहीं टर्न होते हैं। तो आप उनको क्या बताएंगे अपने अनुभव से, आपने कितना दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया, फिर कैसे उसको आपने फॉलो किया, और शुरुआत वाला समय कैसा था, आपने किस तरह से शुरू किया, वो थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस।
1: भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाश्वत योगिक खेती की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से 2007 में मैंने की, जहाँ हमें पहले बुलाया गया माउंट आबू राजस्थान में, और वहाँ दिखाया गया कैसे हमें शाश्वत योगिक खेती करनी है। और महाराष्ट्र के बाला साहब भाई है, उनसे मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन ली, और गाइडलाइन के आधार पर मैंने संकल्प किया कि भाई मैं 1 एकड़ खेत में सुधर अपने परिवार के लिए, मैं वो खेती
0: अच्छा,
1: जो है
0: शुरुआत में आपने अपने परिवार के लिए करना शुरू कर दिया। हाँ जी,
1: 1 एकड़ में जब मैंने खेती शुरुआत की, और मैंने अपने परिवार वालों को भी बताया, तो परिवार वालों ने मुझे बहुत समझा, और कई लोगों ने
0: अच्छा
1: तो कहा ये है ना थोड़ा पागल टाइप का हो गया, किसी की सुनता नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है जो भी है, मगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी हो जाए, उसमें जितना भी अनाज मिलेगा स्वीकार है, मगर मैं अपने परिवार को तो कम से कम जहर नहीं दे सकता, मैं
0: जी
1: अपने
0: जी
1: परिवार की खेती करूंगा। तो मैंने योगी खेती प्रारंभ की, और 1 एकड़ से प्रारंभ की, और पहले 1 एकड़ में मुझे 7 कुंटल गेहूं मिला, जहां
0: बिल्कुल
1: मैं खेती से 20 कुंटल पैदा करता
0: अच्छा
1: जी। वहां मुझे 7 कुंटल गेहूं जो है प्राप्त हुआ, मगर उसका एक फायदा मुझे मिला कि जब मैं उस खेत के लिए 20 कुंटल खर्च करने के लिए मैं 6,000 रुपये खर्च किया,
0: जी
1: तो वो 6,000 मुझे खर्च नहीं करने पड़े, 1 एकड़ में 0 बजट
0: परफेक्ट।
1: खुद से अपने खाद जीवामृत बीज अमृत घन बीज अमृत इन सब कुछ तैयार किया, और तैयार करने के बाद में फिर गोबर को, गौमूत्र को, गुड़ को और दलहन को, इनको सबको तो इकट्ठा करके हमने DAP तैयार किया, जिसमें हमने कुछ और भी चीजें इसमें ऐड की, जिसमें नारियल पानी भी ऐड किया, जिसमें उसकी उर्वरक शक्ति बढ़े, ग्लूकोज
0: अच्छा
1: का भी मैंने किया उसमें। तो ये जब हुई और तैयारी की, तो पहले वर्ष में मैंने करीब 7 कुंटल के करीब ये अचीव किया, और फिर सब लोगों ने कहा कि भाई देखा, यहाँ 20 होता था, 13 कुंटल का सीधा सीधा घाटा हो गया आपको। हमने कहा कोई बात नहीं, 13 कुंटल का घाटा हुआ है, आज कल जरूर फायदा होगा। उस बीच मुझे फिर पुनः माउंट आबू जाने के लिए मिला, और मैंने ये सारी बातें सुमंत भाई जी को भी बताई, उन्होंने कहा कि देखिए धैर्य का काम है, और धैर्य जितना आप रखोगे उतनी उन्नति होगी। दूसरे साल फिर किया, दूसरे साल फिर वही अनाज मैंने और भी लगाया, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यूरिया और डीएपी की आवश्यकता गेहूं में होती थी। गेहूं ही
0: जी
1: कम होता था, सारी फसल एवरेज समथिंग रहता था।
0: जी जी
1: और मैंने जो है दूसरे साल में 12.5-13 क्विंटल तक अचीव किया। और उसका 12.5-13 क्विंटल का अगर मैं एवरेज अगर निकालूं तो फिर मेरी बजट की खेती में वो मैं बराबर आ गया। उनका 6,000 रुपये खर्च हो रहा, 6,000
0: बिल्कुल
1: का अगर 3 गेहूं इसमें जोड़ा जाए तो 15 क्विंटल तक का एवरेज मेरा था। और आज वर्तमान स्थिति में मैं 18 क्विंटल, 17 क्विंटल, 20 क्विंटल तक
0: अरे वाह क्या बात।
1: आया हूँ। और धीरे धीरे करके मैंने अब उसको 5 एकड़ तक ले गया। पहले तो 1 एकड़, फिर दूसरा एक, अब 5 एकड़ की स्थिति बनी है। आज मैं 5 एकड़ की खेती कर रहा हूँ, जिसमें हमारे आश्रम के भाई बहनों को मैं गेहूँ और हमारे यहाँ के अनाज, हमारे जोन में भी, भोपाल में भी, वहाँ भी गेहूँ जो है, हमारे यज्ञ में जो रहने वाले भाई बहन हैं उनको देते हैं। और भी मैं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभियान के थ्रू मैं किसानों को भी जोड़ने का प्रयास करता हूँ। उन्हें भी मैं समझाई देता हूँ कि किसी ना किसी प्रकार चाहे थोड़ा थोड़ा कर, कुछ किसान कुछ किया हुआ भी है। तो धीरे धीरे ये अवस्था जो है भाई साहब अब एक लेवल में आ गई।
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। 3 साल का प्रयास करने के बाद आपको अपने लेवल का जो है जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हैं या यौगिक खेती, वो आपकी कम लागत में अच्छी खेती हो रही है, आपको मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। और मेन आप जो है रासायनिक खाद वाला खेती आपका छूट गया और आप अभी ऑर्गेनिक और यौगिक खेती फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपका जो पैदावार है वो भी शायद दूसरों से ज़्यादा कीमत पे बिकता होगा। और अभी तो आप 15 के बजाय 18 क्विंटल हर एकड़ से आप ले रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। जितना पहले आप रासायनिक से उत्पादन लेते थे उतना ही उत्पादन अभी आपको ऑर्गेनिक और यौगिक खेती से भी मिल रहा है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट आपने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। आशा करूंगा कि ये अनुभव जो है हमारे दूसरे किसानों को जरूर मोटिवेट करेगा, ताकि वो भी थोड़ा सा धैर्य रखें और इस ओर मुड़े तो चीजें आसान हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, संभव बिल्कुल है, आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अब इसकी जो मार्केटिंग वगैरह का क्या सिस्टम है, आप कैसे मार्केट में बेचते हैं, जैसे तो लोग बेचते हैं वैसे बेचते हैं, या आपने अपना खुद का एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का? चलिए फिर से हमारे पवन जी गायब हो गए हैं। और जैसे उन्होंने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं खेती, तो रासायनिक खेती बिल्कुल उन्होंने बंद की है। अब 5 एकड़ में वो यौगिक और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम सभी को अच्छा अनुभव सिखाता है, हमें भी प्रेरित करता है कि हम भी वहां पर इस तरह का जो शाश्वत यौगिक खेती का जो पद्धति है पुरानी हमारी, उसको हम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए पवन जी जब तक आ जाएं तब तक मैं आपको जोड़ना चाहूंगा दर्शना जी से। दर्शना जी कैसे हैं आप? दर्शना जी मेरी
2: अच्छा
0: आवाज सुन पा रहे हैं आप?
2: आ
0: जी
2: जी
0: जी जी जी अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं
2: देखा दिख
0: कस्टमर
2: रहा
0: की?
2: है
0: जी जी दिख रहा है, दिख रहा है।
2: सब अमरोली पे
0: अच्छा
2: दिख रहा है बराबर।
0: अमरोली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी
2: ये देखो अभी
0: हाँ जी हाँ जी देखा मैंने। हाँ
2: दिखता है। हाँ
0: जी जी दिख रहा है। ओके चलिए दर्शना जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपने परिवार का जो है पालन पोषण दीक्षा चलाकर आप खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और ये देखा भी आज आपको, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा कि सूरत से अमरोली की तरफ जा रही हैं पिंकी जी, पिंक रिक्शा दर्शना जी चला रही हैं, तो आइए पवन जी आ गए हमारे साथ में। पवन जी मैं चाहूंगा कि आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कि मार्केट में फिर हम लोग उतने ही दाम में बेचते हैं या थोड़ा ज्यादा बेचते हैं, या फिर आप कैसे इन चीजों को करते हैं?
1: भाई साहब, आज जो है गवर्नमेंट वैल्यू जो है गेहूँ की, यहाँ पर अभी मार्केट में समथिंग 2100 रुपये समथिंग है। मगर आज गेहूँ जो हमारा जैविक गेहूँ जो है वो 3,000 रुपये क्विंटल
0: अच्छा
1: जी, 3,000 रुपये क्विंटल से नीचे गेहूं नहीं बेचते हैं और बचता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पहले से ही
0: अच्छा
1: मेरे पास फोन कॉल आ जाते हैं कि
0: ऑर्डर आ
1: भाई
0: जाता है। हाँ,
1: हमारे लिए 3 कुंटल हमारे लिए जो इस बार तो सरसों भी थोड़ा सा तैयार करने के विचार में था, जिसमें से तेल निकाल के भी घानी कच्ची घानी का तेल जो नहीं मिल रहा है रिफाइंड तेल,
0: जी
1: तो सरसों का तो अगला प्रोजेक्ट मेरा वो भी रहेगा कि कहीं ना कहीं से वो भी निकाल के हम अगर किसी के सामने रख पाए। क्योंकि अगर हम सोयाबीन ले रहे हैं, सोयाबीन अगर बेच रहे हैं, गेहूं तो बिक जाता है, अब सोयाबीन हम तैयार कर रहे हैं तो उसे लेगा कौन? वो तो वही
0: हाँ
1: मार्केट रेट है, वही
0: बिल्कुल
1: रासायनिक भाव में। उसे मैंने कहा खुद का प्रोडक्शन तैयार किया जाए और तेल निकाला जाए, तेल कच्ची घानी का तेल निकालकर मार्केट में जो लोग हमसे गेहूं ले रहे हैं उसे वो भी दिया जाए, वो तेल भी शुद्ध खाए। वो भी मैंने थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ आने वाले सालों के लिए।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि आने वाले समय में आप सोयाबीन का जो है तेल बेचने वाले हैं, और वो ऑर्गेनिक तरीके से सोयाबीन का उत्पादन करेंगे, तो नेचुरली लोगों के पास में जो है तेल, जो एक्चुअली में तेल के अंदर बहुत ज्यादा जो है मिक्सअप हो जाता है, जिसके वजह से बीमारियां होती हैं, ऐसा सुना है हमने। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा कि आप कच्ची घानी का तेल जो है ओरिजिनल लोगों को दे पाएंगे और जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आपने बहुत अच्छा सोचा है, आपका फ्यूचर प्लान बहुत अच्छा है, तो इसको करिएगा। और हमारे साथ अभी वर्तमान में सोलंकी सर जो है हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा जो है धन्यवाद दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया, पवन जी करके मैसेज किया है। नीता नायक ने भी याद भेजा है, ओम शांति लिख के भेजा है। श्याम जी ने भी ओम शांति भाई जी करके आपको याद किया है, और भोपाल के हमारे श्याम भाई ने भी याद भेजा है कि जैसा नाम है उनका वैसे ही उनका काम है और हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं, ये आपने लिखे भेजा है। श्याम भाई धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ तो मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप एक मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे लोगों के लिए, एक
1: मैं
0: संदेश क्या देना
1: सभी
0: चाहेंगे। जी
1: लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा प्रणाम करता हूँ और मेरी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ, मेरी
0: जी जी
1: गौ
0: जी
1: माता जो है मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति में था, जैसे कहा गया जा वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, तो आज हमें अन्न को शुद्ध अगर लेना है तो किसान भी आपके लिए तैयार कर देगा, मगर आज किसानों को मिल रहा है। तो मेरा चाहे आप सभी जो श्रोतागण सुन रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से भ्राता जी के माध्यम से मेरे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आप अगर घर में एक एक कुंटल भी अगर सुरक्षा करें कि भाई हम गेहूं योगी खेती का खाएं, तो उससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और जो किसान मुझसे जुड़ना चाहते हैं और जो ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर शिवनी मालवा में ट्रेनिंग सेंटर भी बना है, जहाँ रुक कर भी मैं किसानों को ट्रेनिंग देता हूँ, खेतों में ले जाता हूँ। अगर कोई आना चाहे तो मैं उनके लिए सदा आभारी रहूंगा कि वो यहाँ से आकर कुछ लेकर जाएं और शाश्वत योगी कैसे करें वो सीख कर जाएं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा सभी तो किसानों
0: जी
1: से कि अपने परिवार के लिए, ज्यादा अगर किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए आप मत। और जब हम अनाज देंगे और जहर नहीं देंगे तो वापस वासुदेव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी, जो हमारा
0: बिल्कुल
1: है उसी गुरु पहुंचेगा। क्योंकि दूसरा भगवान जो कहा गया है किसान को ही कहा गया, क्योंकि भगवान ने ये शरीर इतनी सुंदर काया दी, मगर इस सुंदर काया के अंदर पेट जो दिया हुआ है वो गुरु ही है। और वो अगर सही अगर कहेंगे शुद्ध अन्न की अगर हमें मिलेगी तो विचार शुद्ध होंगे और विचार शुद्ध होंगे तो इस संसार को हम शुद्ध और पुनः हम इसको वासुदेव को कर सकते हैं।
0: जी जी पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रमेश काका अफ्रीका से आपके लिए मैसेज किया है, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और पूरे लगन से आप जो है खेती करते हैं ये आपने बताया, तो उन्होंने याद तो आइए हमारे साथ निकिता जी भी जुड़ रही हैं अभी और निकिता जी भी आ गई है, तो निकिता जी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप दे पवन जी के लिए, गीत सुनाए फिर पूरा करते हैं। जी

0: हाँ बरसा
1: रहा। थैंक यू, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको योगिक खेती का एग्जाम्पल जो है पवन जी ने अपना अनुभव सुनाते हुए हमें बताया, और किस तरह से उनको टाइम लगा इन सभी चीजों को मैनेज करने में, और वो भी उन्होंने बताया। और निश्चित तौर पे किसी नए कार्य को शुरू करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको जो है एक नया रास्ता खुल जाता है, आपका मुकाम हासिल हो जाता है। और इसके साथ में हमने दर्शना जी को भी आप देख रहे हैं स्क्रीन में, रिक्शा चला रही हैं, पिंक ऑटो रिक्शा। तो उन्होंने भी अपने जीवन में एक पहली बार शुरुआत की महिला होकर रिक्शा चलाने का, और मेहनत किया उन्होंने। तो आप सब लोग पहले परिवार वाले भी मना कर रहे थे, उनके सहेली भी मना कर रहे थे, अरे रिक्शा कोई चलाता है क्या, लड़की होगा। लेकिन आज उन्होंने सीखा और चलाना शुरू कर दिया, उनको अच्छे से जो है उनका अभी कमाई भी अच्छा कर रही है, और साथ ही साथ उनको रिक्शा चलाने में आनंद आता है। तो जिस काम को करने में अगर खुशी मिलती है तो वो काम जरूर करना चाहिए, है ना। और जिस काम को करके हम परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो फिर वो काम करके या ज्यादा पैसा भी मिल रहा होगा लेकिन वो सुकून नहीं देगा ना आपको। जिस काम को करके आपको सुख मिलता है उस चीज को जरूर करिएगा।
0: नहीं, मैं रिक्शा लेके कभी निकलती हूँ ने, जब मैं रिक्शा लेके निकलती हूँ ने तो पूरा पाकिट आधा ऐसा भरा भरा दिखता है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हमें जो
0: कभी
1: है
0: थोड़ा थोड़ा पानी, जब मटके में पानी थोड़ा कम हो जाता है ने तो पता चल जाता है रिक्शा लेके चली जाओ। जब पानी मटके में खाली होता है तो अपने क्यों फिर वापिस इसको ऐसा करते हैं, जैसे अभी जाऊंगी तो फिर हरा भरा लगेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दर्शना बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड पवन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आप आने वाले समय में जिस तरह से सोयाबीन का तेल जो है आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ऑर्गेनिक, तो वो जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। और अब तक आपने जो काम किया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच। और जो किसान भाई पवन जी से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर उनके साथ जुड़ सकते हैं आप। सिंगरौली MP में वो रहते हैं, शिवनी में, तो वहां पर आप जा सकते हैं। और हम लोग चाहे आप कमेंट सेशन में उनका नंबर चाहे तो मिल जाएगा आपको। आप अगर योगिक खेती या शाश्वत योगिक खेती, ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं तो जरूर आप मैसेज कीजिएगा, आपको नंबर पवन जी का मिल जाएगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप सीख भी सकते हैं। तो चलिए, हेल्दी फूड जो है वो सबको खिला रहे हैं, तो बिना रसायन का, तो ऐसा शुभ कार्य, अच्छा काम आप भी करिएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: आज श्री कृष्ण जयंती की, जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, बधाइयां, मुबारक हो, मुबारक हो। श्री कृष्ण की जन्म जयंती आते ही सारे भारत भर में एक ऐसा हर्षोल्लास छा जाता है, उमंग उत्साह और खुशी हरेक के जीवन में भर जाती है। जो चारों ओर देखो तो हर कोई विभिन्न तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं। कई जगह देखो तो बहने माताएं लड्डू गोपाल के रूप में उसको झूला झूलाते हैं, कहीं देखो तो कुमार या भाई लोग मिलकर के संगठित होकर के बहुत ऊंची मटकी बांधते हैं और उस मटकी को फोड़ते हैं, तो कहीं देखो तो श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों की झांकियां सज रही है और हर कोई उन झांकियों को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। श्री कृष्ण की जयंती में ऐसी क्या खास बात है जो इतना हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और किसी देवी देवताओं की जयंती नहीं मनाए? वहां तक कि श्री कृष्ण के साथ श्री राधे भी है, लेकिन श्री राधे की जन्म जयंती इतने धूमधाम से नहीं मनाते हैं जितने श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वहां तक कि हर कोई माताएं बहने ये चाहना रखती है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा प्राप्त हो, कई बहने सोचती है श्री कृष्ण जैसा भाई मिले, तो कई गोप सोचते हैं कि हमें श्री कृष्ण जैसा सखा मिले। हर कोई की इच्छा श्री कृष्ण को पाने की या श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने की रहती है और यही सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण साक्षात में इस भारत भूमि पर थे उस समय का नजारा कैसा होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा, काश हम भी उस समय में होते थे। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहेंगे कि कंस के कारावास में हुआ, घोर अंधेरी रात्रि थी, खूब तूफानी रात थी और ऐसे समय में उसका जन्म होता है, और दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि चारों ओर पानी ही पानी था और एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आया। अब दोनों बात अगर देखा जाए एक तो नहीं है, अब दोनों में से सत्य क्या है? क्या सचमुच श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था? जिस श्री कृष्ण की दुनिया के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब इस संसार में थे तो उसकी महिमा में गाते हैं वो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न अवस्था में थे। उस समय का समाज कैसा था? तो नेचुरल है, जहां इतनी पावन आत्मा जन्म लेती हो वो समाज कितना श्रेष्ठ होगा। तो उस श्रेष्ठ समाज में सबसे पहली बात, क्या कारावास होता है, जेल होती है? नहीं, ये भी किसी बात का प्रतीक है या किसी बात की ओर संकेत कर रही है। और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जरूर मनाएं, लेकिन समझ के साथ मनाएं। कहने का भावार्थ यही है कि कारावास यानी बंधन कलयुग के अंदर आज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कितने बंधन हैं और उस बंधन वाली बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कारावास यानी अज्ञानता की अंधकार रात्रि, जहां विकारों का तूफान चरम सीमा पर था। आज चारों ओर दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात है, जहां विकार चरम सीमा पर है, अनेक और बुराइयां छाई हुई है। हर एक मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की बंधनों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो नेचुरल है, श्री कृष्ण को कहते ही है कि जब वो हर आत्मा को मुक्त करने आते हैं, अर्थात कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, तब ऐसी स्थिति होती है, और तब उन आत्माओं को उन बंधनों से मुक्त कर अनेक प्रकार के दुख दर्द परेशानियों के बंधनों से मुक्त कर श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाते हैं। और इसीलिए वो श्री कृष्ण की दुनिया, जहां इस कलयुग के बाद आने वाली सत्युगी श्रेष्ठ दुनिया, जहां श्री कृष्ण जैसे पावन आत्मा का जन्म होता है। इसीलिए दूसरी ओर जो दिखाया कि चारों ओर पानी ही पानी, और ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आता है, अर्थात ये कलयुगी अज्ञानता की दुनिया जब समाप्त होती है और पावन सत्यों की दुनिया जब इस संसार में आती है, तो उस समय भारत ही होता है, बाकी चारों ओर दुनिया जलमय हो जाती है, लेकिन भारत खंड अविनाशी माना जाता है। और अनेक आसपास के देश जो है भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए भारत को भारत नहीं महाभारत कहा जाता है। और वो महाभारत की आकृति उस समय एक पीपल के पत्ते की तरह, चारों ओर पानी ही पानी, और उस पानी में भारत भूमि पीपल के पत्ते की तरह, जहां से कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन उस भारत जो पीपल के पत्ते की तरह था, वहां पर अंगूठा चूसता हुआ आता है। और जो कहा देवकी और वासुदेव का पुत्र था, भावार्थ यही, जो देव कुल की आत्माएं थी, उन सब देव कुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त कर ऐसे सतयुगी पावन सृष्टि में ले जाते हैं, जो पीपल के आकार की भारत भूमि थी। आज भी थोड़ा सा हिस्से नीचे का तो पीपल के पत्ते जैसा ही आता है, लेकिन उस समय भारत खंड एक पीपल के पत्ते की तरह होता है, और ऐसे पीपल के पत्ते पर अकेला से कृष्ण नहीं होगा, उसके साथी भी होंगे। ऐसी पावन दुनिया जहां पूरी राजधानी बनती है, और जहां वो देव कुल की आत्माएं सब जन्म लेती है, और इस संसार को स्वर्ग कहो, कृति युग कहो, हेवनली किंगडम कहो, बहिस्त कहो, जन्नत कहो, अनेक धर्मों में उसको अनेक नामों से जाना गया है, ऐसी दुनिया में वो जन्म लेगा। और वो सतयुग के अंदर उसके कितने जन्म होते हैं, तो श्री कृष्ण के 8 जन्म दिखाए हैं। 8 जन्म होने कारण, और हर जन्म इतने श्रेष्ठ होने कारण उसकी जन्म अष्टमी मनाई जाती है, अर्थात 8 जन्म की जयंती हर भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि ऐसी पावन आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा कि जन्म जयंती मनाने में भी हमें इतनी खुशी होती है, या उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने के योग्य बने, हम भी उस दुनिया में जाए जहां सब आत्माएं इतनी पावन, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण हो। तो वहां जाने की इच्छा लालसा हर आत्मा को होती है कि जहां हम साक्षात श्री कृष्ण के एक जन्म की जयंती नहीं आठों जन्म की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। और इसीलिए जन्म अष्टमी के बाद 9वें नंबर पर श्री राम आते हैं, इसीलिए राम नवमी कहा जाता है। आठों जन्म की जयंती फुल हमने मनाई, उसके बाद 9वें नंबर पर श्री राम आए तो राम नवमी कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए ये भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, थोड़ा और बड़ा हुआ रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और फिर जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो उसको नाथ नारायण कहते हैं। तो एक ही जन्म के ये विभिन्न अवस्था है। अगर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग में हो तो उसका बचपन श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? अवश्य सतयुग में ही होना चाहिए। तो श्री कृष्ण द्वापर में नहीं लेकिन सतयुग का पहला राजकुमार, इसीलिए कहा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण इस संसार में आता है जब चारों ओर दुनिया जलमय हो गई है। ऐसे समय पर नए भारत की वो पहली संतान है, पहला राजकुमार है और वही नाथ नारायण बनते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य जब था उसको कहते हैं सूर्यवंशी। और जब पूरा सतयुग सूर्यवंश बन जाता है, सूर्य के समान चमकती हुई आभा मंडल में हर कोई आत्मा सोले कला संपूर्ण स्थिति में है, और फिर जैसे सतयुग से दूसरा युग आता है त्रेता युग, तो वहां चंद्रवंश आरंभ होता है। इसीलिए कहा जाता है श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ, इसीलिए श्री राम चंद्र कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग का अर्थात श्री नारायण का ही बचपन का स्वरूप और श्री राम त्रेता युग। तो आइए क्यों न हम पुनः श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर जयंती मनाएं, आठों जन्म की जयंती मनाएं और अपने जीवन में भी ये प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी अब इस कलयुगी दुनिया के बाद जो सतयुग आने वाला है तो उस दुनिया में श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, साथ जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों न हम ऐसे अपने आप को भी योग्य पात्र बनाएं। उसकी जो महिमा गाई है वही योग्यता हमें अपने जीवन में भी धारण करनी है। उन्हीं शुभ वचनों के साथ सबको पुनः बहुत बहुत जन्माष्टमी की मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।
1: अभी बजे हैं दोपहर के 2। एक मिनट का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो।

0: नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? है ना तैयार अपनी प्यारी दोस्त मीना से मिलने के लिए? क्या कहा, बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं मीना से मिलने, जो अभी है दीपू के घर में। लेकिन घर के बाहर दीपू की माँ ऐसे चिल्ला क्यों रही है? आओ पता करते हैं।
1: मीना, ये तो माँ की आवाज है, जल्दी चलो। क्या हुआ माँ?
2: दीपू, हमारे घर में चोरी हो गई है।
3: चोरी?
2: हाँ मीना, मैं पानी भर के घर की तरफ आ रही थी तो मैंने दूर से देखा कि एक आदमी हमारे घर के आंगन में सूख रहे कपड़े उतार रहा है, और जब तक मैं यहाँ पहुँची वो चोर भाग गया।
3: चोर भाग गया, चोर भाग गया।
1: ओह, अब क्या होगा माँ?
2: बच्चों, एक काम करो, तुम भागकर सरपंच जी को बुला लाओ, वही बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए।
1: ठीक है माँ, चलो मीना।
0: दीपू और मीना दौड़कर सरपंच जी को बुला लाए, और जब दीपू की माँ ने उन्हें सारी बात बताई तो वो बोले,
4: ये तो बहुत चिंता की बात है। गांव में सबको खबर करनी पड़ेगी कि वो इस चोर से सावधान रहें।
3: सरपंच जी, क्या वो चोर अभी भी हमारे गाँव में ही छुपा होगा?
5: हाँ मीना बेटी, लगता तो ऐसा ही है।
4: बच्चों, अगर तुम्हें गांव में कोई अपरिचित व्यक्ति दिखाई दे तो मुझे जरूर खबर करना।
3: जी सरपंच जी।
0: छुपे चोर की खबर गांव भर में फैल गई, और अगले दिन स्कूल में।
1: वो चोर कहाँ छुपा होगा?
6: मुझे तो लगता है जंगल में छुपा है।
3: बहन जी आ गई।
7: बच्चों, चोर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि इस हफ्ते शौचालय साफ रखने की जिम्मेदारी किन बच्चों की है?
3: बहन जी, इस हफ्ते शौचालय साफ रखने की जिम्मेदारी दीपू और मेरी है।
7: दीपू, मीना, तुम दोनों शौचालय की साफ सफाई का ठीक से ध्यान तो रख रहे हो ना?
8: जी बहन जी, वो वैसे तो लड़कों का और लड़कियों का शौचालय दोनों हमेशा साफ सुथरे रहते हैं, पर वो।
7: क्या बात है दीपू?
8: वो बहन जी, पिछले 3 दिनों से बड़ी अजीब बात हो रही है। रोज स्कूल की छुट्टी के बाद जब मैं देखता हूँ तो लड़कों का शौचालय साफ होता है, पर अगले दिन सुबह गंदा मिलता है। जरूर कोई शौचालय का प्रयोग करके उसमें पानी नहीं डाल रहा।
7: बच्चों, हम सभी को शौचालय की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा उसका प्रयोग करने के बाद उसमें पानी जरूर डालना चाहिए। ऐसा करना क्लास के हर बच्चे की जिम्मेदारी है। फिर कौन है जो उसे ठीक से साफ नहीं कर रहा?
8: बहन जी, वो।
7: हाँ हाँ, कहो सुनील।
8: हो सकता है कि किसी दूसरे क्लास का कोई बच्चा शौचालय को साफ ना करता हो।
7: हाँ सुनील, हो सकता है। मैं दूसरी क्लास के बच्चों से भी इस बारे में बात करूँगी।
3: बहन जी, क्यों ना हम एक चार्ट बनाकर शौचालय में लगाएं, जिस पर कोई संदेश लिखा हो, जैसे हाँ, शौचालय को रखें साफ।
9: शौचालय को रखें साफ, सब मिलकर बताएं हाथ।
7: वाह मिट्ठू, बहुत अच्छे। मीना, ये अच्छा तरीका है। शौचालय में चार्ट लगाने से ये संदेश सभी बच्चों तक पहुंच जाएगा। तुम दीपू के साथ मिलकर चार्ट तैयार करो।
3: जी बहन जी।
0: शाम को मीना और दीपू ने मिलकर चार्ट तैयार किए, और अगले दिन उन्हें लगाने के लिए सुबह जल्दी स्कूल पहुंच गए। लेकिन ये क्या, शौचालय से थोड़ी दूर पर ये दीपू तो फिसल कर गिर गया।
3: दीपू, तुम ठीक तो हो ना?
8: हाँ मीना, मैं ठीक हूँ। वो मैं रास्ते में पड़े इस केले के छिलके पर फिसल कर गिर गया।
3: मगर दीपू, इतनी सुबह यहाँ केले का छिलका किसने फेंका होगा? मिट्ठू, तुम ये छिलका कूड़ेदान में डाल कर आओ, तब तक हम

0: शौचालय में चाट लगाते हैं।
1: चाट लगाते हैं, मिट्ठू को भगाते हैं।
2: मीना ने तो लड़कियों के शौचालय में चाट लगा दिया, और जब दीपू लड़कों के शौचालय में चाट लगाकर बाहर निकला।
0: क्या हुआ दीपू, बहुत देर लगी तुम्हें?
3: मीना, आज भी शौचालय साफ नहीं था। आखिर कौन है जो शौचालय का प्रयोग करके उसमें पानी नहीं डालता? और हाँ, आज तो जमीन पर किसी के पैरों के निशान भी थे, उन्हें ही साफ कर रहा था।
0: दीपू, क्या वो पैरों के निशान बड़े थे?
3: हाँ, निशान तो बड़े ही थे।
0: मिट्ठू, जल्दी से जाके देखो कहीं क्लास में कोई छुपा तो नहीं हुआ। दीपू, मुझे लगता है कि चोर स्कूल में ही कहीं छुपा हुआ है।
3: चोर हमारे स्कूल में छुपा हुआ है?
1: छुपा हुआ है।
0: दीपू, इससे पहले कि वो चोर यहाँ से भाग निकले, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। मिट्ठू, तुम चोर पर नजर रखो, तब तक मैं और दीपू सरपंच जी को बुला कर लाते हैं।
2: सरपंच जी और मीना के बाबा बच्चों के साथ जल्दी से स्कूल पहुँचे, और उन्होंने छुपे चोर को ढूंढ कर उसे पकड़ लिया।
4: आज तो तुमने सचमुच बहुत होशियारी दिखाई बच्चों, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि चोर स्कूल में ही छुपा हुआ है?
0: वो ऐसे सरपंच जी, क्योंकि इस चोर को शौचालय गंदा छोड़ने की बुरी आदत जो थी।
5: मगर मीना, स्कूल का कोई बच्चा भी तो शौचालय को गंदा छोड़ सकता है।
0: नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे स्कूल के सभी बच्चे शौचालय हमेशा साफ रखते हैं। बहन जी ने हमें ये बताया है कि शौचालय का प्रयोग करने के बाद उसमें कम से कम एक डिब्बा पानी जरूर डालना चाहिए, ताकि वहाँ सफाई रहे, और हमारे स्कूल के सभी बच्चे ऐसा करते हैं। इसलिए मैं समझ गई थी कि जरूर कोई बाहर वाला इस शौचालय का प्रयोग कर रहा है।
4: शाबाश मीना बेटी।
2: सभी लोग उस चोर के पकड़े जाने से बहुत खुश थे, और बहन जी को जब इस पूरी बात का पता चला तो वो भी सरपंच जी की तरह जानना चाहती थी कि आखिर बच्चों ने इस बारे में सोचा कैसे।
0: बहन जी, ये सब आपकी बताई बातों की वजह से ही हो पाया।
6: मैं कुछ समझी नहीं बच्चों, मेरी बताई हुई बात?
3: बहन जी, हमारे स्कूल के सभी बच्चे शौचालय को हमेशा साफ रखते हैं, मगर जो चोर 3 दिन से स्कूल के बाद क्लास में आकर छुप रहा था, वो शौचालय का प्रयोग करने के बाद उसे गंदा ही छोड़ देता था।
0: और आज सुबह जब हम चाट लगाने के लिए आए, तो वो चोर तब स्कूल में ही था। हम भागकर सरपंच जी को बुला लाए और चोर पकड़ा गया।
6: शाबाश मीना भाई, मानना पड़ेगा सफाई के तो सचमुच ढेर सारे फायदे हैं। आज तो इसने एक चोर को भी पकड़वा दिया।
0: हाँ बहन जी, चोर के पकड़े जाने में सफाई के साथ साथ मिट्ठू का भी बहुत बड़ा हाथ है।
1: बड़ा हाथ है, सही बात है।
2: भाई वाह, मीना और मिट्ठू की समझदारी से चोर भी पकड़ा गया, और एक बड़ी जरूरी बात भी सीखने को मिल गई। आप सब भी अब से शौचालय की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, ठीक है ना? आओ अब देखें ये मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
0: शौचालय को साफ रखो, ये सबकी जिम्मेदारी।
1: अगर इसे गंदा छोड़ा तो पहले गीदी मारी।
2: आहा, क्या कविता लिखी है इन दोनों ने। मीना और मिट्ठू की कविता सुन के तो मेरा दिल भी कोई कविता लिखने को कर रहा है। क्या लिखूं? चलो छोड़ो, कविता बाद में लिखूंगा, क्योंकि हाँ अब समय हो गया है एक गीत का।
7: नहीं, कभी नहीं।

0: भाई वाह, कितना बढ़िया गाना था। अब देखते हैं कि मीना की बहन जी आज क्लास में कौन सा खेल खिला रही है।
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। मैं तुम्हें एक चीज से जुड़ी तीन कड़ियां बताऊंगी और तुम्हें बताना है उस चीज का नाम। तो शुरू करें आज का खेल?
2: जी बहन जी।
1: ठीक है, तो सुनो। पहली कड़ी, छोटी सी हूँ लेकिन हूँ मैं बड़े काम की चीज।
3: कील,
4: पेंसिल,
3: किताब,
4: कटोरी।
1: अरे अरे, पहले पूरी पहेली तो सुन लो, फिर से बताती हूँ। पहली कड़ी, छोटी सी हूँ लेकिन हूँ मैं बड़े काम की चीज, ऊपर नीचे जब मैं चलती हो जाए नई कमीज।
5: बहन जी, ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है, दूसरी कड़ी बताइए ना।
1: ठीक है सुनील, दूसरी कड़ी बताती हूँ। एक आँख है मेरी और है चोंच नुकीली, फटे हुए कपड़ों की मैं हूँ खास सहेली।
3: मैं समझ गया बहन जी, सही जवाब है चिड़िया।
1: वो कैसे दीपू?
3: क्योंकि चिड़िया की चोंच नुकीली होती है।
1: अच्छा, और चिड़िया फटे हुए कपड़ों की खास सहेली होती है।
6: तीसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है सुमी, ये रही तीसरी कड़ी। रंग बिरंगे धागों के रहती हूँ साथ, खो जाऊँ तो आसानी से आऊँ ना हाथ।
6: नुकीली चोंच, एक आँख, रंग बिरंगे धागों के साथ रहती है, फटे कपड़ों की सहेली।
3: मैं समझ गई बहन जी, उस छोटी सी चीज का नाम तो है सुई, कपड़े सिलती चुभे तो मुँह से निकले हुई।
1: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। आज के खेल में मजा आया बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: लगता है आप सबको भी खूब मजा आया। तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी दोस्त मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, 10वां पाठ, पैटर्न, पृष्ठ 107। टीनू ने इस ब्लॉक की मदद से एक साड़ी बनाई है। यहां पर एक साड़ी का चित्र है जिस पर एक ब्लॉक की मदद से डिजाइन बना हुआ है। फिर उसने ये चादर भी इसी ब्लॉक से बनाई। यहां पर एक चादर का चित्र है जिस पर ब्लॉक से बने हुए डिजाइन हैं। पृष्ठ 108। उसने इस ब्लॉक की मदद से यह दुपट्टा भी बनाया। यहां पर एक दुपट्टे का चित्र है जिस पर ब्लॉक की मदद से विभिन्न डिजाइन बने हैं। क्या तुमने देखा कि टीनू ने एक ही ब्लॉक के प्रयोग से अलग अलग पैटर्न कैसे बनाए? अब तुम भी इस ब्लॉक की मदद से 3 अलग अलग पैटर्न बनाओ। पैटर्न 1, पैटर्न 2 और पैटर्न 3। यहां पर 3 आयताकार चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र को 14 बराबर भागों में बांटा गया है। अब तुम इस ब्लॉक की मदद से यहां पर अलग अलग पैटर्न बनाओ। पृष्ठ 109। यामिनी ने अपने ब्लॉकों से अलग अलग पैटर्न बनाए। क्या तुम इन पैटर्नों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो? यहां पर 3 पैटर्नों के चित्र हैं। पहले चित्र में पत्तियां दिखाई गई हैं। इसके पहले भाग में एक पत्ती, दूसरे भाग में 2 पत्तियां, तीसरे में 3 पत्तियां, चौथे भाग में 4 पत्तियां और 5वें भाग में फिर एक पत्ती दिखाई गई है। अब तुम इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए खाली स्थान भरो। दूसरे चित्र में तीरों के निशान हैं। पहले भाग में 2 तीरों के निशान ऊपर की तरफ, दूसरे में 2 तीरों के निशान नीचे की तरफ, तीसरे भाग में 3 तीरों के निशान ऊपर की तरफ और चौथे भाग में 3 तीरों के निशान नीचे की तरफ हैं। अब तुम खाली स्थानों में इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तीसरे चित्र में गोले बनाए गए हैं। यहां पर 3 गोले दर्शाए गए हैं। प्रत्येक गोले को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। हर गोले का एक भाग रंगा हुआ दिखाया गया है। पहले गोले के 4 भागों में से दाहिनी ओर का ऊपर का भाग रंगा हुआ है। दूसरे गोले में दाहिनी तरफ का नीचे का भाग रंगा हुआ है और तीसरे गोले में बाईं तरफ के नीचे का भाग रंगा हुआ है। अब तुम इन खाली स्थानों में इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। हम संख्याओं और अक्षरों से भी पैटर्न बना सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखो और आगे बढ़ाओ। यहां पर 4 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं। पहले चित्र के 6 भाग हैं। इसके पहले भाग में ए बी सी, दूसरे में डी ई एफ और तीसरे भाग में जी एच आई लिखा है। अब तुम इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। दूसरे चित्र में कुछ संख्याएं और अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। पहले खाने में 28Z, दूसरे खाने में 27Y और तीसरे खाने में 26X लिखा है। अब तुम बचे हुए खानों में इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तीसरे चित्र में कुछ संख्याएं लिखी हैं जो इस प्रकार हैं। पहली संख्या 864, दूसरी संख्या 764, तीसरी संख्या 664। अब तुम बाकी बचे हुए स्थानों में इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ। चौथे और अंतिम चित्र में भी कुछ संख्याएं लिखी हैं जो इस तरह हैं। पहले भाग में 9, दूसरे भाग में 109 और तीसरे भाग में 209 लिखा है। अब तुम इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं को आगे बढ़ाओ। संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ। यहां पर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में छह आयत एक के साथ एक जुड़े हुए दिखाए गए हैं। पहला आयत नीचे से चौड़ा, दूसरा ऊपर से चौड़ा, तीसरा नीचे से चौड़ा, चौथा ऊपर से, पांचवा नीचे से और छठा ऊपर से चौड़ा दिखाया गया है। और दूसरे चित्र में आधे गोले दिखाए गए हैं। पहला आधा गोला ऊपर से सपाट, नीचे से गोलाई, दूसरा गोला ऊपर से गोलाई, नीचे से सपाट, तीसरा गोला ऊपर से फिर सपाट, नीचे से गोलाई, चौथा गोला नीचे से सपाट, ऊपर से गोलाई, पांचवा गोला ऊपर से सपाट, नीचे से गोलाई और छठा गोला ऊपर से गोलाई और नीचे से सपाट दिखाया गया है। पृष्ठ 110। अब बिना संख्याओं का पैटर्न बनाओ। यहां पर एक चित्र है जिसके छह बराबर भाग दिखाए गए हैं। कोई संख्या दोबारा ना आए। दिए गए संख्या चार्ट को देखो, क्या तुम्हें कोई पैटर्न नजर आया? यहां पर एक वर्ग का चित्र है जिसके नौ बराबर भाग हैं और जिसमें एक, दो और तीन संख्या लिखी हुई है, जो इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन बाएं से दाएं तरफ एक, दो, तीन, उसके नीचे तीन, एक, दो और सबसे नीचे दो, तीन, एक। इन संख्याओं में एक को नीले रंग से, दो को पीले रंग से और तीन को गुलाबी रंग से रंगा गया है। और साथ ही दो बच्चों के चित्र भी हैं। लड़की कहती है, किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। इसी तरह तुम भी ए बी सी को दिए गए बॉक्स में लिखो, कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। यहां पर एक वर्ग बना है, उसके नौ भाग हैं। अब तुम इन भागों को ए बी और सी अक्षर से भरो। ध्यान रहे कि कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। शिक्षकों के लिए निर्देश, यहां पर पंक्ति और स्तंभ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, पर लाइन शब्द का इस्तेमाल करते हुए अध्यापक पंक्ति और स्तंभ की धारणा पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। पृष्ठ 111। जादुई पैटर्न। एक से सात तक की संख्याओं के इस पैटर्न को देखो। हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। यहां पर सात सितारों की मदद से बनाया हुआ एक पैटर्न दिखाया गया है। इस चित्र में सबसे ऊपर तीन सितारे हैं, उसके बाद एक सितारा और सबसे नीचे तीन सितारे हैं। सबसे ऊपर वाले सितारों में लिखी संख्याएं इस प्रकार हैं, दो, तीन, सात। बीच वाले सितारे की संख्या चार और सबसे नीचे के सितारों की संख्या एक, पांच, छह। दूसरे चित्र में नौ तारे दिखाए गए हैं। हर पंक्ति में तीन तीन तारे हैं। अब तुम एक से नौ तक की संख्याओं को इन तारों में भरो। नियम यह है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आए। जादुई तिकोन। अंकों के इस पैटर्न को देखो। नियम, तिकोन की हरेक लाइन की संख्याओं का जोड़ 9 है। पहले गोले में 3 जमा दूसरे गोले में 4 जमा तीसरे गोले में 2 बराबर 9। अब यह भी देखो कि तिकोन की बाकी दो लाइनों का जोड़ भी 9 होता है या नहीं। यहां पर एक चित्र में त्रिभुज दिखाया गया है जिसमें 6 गोले बनाए गए हैं। इन गोलों में 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हैं, जो इस प्रकार हैं, ऊपर से नीचे बाई तरफ 3, 4 और 2 लिखा है, नीचे से दाई तरफ 2, 6 और 1 लिखा है और दाई से ऊपर की तरफ गोले में 1, 5, 3 लिखा है। पृष्ठ 112। एक से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपना जादुई तिकोन बनाओ। नियम, हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 10 आना चाहिए। अब तुम एक से 6 तक की संख्याओं को इन तारों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक लाइन का जोड़ 10 आए। यहां पर एक और त्रिभुज बना है जिसमें 6 तारे हैं। संख्याओं की मीनार। संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है। इस संख्या पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू करो। यहां पर संख्याओं का एक मीनार दिखाया गया है जिसमें सबसे ऊपर एक वर्ग है, उसके नीचे 2 वर्ग और सबसे नीचे 3 वर्ग बनाए गए हैं। सबसे ऊपर वाले वर्ग में लिखा है 80, उसके नीचे लिखा है 30 और 50, और सबसे नीचे लिखा है 10, 20 और 30। क्या तुम्हें यहां कोई नियम दिखाई दे रहा है? नियम: नीचे की 2 संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बनती है। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में संख्याओं के 2 मीनार दिए गए हैं जिनमें एक तरह की ही संख्याएं लिखी हैं। जैसे पहली मीनार में 80, 30 और 10 संख्याएं नीले वर्ग में दर्शाई गई हैं और 50, 20 और 30 संख्याओं को लाल वर्ग में दिखाया गया है। संख्याओं की दूसरी मीनार में सबसे ऊपर लाल वाले वर्ग में 80, उसके नीचे लाल वाले 2 वर्गों में 30 और 50, और सबसे नीचे नीले वाले 3 वर्गों में 10, 20 और 30 लिखा है। संख्याओं की दूसरी मीनार में 80, 30 और 50 को लाल वर्ग में और 10, 20 और 30 संख्याओं को नीले वर्ग में दर्शाया गया है। पहली संख्याओं के मीनार के नीचे लिखा है 20 + 30 = 50, और दूसरी संख्याओं के मीनार के सामने लिखा है 30 + 50 = 80। पृष्ठ 113। इसी नियम को मानते हुए नीचे दिए संख्या मीनारों को पूरा करो। यहां पर संख्याओं की 2 मीनारें दिखाई गई हैं। पहली संख्या मीनार में 10 गोले हैं, 5 गोले खाली हैं और 5 गोलों में संख्याएं लिखी हैं। पहली संख्या मीनार में सबसे नीचे वाली पंक्ति में 5, 10, 15 और 20 लिखा है और उससे ऊपर वाली पंक्ति में 10 और उसके ऊपर 2 गोले खाली और सबसे ऊपर वाला 1 गोला खाली है। अब आपको पिछले पृष्ठ के नियम को देखते हुए इन खाली गोलों में सही संख्या भरनी है। दूसरी संख्या मीनार में 15 ईंटें दर्शाई गई हैं। इन्हें 5 पंक्तियों में दिखाया गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 5 ईंटें हैं जिन पर अंक लिखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इसके ऊपर की 4 ईंटें खाली हैं, उसके ऊपर की 3 ईंटें खाली हैं, उसके ऊपर की 2 और सबसे ऊपर की 1 ईंट खाली है। अब आपको इसी नियम को देखकर खाली ईंटों पर सही संख्या लिखनी है। बराबर जोड़ का नियम।

कुछ दोस्त संख्या कार्डों के साथ खेल रहे हैं। देखो वो संख्याओं को कैसे जोड़ रहे हैं। यहां पर एक चित्र में 6 बच्चे दिखाए गए हैं जिनके हाथ में एक कागज है और उन पर संख्याएं लिखी हुई हैं। ये संख्याएं इस प्रकार हैं: बाएं से पहला 11, उसके बाद दाहिनी ओर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 16, और दाएं से पहला 16, फिर बाई तरफ 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12 और फिर 11। क्या तुम वो नियम ढूंढ सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड़ बराबर आ रहा है? नियम: संख्याओं का जोड़ बराबर आएगा अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें, बाएं से पहली और दाएं से पहली, बाएं से दूसरी और दाएं से दूसरी, बाएं से तीसरी और दाएं से तीसरी। यहां पर एक चित्र है जिसमें 3 पंक्तियों में संख्याएं दिखाई गई हैं जो इस प्रकार है: पहली पंक्ति की संख्याएं 11 जमा 16 बराबर 27, दूसरी पंक्ति की संख्याएं 12 जमा 15 बराबर 27 और तीसरी पंक्ति की संख्याएं 13 जमा 14 बराबर 27। यहां पर एक और चित्र है जिसमें 4 खाने दिखाए गए हैं और उसके नीचे दूसरे चित्र में 2 पंक्तियों में खाली स्थान दर्शाए गए हैं। दूसरा चित्र इस तरह से है: पहली पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान, दूसरी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। अब तुम कोई भी संख्या लिखो और फिर उससे अगली 3 संख्याएं लिखो। इसी नियम को मानते हुए एक पैटर्न बनाओ। पृष्ठ 114, जोड़ के पैटर्न। यहां पर 3 पंक्तियों में संख्याओं का जोड़ लिखा है, आओ इन्हें पढ़ते हैं। पहली पंक्ति 1 जमा 2 जमा 3 बराबर 6, दूसरी पंक्ति 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 9, तीसरी पंक्ति 3 जमा 4 जमा 5 बराबर 12। यहां पर पान के आकारों में कुछ संख्याएं लिखी हैं और साथ ही एक लड़की का चित्र है जो कह रही है, ओ हर जोड़ पिछले जोड़ से 3 ज्यादा है। और ये जोड़ इस तरह से हैं: पहली पंक्ति का जोड़ 6, दूसरी पंक्ति का जोड़ 9 और तीसरी पंक्ति का जोड़ 12, यानी 6 जमा 3 बराबर 9 जमा 3 बराबर 12। दूसरे चित्र में पत्ते नुमा आकार में कुछ संख्याएं लिखी हैं। ये संख्याएं 3 पंक्ति में हैं। आइए अब इन्हें पढ़ते हैं। पहली पंक्ति की संख्याएं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 10, दूसरी पंक्ति 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बराबर 14 और तीसरी पंक्ति 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 बराबर 18। और साथ ही एक बच्चे का चित्र बना है जो कह रहा है, यहां हर जोड़ पिछले जोड़ से 4 ज्यादा है। ये जोड़ इस प्रकार ज्यादा है: पहली पंक्ति का जोड़ 10, दूसरी पंक्ति का जोड़ 14 और तीसरी पंक्ति का जोड़ 18, यानी 10 जमा 4 14, 14 जमा 4 18। अब तुम 5 संख्याओं के साथ पैटर्न बनाने की कोशिश करो। यहां पर आयताकार खाली चित्र बने हैं। आयताकार चित्रों की 5 पंक्तियां हैं। अब हम इन्हें पढ़ते हैं और आपको यहां पर खाली स्थानों में 5 संख्याओं के साथ पैटर्न बनाना है। पहली पंक्ति रिक्त स्थान जमा
रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। दूसरी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। तीसरी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। चौथी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। और पांचवी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। क्या हर बार हर जोड़ पिछले जोड़ से पांच ज्यादा है? पृष्ठ 115। गुप्त संदेश। यहां पर एक लड़की और एक लड़के का चित्र बना है। लड़की कहती है, तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे देखने दो। हैं? ये तो कोई गुप्त संदेश लग रहा है। यहां पर दो बच्चों के चित्र हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की है। इन दोनों ने अपने हाथ में एक कागज पकड़ रखा है जिस पर कुछ अंक लिखे हैं। पहली पंक्ति में लिखे हुए अंक हैं 7, 15, 15, 4 और दूसरी पंक्ति के अंक हैं 14, 9, 7, 8 और 20। यामिनी ने नियम समझाया। अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है, जैसे जे बराबर 10 है, पी बराबर 16 है, अतः जे यू एम पी हो जाएगा 10, 21, 13 और 16। इस सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से पूरी करो। यहां पर एक चित्र में दो पंक्तियों में एक सूची है। पहली पंक्ति में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं, ए बी सी डी और ई। और दूसरी पंक्ति में कुछ संख्याएं लिखी हैं, जो इस तरह हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब तुम अक्षर और संख्याओं की मदद से इस सूची को पूरा करो। टीनू अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग लिखकर देना चाहती है। इस नियम को मानते हुए उसे क्या लिखना होगा? रिक्त स्थान। इस खाली जगह में तुम अंग्रेजी अक्षरों को देखकर सही संख्याएं लिखो। अगर हम नियम को बदल दें और बी के स्थान पर 1 लिख दें, डी के स्थान पर 3 लिख दें और इस तरह लिखते जाएं, तो हम लेट अस डांस कैसे लिखेंगे? यहां पर एक गोलानुमा चित्र में खाली स्थान भरा है, वहां पर तुम इसी नियम को देखकर अक्षर लिखो। शिक्षकों के लिए निर्देश, गुप्त संदेशों का कोडिंग और डीकोडिंग करना पैटर्न पहचानने का हिस्सा है। गणितीय चिंतन के लिए नियम की पहचान करना जरूरी है। 116। कुछ और गुप्त संदेश। यहां पर तीन बच्चों के चित्र हैं। दो बच्चों के हाथ में दो दो कागज हैं। इन कागजों पर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। लड़की के दोनों कागजों में इस तरह से लिखा है, पहला कागज अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आई एफ एम एम पी विस्मयबोधक चिन्ह, दूसरी पंक्ति आई पी एक्स बी एस एफ, तीसरी पंक्ति जेड पी वी प्रश्नवाचक चिन्ह, लड़की के हाथ का दूसरा कागज और अक्षर हैं, पहली पंक्ति एक्स जे एम एम, दूसरी पंक्ति जेड पी वी क्यू एम बी जेड और तीसरी पंक्ति एक्स जे यू आई एन एफ प्रश्नवाचक चिन्ह। लड़के के हाथ के दोनों कागजों में इस प्रकार लिखा है, पहला कागज पहली पंक्ति के अक्षर जी जे ओ एफ कॉमा, दूसरी पंक्ति यू आई बी ओ एल, तीसरी पंक्ति
ZPV फुल स्टॉप। दूसरा कागज अक्षर है ZFT विस्मयबोधक चिन्ह। यहीं पर एक दूसरी लड़की लड़के के बगल में खड़ी हुई कुछ सोचती हुई दिखाई गई है। शबलू और जग्गू एक खेल खेल रहे हैं। वो कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं पर काहुली उनको समझ नहीं पा रही है, इसलिए जग्गू ने नियम समझाया। जग्गू देखो, हमने हर एक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया है, इसलिए F के स्थान पर G, N की जगह पर O लिख रहे हैं, इसलिए YESS ZFT बन गया है। काहुली ओह, अब समझ में आया। काहुली अब तुम बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। यहां पर काहुली द्वारा लिखे गए अक्षर इस तरह से हैं: XF BSF GS JF OET। काहुली का गुप्त संदेश क्या था? रिक्त स्थान। शबलू और जग्गू ने क्या लिखा था? रिक्त स्थान। इसी नियम को अपनाते हुए मीट मी ऑन द मून लिखने की कोशिश करो। तुम अपने नियम बना सकते हो और अपने दोस्तों से ये गुप्त संदेश समझने को कह सकते हो। पृष्ठ 117। उल्टा पुल्टा। अनीशा खेल खेल रही है। वो अपने दोस्तों को दिखा रही है कि वो अपने सिर पर खड़ी हो सकती है। यहां पर अनीशा के दो चित्र बने हैं। पहले चित्र में अनीशा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे हैं और अपने दोनों पैरों को खोल रखा है। दूसरे चित्र में अनीशा उल्टी हाथ के बल खड़ी हुई दिखाई गई है और उसके दोनों पैर ऊपर की तरफ हैं। अब अनीशा इस कार्ड से खेल रही है। ये कार्ड उल्टा होकर कैसा दिखेगा, यहां बनाओ। यहां पर दो कार्डों के चित्र हैं। पहला कार्ड भरा हुआ है और दूसरा कार्ड खाली है। पहले कार्ड में सबसे ऊपर 7 लिखा है और उसके साथ पान का छोटा चित्र बना है। सबसे नीचे 7 उल्टा लिखा हुआ है और साथ ही पान का उल्टा छोटा चित्र बना है। इसके अलावा पान के 7 चित्र और बने हैं और ये चित्र 3 पंक्तियों में इस प्रकार बने हैं। पहली पंक्ति 3 बड़े चित्र, दूसरी पंक्ति 1 बड़ा चित्र और तीसरी पंक्ति 3 बड़े चित्र। दूसरा कार्ड खाली है। अब आपको इसी कार्ड को इस तरह बनाना है कि ये उल्टा होकर कैसे दिखेगा। फर्श के पैटर्न। फर्श के पैटर्न। क्या तुमने कभी ऐसा फर्श देखा है जिसमें ऐसी टाइल्स लगी हुई हों? यहां पर फर्श के 2 चित्र हैं। इनमें टाइलों के 2 अलग अलग पैटर्न बने हैं। पहले फर्श के चित्र में गोलाई नुमा पैटर्न बने हैं और दूसरे चित्र में उल्टा वी वाला पैटर्न बना है। इन टाइल्स को फर्श पर कुछ इस तरह लगाया जाता है कि ये पूरी तरह से फर्श पर फैल जाएं और बीच में खाली जगह भी ना बचे। पृष्ठ 118। क, अब तुम इस फर्श को दी गई टाइल्स से भरो। यहां पर एक चित्र में 4 टाइल्स को दिखाया गया है जो तिकोने आकार की हैं। इन 4 टाइलों में पहली और तीसरी टाइल संतरी और दूसरी और चौथी टाइल बैंगनी है। अब तुम दिए गए खाली स्थानों में बिंदुओं की सहायता से इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर बाकी टाइलें बनाओ। ख, क्या तुम एक वृत्त के आकार की टाइल से फर्श ढक सकते हो? इस हरी टाइल के प्रयोग से फर्श को बिना जगह छोड़े भरने की कोशिश करो। क्या तुम कर पाए? अपने दोस्तों से चर्चा करो। यहां पर एक चित्र बना है। इस चित्र में एक हरा गोला बनाया गया है। अब तुम दिए गए खाली स्थानों में बिंदुओं की सहायता से इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर बाकी टाइलें बनाओ। ग, नीचे बने टाइल के पैटर्न को पूरा करो। इस चित्र में आयताकार कुछ खाने बने हैं जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है और इनके बीच में लाल रंग से एक तारा बना हुआ है। अब आपको टाइलों के इस पैटर्न को बिंदुओं की मदद से आगे बढ़ाना है और पूरा करना है। पृष्ठ 119। घ,
रमैया ने अपने ब्लॉक की मदद से एक दीवार बनाई है। क्या तुम उसके लिए इस दीवार को पूरा कर सकते हो? यहां पर एक दीवार का चित्र है जिसकी चार पंक्तियां हैं। हर पंक्ति में 10 ईंटें हैं। ये ईंटें अलग अलग पैटर्न में रंगी दिखाई गई हैं। दीवार की पहली पंक्ति इस प्रकार है। पहली ईंट संतरी, दूसरी ईंट नीली, रेखाएं तिरछी, तीसरी ईंट बैंगनी, इस पर कुछ बिंदु बने हैं, चौथी ईंट संतरी, पांचवी ईंट नीली, तिरछी रेखाएं, और छठी ईंट बैंगनी, इस पर बिंदु बने हैं। अब तुम बाकी चार खानों में इसी पैटर्न की मदद से ईंटें बनाओ। दीवार की दूसरी पंक्ति, पहली ईंट नीली तिरछी रेखाएं, दूसरी पंक्ति बैंगनी कुछ बिंदु, तीसरी ईंट संतरी, चौथी ईंट नीली तिरछी रेखाएं, पांचवी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु और छठी ईंट संतरी। अब तुम बाकी चार ईंटों को इसी पैटर्न से आगे बढ़ाओ। दीवार की तीसरी पंक्ति इस प्रकार है। पहली ईंट संतरी, दूसरी ईंट नीली तिरछी रेखाएं, तीसरी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु, चौथी ईंट संतरी, पांचवी ईंट नीली तिरछी रेखाएं और छठी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु। अब तुम बाकी की चार ईंटों को इसी पैटर्न की मदद से आगे बढ़ाओ। और दीवार की अंतिम पंक्ति इस प्रकार है। पहली ईंट नीली तिरछी रेखाएं, दूसरी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु, तीसरी ईंट संतरी, चौथी ईंट नीली तिरछी रेखाएं, पांचवी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु और छठी ईंट संतरी। अब तुम बाकी की चार ईंटों को इसी पैटर्न की मदद से आगे बढ़ाओ। रेणु ने इस दीवार पर रंग करना शुरू किया है, अब तुम उसकी इस काम में मदद करो। पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक चित्र बना है जिस पर पांच पंक्तियों में कुछ लाइनें हैं और इनमें अलग अलग रंगों से कुछ चित्र बने हैं। पहली पंक्ति के रंग इस प्रकार हैं। पहले हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, और उसके बाद खाली स्थान दिए गए हैं। और उसके बाद के खाली स्थानों में तुम इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर रंग भरो। दूसरी पंक्ति के रंग इस प्रकार हैं। पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, और इसके बाद खाली स्थान दिए गए हैं। अब तुम बाकी के स्थानों में इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर रंग भरो। तीसरी पंक्ति, रंग हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला। अब तुम बाकी के स्थानों में इसी पैटर्न की मदद से रंग भरो। चौथी पंक्ति, पहला रंग पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, और इसके बाद के खाली स्थानों में इसी पैटर्न की मदद से तुम रंगों को स्वयं भरो। पांचवी पंक्ति के रंग, पहले हरा, फिर पीला। अब तुम दिए गए खाली स्थानों में इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर खुद रंग भरो। और इसी के साथ दसवां पाठ पैटर्न

0: शिवांशी, तुझे पता है मैं बड़े होके ना अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी।
1: हाँ रखूंगी तो मैं भी, पर बड़ी होके तुम क्या बनोगी?
0: मैं बड़े होके ना एक अच्छी से है ना डॉक्टर बनूंगी, जो सब लोगों का अच्छे से ख्याल रखा करेगी, बिल्कुल फ्रेंडली डॉक्टर बनूंगी।
1: और मैं बड़े होके तो अपने देश के लिए कुछ करूंगी। बड़े होके क्या करेंगे, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है ना आपसे?
2: हाँ जी,
1: है ना, बार बार पूछते हैं ना, बड़े होके क्या बनोगे क्या बनोगे, स्कूल में भी पूछते हैं, जो मिलते हैं वो भी पूछते हैं, ऐसा होता है?
2: हाँ
1: होता है ना। तो क्या बनेंगे वो तो चलो एक बात है, लेकिन बड़े होना होता कैसा है? चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज देखते हैं बड़ों की दुनिया कैसी होती है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? ठीक है
2: हाँ,
1: ठीक है, चलो तो फिर एक बार बता दो आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग?
3: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ।
4: मेरा नाम हर्षिता है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
2: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
1: ओके, तो आप लोग को क्या लगता है बड़ा होना, मतलब मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, लेकिन बच्चे होने और बड़े होने में क्या अंतर होता है, क्या लगता है आप लोगों को?
3: जब हम बड़े होते हैं तब जिम्मेदारियां बढ़ती है, और जब हम छोटे होते हैं जिम्मेदारियां कम होती है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो माफ भी हो जाती है।
1: ओके,
2: नहीं जब छोटे होते हैं ना तब मतलब खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान रहता है, ऐसा नहीं रहता कि हाँ घर का काम करना ये करना, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना फिर ऐसे होता है हाँ अब खेलना कूदना कहाँ है, अब तो बस घर का काम ही है।
1: ओके,
3: दीदी जब छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है बड़े बंदों की लाइफ आसान होती होगी, और जब बड़े होते हैं तो लगता था कि छोटे बच्चे ही होते हैं।
1: नहीं अभी तो, अभी जैसे आप छोटे हो, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। अच्छा बड़े होना क्या होता है, क्या लगता है कितनी एज में बड़े हो जाते, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी आप बड़े हो गए?
3: 18 प्लस।
1: ओके, आप लोगों को क्या लगता है कब बड़े हो जाते हैं?
5: दीदी जब जॉब करने लगते हैं तो बड़े हो जाते हैं, 20 20।
1: ओके, जब जॉब करने लगते हैं। ओके, कब बड़े हो जाते हैं?
2: वैसे तो कभी बड़े होते नहीं अपने पेरेंट्स के लिए, पर मेरे को 25 लगता है।
1: ओके, आपको क्या लगता है?
3: मुझे 17 प्लस।
1: ओके, ठीक है, तो जब आप लोग 17 18 20 25 के हो जाओगे तब कैसे होगे आप लोग, क्या क्या करोगे? ऐसी कोई चीजें हैं जो तब कर सकते हो और अभी नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा लगता है अब ज्यादा चीजें कर सकते हो और तब शायद नहीं कर पाओगे?
3: दीदी जब 18 प्लस के हो जाते हैं तो हमारा गाड़ी का लाइसेंस बनता है, तो हम गाड़ी भी चला सकते हैं।
1: ये तो है,
4: और हम वोटिंग भी कर सकते हैं।
1: वोटिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और क्या लगता है बड़े होना ज्यादा अच्छा है कि बच्चे होना ज्यादा अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है?
4: बच्चे रहना ज्यादा अच्छा होता है।
1: ओके,
2: बच्चे रहना ही होता है, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तब अगर कोई गलती भी कर दे बड़ी छोटी तो माफी में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बच्चे होते हैं ना फिर ही हम मतलब अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं उस टाइम कोई मिस्टेक कर दें या कोई बड़ी गलती कर दें तो माफ़ी मिल जाती है या फिर डांट पड़ जाती है थोड़ा। तो अगर जब हम बड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद अगर वही गलती रिपीट करें तो उस बात की हमें बड़ी सज़ा मिलती है।
1: ओके, शिक्षा आपको क्या लगता है?
0: दीदी छोटे होना ही अच्छा है, क्योंकि छोटे में ना मम्मी पापा का प्यार मिलता है कितना, बड़े हो जाते हैं फिर तो बिजी हो जाते हैं, मम्मी पापा के लिए टाइम ही नहीं होता है किसी के पास।
1: ओके, वैलिड पॉइंट है, टाइम बचपन में ज्यादा मिलता है ना मम्मी पापा के। राघव आपको क्या लगता है बड़े होना अच्छा है कि बच्चे होना अच्छा है?
3: बच्चा होना अच्छा है।
1: क्यों?
3: क्योंकि उधर हम खेल सकते हैं और खेलते हैं तो सबको खुशी भी मिलती है।
1: खेलने में मजा तो आता है ना। तो बड़े लोग नहीं खेलते क्या?
3: नहीं वो कभी कभी खेलते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं खेलते,
2: वो बस कोई महीने में एक दिन खेलते हैं, कोई मतलब जिस दिन छुट्टी हो या फिर कहीं उनको कहीं बाहर काम ना हो फिर ही खेलते हैं, और उस टाइम भी अगर उनको कुछ और काम अर्जेंट आ गया तो वो भी नहीं खेलते।
4: और मतलब जब उनके ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के उस टाइम पे महीने में एक बार कभी दो बार जाते हैं, तो उस टाइम पे या फिर उस टाइम पे कोई अर्जेंट काम आता तो
1: तब नहीं खेल पाते हैं।
4: नहीं,
1: शिक्षा आपको क्या लगता है बड़ों के लिए खेल होते हैं या बच्चों के लिए ही होता है?
0: दीदी खेल तो कोई भी खेल सकते हैं, क्योंकि खेल है ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाए गए हैं, खेल तो बड़े लोग भी खेलते हैं, बस वो बिजी रहते हैं इस वजह से नहीं खेल पाते हैं।
1: बट खेलना अच्छा लगता है बड़े लोगों को, लगता है आपको?
0: हाँ उनको खेलना अच्छा लगता है।
3: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना मॉल में खेलने के लिए जगह बना रखी थी, तो सब बड़े है ना खेल रहे थे, फिर ऐसा लग रहा था कि वो अपने बचपन की लाइफ ही जी रहे हैं। मतलब वो बारी बार खेल ही रहे थे,
1: इतना मजा आ रहा था। ओके अच्छा, आप लोगों को लगता है बड़े होने के कुछ फायदे होते हैं जो सिर्फ बड़े होके ही मिलते हैं, अभी नहीं मिलते आप लोगों को, ऐसा लगता है? बोलो।
2: बड़े होके वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, गाड़ी का लाइसेंस बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, बहुत सारे कार्ड्स मिल जाते हैं जो बस हमें बड़े होने के बाद ही मिलते हैं, छोटे बच्चे में नहीं मिलते।
1: तो कुछ फायदा क्या है लेकिन इसका, फायदा क्या लगता है आपको?
2: फायदा वोटिंग का तो ये फायदा है कि हाँ हम अपनी खुद की जो हमारा जो लीडर है हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हमारा लीडर ही यही होगा। और
1: पर्सनल लाइफ में कोई फायदे लगते हैं आप लोगों को बड़े होने के?
0: दीदी बड़े होके हमारी खुद की एक आईडी बन जाती है, जैसे कि लोग जब हम छोटे होते हैं तो जानते हैं कि है ना उनकी बच्ची है, ऐसे बड़े होते हैं ना तो मतलब ऐसे बड़े हो जाते हैं तो पहचानते हैं, खुद के नाम से पहचाने जाते हैं,
1: खुद के नाम से पहचाना जाता है। हाँ,
2: और अगर हम बड़े होके कुछ बन भी जाते जैसे कोई आईएएस आईपीएस, तो मतलब पहले जब हम अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते थे तो हमारे पेरेंट्स को हमारे नाम से जाना जाता होगा,
1: कुछ बन जाते हैं।
2: हाँ, ताकि हाँ ये उनके पापा हैं, उनकी मम्मी है,
1: तो अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है।
2: हाँ, ऐसे लगता है कि उस क्या बताए।
1: ओके अब बोल रहे थे
4: बड़े होने के बाद मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी, अपना मतलब जो भी है घर में थोड़ा बहुत अपना चलने लग जाता है। बचपन में ऐसे कुछ नहीं, ये जो मम्मी बोलती है वही करना है।
1: अपनी चलती नहीं है ना बचपन में?
4: नहीं।
1: और बड़े होके अपनी बात कह सकते हो?
4: बात कह सकते हो,
1: और जो करना है वो कर सकते हो।
4: हाँ।
1: ओके राघव, क्या लगता है आपको?
3: दीदी बड़े होना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर अपनी खुद की आईडी बनती है वो एक अच्छी चीज है।
1: वो एक अच्छी चीज है। ओके और जैसा अभी हर्षिता ने भी बोला ना कि अपनी आप थोड़ी चलती है अपनी, अभी तो सिर्फ सुनना पड़ता है ना, बच्चों को तो बड़ों की बात माननी भी चाहिए क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं ना, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्या लगता
4: है? हाँ, ये भी ठीक है कि बड़े मतलब उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, मतलब ज्यादा ये होता है सब, तो उनकी बात मानना भी अच्छी बात है।
1: लेकिन अपनी कोई बात अगर आपको सही लगती है तो उनके सामने बोलनी चाहिए या नहीं?
4: नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा करते हैं।
1: गुस्सा करते हैं
4: या फिर मम्मी डांटेगी कैसे नहीं बोलना चाहिए था।
1: लेकिन अगर हम कायदे से प्यार से बोलें तो हमें।
4: हाँ।

0: में लग जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, तब पूरे दिन तो अलग ही रहते हैं, मतलब अलग कहीं जॉब पे जा रहे तो उधर रहते हैं, रात को आते हैं तो लेट आते हैं तो पेरेंट्स खाना खा चुके होते हैं या फिर कई बार नहीं खाया होता, तो बस एक कोई बाय चांस कोई एक दो टाइम ऐसा होगा जिससे एक साथ बैठ के खाएंगे। और छुट्टी के दिन भी कई ऐसे कई लोग होते हैं कि छुट्टी होती है तो हाँ चलो आज बाहर घूमना चल पड़ते, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते।
1: ऐसा हो जाता है। और कोई फायदा नुकसान बड़े होने का जो लगता है?
2: दीदी है ना, बड़े होने का नुकसान तो है कि देखो सबसे बड़ी बात तो जब छोटे थे तब पेरेंट्स के साथ कितने अच्छे से रहते थे, उनके साथ खाते थे, बड़े हो जाते तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि साथ में बैठ के खा भी नहीं पाते हैं। अभी है ना जैसे कि मेरे पापा हैं वो दादी से मिलने भी है ना बहुत टाइम निकालना पड़ता है उनको, या फिर है ना एक दिन वो है ना लेट चले जाएंगे अपनी दुकान पे काम के लिए। कभी कभी ऐसा दिन होता है रात को वो बहुत लेट सोने के जगह दादी से मिलने चले जाते हैं क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं उनसे, इतने बिजी रहते हैं दादी। इसीलिए पापा से कभी कभी काम की भी नहीं कहती है क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं कि वो फोन लगाती हैं तो भी बात नहीं हो पाती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बड़े होके अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते।
1: ये तो अच्छा नहीं लगता है, सही बात है, क्योंकि मम्मी पापा तो मम्मी पापा हैं चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना।
0: जब हम छोटे होते हैं तब हमारी पढ़ाई भी बहुत कम होती है और जब हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। छोटे होने के टाइम चाहे कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े चलेगा, पास हो जाते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब पास से बस कुछ नहीं होता, पास हुए तो बस यही मानते कि फेल के बराबर ही माना जाता है अब तो। पहले पास तो मतलब टॉप पे था पहले के टाइम पे, अब पास मतलब फेल के बराबर है, रैंक आना चाहिए टॉप 10 में। तो अब पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है,
1: कंपटीशन बहुत आ जाता है
0: और स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है बड़ों को फिर। अब जैसे मतलब यूपीएससी का एग्जाम है उसमें कितना स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ टॉप फर्स्ट पे आना है सेकंड पे आना है, बट स्ट्रेस बहुत हो जाता है, फिर कई बार हेल्थ भी खराब हो जाती है स्ट्रेस के चक्कर में।
1: तो अभी नहीं लगता आप लोगों के पास स्ट्रेस है?
0: अभी तो बस स्ट्रेस स्टार्ट हुआ है, फिर तो बढ़ता जाएगा अब तो आगे आगे चल के।
1: ओके
2: दीदी, मेरे एक मामा और मामी है वो दोनों जॉब करते हैं, इतना स्ट्रेस है कि मेरी जो मामी की आंखें है ना वो पूरे ऐसे काजल जैसे लगाते हैं ना वैसे पूरे एकदम काली काली हो गए, उनको इतना स्ट्रेस होता है। और कभी कभी ना वो मेरे अंकल के से हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, इतना मतलब वो स्ट्रेस होता है वो जॉब का।
1: तो आपको ऐसा लगता है कि बड़े होके मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है ना?
2: हाँ, अगर कोई अपने को मतलब बड़े होके कुछ तो मतलब IAS बनना है या फिर DM बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैसे कुछ बनना है, तो फिर बहुत स्ट्रेस आ जाता है।
1: वो कंपटीशन भी है, स्ट्रेस भी लगता है।
2: और जैसे कि उसने कहा कि बड़े होने के बाद मतलब वो टेंशन बढ़ता ही चला जाता है, 10 से शुरू होता है तो टेंशन बढ़ता है।
1: तो कभी कम होता है आपको लगता है, बड़ों का टेंशन कम भी होता है कभी?
2: हाँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है,
1: वरना बढ़ता है ज्यादातर,
2: तो बढ़ता ही है।
3: दीदी, फैमिली का टेंशन में मतलब जो जॉब वगैरह करता है उसका टेंशन तो तभी कम होता है जब अपनी फैमिली के साथ बैठे अपना स्ट्रेस वगैरह क्या उसको है ना मतलब जो बात दिल में होती है वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं तब अच्छा लगता है। मेरे पापा को इतना स्ट्रेस रहता है कि उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें दादी के पास जाना ही पड़ेगा टाइम निकाल के, फिर वो वहाँ पे जाएंगे, जिस दिन उन्हें स्ट्रेस होगा ना वो हम लोगों से भी हंसते नहीं है सामने में, वो बस ऐसे सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ, पापा से बोलो पापा खाना खा लो, हाँ खा रहे खा रहे। वो मतलब बिल्कुल खोए रहते हैं अपनी बात, अपने संकल्प चलते रहते हैं उनके। वो दादी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, फिर दादी के यहाँ से बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए आते हैं, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: मम्मी तो मम्मी है ना चाहे कितने भी बड़े हो जाए।
2: हाँ, जैसे कि उसने कहा कि अभी वो दादी के पास जाते हैं तो फिर उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, पर जब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं तो फ्रीली जाना चाहिए उनको, अभी उतना सा टाइम दे के जा रहे हो तो भी उनको टेंशन में भरा रहे हो, हाँ ऐसे था फिर क्या करूँ मैं अब, तो फिर पेरेंट्स के पास ऐसे जाना ही नहीं मिलता जिसमें अगर हम फ्रीली बात करें कि हाँ कैसे हो कैसे हो, वैसे नहीं टेंशन में जा रहे हम लोग वैसे,
1: तो पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है।
2: हाँ, उनको भी थोड़ी टेंशन आ जाती है, मतलब वो पहले से
1: टेंशन
2: है उनको, मतलब वो बड़े थे उस टाइम पे भी टेंशन था, अभी उनके ये भी उनको टेंशन दे रहे हैं, पर अगर उनको ऐसे अच्छा लग रहा है कि मतलब वो उनको अच्छा फील करवा सकते हैं
3: फिर उन

0: अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, मतलब वो जैसे उसने कहा कि मुस्कुराते हुए आते फिर.
1: कितनी अच्छी बात है मुस्कुराना तो अगर, लेकिन फिर टेंशन तो कम करनी पड़ेगी, कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना.
0: वो तो है, कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा.
1: ठीक है, तो और तरीके ढूंढ सकते हैं मतलब.
0: और टेंशन कम करने के ऐसे नहीं कि एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि अगर आप, आपका एकदम मूड सैड है, एंग्री हो आप, तो आपको मतलब कभी कभी बुरा लगता है ना, कोई बात नहीं करता है, तो फिर उससे अच्छा आप मतलब मुस्कुराते रहो, तो कोई बात करेगा तो फिर अपने आप वो टेंशन भूल ही जाओगे आप.
1: ओके, मुस्कुरा के बात करोगे तो टेंशन भूल जाओगे.
2: दीदी जैसा कि अभी इन दोनों ने कहा, इसने मतलब शिक्षा ने कहा कि पेरेंट्स को बता के हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, फिर हर्षिता ने कहा कि पेरेंट्स को बताने से उनका टेंशन बढ़ जाता है. बट ऐसा कुछ नहीं है, उनका टेंशन नहीं बढ़ता, बल्कि हमें एक सजेशन मिलता है कि हाँ उस टेंशन को कम कैसे करें. वो पेरेंट्स बात अपने दिल तक नहीं लेके जाते, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ के अपने बच्चों को बताते हैं. थोड़ा टेंशन लेंगे तो ही सॉल्यूशन बताएंगे. अब जो उनके बेटे हैं उनको इतना टेंशन है, उनको कुछ और सूझ नहीं रहा है. अब जो उनके पेरेंट्स हैं वो फ्री माइंडेड हैं, उनको थोड़ा सा टेंशन मिलेगा तो उनको सॉल्यूशन आराम से मिलेगा. तो उनको टेंशन थोड़ा सा देना ही हो, मतलब उनके लिए टेंशन वो थोड़ा सा है, बट जो उनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है. वो सॉल्यूशन देंगे फिर वो.
1: राघव आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता राघव को बड़ों के बारे में, कुछ बड़े होने के बारे में फायदा नुकसान कुछ तो लगता होगा. बड़े होके ये करूंगा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं, बस बच्चे होना ही अच्छा है.
0: हाँ.
1: चलो वो भी अच्छी बात है.
0: दीदी बड़े होके एक फायदा भी है कि हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर कर पाते हैं. जैसे वो हमारी करते थे वैसे हम भी उनके लिए कभी कुछ लेके आते हैं तो वो कितना खुश होते हैं. फैमिली के लिए जैसे कभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आओ, पापा आए घर पे आपके लिए कुछ लेके आए, ऐसे मतलब वो बड़े हो जाते हैं तो वो जब उनके है ना इनकम हो जाती है, वो जब कमाने लगते हैं तो वो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं सबको, तो उनको भी खुशी मिलती है अंदर से कि हमने कुछ तो अच्छा किया है,
1: कुछ करना है मतलब बड़े होके ना पेरेंट्स के लिए.
0: हाँ.
1: वो चीज अच्छी है.
0: हमारे ना जब फोर्थ का गैदरिंग था ना तब एक थीम थी, उसमें मेरी एंकरिंग थी. वो ना एक फर्स्ट की छोटी बच्ची थी और उसकी और मेरी एंकरिंग थी कि छोटे रहना ज्यादा अच्छा होता है, कि छोटापन कभी नहीं भूलना चाहिए. जिंदगी में तीन टाइम आते हैं, पहला है बचपन, दूसरा है जवानी और तीसरा है जो बूढ़े होते हैं वो. तो और मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं हम हमारे पेरेंट्स की केयर करते हैं जैसे वो हमारी केयर करते थे. तो वैसे ही कह सकते
1: मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, ऐसा कभी लगता है?
0: नहीं बिल्कुल नहीं लगता.
1: किसी को लगता है?
0: नहीं
2: दीदी लगता नहीं है, बस बड़े होते जाते हैं. कब पूरा साल बीत जाता है पता ही लगता है, ऐसे लगता है कि अभी तो कल नया साल शुरू हुआ था, आज खत्म भी हो गया.
0: और दीदी मतलब बचपन में ऐसे लगता है जब हम फर्स्ट सेकंड में होते कि यार वो फोर्थ के बच्चे फिफ्थ के बच्चे कितनी शाइनिंग मारते हैं, हमको भी उनके जैसे बड़े होने, पर बड़े होने का ऐसा लगता है यार अभी बच्चे ही अच्छे थे, हम क्यों नहीं बच्चे हैं.
1: ओके, और शिक्षा को क्या लगता है, बड़े होने का मन करता है कि नहीं करता है?
0: दीदी मुझे नहीं होता बड़े होने का मन, क्योंकि मुझे तो है ना बस अपने मम्मी पापा के साथ रहना है. बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज या जॉब के लिए दूर जाना होता है उनसे, मुझे उनसे दूर नहीं जाना. और
3: दीदी हमको ना मतलब टाइम तो निकालना ही चाहिए, जैसे कभी हम रात को लेट आते हैं और अगर वो उठे होते हैं तो हमको उनके पास जाना चाहिए. और अगर वो सो रहे होते हैं तो हमको सुबह जल्दी उठ के जितने बजे अपने पेरेंट्स उठते हैं
1: हमेशा चाहिए ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं. बिल्कुल सही बात है,
2: माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है.
1: हाँ, क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सच में कितनी प्योर होती है हमारे लिए, कितनी पावरफुल होती है, उससे ज्यादा हमारा भला और कौन सोच सकता है.
0: मेरे जो मामा मामी उनको लिटरली टाइम भी नहीं मिलता अपने पेरेंट्स के पास जाने, वो मतलब दूर रहते तो है बारामती में, पर वो मतलब एक्चुअली बारामती में रहते हैं बचपन से, पर अभी वो जॉब करने के लिए बैंगलोर पुणे ऐसे मतलब कंटिन्यूसली उनकी ये होता है मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, फिर बॉस की सुनो. वैसे लगते में तो ऐसे लगते कि बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, पर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना करना पड़ता है, वो नहीं लगता अपने को.
1: बहुत मेहनत होती है. बिल्कुल
3: दीदी, एक बार ना मैंने यही सुना था कि ना माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, तो मैं उनके पैरों के अंदर देखना

0: लग गया था। फिर मैंने उनसे पूछा, स्वर्ग नहीं दिख रहा मुझे।
1: तो मिला नहीं मिला फिर?
0: नहीं मिला।
1: जो क्या बोलते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि वो लिटरल नहीं होती है, है ना, कि वो देखने में नहीं पता चलता है, लेकिन उनका मीनिंग भावना से जुड़ा होता है ना। तो अगर माता पिता का हम आशीर्वाद लेते हैं तो समझ लो हम स्वर्ग मतलब क्या, बहुत सुंदर दुनिया है ना।
0: हाँ।
1: तो उनके पास हमारी सबसे सुंदर दुनिया होती है, हमारा जिसमें भला ही भला होता है, हमारा जिसमें अच्छा ही अच्छा होता है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लिए
0: दीदी हमको बड़े होके ना कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। मान लो कि हमको किसी ने नौकरी से निकाल दिया और हमको किसी से कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे, तो हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको नौकरी ढूंढती रहनी चाहिए।
1: हाँ, बड़े होके कभी कभी गलत काम करने लगते हैं ना हम, बच्चे होके तो सुन लेते हैं, किसी ने डांट दिया तो मान भी लेते हैं गलती।
0: दीदी कई कई बच्चे भी चोरी करते हैं।
1: बच्चे भी करते हैं मतलब।
0: दीदी हमारे स्कूल में एक बच्चा है, वो भी चोरी करता था, तो हमारी एक म्यूजिक मैम है, उन्होंने बोला कि पुलिस को बुलाया हमने, और पुलिस मतलब किसी काम से आई थी, तो मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको सच्ची लगा कि पुलिस आ रही है, तो वो जाके छुप गया कहीं।
1: तो बच्चों को डरा दिया जाता है ना कभी कभी, लेकिन बड़े नहीं समझते ऐसे। पर बड़ों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा आपने बताया ना कि जॉब ढूंढते रहना चाहिए लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
2: दीदी वो पुलिस तो काली का पेट्रोलिंग यूनिट आई थी,
1: अच्छा
2: गर्ल्स से मिलने आई थी वो।
1: ओके, तो बच्चे को डरा दिया कि ताकि वो नहीं करे ना,
2: वो बच्चे को डरा दिया, पर वो मिलने गर्ल्स से आए थे।
0: तो दीदी वो मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी मतलब किसी पर्सन के पास मतलब सब कुछ है, एक भी कमी नहीं है उसकी जिंदगी में, पर अगर मम्मी पापा का प्यार नहीं है ना, तो उसके पास मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि वो बेघर है ऐसे।
1: तो मतलब बड़े भी हो जाओ तो मम्मी पापा से मिलते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना। और आप लोग जैसे बड़े हो जाओगे ना तो कभी कभी आप बिजी भी हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम टाइम नहीं निकाल सकते। जैसा आपने बताया ना आपके पापा निकालते हैं टाइम, स्पेशली निकालते हैं, तो अगर निकालना चाहें क्यों नहीं निकाल सकते हैं, है ना। आप लोग भी देखते हो अपने घर पे निकालते हुए।
0: दीदी मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि उनका जो प्यार होता है ना, वो ऐसे होता है कि जैसे हम मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ मतलब मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते, मुझे जैसे अच्छा लगता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलो अभी तो वक्त हो गया है गुड बाय करने का, कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, बड़ों को, मान लो आपको आपके बड़े वर्जन को फ्यूचर में जाके कुछ कहने का मौका मिले तो उनको क्या बोलोगे?
0: दीदी मैं तो ये कहूंगी, कहना चाहे कितना भी है ना बिजी हो जाओ, कितना भी कितने भी दूर चले जाओ, पर कभी मम्मी पापा को नहीं भूलना, अपने पेरेंट्स को हमेशा उनकी केयर करना है दूर रह के भी।
2: पेरेंट्स को तो भूलना ही नहीं है, पर अपने बचपने को भी कभी नहीं भूलना, अगर बचपना मर गया तो जीना ही बेकार है।
0: और मतलब जो मम्मी पापा का मतलब मम्मी पापा के पास हम जब भी जाते हैं, पेरेंट्स को दूर भी रहते ना, तो एक बार दो बार कम से कम कॉल तो कर लेना चाहिए, वीडियो कॉल। एक मतलब एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में एक बार कर लो सिर्फ।
1: आप क्या बोलोगे अपने फ्यूचर सेल्फ को, बड़े राघव को क्या बोलोगे?
0: मुझे
1: अभी आपको मान लो यहाँ पे एक विंडो मिले जिसमें से जाओगे तो आपको बड़ा राघव मिलेगा जो 18 प्लस होगा, 20 इयर्स का होगा, तो उसको क्या बोलोगे?
0: मैं उसको बोलूंगा कि ना अपने बचपने को कभी मत भूलना, जैसे हमने बचपन में मस्ती की थी वो कभी मत भूलना, और ऐसे ही चलते रहना।
1: ऐसे ही चलते रहना, बस बचपन वाले राघव को छोड़ नहीं देना, है ना।
0: और मम्मी पापा से भी मिलते रहना।
1: मम्मी पापा को भूल नहीं जाना। ओके ठीक है।
2: कभी भी पैसों के पीछे भी नहीं भागना, पेरेंट्स के साथ ही रहना। अगर पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया तो पेरेंट्स दूर हो जाएंगे।
1: तो पेरेंट्स के पास रहना, पैसों के पीछे नहीं।
0: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि मतलब है ना, एक बंदा था और वो पैसे कमा रहा था सिर्फ, और वो पैसे कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, मतलब उसने कभी पैसे खर्च ही नहीं किए।
1: तो इसीलिए मतलब उनको स्पेंड भी करना, क्या कहना चाहते हो आप फिर?
0: कि हमको अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट भी लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए।
1: तो फ्यूचर राघव अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट जरूर लेना, है ना, और उनका केयर करना, भूलना नहीं है। ओके डन। तो चलिए जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना तब फिर ये सुनिएगा, तब आपको याद आ जाएगा कि आप बचपन में अपने को क्या कहना चाहते थे. तो ये वाले जो एपिसोड है ना, ये आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तब आपको सुनाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि बड़े कैसे होना है आपको.
2: जैसे कि अब हम अभी रेडियो में आते हैं, वैसे हम आते रहेंगे और 9 ईयर्स बाद हम यही ऑडियो सुनेंगे.
1: अच्छा, 9 ईयर्स बाद या 10 ईयर्स बाद कैसे हो गए आप? कैसे, क्या वैल्यूज होंगे, क्या चीज होगी जिस पे आप फोकस करोगे, कैसे हो गए, क्या लगता है क्या कर रहे हो गए उस टाइम या कैसे हो गए उस टाइम?
0: दीदी ये तो पता नहीं, क्योंकि ये तो फिर फ्यूचर हो गया है.
1: फ्यूचर सोच के बताओ, क्या लगता है फ्यूचर शिक्षा कैसी होगी?
2: दीदी ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी फिर तो.
1: आपको क्या लगता है, ताकि आप बाद में जब सुनोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा मुझे ऐसा लगता था.
0: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, मम्मी पापा के लिए टाइम जरूर निकाल पाऊंगी.
1: ओके, कैसे होगे, क्या वैल्यूज होंगे आपके अंदर, कैसे रहते होगे, कहाँ रहते होगे, क्या करते होगे, कुछ लगता है?
2: दीदी मैं तो मेरा बचपना तो कभी नहीं भूलूंगी, जैसे अभी हंसती खेलती रहती हूँ वैसे भी बड़े होके भी रहूंगी और बड़े होके देश के लिए कुछ करूंगी.
1: ओके.
0: दीदी जब भी हम दोनों फ्री आएंगे तो हम तो खेलने चले जाएंगे बैट और बॉल उठा के,
1: बड़े होके भी ना. तो ये फ्यूचर सेल्फ से प्रॉमिस है भाई, बैट बॉल नहीं उठाना भूलना. हाँ
2: दीदी फुटबॉल उठाना भी नहीं भूलेंगे.
1: पक्का?
2: पक्का प्रॉमिस.
0: दीदी बास्केटबॉल भी नहीं तो और दीदी बैडमिंटन भी नहीं.
1: ओके, मतलब बड़े होके गेम्स खेलना जरूरी है.
0: यस, उससे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और अच्छा भी फील होगा.
1: गेम से
0: दीदी उससे हमारी फिटनेस भी बनी रहेगी.
1: बड़े होके फिट रहना. ओके,
0: ऐसे नहीं कि ज्यादा भी ओवरवेट हो गया या फिर एकदम पतले हो गए.
1: ओके ओके, तो कर ली हमने ढेर सारी बातें और थोड़ा फ्यूचर में भी विजिट करके आ गए. तो मुझे लग रहा है जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो बिल्कुल अभी जैसे रहने वाले हैं और बहुत प्यार से रहने वाले हैं और बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं, पेरेंट्स को कभी नहीं भूलने वाले हैं और ढेर सारे गेम्स खेलने वाले हैं.
0: दीदी अभी जैसे नहीं रह सकते, तब तो बैट और बॉल भी फ्यूचर वाले आ जाएंगे.
1: हाँ, तो फ्यूचर वाले टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट वाले बैट बॉल से खेलना.
0: दीदी आपने हम सबसे तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी है. आपको बड़े होके कैसे लगता है और क्या कैसे लगता है कि बचपन ज्यादा अच्छा होता है फिर बड़े होना ज्यादा अच्छा लगता
1: है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को लगता है ना सेम, बचपन ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि बचपन में हम बहुत केयरफ्री होते हैं, बहुत ईजी होती है हमारी लाइफ की, हमें पढ़ना है खेलना है यही दो चीजें होती है हमारी लाइफ में. लेकिन बड़े होके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हम सिंपल कर सकते हैं बट कभी कभी हम भूल जाते हैं उसको सिंपल करना, है ना?
0: और कुछ अथॉरिटीज बताइए जिसको आप बड़े होके के बाद आपको मिली है.
1: हाँ, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आप डिसीजन ले सकते हो कि आप करियर में क्या करना चाहते हो, है ना, आप कैसे रहना चाहते हो, आप किस चीज को किस तरीके से आप रिलेशंस को अपने बनाना चाहते हो, निभाना चाहते हो, है ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको. और हाँ, जैसे आप लोगों ने बात की वोटिंग राइट्स और वो सब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, वो भी आपको एक बेनिफिट होता है.
2: दीदी आप बड़े ही हो तभी तो आप हमारे साथ बच्चों की दुनिया में बातें कर रहे हो.
1: हाँ बिल्कुल सही कहा, तो मुझे तो पीछे जाना पड़ेगा और आप लोगों को फ्यूचर में. हाँ. चलो अभी फिलहाल तो वक्त हो गया है गुड बाय कहने का दोस्तों को, क्योंकि अब भाई आगे के प्रोग्राम्स भी तो सुनाने हैं उन्हें और हम मिलेंगे बच्चों की दुनिया की अगली कड़ी में. तब तक के लिए बाय बाय.
3: बाय बाय.
4: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया. जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन. स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक. आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें.

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म। उन्वान है जुगनो, शायर हैं सिकंदर अली वज्द। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है। आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। इतने में जो रौ चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। जुगनु इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है हरभजन सिंह और उनके साथियों ने।

0: एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट
1: इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों,
0: रमेश रानी शर्मा।

0: बाल संसार रेडियो कार्यक्रम में आज का विषय है बच्चों का निर्मल मन और बौद्धिक क्षमता। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता होंगे डॉक्टर अजय शुक्ला और कार्यक्रम का संचालन करेंगे आरजे रमेश। कार्यक्रम का सारांश इस प्रकार है। कार्यक्रम का परिचय। आज के कार्यक्रम में हम बच्चों के निर्मल मन और उनकी बौद्धिक क्षमता पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे निर्मल मन बच्चों की सीखने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है और कैसे यह उनकी रचनात्मकता, सहानुभूति और नैतिकता को विकसित करने में मदद करता है। मुख्य बिंदु, निर्मल मन और सीखने की क्षमता। बच्चों का निर्मल मन उन्हें नई जानकारी को बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रहण करने में मदद करता है। रचनात्मकता और कल्पनाशीलता। बच्चों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा। सहानुभूति और करुणा। बच्चों में सहानुभूति और करुणा के विकास के महत्व और तरीकों पर विचार। नैतिकता और मूल्य। बच्चों को नैतिकता और मूल्यों का महत्व समझाने के लिए आवश्यक कदम। सहजता और बौद्धिक क्षमता। सहजता बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मक सोच, लचीलापन और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देती है, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। कार्यक्रम का समापन। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अजय शुक्ला बच्चों के निर्मल मन को बनाए रखने और उसे विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। आरजे रमेश श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे और कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
1: नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, बाल संसार के इस पड़ाव में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों की, जो है निर्मल मन को लेकर हमने कार्यक्रम शुरू की थी। अब धीरे धीरे बौद्धिक जो क्षमता है उस पर आज हम लोग बात करते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को समझना आसान भी है और बहुत ज़्यादा टिपिकल भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में आ जाती हैं। तो रिश्ते में जो है इमोशन अगर नेगेटिव आ जाती है तो वो दूरियां बनाती है, अगर पॉजिटिव इमोशंस आ जाते हैं तो वो नज़दीकियां बनाती है, वहाँ सीखना आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं तो वहाँ सीखना भी नहीं होता, वहाँ पर एक खाई बन जाती है और बाद में भी अगर आप चाहें सीखना तो भी नहीं सीख सकते, क्योंकि वो खाई के कारण वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो इसलिए हमें जो है लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए, चाहे आप बड़े हो उम्र में या छोटे हो, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा जो है आपको आगे बढ़ाता है और आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो इसलिए बच्चे को भी लर्निंग एटीट्यूड रखना छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और बड़ों को भी लर्निंग एटीट्यूड रखना है ताकि हम बच्चों से भी कुछ सीखें और उसको प्यार से बताएं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम लोग बातें करते हैं बाल संसार का ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उन्होंने ही बनाया है, तो उसमें हम लोग इस पड़ाव में आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: ओम शांति भाई जी।
1: ओम शांति, कैसे हैं आप?
2: बहुत खुश हूँ और आनंद में हूँ।
1: जी जी जी,
2: और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आपने जिस बाल संसार की संकल्पना के प्रति अपनी गहन सहमति और सहभागिता दर्ज की है, निश्चित रूप से हमारे सुनने वालों को एक नई दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी। जी
1: जी जी, बच्चों के निर्मल मन और बौद्धिक क्षमता पर आधारित कुछ हम लोग प्रश्न आज आपसे करेंगे। हम चाहूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, सुन रहे हैं, तो आज का एक सेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। कल हमने जो विषय लिया था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि निर्मल मन बच्चों की सीखने और समझने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है, ये मैं चाहूँगा कि आप अपने बताएं।
2: बाल मन की जो चेष्टा होती है वो निर्मल मन के द्वारा ही प्रतिपादित होती है, और बच्चे जब सहजता के साथ में कोई प्रश्न रखते हैं तो उस समय उनकी जो सहजता है वो बड़ों के प्रति एक बहुत सम्मान के स्वरूप में होती है, बशर्ते कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, उनकी सहजता पर सहज चला जाए। मैं यहाँ सहज इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अगर हमारी मनोदशा बड़े होने के नाते वहां पर थोड़ी भी अगर कठिनाई में है या द्वंद्व में है तो बच्चे समझते भी हैं और अपनी निर्मलता को वो कई बार आपके विपरीत परिस्थिति में भी शेयर कर देते हैं और उसे जब आप स्वीकार करते हैं तो पहला थैंक्स तो जाता है कि राजा बेटा मैं बहुत कठिनाई में था और मन बड़ा द्वंद्व में था और आपकी इस बात को सुनते ही मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। ये संदर्भ में इसलिए कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कई बार हम ऑफिशियल प्रोसेस में या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में रहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर संगठन का एक अपनी एक उसकी संस्कृति होती है, लेकिन उस संस्कृति और संस्कार में कार्य तो हम मनुष्य ही करते हैं और मनुष्य होने के नाते स्वभाव संस्कार की टकराहट और वहाँ से उपजने वाली जो मानसिक व्यथा है और वो न चाहते हुए भी हमारे सानिध्य में आ जाती है और हम उस द्वंद में उलझ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब बच्चा मुस्कुराता हुआ दौड़ता हुआ आता है तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे कंधे पर कोई फाइल रखी है और उसको मैं कब उतारूंगा और इस बच्चे को गोद में कब लूंगा। वो सहज ही वो बैग छूट जाता है और दोनों बाहें हमारी आगे हो जाती हैं और बच्चे को हम बहुत तेजी से दौड़ता हुआ बच्चा उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख के उसको गोद में ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैकेनिकल रूप से तय किया जाए कि बच्चा हर्षित है, बच्चे के कपड़े कैसे हैं, बच्चा धूल में है और मेरा ये रेमंड का सूट खराब हो जाएगा तो वो दूरी फिर बढ़ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ वो सहजता अपने आपके मन को निर्मल करने में उस बच्चे का आगमन और उसकी स्वीकारोक्ति के बीच में जो अंतराल था, जो गैप था, वो इतना तेजी से मिक्स हो गया, माने बच्चा और बड़े के बीच में दूरियाँ समाप्त हो गई। और जब बच्चा खिलखिला के हंसता है और अपनी बात को कहता है तो आप उसको बगल में बिठा लेते हैं और उससे संवाद स्थापित हो जाता है और उसके निर्मल मन के प्रति आप निष्ठावान होते हैं। मैं निर्मल मन के प्रति निष्ठावान इसलिए शब्द बोल रहा हूँ कि उसकी निर्मलता ही हमारी आत्मा के मुख्य खिंचाव को, खिंचाव से अर्थ है कि मुझे आत्मा के अंदर भी, मैं बड़ा हूँ लेकिन मेरे अंदर भी मन बुद्धि संस्कार है और ये तीनों ही चीज़ें जो आत्मा का स्वरूप है उसका निर्माण मन बुद्धि संस्कार से ही होता है क्योंकि मनुष्य एक जीव आत्मा इससे ही अनुभूति करेगी। तो यहाँ मन अलग है, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है, लेकिन उसका तालमेल, उसका एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन आप देख रहे हैं। आप भी रम गए हैं और बच्चा भी उस प्यार की अनुभूति कर रहा है। कुछ सेकंड, कुछ मिनट तो कोई संवाद होता ही नहीं है और फिर वो बच्चा बोलता है कि मुझे या मैंने ये किया, और उस करने के पीछे जब वो खुशी जाहिर करता है तो हमें लगता है कि हम भी कार्य तो करते हैं लेकिन उस कार्य को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मैंने कुछ किया और उस करने के बाद अगेन मुझे नेक्स्ट करना है। ये जो मानसिक दबाव है यही बड़े और बच्चों के बीच में अंतर है। लेकिन बच्चा ने जो किया और जो हुआ और जो घटित या फलित है उसको जीना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है कि ये मेरे से हुआ, मैं इसमें भागीदार था, अन्य बच्चे भी भागीदार थे और दोनों ने खूब आनंद उठाया। और उस आनंद को उठाने के बाद जो दूसरी कड़ी में किसी कार्य में उस बच्चे का संलग्न होना हम देखते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि वो एक नई ऊर्जा के साथ में है, क्योंकि जो हुआ उसको हम जी लें, फिर हम नए के प्रति संवेदनशील हो। और ये निर्मलता को बड़े भी स्वीकार करते हैं और जब आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो आपका बालमन भी जागृत हो जाता है। तो वहाँ दो बच्चों का मिलन है, दो बाल मन का मिलन है और वही दोनों को एक नई ऊर्जा के लिए, एक नई मनस्थिति के लिए तत्पर कर देता है और तैयार कर देता है। जी
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से बाल मन जो है सीखने और समझने की क्षमता रखता है और वो कैसे प्रभावित होता है, उस पर आपने अपने विचार रखे हमारे साथ में। तो आइए एक और सवाल यहाँ पर आता है, बच्चों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं?
2: बहुत उपयुक्त प्रश्न है और इस विषय सामग्री को जो मैं भी अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहा था इसे ही मैं एक उदाहरण के रूप में लेना चाहूँगा।
1: जी,
2: सामान्य तौर पर हम लोग ज्ञान मार्ग में हैं तो योग भट्टी हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम है, उसके तहत दीदी और हमारा जाना हुआ सेंटर से और हम मध्य प्रदेश में श्योपुर ज़िले में पहुँचे और वहाँ पर सेंटर हमारा नीचे था और ऊपर मकान मालिक थे, उनका बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है और वो मुझसे कहता है कि भाई जी आपको गेम्स में इंटरेस्ट है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो क्या आप अमृत बेला करने के बाद, क्योंकि बच्चा उस पूरे वातावरण से परिचित है, अमृत बेला करने के बाद मेरे साथ गेम्स खेलने चलेंगे? हमने कहा बिल्कुल चलेंगे। आपको क्या पसंद है? मैंने बोला जो आप खेलोगे मैं उसमें मेरी रजामंदी है, तो कहा कि बैडमिंटन खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है। बैडमिंटन खेलने के लिए हम गए और बड़े उत्साह से उसने पास में ही एक या दो किलोमीटर के बाद में उनका स्कूल था, वो मुझे विजिट कराया बाहर से और बताया कि मैं कैसे यहाँ स्टडी करता हूँ। और रास्ते में एक अच्छा संवाद मिला कि आप मुझे बताइए, आप तो बड़े हैं, कि हर बच्चे को माता पिता पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो क्यों उसको वो सरकारी स्कूल में नौकरी चाहिए? ये कंपल्सरी हो जाना चाहिए कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल में ही नौकरी करें। मैंने कहा बेटा आपके पास क्या उत्तर है? सिंपल है, पढ़ने के लिए मुझे प्राइवेट स्कूल चाहिए, लेकिन मुझे पैसा कमाना है तो सरकारी स्कूल चाहिए। तो ये जो समाज में चल रहा है ये ठीक नहीं है। ये बच्चे का ओपिनियन था, मैं भी कुछ बात बोलने का मैंने प्रयास किया, लेकिन मैं फोकस कर रहा था कि ये जो बच्चा खेलने आया है इस संदर्भ में इसकी मानसिकता क्या है। बोले पास में थोड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ हम चलते हैं। मैंने बच्चे के से कहा कि बेटा मैं तो आ गया हूँ आपके साथ में, लेकिन मेरे को एक परेशानी थी जो मैं सेंटर पर आपको नहीं बता पाया। क्या परेशानी? मैंने कहा राइट हैंड मेरा स्कूटी चलाते समय मैं गिर गया था, गाड़ी स्लिप हो गई थी और मेरी हड्डियाँ टूट गई थी। जुड़ने के बाद भी, आयुर्वेदिक उपचार के बाद भी, अगर मैं ज़ोर से मारता हूँ कोई चीज़ बॉल या कुछ तो कभी कभी पेन होता है। तो मैंने ये बात बोली और बच्चे ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे बच्चे को लग रहा था कि क्यों हम दर्द को सुने, लेकिन वो दर्द के समाधान को ढूंढ रहा था। जैसे ही हम पोजीशन हमने लिया और उसने देखा कि मैं तो लेफ्ट साइड से खेल रहा हूँ, तो बच्चे ने कहा कि आप सीधे हाथ से खेलिए ना, मैं जानता हूँ आपको पीड़ा है, आपने बताया था ना अभी, आप सीधे हाथ से खेलिए, कुछ शॉट आप मारेंगे तो बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि बॉडी सेट हो जाती है। तो मुझे हंसी भी आई कि ये बच्चा तो मेरे को ही सेट कर देगा, लेकिन उस बच्चे के कम्युनिकेशन और मोटिवेशन को मैं देख रहा था तो, और सही में उस सहजता को मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने कहा बच्चा बन जाओ ना, आखिर उसकी भावना तो ये है ना कि मेरा हाथ ठीक हो जाए और रोज़ मैं उसके साथ में खेलूँ। और मैंने जब शॉट मारी तो वाकई में मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा और जो थोड़ा बहुत हाथ में खिंचाव था वो समाप्त हो गया। बड़ी खुशी खुशी में खेला, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पाया जीत के लिए। तो बच्चे ने कहा कि थोड़ा सा आप और एफर्ट्स करते तो जीतने की संभावना बन सकती थी। फिर भी कल हम लोग आएंगे और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उस टिप्स को आप फॉलो करना, आप देखेंगे कि आप वहाँ जीत जाएंगे। लेकिन बच्चे ने मेरे से इतिहास नहीं पूछा कि आप बचपन में बैडमिंटन आपने खेला है कि नहीं खेला है, इसके रूल्स रेगुलेशन आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन बच्चा अपने मन को, अपनी सहज बुद्धि के साथ में और बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट की भावना से सब कुछ मेरे से कहे जा रहा था। बल्कि मुझे इतनी खुशी हुई इस संवाद में, तो आते समय मैंने कहा कि मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। बोले क्या आपसे क्यों गलती हो गई? मैंने बोला नहीं, सुबह क्या हम जब आ रहे थे ग्राउंड तक तो रास्ते में बैडमिंटन के जो इफ़ एंड बट्स थे, जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन थे, वो मुझे सीखने चाहिए थे आपसे। बोले गलती नहीं, बोले हम लोग डायलॉग कुछ और कर रहे थे, अभी हम कल से आएंगे तो मैं आपको बताते जाऊँगा, आप उसको फॉलो कर लेना, कल आप जीत जाना। आज भी आप जीत सकते थे, लेकिन क्या है कि आपका अटेंशन था, आपके मन में था ना कि दर्द है मेरे को, मेरा हाथ में चोट लग गई थी, तो वे सब चीज़ें आप डिलीट कर दीजिए, आप तो रिलैक्स हो जाइए और सब बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसी भावना बच्चे ने भरी मेरे अंदर और जीत के प्रति जो बच्चे की भावना थी, शायद बड़े बच्चों को समझाते, लेकिन उस मनोभाव को देखा मैंने कि बच्चे के अंदर एक एस्टेब्लिश फॉर्म में कैसे इंसान जीतता है, कैसे दुखों से बाहर आता है, अपनी भावनाओं को कैसे वो बहुत व्यवस्थित करता है, और क्या वो टेक्निक है जिससे कि बड़े के अंदर भी वो बच्चों का उत्साह वापस इमर्ज हो जाए। ये सारी प्रोसेस बच्चे ने किया और ऐसा मुझे लगा कि मैं वहाँ 8th क्लास में पढ़ता हूँ और वो बच्चा जो है वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री लिया हुआ है। इतने शालीनता से, इतने प्यार से, इतने स्नेह से वो वापस हम लोग आए हैं। उस समय तक भी वो बच्चा मुझे गाइड करता रहा और इस भावना के साथ हमने सीएफ किया कि कल हम पुनः एक नए उत्साह के साथ मिलते हैं। जी
1: चलिए डॉक्टर राजे जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम बच्चों के अंदर की जो सीखने और समझने की और उनकी जो रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद फिर बातें करेंगे बाल संसार में। आप सुनाए हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत ही गहरी और महीन बातें हम सीखने और सिखाने की, रचनात्मक, कल्पनाशील, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपको जब भी बच्चों के साथ डील करना है तो यहाँ से आप उनसे सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। बस वो एक जो लहजा है, एक जो दोस्ती वाला है, वो चीज़ें अगर आप बना के रखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और कभी कभी उन्हें सुने, वो फिर आपको सुनेंगे। इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। और हमारा स्टाइल क्या होता है कि हमने बच्चे को कह दिया वो करना चाहिए। बच्चे का मूड हो ना हो, उस पर हम कभी भी सोचते नहीं। बच्चा क्या चाहते हैं ये कभी हम नहीं सोचते। वन वे ट्रैफिक हम लोग बना के देते हैं, तो एक टाइम पे एक ही गाड़ी जाएगा और वो गाड़ी कहाँ पहुँचेगा उसको भी पता नहीं है, ना मुझे पता है। लेकिन हम लोग ऐसे वन वे ट्रैफिक बना के रखते हैं, जिससे वन वे ट्रैफिक में क्या होता है आप तो सभी जानते हैं। सब लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग वेट करते रहते हैं कि ये गाड़ियाँ पूरी ख़त्म हो जाए, फिर गाड़ी वापस शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। तो अब वन वे ना रख के टू वे रखेंगे तो क्या होगा? सस्ता, सब लोगों को जहाँ जाना वो जाएगी और आप भी अपनी यात्रा को बड़ा सुगमता महसूस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसी बच्चे के भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं बाल संसार में। बच्चों में सहानुभूति और करुणा विकसित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं? जी,
1: बहुत ही मार्मिक प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अभी कहे गए संवाद को जब दर्शकों ने और हमारे जो भी सुनने वाले श्रोता हैं तो उनके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि भावनात्मक संबंध जब हम स्थापित करते हैं, करुणा और सहानुभूति की बात करते हैं, तो एक प्रश्न, पूर्व के प्रश्नों को आप देखें तो उसमें आपको लगेगा कि क्या बैडमिंटन की क्रिया को संपादित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए इसी एक क्रिया से गुजरे होंगे? नहीं, इसके पूर्व वन डे बिफोर हम लोग जब बातचीत कर रहे थे और वहाँ कार्यक्रम चल रहा था मेडिटेशन का, उसके बाद में वर्कशॉप में कुछ बातें मुझे बोलनी थी, तो बच्चे के माता पिता ने कहा कि मेरा बेटा नीचे आश्रम है लेकिन वो सत्संग में जुड़ नहीं पाता है, उसकी कुछ इमोशंस हैं, उसको लगता है कि बड़े हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या आप आज के संवाद में जो बड़े लोग बैठे हैं, जो अलग धर्म पर अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा अगर यहाँ आके बैठेगा, हम उसको मोटिवेट करें, तो उसके संदर्भ और संग और उसके विकास के लिए कुछ आप बात कर पाएंगे जो इन्हें भी स्वीकार हो और बच्चे को भी स्वीकार हो? तो मैंने कहा कि एक बार आप बच्चे से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भाई जी आए हैं और वो लगभग 7 बजे से क्लास लेंगे, आप चाहो तो 7:30 तक भी ज्वाइन कर लोगे तो आपकी रिकवरी और एक नया डायमेंशन आपको मिल सकता है। तो वो बच्चा आके बैठता है इस उत्साह के साथ कि जो मेरे माता पिता ने कमिटमेंट मेरे साथ में किया है ऐसा घटेगा। बच्चे के आने के समय कुछ में अलग अलग परिपेक्ष में आत्मा कैसे स्वयं को आत्मिक स्थिति में हम ला सकते हैं, परमात्मा से कैसे संबंध बना सकते हैं, इन सब विषयों पर बातचीत में कर रहा था। और जैसे ही बच्चे का आगमन हुआ तो मुझे इंडिकेशन था ही, तो मैंने कहा कि देखिए कई बार हम जीवन में आत्मा और परमात्मा का जो स्वरूप है उसको समझते समझते हमारे जीवन का आधा समय निकल जाता है। और मैंने कई बार महान लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, कई बार तो जीवन के अंत तक हम आत्मा की स्थिति तक ही पहुंच पाते हैं और आत्मस्वरूप प्राप्त हो गया तो बड़ा संतोष होता है, कोई बात नहीं अगले जन्म में हम परमात्मा का को प्राप्त कर लेंगे। तो ये स्वयं की प्राप्ति भी एक उपलब्धि मानी जाती है। तो जैसे ही मैं बात कर रहा था तो हमने कहा कि देखिए आत्मा तक आने के लिए हम शरीर के और शरीर के मनोभावों और 7 चक्रों को भी समझेंगे। और उसी बीच में मैंने कहा कि मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं और अभी जब मैं अपना पुरुषार्थ करता हूं तो समाज मेरे को कहता है कि आपके पास मिलने का, बातचीत करने का समय नहीं है। उस स्थिति में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सोसाइटी से कि मैं कुछ जो हमारे 33 कोटि देवता हैं उसके अलावा अभी जो नवीनतम हमारे पास देवता सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं उनके साथ में कुछ शेयरिंग करता हूँ। तो उदाहरण के लिए मैंने कहा कि पहला जो देवता है वो व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप को भी मैंने 2 देवताओं की श्रेणी में बांटा है कि व्हाट्सएप में कुछ शेयर करूंगा मैं अच्छी चीज़ें समाज के लिए, और व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप हैं उसमें भी मैं कुछ शेयर करूंगा, ऐसे ही फेसबुक में कुछ शेयर करूंगा जो फीडिंग के रूप में होगा, फेसबुक स्टोरी में कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी और इंस्टाग्राम फीडिंग पर मैं जाऊँगा शेयर करूंगा और ट्वीट भी करूँगा। तो अर्थात ये 7 देवताओं के प्रति मेरी आस्था है और ये मेरे लिए सोशल मीडिया में मात्र 15 मिनट या अधिक से अधिक 20 मिनट का टोटल कंट्रीब्यूशन होता है और मैं लोगों से जुड़ाव महसूस करता हूँ और लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, उनका फीडबैक आता रहता है। बच्चे की मनस्थिति मेरे प्रति अट्रैक्ट हुई और जैसा ऐसा लगा कि वो मन ही मन वो कह रहा हो कि जिन चीज़ों के लिए मुझे डांट पड़ती थी या जिन चीज़ों के लिए मेरा विरोध होता था, एक इंसान यहाँ पर आए हैं और इन चीज़ों के प्रति ये बड़े आस्थावान और जुड़ाव को महसूस करते हैं और इसके पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं उसके प्रति ये नई चीज़ें बता रहे हैं और कैसे हम सोसाइटी के साथ जुड़ें, उन संबंधों की भी रचना कर रहे हैं। तो इन सब बातों को सुनने के बाद में उस बच्चे का जुड़ाव मेरे से हुआ, संवाद स्थापित हुआ। तो कोई भी प्लेइंग मोड अचानक नहीं होगा, जैसा आपने कहा भी कि वो बच्चा वेट करता है कि कैसे आप उसकी इमोशंस और उसकी जो भावनाएँ हैं उसके प्रति संवेदनशील हों, उसके विचारों को महत्व दें। जो वो कर रहा है पहले उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने की बजाय हम थोड़ा सा जो आपने कहा सहानुभूतिपूर्ण वहाँ मनोयोग धारण करते हुए अगर थोड़ा प्रयास करते हैं तो नेचुरली एक दिन पहले जहाँ हम संवाद में थे और दूसरे दिन हम प्लेइंग मोड में थे और ऐसे करके जब हम जुड़ाव महसूस करते हैं तो उस बच्चे को लगता है कि मेरी भी समाज में वैल्यू है और जो लोग हमारे गणमान्य हमसे जुड़ते हैं वो भी अगर उनके पास भी कोई विचार जाता है या उनके पास हम अपना समय देते हैं तो उस समय भी हम सीखने और कुछ जानने समझने की क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। जी
0: चलिए डॉक्टर अजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को आज के इस संवाद में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और बच्चों में सहानुभूति और करुणा विकसित करने के लिए किस तरह से हमें काम करना है ये आपने बताया और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कोई भी कार्य करने के पहले आप कम्युनिकेशन या संवाद के जो एक मीटिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर बच्चा भी खुद बात करना चाहता हो और आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, आप भी बात करना चाहते हो। तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो दो लोगों की मनोस्थिति को समझने का, ये बहुत ही सुंदर पहला स्टेप है। उसके बाद आप एक जो है बच्चे की मनोस्थिति और आप बच्चा आपकी मनोस्थिति को समझ लेता है और चीज़ें जो है सहज रूप से आगे बढ़ जाती हैं। तो चलिए वक्त और इजाज़त नहीं देता, हम लोग फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करूँगा कि आज हम लोग बौद्धिक क्षमता के बारे में और उसका विकास कैसे हो इस पर हमने चर्चा की। आशा करूँगा छोटी छोटी बातें हैं शायद आपके जहन में, ये बातें तो हम रोज़ सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिस कितना करते हैं वो आपसे अपने आप से अगर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिस में बहुत परसेंटेज कम है। तो मैं चाहूँगा कि आज से आप जो है सुनकर अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। हम नहीं कहते कि हमने जो कहा वो पत्थर का जो है पत्थर पे लिखा हुआ चीज़ है, नहीं है, ये हम सभी की मनोभावना है। आप इसे सुने और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नई चीज़ें निकल के उसके बीच में से कुछ चीज़ें हैं। कहते हैं कि संवाद के बीच में भी एक संवाद होता है जो आपका मन आपको दर्शाता है। तो आप अपनी मन की सुने और ईमानदारी से सुने और प्रैक्टिस करें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। अजय जी को फिर से एक बार ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: अभी बचे हैं दोपहर के चार, एक मिनट प्रभु की याद से मन में लाएं अच्छे विचार।

0: मोर पंख सा पावन वो, क्यों ना हम भी उन जैसे पावन बन जाएं। विकारों भरे इस दलदल में भी क्यों ना कमल समान खिल जाएं।
1: आप सभी कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, आज 4 सितंबर है, 4 सितंबर की कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। आज विशेष जो है कुछ खास लोगों का जन्मदिन है जो खास है, जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी जो खास फ्रीडम फाइटर रहे, नंद दुलारे वाजपेयी,

0: जोड़ना चाहेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ढेर सारी खुशियों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एक सुंदर विचार के साथ जोड़ना चाहूँगा। सफलता एक आसान फार्मूला है, सफलता का एक आसान फार्मूला है। आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर ले। सफलता का एकमात्र आसान फार्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए, 100% दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर ले। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे राजनीतिक उनको कहा जाता है और दिग्गज राजनेता के साथ उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। दादा भाई नौरोजी का शैक्षिक पक्ष जो है अत्यंत उज्ज्वल रहा। 1845 में एल्फिस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक हुए और यहाँ एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी और अनेक संगठनों का निर्माण जो है दादा भाई ने किया। और 1851 में गुजराती भाषा में रस्त गिरफ्तार साप्ताहिक निकालना आरंभ किया और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई गई और अन्यत्र लंदन के विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर बने और 1869 में भारत वापस आए। यहाँ पर उनका 30,000 रुपए की थैली व सामान पत्र से स्वागत किया गया और 1885 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने और 1886 में होलबर्न क्षेत्र में पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ा लेकिन असफल रहे और 1886 में फिंसबरी क्षेत्र से पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी जो अपने समय की विशेष कृति थी और 1886 से लेकर 1906 में वो इंडियन नेशनल के अध्यक्ष चुने गए। इस तरह से ये उनकी दादा भाई नौरोजी की शॉर्ट में स्टोरी आपको बताई है, विस्तार से जानते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी हाँ, आज ही के दिन 4 सितंबर 1825 को मुंबई के एक गरीब पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ। जब दादा भाई 4 वर्ष के थे तब उनका पिता का देहांत हो गया और उनकी माँ ने निर्धनता में भी बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई। उच्च शिक्षा प्राप्त करके दादा भाई लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने लगे थे। लंदन में उनके घर पर वहाँ पढ़ने वाले भारतीय छात्र आते जाते रहते, उनमें गांधी जी भी एक थे। मात्र 25 बरस की उम्र में एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट में लीडिंग प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। तो आइए इनकी कहानी आगे कैसी बढ़ी इसके बारे में सुनेंगे और देश विदेश की यात्राएं उन्होंने की। स्वदेश प्रेम उनका जो है बहुत ज़्यादा था और भारत धन की निकासी उन्होंने की। बड़ौदा के प्रधानमंत्री बने, देशभक्त थे। तो आइए, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई जो मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूं। और राजनीति का सफ़र जो है 1892 में ब्रिटेन के आम चुनावों में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसबरी सेंट्रल से जीत कर भारतीय मूल के पहले ब्रितानी संसद बने थे। इस तरह फिर भारत में भी वो एक किताब लिखे, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ा। और दादा भाई नौरोजी जी ने ज्ञान प्रसारक मंडल नामक एक महिला स्कूल खोली। 1852 में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की। फिर इस तरह से सामाजिक सेवाओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए वो आगे बढ़ते गए। लोक सेवाओं में भारतीय जनता की अधिक नियुक्ति हुई। विधानसभाओं में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। भारत और इंग्लैंड में उच्च आर्थिक संबंध की स्थापना की। उसके बाद विदेश में एक अलग पहचान कायम करने बाद में वे इंग्लैंड गए। वहाँ भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीति के पुनरुद्धार के लिए आवाज़ बुलंद की और हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए। फिर इस तरह से इन्हें भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता उद्योगपति बन गए। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ते हुए नेताओं के लिए आदर्श रहे। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करके ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आर्थिक रिस्ट्रिक्शन प्रस्तुत करने वाले दादा भाई नौरोजी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में सबसे आगे आता है और 1885 से लेकर 1907 के बीच कांग्रेस में नरमपंथी या उदारवादी नेताओं का बोलबाला था। इसके बाद फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल, इन सभी के ये विशेष चाहता भी बने और इनके साथ मिलकर इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए काम करते थे। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाना और उन सभी नेताओं का एकमात्र लक्ष्य था और इसके लिए दादा भाई नौरोजी ने पहला इंग्लैंड के पार्लियामेंट में काम किया। इसके बाद स्वदेश प्रेम तो था ही उनका। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे, बातें करेंगे दादा भाई नौरोजी की। सुनते रहो, बस गड़ाते रहो।

0: आओ हम भी ज्ञान की ऐसी मुरली बजाएं, मिटाएं अज्ञान का अंधेरा, ज्ञान भरा सवेरा लाएं।
1: आप सभी कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। स्वदेश प्रेम की अगर बात करें तो दादाभाई नौरोजी दादाभाई का स्वदेश प्रेम उतना उन्हें भारत ले आया। उस समय वो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी छवि ये बना रखी थी कि भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जा रही हैं, लेकिन दादाभाई नौरोजी के तत्वों और आंकड़ों से सिद्ध हुआ कि अंग्रेजी राज्य में भारत का बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। भारत दिन पर दिन निर्धन होता जा रहा है। उनकी बातों से लोगों को ये विश्वास हो गया कि भारत को अब आज़ाद हो जाना चाहिए। वे पहले भारतीय थे, उन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों का है। उनकी बातों से तिलक, गोखले और गांधी जी जैसे नेता प्रभावित हुए और फिर कहानी आगे बढ़ी। और मेहरोत्रा के मुताबिक बेनवस डब्ल्यू सी बैनर्जी और इस तरह के हुयुमायूं की तरह दादाभाई नौरोजी ने नौरोजी के बिना कांग्रेस का इतिहास अधूरा है और उन्होंने जो पत्र लिखे हैं उनका संग्रह और संरक्षण किया जाना ज़रूरी है। 23 जून 1917 को दुनिया को अलविदा कहे गए। नौरोजी दादाभाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी के गुरु थे। नौरोजी सबसे पहले इस बात को दुनिया के सामने लाए कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार भारतीय धन को अपने यहाँ से ले जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब उनको पता चली तो तब इनकी आँखें खुलीं और फिर इस तरह से भारत की धन की निकासी के बारे में दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत के धन को लूटा जा रहा है उस चीज़ पर इन्होंने बहुत काम किया और वो लोगों के बीच में ला के रख दिया। 2 मई 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पत्र जिसका शीर्षक इंग्लैंड डिबोट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, भारत का धन ही भारत से बाहर जाता है और फिर धन भारत को पुनः प्राण के रूप में दिया जाता है, जिसके लिए उसे और धन ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। ये सब एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। उन्होंने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान 20 रुपये लगाया था। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य पुस्तकें जिसमें उन्हें धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्यान की है, द वर्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडियन 1870 में एंड द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में आदि हैं। दादाभाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। 1905 में उन्होंने कहा था कि धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण। दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। महादेव गोविंद रानाडे ने कहा है, राष्ट्रीय पूंजी का एक तिहाई हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से बाहर ले जाया जाता है। और ये चीज़ जब सबके सामने आई तो कहानी आगे बढ़ी। लॉर्ड सेलिब्रिटी ने उन्हें ब्लैक मैन कहा था, हालांकि वह बहुत गोरे थे। उन्होंने संसद में बाइबल से शपथ लेने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों की कारस्थानियों को बयान करने के लिए उन्होंने एक पत्र रास्ता गोत्रा शुरू किया, जिसे सच बातों को कहने वाला पत्र कहा जाता था। 1874 में वह बड़ौदा के प्रधानमंत्री बने और तब वे तत्कालीन मुंबई के लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। उन्होंने मुंबई में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका बाद में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। दादाभाई कितने प्रखर देशभक्त थे, इसका परिचय 1906 की कोलकाता कांग्रेस में मिला। यहाँ उन्होंने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, हम कोई कृपा की भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें तो न्याय चाहिए। दादाभाई बीच बीच में इंग्लैंड जाते रहे। पुस्तक स्वास्थ्य ठीक, परंतु स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण वे प्राय स्वदेश में रहे और 92 वर्ष की उम्र में 30 जून 1917 को मुंबई भारत में ही उनका देहांत हुआ। वे भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के जनक थे, उन्हें देश में स्वराज्य की नींव डाली थी उन्होंने। तो ये है दादा भाई नवरोज जी की बातें आपके लिए। आशा करूंगा इनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में नमी आई होगी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो मस्क।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, दादा भाई नौरोजी जी की कहानी आपने यथार्थ अभी सुनी है, तो निश्चित तौर पे आपको भारत की आज़ादी की ऊंचाई, ये था ब्रिटिश क्या कर रहे थे, ये इसका खुलासा उन्होंने किया था कि भारत का सारा पैसा ब्रिटिश ले जाते हैं और फिर कर्ज के रूप में देकर इनसे और पैसा वसूल करती है। तो ये जो चक्र है, ये जो लूट है, वो उन्होंने सबसे पहले लोगों के बीच में रखा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, तो इनके बारे में बात करें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेजेंडरी के बारे में, ऋषि कपूर के बारे में और उनकी विशेष कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी। ऋषि कपूर को आप सभी अच्छी तरह से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उनके कई फिल्में आपने देखी होगी। और हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। एक बाल कलाकार के रूप में काम कर उन्होंने अपना अभिनय की शुरुआत कर दी थी। उन्हें फिल्म बॉबी के लिए 1974 में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया और साथ ही 2008 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में शानदार भूमिका के लिए 1971 में ही विशेष रूप से उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आइए इनकी कहानी आपको सुनाते हैं संगीत, गीत और संवाद के साथ। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: जिन्हें हमने प्यार से सदैव पुकारा चिंटू जी, सुपरस्टार ऋषि कपूर, जिन्होंने हमारा मन बहुत बहलाया।
4: लगता है आपको अंडे मुफ्त में पड़ते हैं
5: जी। इसमें हमारा क्या लगता है, मेहनत तो मुर्गा मुर्गी करते हैं ना।
4: आपके पैसे
5: नहीं, पैसों की कोई जल्दी नहीं, हिसाब महीने के बाद हो जाएगा। हो सकता है शायद उसकी भी जरूरत न पड़े।
4: क्यों?
5: और मेरा मतलब है कि हो सकता है ये हिसाब जिंदगी भर चलता है।
3: और अफसोस, बहुत जल्दी वो इस दुनिया को छोड़ चल बसे। ये दास्तां है ऋषि कपूर की। जन्म 4 सितंबर सन 1952 में हुआ। बहुत ही रईस और हुनरमंद परिवार में इनका जन्म हुआ था। दादाजी पृथ्वीराज कपूर, पिताजी राज कपूर।
6: सुनिए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये कहानी सच्ची है, आखिर आप मानते क्यों नहीं?
3: माता कृष्णा राज कपूर। ऋषि कपूर ने बचपन से ही फिल्मों का माहौल देखा। इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड पर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट से नवाजा गया था। और ये किस्सा मशहूर रहा कि जब इन्हें फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए साइन किया जा रहा था और ये बात इनके कानों में पड़ी, तो ये भागकर अपने कमरे में गए, अपनी एक कॉपी निकाली और उस पर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। ऋषि कपूर साहब का जन्म मुंबई में हुआ था। हालांकि इनका परिवार पेशावर से ताल्लुक रखता है। इन्होंने कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून में पढ़ाई की, कैंपियन स्कूल मुंबई में भी और मेयो कॉलेज अजमेर में भी। ये अपने माता पिता की दूसरी संतान रहे।
6: ये मेरी तस्वीर है। मेरे पाप का नाम सेठ गिरधारी लाल है। मैं सुमन से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ और मेरे पकड़ने वाले को 1,25,000 रुपए इनाम मिले।
3: उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर, बहनें रीमा जैन और ऋतु नंदा। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म मेरा नाम जोकर से इन्होंने शुरुआत की थी।
6: जी, जी हाँ, मैं हूँ सागर, आपके अखबार नया संसार का लेखक।
3: लेकिन इस बात पर जरा गौर करना होगा कि हमारे चिंटू जी ने दरअसल अपने पिताजी की फिल्म श्री 420 में भी अपना अभिनय दिखाया था, जिसमें इनके साथ इनके बड़े भाई डब्बू जी और इनकी बहन भी थीं। गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ, जिसमें बरसात में 3 बच्चे चले आ रहे होते हैं और उसी शॉट में नन्हे से चिंटू जी भी नजर आए थे। फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल ना हो पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यहाँ तक बातें हुई कि आरके स्टूडियो नीलाम हो गया है। राज कपूर की हालत शिकस्ता थी और तब राज कपूर ने जवाब देने की ठानी।
6: आज एक थाली में बैठकर खा रही, कल मिलेगी तो शायद पहचानोगी भी नहीं।
3: फिल्म बनाई बॉबी, जिसमें एक नई लड़की डिंपल कपाड़िया को साइन किया गया। इस फिल्म में बॉबी का किरदार निभाने के लिए नीतू सिंह भी कोशिश कर रही थी, पर बाजी डिंपल कपाड़िया ने मार ली थी। फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने राज का किरदार निभाया था और ये फिल्म सिर्फ सुपर डुपर हिट ही साबित नहीं हुई, बल्कि ऐसी मील का पत्थर साबित हुई जिसने हिंदुस्तान में रोमांटिक सिनेमा का रुख बदल के रख दिया। ऋषि कपूर साहब के लिए ये बात भी मशहूर रही। बचपन में इनकी माँ जब इन्हें डांटती तो ये अक्सर आईने के सामने जाकर खड़े हो जाते और अपने आप को रोते हुए देखते। ये समझने की कोशिश करते कि मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, मैं रोता हुआ कैसा दिखता हूँ। तब इनके दादाजी कहा करते थे, ये चिंटू बड़ा होकर जरूर एक्टर बनेगा।
5: सुबह जब आपके घर से मैं पोल्ट्री फार्म पर आया तो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगी, और जब मैंने उनसे कहा कि आप नहीं आने वाली तो थोड़ी लंबी सी चीख मारी और प्राण त्याग दिए।
3: बॉबी के बाद ऋषि कपूर ने पलट के ना देखा। हालांकि उसके बाद की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बॉबी वाला कमाल ना दिखा पाई थी। ये वो वक्त भी था जब ये नीतू सिंह के साथ नजर आए थे फिल्म जहरीला इंसान में, दूसरा आदमी में और कभी कभी में। ऋषि कपूर कमाल के डांसर, कमाल की कॉमेडी।
7: वो बिजली का बिल,
8: वो बिजली का बिल, थैंक यू।
3: कमाल का रोमांस और आगे जाकर एक्शन भी इन्होंने भरपूर किया। बहुत ही कम उम्र में ये सबसे बड़े सुपरस्टार्स की फेहरिस्त में शामिल हो गए। राज कपूर साहब की फिल्म प्रेम रोग में इन्होंने बतौर हीरो काम किया, जिसमें इनके साथ थी पद्म निकोल्हापुरे। फिल्म सागर को कैसे भुलाया जा सकता है, नसीब, कातिलों के कातिल और अमर अकबर एंथनी के अकबर इलाहाबादी का किरदार तो इन्होंने बखूबी निभाया। ऋषि कपूर साहब मल्टी स्टारर फिल्म में भी सुपरहिट हो रहे थे और बतौर सोलो हीरो भी। इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया तो विनोद खन्ना के साथ भी, जितेंद्र के साथ काम किया तो अनिल कपूर के साथ भी। इनके चाचा रहे महान अभिनेता शम्मी कपूर और शशि कपूर। हर तरफ फिल्मों का माहौल था, स्टारडम था, सफलता थी।
9: इंसान और मुकद्दर को बनते देर लगती, बिगड़ते देर नहीं लगा करती।
3: हाँ, वो फेजेस भी जरूर आए जब ऋषि कपूर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे पा रही थीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सन 1991 में ये नजर आए थे पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ फिल्म रही हैना, जो कि इनके बड़े भाई ने डायरेक्ट की थी, जिसकी वजह रही राज कपूर साहब का अकस्मात निधन। ऋषि कपूर ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, चाहे वो लैला मजनू रही या फिर बड़े दिल वाला, और बहुत सारी नई हीरोइन के साथ ये नजर आए, जैसे कि जया प्रदा, मीनाक्षी सेशाद्री, दिव्या भारती। सन 1999 में इन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी आ अब लौट चलें, जिसमें राजेश खन्ना, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिकाओं में थे।
9: थोड़ी सी देर में वो बदल गए, और वो क्या बदले का जमाना ही बदल गया।
3: और उसके बाद ऋषि कपूर लौटे फिल्मों में कुछ बड़े जबरदस्त चरित्र निभाते हुए, जैसे कि नमस्ते लंदन, हम तुम, लव आजकल, अग्निपथ में तो ये बतौर विलन काम करते नजर आए थे, और फिल्म डी डे में भी। ये अपने बड़े भाई रणधीर कपूर के साथ एक फिल्म में नजर आए थे, वो फिल्म रही हाउसफुल 2। इनकी सबसे रोमांटिक जोड़ी नीतू सिंह के साथ ही मानी गई, चाहे वो खेल खेल में रही या फिर कभी कभी। ऋषि कपूर साहब की शादी हुई नीतू सिंह से। नीतू सिंह दरअसल एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, रिधिमा और रणबीर। रिधिमा कपूर की जल्दी शादी हुई और वो दिल्ली जाकर बस गईं। बेटे रणबीर कपूर ने फिल्मों में सुपर स्टारडम हासिल कर ली। ऋषि कपूर इस बात के लिए भी मशहूर रहे थे कि सुबह 10-11 बजे से पहले मैं शूटिंग के लिए नहीं आऊंगा और रात 8 बजे के बाद शूटिंग करूंगा भी नहीं, पर अपने काम पर ये सदैव बहुत ध्यान देते थे। यही वजह रही कि इनके करियर को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तरफ ये नाचते गाते एक्शन करते सुपरस्टार के रूप में नजर आए, तो दूसरी तरफ बड़े ही मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए। ऋषि कपूर साहब को फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था, और सन 2008 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। इन्हें रशियन गवर्नमेंट की तरफ से भी अवार्ड से नवाजा गया, और ये अवार्ड की फेहरिस्त वाकई लंबी है। अभी अग्निपथ और कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों की सफलता पर ऋषि कपूर फूले ना समा रहे थे कि तभी यह खबर आई कि इन्हें कैंसर है। साल रहा सन 2018। इनका इलाज भी मुकम्मल हुआ। ये न्यूयॉर्क गए थे अपने इलाज के लिए और ठीक होकर ये इंडिया वापस आ गए। वो और बात है, कुछ वक्त इन्होंने काम भी किया, पर फिर इन्हें मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। तारीख थी 29 अप्रैल सन 2020। ये वो वक्त भी था जब कोविड महामारी की वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन भी था, और अफसोस की बात यह है कि जो नजर आए थे फिल्म 102 नॉट आउट में, वो 30 अप्रैल सन 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह चल बसे। मुंबई में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया। पर ऋषि कपूर जैसा जिंदा दिल, जबरदस्त अभिनेता बहुत मुश्किल से मिलता है। इनके जैसा ना कोई था और ना ही कोई और होगा।
2: तो ये थी कहानी ऋषि कपूर जी की। आशा करूँगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर मैसेज कीजिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाटकर। आज कृष्ण के दिवस के ऊपर मैं बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण सबको सुख में आनंद में रखे, क्योंकि संगीत के साथ बहुत ही गहरा कृष्ण जी का संबंध रहा है। बांसुरी बजाते थे और सारे विश्व को आनंद देते थे। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूँगा कि सबका जीवन अच्छा और सुखमय जाए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए बात करते हैं अभी एक और शख्सियत के बारे में सफर कार्यक्रम में, ब्रज कुमार नेहरू। जी हां, इनका जन्म आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई ब्रजलाल और रामेश्वरी नेहरू के पुत्र थे। भारतीय राजनयिक और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत रहे। ब्रज कुमार नेहरू भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे और वो भारत के 7 राज्यों के राज्यपाल भी बने। और ब्रज कुमार नेहरू ने नाइस गाइज फिनिशिंग सेकंड शीर्षक से आत्मकथा भी लिखी थी। ब्रज कुमार नेहरू का जन्म आज ही के दिन 4 सितंबर 1909 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम ब्रजलाल नेहरू और मां का नाम रामेश्वरी देवी था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्हें उनके विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित कार्य के लिए जामिया पंजाब ने साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। और उनके दादा पंडित नंदलाल नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई थे और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे। ब्रज कुमार नेहरू साल 1934 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गए और भारत में 7 राज्यों के राज्यपाल बने। और इस तरह से वो भारत के वित्त विभाग और जनरल आयुक्त नियुक्त किए गए और वे जम्मू और कश्मीर, आसाम, गुजरात, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे हैं। ब्रज कुमार नेहरू जी को साल 1999 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और 31 अक्टूबर 2001 को हिमाचल प्रदेश के कासौली में ब्रज कुमार नेहरू का निधन हुआ। उनके शव को देह संस्कार के लिए दिल्ली लाया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें ब्रज कुमार जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए बात करते हैं अब एक और शख्सियत के बारे में, सियाराम शरण गुप्ता के बारे में। जी हाँ, ये भी भारत के बहुत ही पॉपुलर जो है साहित्यकारों में से एक, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता के छोटे भाई थे। उन पर गांधीवादी का विशेष प्रभाव रहा, इसलिए उनकी रचनाओं में करुणा, सत्य, अहिंसा और मर्मिक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। हिंदी साहित्य में उन्होंने एक कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई, लेकिन एक कहानीकार के रूप में भी उन्होंने कथा साहित्य में एक अपना अलग स्थान बनाया था। बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार सियाराम शरण गुप्ता, जन्म इनका भाद्रपद पूर्णिमा संवत 1952 में विक्रम तादानुसार 4 सितंबर यानी आज ही के दिन 1895 को सेठ रामचरण कनकाने के परिवार में मैथिली शरण गुप्ता के अनुज रूप में चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ। प्राइमरी शिक्षा दीक्षा तो घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी व उर्दू भाषा सीखी और 1929 में महात्मा गांधी और कस्तूरबा के संपर्क में आए। कुछ समय वर्धा आश्रम में भी रहे और 1940 में चिरगांव में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत हुआ, स्वागत भी किया इन्होंने, और वे संत विनोबा भावे के संपर्क में भी आए। उनकी पत्नी तथा पुत्रों का निधन असमय हो गया। बोलता आप दुख, वेदना और करुणा के कवि बन गए। साहित्य में आप अपना मौन साधक बने रहे और मौर्य विजय प्रथम रचना आपने 1914 में लिखी। आपकी समस्त रचनाएं 5 खंडों में प्रकाशित हो गई, अद्रा, दुर्वरदल, विषाद, बापू तथा गोपिका इनके मुख्य काव्य कृति है। कि इनके अतिरिक्त इन्होंने गोद, नारी, अंतिम, आकांक्षा, मनुष्य, नाटक, निबंध आदि लगभग 50 ग्रंथ रचे। सहज आकर्षक शैली तय भाव और भाषा की सरलता इनकी विशेषता रही, और इस तरह से अलग अलग खंडों में इन्होंने भाषा शैली को जो है अलग अलग रचनाओं के साथ बांधा। सियाराम शरण गुप्ता की भाषा शैली पर घर

ये वैष्णव संस्कारों और गांधीवादी का बिल्कुल स्पष्ट नज़र दिखाई देता था। और मैथिली शरण गुप्ता जी स्वयं शिक्षित कवि थे। मैथिली शरण गुप्ता की काव्यात्मक और अनोख और उनका युगबोध सियाराम शरण की यथावाद अपनाया था। उनके सभी काव्य द्विवेदी युगीन अभिदावादी कला रूप पर आधारित रहते थे। और दोनों गुप्त बंधुओं ने दिन हिंदी के नवीन आंदोलन छायावाद में प्रभावित होकर भी अपना काव्य रूप सुरक्षित रखा। विचार की दृष्टि से सियाराम शरण गुप्ता बंधु के सदृश गांधीवादी की विशेष राष्ट्रप्रेम, विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा का जीवन जो है उसमें दिखाई देता था। दीर्घकालीन हिंदी सेवाओं के लिए 1962 में सरस्वती हीरक जयंती में सम्मानित किए गए इन्हें और 1941 में सुधाकर पदक नामक नगरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा इनको मिला। तो सियाराम शरण गुप्ता अपनी विशेष साहित्य सेवा करते करते आज समय ही 29 मार्च 1963 को लंबी बीमारी से उनका निधन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें सियाराम शरण गुप्ता के बारे में। आप सुन रहे हैं पटेल ने रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए अगला गीत आपके नाम सुनते रहो। मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, जहां पर हमने दादाबाई नौरोजी नंद दुलारे वाजपेयी, सियाराम शरण गुप्ता, ब्रज कुमार नेहरू और ऋषि कपूर की कहानी से आपको जोड़ा। आज आशा करूंगा दादाबाई नौरोजी जी की कहानी मुझे बड़ा अच्छा लगा और सुनकर, आज कई बार उन्हें सुनने का मौका मिला, यानी कोई ना कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें पढ़ते थे, लेकिन जो आज कहानी।
3: अभी बजे हैं शाम के 5।

रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आप सुनने जा रहे हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूम घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल न पहचाना तो ले

0: चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
1: आप सुन रहे थे श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कृष्ण की चेतावनी। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

आज श्री कृष्ण जयंती की, जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, बधाइयां, मुबारक हो, मुबारक हो। श्री कृष्ण की जन्म जयंती आते ही सारे भारत भर में एक ऐसा हर्षोल्लास छा जाता है, उमंग उत्साह और खुशी हरेक के जीवन में भर जाती है। जो चारों ओर देखो तो हर कोई विभिन्न तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं। कई जगह देखो तो बहने माताएं लड्डू गोपाल के रूप में उसको झूला झूलाते हैं, कहीं देखो तो कुमार या भाई लोग मिलकर के संगठित होकर के बहुत ऊंची मटकी बांधते हैं और उस मटकी को फोड़ते हैं, तो कहीं देखो तो श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों की झांकियां सज रही है और हर कोई उन झांकियों को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। श्री कृष्ण की जयंती में ऐसी क्या खास बात है जो इतना हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और किसी देवी देवताओं की जयंती नहीं मनाए? वहां तक कि श्री कृष्ण के साथ श्री राधे भी है, लेकिन श्री राधे की जन्म जयंती इतने धूमधाम से नहीं मनाते हैं जितने श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वहां तक कि हर कोई माताएं बहने ये चाहना रखती है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा प्राप्त हो, कई बहने सोचती है श्री कृष्ण जैसा भाई मिले, तो कई गोप सोचते हैं कि हमें श्री कृष्ण जैसा सखा मिले। हर कोई की इच्छा श्री कृष्ण को पाने की या श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने की रहती है, और यही सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण साक्षात में इस भारत भूमि पर थे उस समय का नजारा कैसा होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा, काश हम भी उस समय में होते थे। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहेंगे कि कंस के कारावास में हुआ, घोर अंधेरी रात्रि थी, खूब तूफानी रात थी और ऐसे समय में उसका जन्म होता है, और दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि चारों ओर पानी ही पानी था और एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आया। अब दोनों बात अगर देखा जाए एक तो नहीं है, अब दोनों में से सत्य क्या है? यह सचमुच श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, जिस श्री कृष्ण की दुनिया के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब इस संसार में थे तो उसकी महिमा में गाते हैं वो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न अवस्था में थे। उस समय का समाज कैसा था? तो नेचुरल है, जहां इतनी पावन आत्मा जन्म लेती हो वो समाज कितना श्रेष्ठ होगा। तो उस श्रेष्ठ समाज में सबसे पहली बात क्या कारावास होता है, जेल होती है? नहीं, ये भी किसी बात का प्रतीक है या किसी बात की ओर संकेत कर रही है, और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जरूर मनाएं, लेकिन समझ के साथ मनाएं। कहने का भावार्थ यही है कि कारावास यानी बंधन कलयुग के अंदर आज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कितने बंधन हैं, और उस बंधन वाली बेड़ियों में बंधे हुए हैं।
कारावास यानी अज्ञानता की अंधकार रात्रि, जहां विकारों का तूफान चरम सीमा पर था। आज चारों ओर दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात है, जहां विकार चरम सीमा पर है, अनेक और बुराइयां छाई हुई है। हर एक मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की बंधनों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो नेचुरल है, श्री कृष्ण को कहते ही है कि जब वो हर आत्मा को मुक्त करने आते हैं, अर्थात कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, तब ऐसी स्थिति होती है, और तब उन आत्माओं को उन बंधनों से मुक्त कर अनेक प्रकार के दुख दर्द परेशानियों के बंधनों से मुक्त कर श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाते हैं। और इसीलिए वो श्री कृष्ण की दुनिया, जहां इस कलयुग के बाद आने वाली सत्युगी श्रेष्ठ दुनिया, जहां श्री कृष्ण जैसे पावन आत्मा का जन्म होता है। इसीलिए दूसरी ओर जो दिखाया कि चारों ओर पानी ही पानी, और ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आता है, अर्थात ये कलयुगी अज्ञानता की दुनिया जब समाप्त होती है और पावन सत्यों की दुनिया जब इस संसार में आती है, तो उस समय भारत ही होता है, बाकी चारों ओर दुनिया जलमय हो जाती है, लेकिन भारत खंड अविनाशी माना जाता है। और अनेक आसपास के देश जो है भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए भारत को भारत नहीं महाभारत कहा जाता है। और वो महाभारत की आकृति उस समय एक पीपल के पत्ते की तरह, चारों ओर पानी ही पानी, और उस पानी में भारत भूमि पीपल के पत्ते की तरह, जहां से कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन उस भारत जो पीपल के पत्ते की तरह था, वहां पर अंगूठा चूसता हुआ आता है। और जो कहा देवकी और वासुदेव का पुत्र था, भावार्थ यही, जो देव कुल की आत्माएं थी, उन सब देव कुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त कर ऐसे सत्युगी पावन सृष्टि में ले जाते हैं, जो पीपल के आकार की भारत भूमि थी। आज भी थोड़ा सा हिस्से नीचे का तो पीपल के पत्ते जैसा ही आता है, लेकिन उस समय भारत खंड एक पीपल के पत्ते की तरह होता है, और ऐसे पीपल के पत्ते पर अकेला से कृष्ण नहीं होगा, उसके साथी भी होंगे। ऐसी पावन दुनिया जहां पूरी राजधानी बनती है, और जहां वो देव कुल की आत्माएं सब जन्म लेती है, और इस संसार को स्वर्ग कहो, कृति युग कहो, हेवनली किंगडम कहो, बहिस्त कहो, जन्नत कहो, अनेक धर्मों में उसको अनेक नामों से जाना गया है, ऐसी दुनिया में वो जन्म लेगा। और वो सत्ययुग के अंदर उसके कितने जन्म होते हैं, तो श्री कृष्ण के 8 जन्म दिखाए हैं। 8 जन्म होने कारण, और हर जन्म इतने श्रेष्ठ होने कारण, उसकी जन्म अष्टमी मनाई जाती है, अर्थात 8 जन्म की जयंती हर भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि ऐसी पावन आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की जन्म जयंती मनाने में भी हमें इतनी खुशी होती है, या उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने के योग्य बने, हम भी उस दुनिया में जाए जहां सब आत्माएं इतनी पावन, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण हो।
तो वहां जाने की इच्छा लालसा हर आत्मा को होती है कि जहां हम साक्षात श्री कृष्ण के एक जन्म की जयंती नहीं आठों जन्म की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। और इसीलिए जन्माष्टमी के बाद 9वें नंबर पर श्री राम आते हैं, इसीलिए राम नवमी कहा जाता है। आठों जन्म की जयंती फुल हमने मनाई, उसके बाद 9वें नंबर पर श्री राम आए तो राम नवमी कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए ये भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, थोड़ा और बड़ा हुआ रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और फिर जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो उसको नाथ नारायण कहते हैं। तो एक ही जन्म के ये विभिन्न अवस्था है। अगर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग में हो तो उसका बचपन श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? अवश्य सतयुग में ही होना चाहिए। तो श्री कृष्ण द्वापर में नहीं लेकिन सतयुग का पहला राजकुमार, इसीलिए कहा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण इस संसार में आता है जब चारों ओर दुनिया जलमय हो गई है। ऐसे समय पर नए भारत की वो पहली संतान है, पहला राजकुमार है और वही नाथ नारायण बनते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य जब था उसको कहते हैं सूर्यवंशी। और जब पूरा सतयुग सूर्यवंश बन जाता है, सूर्य के समान चमकती हुई आभा मंडल में हर कोई आत्मा सोले कला संपूर्ण स्थिति में है। और फिर जैसे सतयुग से दूसरा युग आता है त्रेता युग, तो वहां चंद्रवंश आरंभ होता है। इसीलिए कहा जाता है श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ, इसीलिए श्री राम चंद्र कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग का अर्थात श्री नारायण का ही बचपन का स्वरूप और श्री राम त्रेता युग। तो आइए क्यों न हम पुनः श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर जयंती मनाएं, आठों जन्म की जयंती मनाएं और अपने जीवन में भी ये प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी अब इस कलयुगी दुनिया के बाद जो सतयुग आने वाला है तो उस दुनिया में श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, साथ जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों न हम ऐसे अपने आप को भी योग्य पात्र बनाए। उसकी जो महिमा गाई है वही योग्यता हमें अपने जीवन में भी धारण करनी है। उन्हीं शुभ वचनों के साथ सबको पुनः बहुत बहुत जन्माष्टमी की मुबारक हो। ओम।

रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की ओर से इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ सुरेश पाटकर। आज कृष्णाष्टमी के दिवस के ऊपर मैं बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण सबको सुख में आनंद में रखे, क्योंकि संगीत के साथ बहुत ही गहरा कृष्ण जी का संबंध रहा है। बांसुरी बजाते थे और सारे विश्व को आनंद देते थे। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूँगा कि सबका जीवन अच्छा और सुखमय जाए। धन्यवाद।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक सुनहरे भविष्य का आह्वान करें। वर्तमान परिदृश्य में मानवता अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है और प्रकृति व्यथित होकर महापरिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे समय में सभी हर तरफ से निराश होकर एक परमात्मा से ही चमत्कार की आस लगाए बैठे हैं और एक बेहतर समय की मंगल कामना कर रहे हैं। ये समय है बड़े परिवर्तन का, ये समय है युग परिवर्तन का, नए विश्व के नव निर्माण का और नई दुनिया के आह्वान का भी। एक ऐसा संसार जहां न कोई दुख होगा और न कोई रोग, न कोई चिंता होगी और न कोई भय, जहां सभी में सद्भावना होगी, परस्पर प्रेम होगा, सभी जीव जंतु प्राणी यों प्रकृति में भी समरसता होगी, जहां हर मनुष्य आत्मा आदि देव श्री कृष्ण के समान ही अपने संपूर्ण रूप में संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसक होगी।

0: जिसका उल्लेख प्राय सभी धर्म ग्रंथों में सतयुग, बैकुंठ, जन्नत, बलिस, पैराडाइज आदि नामों से किया गया है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग, जिसे सभी स्वर्णिम दुनिया कहते हैं, इसे ही कृष्णपुरी भी कहा जाता है। इसका ही गायन अब तक सभी सोने की चिड़िया कहकर किया करते हैं। ये संपूर्ण सतोप्रधान दुनिया है। यहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप में है। चारों ओर सर्वत्र सुख, शांति, पवित्रता का अनुभव होता है। नदियां, पेड़, पौधे, पशु पंछी सभी अपने में संपूर्ण सौंदर्यवान दृष्टिगत होते हैं। सदाबहारी मौसम और ऋतुएं बड़ी ही सुखदायी होती हैं। धरती और आकाश में सुख शांति का प्रकाश बिखरा होता है। ऐसे स्वर्णिम भारत में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, धार्मिक व राजनीतिक सत्ता एक के हाथ में होती है।
1: नदियों में बहता है कल कल पानी, झर झर झरनों की सरगम सुहानी, सपनों से सुंदर वो दुनिया आई, कृष्ण राधा वाली दुनिया आई।
0: संबंधों में मधुरता यूं समरसता रहती है। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा से हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। जहां संपूर्ण विश्व एक परिवार होगा, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा परिलक्षित होगी। नभ, जल, थल सभी अपने होंगे। जी हां, ये सब कल्पना या स्वप्न नहीं, बल्कि इसे हमें ही साकार करना होगा। और इसके लिए धरती पर स्वर्ग आए इसके पहले अपने मन, विचार एवं व्यवहार में दिव्यता लानी होगी। तो आइए इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की आराधना के साथ साथ उनके जैसा गुणवान बनने का भी शुभ संकल्प करें। इसके लिए मन को शक्तिशाली, वाणी को मधुर और कर्मों को श्रेष्ठ व सुखदायी बनाना होगा। और ये तभी संभव होगा जब हम शुभ चिंतन के साथ ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का नित्य प्रति अभ्यास करते रहें और अपने खान पान, आहार व्यवहार को भी शुद्ध एवं सात्विक बनाते चलें।

मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग सर्वोत्तम बनने का युग है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मानेकम याद करो, मानेकम याद करो। श्री कृष्ण वाली सतयुगी दुनिया का स्वराज्य आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अतः योगी बनो, पवित्र बनो, किंतु ध्यान रहे अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: गुड इवनिंग नमस्ते रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप सभी का स्वागत है
1: उड़ान कार्यक्रम में
0: और जन्माष्टमी के इस खास महापर्व में। तो चलिए दोस्तों, आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं कुछ कहानियां। आज पूछने चाहते हैं आप दोस्तों से पहेली। जी हाँ, आज से हम शुरू करना चाहते हैं पहेलियाँ भी। सवाल के साथ साथ कभी कभार आपके बीच हम पहेलियाँ भी लाएंगे। इन पहेलियों का जवाब आप देंगे
1: 9414151515 पर
0: और कहानी भी लेकर आएंगे, कविताएं भी लेकर आएंगे, पूछेंगे आपसे सवाल और अमेजिंग जानकारी भी। तो चलिए इस जन्माष्टमी के पर्व को भी उमंग उत्साह से मनाते हैं और आपके बीच थोड़ी देर बाद लौट कर आते हैं। आप सुन रहे हैं खूबसूरत सा ये गीत जन्माष्टमी।

0: 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य बधाई।
1: बिल्कुल दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी के इस शांतिवन प्रांगण में ही जन्माष्टमी का कार्यक्रम होने वाला है। इस झांकी को देखने के लिए दूर दराज जाने की जरूरत नहीं, बल्कि ब्रह्मा कुमारी के ही प्रांगण में गेट नंबर 1 में ही आप पहुंच सकते हैं। सारी सुविधाएं वहां पर, पार्किंग की व्यवस्थाएं सब कुछ है, और अंदर आकर पूरी इस झांकी का अवलोकन कर सकते हैं। और इस झांकी में अलग अलग चीजें बनी हुई हैं, जहां पर आपको श्री कृष्ण का जन्म भी दिखाया जाएगा, तो वहीं पर आपको रासलीला का भी आयोजन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी श्री नारायण के भी जो है स्वर्ग का सीन भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आइएगा, लाइव होने वाला है, और जैसे बताया गया है कि शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक, ये क्योंकि आज जन्माष्टमी में रात के 12 बजे तक लोग जगते ही हैं, तो इसीलिए ये कार्यक्रम उतनी देर तक रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज की अमेजिंग जानकारी के साथ आज की ये पूरी चीजें नहीं शुरू करते हैं, पर उससे पहले क्यों नहीं एक पहेली आपके बीच रखते हैं।
2: वह पाले ना भैंस या गाय, फिर भी दूध मलाई खाए, घर बैठे ही करे शिकार, गया शेर भी उससे हार।
1: जी हाँ दोस्तों, वो भैंस भी नहीं पालता है और ना गाय पालता है, फिर भी दूध मलाई खा जाता है। ये हमारी रूहानी की तरह, रूहानी तुमको दूध मलाई पसंद है? मुझे भी पसंद है। घर बैठे शिकार कर लेता है और शेर भी उसके आगे चमकता है। तो चलिए दोस्तों, इस पहेली का जवाब जरूर दीजिएगा। थोड़ी देर में अमेजिंग जानकारी लेकर आ रही हूँ, साथ साथ एक और गीत सुनाती हूँ आपको, ओ पालनहारे।

0: कौनों नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं आज की अमेजिंग जानकारी आप तक पहुंचाते हैं।
1: एक इंसान के शरीर में इतना ज्यादा डीएनए होता है कि सूरज से लेकर प्लूटो तक 17 बार चक्कर लगाए जा सकते हैं।
0: वेल, डीएनए जो है एक महत्वपूर्ण अनुवांशिक अणु है जो सभी जीवित जीवों के विकास, कार्य प्रणाली और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देश वहन करता है। डीएनए का पूरा

नाम है डी ऑक्सी ऑक्सी राइबो यूनिक्लाइड एसिड, डी ऑक्सी राइबलो यूनिक्लाइड एसिड। और डीएनए की संरचना एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसे ही दिखाई देती है। ये चार नाइट्रोजन जो होते हैं एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से मिलकर बनता है। और वहीं पर सभी इंसानों के डीएनए में 99.9% तक एक समानता होती है, बाकी 1% हिस्सा हर व्यक्ति को दूसरे से सिर्फ अलग बनाता है, 0.1% ही किसी और से अलग बनाता है। यदि आपके शरीर में सभी कोशिकाओं के डीएनए को खोल दिया जाए तो यही बात रखी गई कि ये सूरज से प्लूटो तक आप पहुंचने में या उसकी दूरी तय कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। डीएनए की खोज सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। चलिए कुछ बातें आप तक खास पहुंचाई और गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे, ओ पालनहारे।

0: ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे।
1: वो पाले ना भैंस या गाय, फिर भी दूध मलाई खाए, घर बैठे ही करे शिकार, गया शेर भी उससे हार।
0: जी, झटपट जवाब दीजिए भाई पहेली का। 9414151415 मिट्टी की हांडी और माखन का प्यार, आ गया नंदलाला का प्यारा त्योहार, गोपियों के आंगन में मच गया शोर, आए हैं आज फिर हमारे माखन चोर।
1: ऊंची गगरी बंधी है रस्से वाली, घेरे खड़े हैं सब ग्वालियों की टोली, एक दूजे के कंधे पर रखते हैं पांव, मानव पिरामिड से सजाता है पूरा गांव।
0: हौसलों की उड़ान और एकता का जोश है, गोविंद की टोलियों में ना कोई बेहोश है, शोर गूंजे चहु ओर, गोविंद आला रे, खुशियों से झूम उठे सारे हवाले रे।
1: फूट गई मटकी और बरसा माखन प्यार, मुस्कान बिखेर गया कन्हैया का संसार।
0: तो चलिए दोस्तों, लेकर आते हैं अगला गीत हम आपके लिए खास, माखन वाले पेड़े। ये गीत पंजाबी में है, कुछ थोड़ा सा तड़का अलग सा हो जाए। रेडियो मधुबन की उड़ान में सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।

0: चलिए दोस्तों पुनः आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आते एक छोटी सी कहानी। मैं और रूहानी लेकर आ रहे हैं, सुन लेते हैं ये कहानी खास। सबसे आलसी आदमी कौन है? एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अजीब सी चर्चा छिड़ गई। राजा ने पूछा, बताइए इस दुनिया में सबसे ज्यादा आलसी किसे कहेंगे?
1: एक मंत्री ने बोला, महाराज जो सुबह देर तक सोता है।
0: चलिए दोस्तों इसके साथ साथ हमने कहानी शुरू की, वहीं पर एक कॉलर भी आ गए, हम बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार,
2: ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी और हमारी बाल कलाकार रोहिणी दीदी। कल भी आप आए थे पर बाद में समझा हमको
0: जी,
2: तो आपका भी स्वागत है और सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभ शुभ बहुत शुभ भावना।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: थैंक यू, शुक्रिया दीदी। और आपने अभी पहली शुरू की है जो सभी जानकारी के साथ, तो पहलियों का भी उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मजा आएगी तो मेरी मजा आएगी अभी प्रोग्राम में। और सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टाइम निकाल के प्लीज जुड़ो, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बच्चों से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
0: ज्ञान
2: मिलता है
0: जी,
2: और उनको भी प्रोत्साहन मिलता है
0: जी,
2: तो प्लीज जुड़े जाओ। और दीदी पहली का जवाब शायद दिल्ली हो सकती है।
0: चलिए ठीक है, लॉक करते हैं आपके जवाब को और शुक्रिया अदा करते हैं आपको। हैप्पी जन्माष्टमी।
2: थैंक यू, शुक्रिया।
0: चलिए हम तो थे सबसे बड़े आलसी को ढूंढने के लिए, तो इतने में एक और ने कहा, नहीं महाराज, जो आप अपना काम दूसरों से करवाता है वही सबसे बड़ा आलसी होता है। एक और ने क्या कहा,
1: मेरे हिसाब से तो जो खाना भी किसी से मुंह में डलवाए वही सबसे बड़ा आलसी होगा।
0: सभासद एक साथ गूंज उठे, क्यों न सबसे आलसी आदमी को खोजा जाए और उसे पुरस्कार दिया जाए।
1: राजा ने सैनिकों को राज्य में सबसे आलसी व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया।
0: सैनिकों जाओ और सबसे आलसी आदमी को दरबार में पेश करो।
1: राजा ने पूछा,
0: कुछ दिनों बाद सैनिक एक आदमी को लेकर आए और वो इतना आलसी था कि दरबार में भी आंखें आधी बंद करके खड़ा था।
1: राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है?
0: महाराज, रामू।
1: रामू ने जमाई लेते हुए जवाब दिया।
0: तुम्हारा क्या काम है?
1: कुछ नहीं।
0: फिर राजा ने फिर पूछा, कुछ नहीं तो क्या दिन भर करते क्या हो तुम?
1: कुछ भी नहीं।
0: अच्छा, अगर तुम इतने आलसी हो तो ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए, पैदल चलकर?
1: नहीं महाराज, सैनिक मुझे उठा कर लाए।
0: ओफो, उसके बाद और घर पर खाना कौन दिलाता है?
1: माँ।
0: कपड़े कौन पहनाता है?
1: कभी माँ कभी पत्नी।
0: वाह, तो तुम तो सचमुच बहुत आलसी लगते हो, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। तभी तेनालीराम ने महाराज से पूछा,
1: महाराज एक छोटी सी परीक्षा और हो जाए।
0: राजा ने अनुमति देते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर हो जाए।
1: अगर तुम्हारे सामने गरम गरम पकोड़े रख दिए जाएं, तो क्या तुम उठकर खाओगे?
0: नहीं, कोई मुझे खिलाएगा तो मैं जरूर खा लूंगा।
1: महाराज ने बोला, और अगर पकोड़े तुम्हारे मुंह के सामने रख दिए जाए तो?
0: तो भी मैं मुंह नहीं खोल सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
1: अच्छा, अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो?
0: तो जले, अब दूर जाकर पानी कौन लाएगा?
1: महाराज, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह व्यक्ति सचमुच बहुत आलसी है।
0: तुम कैसे कह सकते हो? तेनालीरामा से महाराज ने पूछा।
1: तेनालीराम ने कहा, महाराज, घर में आग लगने पर भी जो पानी लाने की मेहनत न करे, उससे बड़ा आलसी वाला कौन होगा?
0: महाराज ने रामू को इनाम तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी। अगर आज से रोज थोड़ा थोड़ा काम करोगे, तो ये इनाम तुम जरूर लेकर जाओ।
1: यह सुन रामू घबराते हुए बोला, महाराज, इनाम वापस ले लीजिए, लेकिन मुझे कोई काम मत दीजिए।
0: ये सुनते ही पूरे दरबारी हंस पड़े, और उन्हें समझ में आ गया।
1: आराम अच्छी बात है, लेकिन हर समय आलस करना हमें अपने काम और जिम्मेदारियों से दूर कर देता है। याद रहे, मेहनत और सक्रियता से ही जीवन आगे बढ़ता है।
0: तो तभी एक और गीत आप तक लेकर आते हैं, मेरे लड्डू गोपाल।

0: बेल दोस्तों पुनः एक बार और आपके लिए पहेली आज की दोहरा देते हैं।
1: ना पाले भैंस और ना ही गाय, फिर भी खाए दूध मलाई, घर बैठे ही करे शिकार, गया शेर भी उससे हार।
0: जी हाँ दोस्तों, आगे लेकर चलते हैं आज की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। झटपट इस पहेली का जवाब दीजिए 9414151415 पर दीजिए। और आप सभी से यही आग्रह करते हैं कि आज की इस खूबसूरत जन्माष्टमी के महापर्व में आप सभी ब्रह्मा कुमारीज के प्रांगण में आएंगे। ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन प्रांगण में ही गेट नंबर 1 के समक्ष उसके सामने ही खास झांकी का आयोजन, जन्माष्टमी की झांकी का आयोजन किया गया है। वहां पर अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखने, अवलोकन करने का आपको मौका मिलेगा शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। तो ज़रूर आइए। ये दिनांक आज 4 तारीख और 5 तारीख, ये 2 दिन विशेष ये झांकी आप सभी के लिए खुली रहेगी। रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे उड़ान, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: साल पहले पहाड़ से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंपाई। चंपाई के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना। पहाड़ के नीचे जो जमीन रहती थी वहाँ पे वो लोग खेतीबाड़ी करते थे। ऐसे ही सुख शांति से दिन बीत रहे थे। अचानक पहाड़ से बहुत सारे पत्थर उनकी जमीन पे गिरने लगे। गाँव वाले बहुत ही चिंतित होने लगे।
3: ऐसा कितना दिन चलेगा भाई, रोज रोज पत्थर गिर के खेतीबाड़ी की जमीन खराब होती जा रही है।
4: अरे ये बोल रहे रघु भैया, अरे खेती करना तो दूर, अगर ऐसे ही जमीन में पत्थर गिरने लगे कुछ दिन बाद भेड़ बकरी के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा।
3: एकदम सही कहा, पहले कितनी ज्यादा फसल होती थी इस गांव में, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, और अब हमें खाने पीने के लिए सोचना पड़ता है, और आज देखो।
4: अरे पूरा जमीन पत्थर से भर गया है, क्या होगा इसके बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
3: नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा, हम इस तरह से ऐसे बैठे नहीं रह सकते। ऐसा ही चलता रहा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा।
4: अरे अरे अरे, बचिए बचिए।
3: अरे हट जाओ, देखा देखा तुमने, पत्थर के गिरने की वजह से और थोड़ी सी जमीन खिसक गई।
4: नहीं अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चलिए हम लोग बूढ़े बाबा के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं।
5: तुम लोग हड़बड़ा क्यों रहे हो, एक एक करके बताओ क्या हुआ है।
4: करने के लिए बात सिर्फ एक ही है बाबा, अरे इस गांव में खाना पीना रहना दुर्लभ हो गया है। पहाड़ टूटकर, पत्थर गिरकर पूरा जमीन पत्थर पत्थर हो गया है, खेती करने के लिए भी जमीन नहीं बची है।
6: अब हम कैसे जिएंगे बताइए जरा, हम खाएंगे क्या बताइए हमें, और परिवार को भी क्या खिलाएंगे।
3: अभी हमें यहाँ से अभी जाना पड़ेगा,
7: हम यहाँ और नहीं रह सकते।
6: ताऊ कहाँ जाओगे?
3: क्यों, शहर में जाएंगे? मुझे लगता है शहर में जाना अच्छी बात है, मुझे लगता है शहर में रहना ही अच्छी बात है, नहीं तो हमें।
6: हाँ, तुम हमारे नेता हो, कुछ करो हमारे लिए, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा तुम्हें, कुछ तो समाधान करना ही होगा तुम्हें।
5: सुनो, इस गांव में ये समस्या पिछले 5 वर्षों से चली आ रही है, युगो युगो से हमारे पूर्वज इस गांव की मिट्टी में दबे हुए हैं। अगर ये जगह हमने छोड़ दी तो उसके साथ हमारा रहना, हमारा रोजगार, हमारा हर चीज बदल जाएगा।
3: हमारा प्यारा गांव अब बस एक पत्थर का खंडहर बन चुका है, हमें यहाँ रह के क्या मिलेगा।
4: हमें तो पहले खा पी कर जिंदा रहने के बारे में सोचना होगा, और इसके लिए अगर खेती छोड़कर शहर में जाकर दूसरा रोजगार हम कर लेंगे।
5: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप लोग गलत सोच रहे हैं, ये गांव हमारा अपना है, इसको बचा के रखने की जिम्मेदारी भी हमारी खुद की है, इसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं कल उत्तर दिशा की तरफ जाऊंगा, मैं खुद जाकर देखूंगा।
3: वो देखो बाबा, वो देखो, खेती बाड़ी की जमीन पर पत्थर पड़े हुए हैं, और इस जमीन के साथ साथ हमारा नसीब भी इन पत्थर के नीचे दबा हुआ है। अब आप ही बताओ हम कैसे जिए। क्या करें बताइए।
5: वो तो मैं देख रहा हूँ।
4: अब आप ही बताइए बाबा, यहाँ जमीन कहाँ बची है जिसमें हम खेती कर सके?
3: खेती बाड़ी नहीं कर पाए तो खाएंगे क्या और परिवार को कैसे खिलाएंगे?
5: रुको रुको, मैं जरा सोचता हूँ कुछ कर सकते हैं या नहीं।
4: ठीक है, आप जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे बाबा।
5: ठीक है, मेरे पास एक उपाय है, तुम लोग सब मिलकर मेरे साथ आओ, देखते हैं। अब तुम लोग एक काम करो बच्चे लोग, सब मिलकर हाथ लगाकर इस बड़े पत्थर को उठाकर किनारे कर दो। अब इसके बाद ही इस पत्थर को उठाओ। क्या खेती करने के लिए जमीन मिल गई?
4: हाँ बाबा, हमें तो बहुत सारी जमीन खेती करने के लिए मिल गई।
5: देखा, अगर अपने भाग्य में पत्थर दबा हो तो उस पत्थर को निकालने की जिम्मेदारी भी तो हमारी खुद की है।
3: आपने सही कहा, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। पत्थर एक बार हटा देंगे तो हम फिर से खेती बाड़ी कर पाएंगे।
4: दिन बाद अब हम निश्चिंत हो गए हैं, खेती भी कर सकते हैं, भेड़ बकरी के लिए घास भी हो गई है। सच में बूढ़े बाबा बहुत तेज दिमाग के हैं।
8: हाँ तुमने सही कहा, मगर मेरा चिंता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ, एक बात तो मैं किसी भी हालत में भूल ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ?
4: अरे बाप रे, तुम्हारे पास भी दिमाग है क्या?
5: तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं भी तो सुनूं।
8: तुम लोग तो उत्तर से पत्थर लेके पश्चिम में लाके रख दिया और खेती बाड़ी भी आप लोगों ने चालू कर दिए, मगर चंपाई में तो पूर्व और पश्चिम की तरफ बहुत सारी जमीन है, वहाँ पे भी खेती बाड़ी का जमीन खत्म होते जा रहा है। कुछ दिनों के बाद तो वहाँ के आदमी को भी दाल चावल का कमी दिखाई देगा, तब क्या होगा?
5: अरे हम बच जाएंगे तब हमारे पिताजी का नाम होगा। कुछ भी बोलते रहती है, अभी सो जाओ।
4: अरे क्या हुआ श्याम, सुबह सुबह काम काज छोड़कर हम लोगों से बात करने आए हो?
9: काम रहेगा तो छोड़ कर आऊंगा ना, तुम्हारी वजह से हम लोग बेकार हो गए, समझे?
3: क्या हो गया भाई हरिया, हमें क्यों बदनाम करते हो, हमने क्या किया है?
10: ओए बेवकूफ मत बनो, तुमने सारे पत्थर हमारी जमीन पर फेंक के हमारी जमीन को खराब कर दिया है। खुद की जमीन साफ रखी और हमारी सारी जमीन खराब कर दी तुम लोगों ने। हाँ, अब हम कहाँ खेती बाड़ी करेंगे बताओ मुझे।
9: छी छी छी छी, कितने खराब हो तुम लोग।
4: हमने बहुत सही किया है, हमने अपनी व्यवस्था कर ली है, अब तुम्हें जो सही लगता है तुम करो।
10: ठीक है चल हरिया, अब हम भी उनकी जमीन पर पत्थर रख देंगे, फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं।

0: आपने तो सब सुन लिया, अब आप ही बताइए बूढ़े बाबा।
1: देखिए, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तुम दोनों ही अगर कुछ जमीन पत्थर रखने के लिए बचा के रख दो तो बाकी बचे जमीन में खेती करके खा पी सकते हो।
2: मगर उत्तर की सारी जमीन तो ब्राह्मणों की है और आपको तो पता ही है पश्चिम की सारी जमीन शूद्रों की है। अब आप बताइए, उनका छुआ हुआ पत्थर हम अपनी जमीन पे रखेंगे तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे?
1: अरे कितने बददिमाग है ये लोग, पत्थर में भी जात का नाम लिख दिए हैं।
3: सुनो दादाजी, हम उनके जमीन का एक भी धान छूना भी नहीं चाहते। आप उन्हें साफ साफ बता दीजिए, अगर हमारी जमीन पे वो एक पत्थर तक भी नहीं फेंक सकता है, अगर हम भूखे भी मर जाए तो भी हमें चलेगा।
1: हे ऊपर वाले, अपने ही पैर में पैर देकर इंसान कितना छटपटा रहा है। ठीक है, तो सभी पत्थरों को उठा के पहाड़ के किनारे जमा कर दो, इससे तुम दोनों दिशाओं की जमीन में खेती कर सकोगे।
4: ना रे ना, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। अरे इतनी मेहनत कौन करेगा?
1: समझ गया, तुम लोग मेहनत करना नहीं चाहते हो और न छोड़ना चाहते हो। सब कुछ आसानी से मिल जाए, बस यही तुम चाहते हो। अब बस मेरे पास एक ही उपाय है, हम अपने कुल देवता के सामने प्रार्थना करेंगे, वो जो रास्ता दिखाएंगे हम उसी रास्ते पर चलेंगे।
0: ठीक है यही सही रहेगा।

0: नमस्कार दादाजी, ऊपर वाले ने आपको कोई रास्ता दिखाया? बताइए मुझे।
1: हाँ, मेरी प्रार्थना सुन के कल रात वो मेरे सपने में आए थे। उन्होंने जो बताया वही तुम्हें बताऊंगा करके तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ।
2: बोलो बोलो बोलो बाबा बोलो, उन्होंने क्या आदेश किया है? हम सब उनका आदेश मानेंगे, हम सब उनके आदेश का पालन करेंगे।
1: उन्होंने मुझे सपने में बताया कि पहाड़ के नीचे एक पत्थर का मंदिर तैयार करना होगा, जहाँ पूजा करने से हमारे कुल देवता वास करेंगे।
0: और कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि हमारी मुसीबत ही खत्म हो जाए?
1: नहीं, मंदिर बनाने के लिए हमारे घरों को भी उस मंदिर के आसपास ही बनाना होगा, फिर जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे।
0: ठीक है, तो अब ऐसा ही होगा।
3: जो भी आदेश उन्होंने दिया है हम सब उनका पालन करेंगे, क्या बोलते हो भाई साहब?
0: हाँ हाँ, हम कल से काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, कल से।

0: देखे मेरी बुद्धि का कमाल, जो पत्थरों को किनारे करने के लिए राजी नहीं थे उन लोगों को ऊपर वाले का नाम लेकर उनसे ये काम करवा लिया। बूढ़े बाबा बहुत आनंद आ रहा है, अब हमारे खाने पीने रहने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है।
1: हम हमारा गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, हमारी मातृभूमि है, हम यहीं रहेंगे। तुमने हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है।
0: हे ऊपर वाले, मुझे कोई दोष मत दीजिएगा ऊपर वाले। इन इंसानों को उनकी पहचान कराने के लिए मुझे आपका सहारा लेना पड़ा। जय जय हो कुल देवता की, जय जय गण देवता की, जय सब इंसानों की जय।
2: चलिए दोस्तों, इस मस्त भरे कहानी के बाद मैं मोना वापस आ गई और आज के सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। इस आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सबका होना आवश्यक है, तभी जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए जा रही हूँ जल्द ही। और आज के सवाल का, आज की पहेली का जवाब, वो पाले न भैंस या गाय फिर भी दूध मलाई खाए, घर बैठे ही करे शिकार, गया शेर भी उससे हार। हमारे एक श्रोतागण ने कॉल किया था, हम आग्रह करेंगे कि यदि वो हो सके तो कॉल अवश्य करें, हम उनसे बात करना चाहते हैं और पहेली का झटपट जवाब दे सकते हैं 9414151415 पर। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: वेल दोस्तों, आज के पहेली का जवाब, वो पाले ना भैंस या गाय, फिर भी दूध मलाई खाए, घर बैठे ही करे शिकार, गया शेर भी उससे हार। ये सही जवाब बिल्ली। जी हाँ, बिल्ली मौसी की बात कर रहे हैं। शेर भी उससे हार जाता है और घर बैठे ही शिकार कर लेता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को मिलने का वादा है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। खूब एंजॉय कीजिए, अच्छे से इस पर्व को मनाइए और सभी मुस्कुराते जरूर रहिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे टिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा तो फिर
0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर? मैम,
4: मैं बिहारी साजिया खुरम खान खसा से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी, कैसी हैं आप खुरम खान? बहुत अच्छी हो।
4: बहुत अच्छी।
0: हाँ जी, चलो आप कुछ पेश करना चाहती है तो झटपट कर दीजिए।
4: जन्माष्टमी का एक गीत बोलना चाहती
0: हूँ। जरूर जरूर।
4: हाँ हाँ,

0: ये तंबाकू क्या होता है?
1: अरे देखो नहीं पता क्या इसमें पता है? लोग धुए में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती।

0: जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं, और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: ओम शांति।
1: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
2: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
3: आज श्री कृष्ण जयंती की, जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, बधाइयां, मुबारक हो, मुबारक हो। श्री कृष्ण की जन्म जयंती आते ही सारे भारत भर में एक ऐसा हर्षोल्लास छा जाता है, उमंग उत्साह और खुशी हर एक के जीवन में भर जाती है। जो चारों ओर देखो तो हर कोई विभिन्न तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं। कई जगह देखो तो बहनें माताएं लड्डू गोपाल के रूप में उसको झूला झूलाते हैं, कहीं देखो तो कुमार या भाई लोग मिलकर के संगठित होकर के बहुत ऊंची मटकी बांधते हैं और उस मटकी को फोड़ते हैं, तो कहीं देखो तो श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों की झांकियां सज रही है और हर कोई उन झांकियों को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। श्री कृष्ण की जयंती में ऐसी क्या खास बात है जो इतना हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और किसी देवी देवताओं की जयंती नहीं मनाए? वहां तक किसी कृष्ण के साथ श्री राधे भी है, लेकिन श्री राधे की जन्म जयंती इतने धूमधाम से नहीं मनाते हैं जितने श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वहां तक कि हर कोई माताएं बहनें ये चाहना रखती है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा प्राप्त हो, कई बहनें सोचती है श्री कृष्ण जैसा भाई मिले, तो कई गोप सोचते हैं कि हमें श्री कृष्ण जैसा सखा मिले। हर कोई की इच्छा श्री कृष्ण को पाने की या श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने की रहती है और यही सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण साक्षात में इस भारत भूमि पर थे उस समय का नजारा कैसा होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा, काश हम भी उस समय में होते थे। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहेंगे ये कंस के कारावास में हुआ, घोर अंधेरी रात्रि थी, खूब तूफानी रात थी और ऐसे समय में उसका जन्म होता है, और दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि चारों ओर

आने ही पाने था और एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आया। अब दोनों बात अगर देखा जाए, एक तो नहीं है, अब दोनों में से सत्य क्या है? यह सचमुच श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, जिस श्री कृष्ण की दुनिया के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब इस संसार में थे तो उसकी महिमा में गाते हैं वो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न अवस्था में थे। उस समय का समाज कैसा था? तो नेचुरल है, जहां इतनी पावन आत्मा जन्म लेती हो वो समाज कितना श्रेष्ठ होगा। तो उस श्रेष्ठ समाज में सबसे पहली बात क्या कारावास होता है, जेल होती है? नहीं, ये भी किसी बात का प्रतीक है या किसी बात की ओर संकेत कर रही है। और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जरूर मनाए, लेकिन समझ के साथ मनाए। कहने का भावार्थ यही है कि कारावास यानी बंधन कलयुग के अंदर आज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कितने बंधन हैं, और उस बंधन वाली बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कारावास यानी अज्ञानता की अंधकार रात्रि, जहां विकारों का तूफान चरम सीमा पर था। आज चारों ओर दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात है, जहां विकार चरम सीमा पर है, अनेक और बुराइयां छाई हुई है। हर एक मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार के बंधनों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो नेचुरल है, श्री कृष्ण को कहते ही है कि जब वो हर आत्मा को मुक्त करने आते हैं, अर्थात कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तब ऐसी स्थिति होती है, और तब उन आत्माओं को उन बंधनों से मुक्त कर अनेक प्रकार के दुख दर्द परेशानियों के बंधनों से मुक्त कर श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाते हैं। और इसीलिए वो श्री कृष्ण की दुनिया, जहां इस कलयुग के बाद आने वाली सत्युगी श्रेष्ठ दुनिया, जहां श्री कृष्ण जैसे पावन आत्मा का जन्म होता है। इसीलिए दूसरी ओर जो दिखाया कि चारों ओर पानी ही पानी, और ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आता है, अर्थात ये कलयुगी अज्ञानता की दुनिया जब समाप्त होती है और पावन सत्यों की दुनिया जब इस संसार में आती है, तो उस समय भारत ही होता है, बाकी चारों ओर दुनिया जलमय हो जाती है, लेकिन भारत खंड अविनाशी माना जाता है। और अनेक आसपास के देश जो है भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए भारत को भारत नहीं महाभारत कहा जाता है। और वो महाभारत की आकृति उस समय एक पीपल के पत्ते की तरह, चारों ओर पानी ही पानी, और उस पानी में भारत भूमि पीपल के पत्ते की तरह, जहां से कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन उस भारत जो पीपल के पत्ते की तरह था, वहां पर अंगूठा चूसता हुआ आता है। और जो कहा देवकी और वासुदेव का पुत्र था, भावार्थ यही, जो देव कुल की आत्माएं थी
उन सब देवकुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त कर ऐसे सतयुगी पावन सृष्टि में ले जाते हैं जो पीपल के आकार की भारत भूमि थी। आज भी थोड़ा सा हिस्से नीचे का तो पीपल के पत्ते जैसा ही आता है, लेकिन उस समय भारत खंड एक पीपल के पत्ते की तरह होता है। और ऐसे पीपल के पत्ते पर अकेला से कृष्ण नहीं होगा, उसके साथी भी होंगे। ऐसी पावन दुनिया जहां पूरी राजधानी बनती है और जहां वो देव कुल की आत्माएं सब जन्म लेती है और इस संसार को स्वर्ग कहो, कृति युग कहो, हेवनली किंगडम कहो, बहिस्त कहो, जन्नत कहो, अनेक धर्मों में उसको अनेक नामों से जाना गया है। ऐसी दुनिया में वो जन्म लेगा और वो सतयुग के अंदर उसके कितने जन्म होते हैं तो श्री कृष्ण के 8 जन्म दिखाए हैं। 8 जन्म होने कारण और हर जन्म इतने श्रेष्ठ होने कारण उसकी जन्म अष्टमी मनाई जाती है, अर्थात 8 जन्म की जयंती हर भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि ऐसी पावन आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की जन्म जयंती मनाने में भी हमें इतनी खुशी होती है या उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने के योग्य बने, हम भी उस दुनिया में जाए जहां सब आत्माएं इतनी पावन, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण हो। तो वहां जाने की इच्छा, लालसा हर आत्मा को होती है कि जहां हम साक्षात श्री कृष्ण के एक जन्म की जयंती नहीं, 8 जन्म की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। और इसीलिए जन्माष्टमी के बाद 9वें नंबर पर श्री राम आते हैं, इसीलिए राम नवमी कहा जाता है। 8 जन्म की जयंती फुल श्री कृष्ण के लिए ये भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, थोड़ा और बड़ा हुआ रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और फिर जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो उसको नाथ नारायण कहते हैं। तो एक ही जन्म के ये विभिन्न अवस्था है। अगर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग में हो तो उसका बचपन श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? अवश्य सतयुग में ही होना चाहिए। तो श्री कृष्ण द्वापर में नहीं, लेकिन सतयुग का पहला राजकुमार, इसीलिए कहा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण इस संसार में आता है। जब चारों ओर दुनिया जलमय हो गई है, ऐसे समय पर नए भारत की वो पहली संतान है, पहला राजकुमार है और वही नाथ नारायण बनते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य जब था उसको कहते हैं सूर्यवंशी। और जब पूरा सतयुग सूर्य वंश बन जाता है, सूर्य के समान चमकती हुई आभा मंडल में हर कोई आत्मा सोले कला संपूर्ण स्थिति में है, और फिर जैसे सतयुग से दूसरा युग आता है त्रेता युग, तो वहां चंद्रवंश आरंभ होता है। इसीलिए कहा जाता है श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ, इसीलिए श्री राम चंद्र कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग का अर्थात श्री नारायण का ही बचपन का स्वरूप और श्री राम त्रेता युग। तो आइए क्यों न हम पुनः श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर जयंती मनाएं, 8 जन्म की जयंती मनाएं और अपने जीवन में भी ये प्रेरणा प्राप्त करें।
कि हमें भी अब इस कलयुगी दुनिया के

जो सतयुग आने वाला है, तो उस दुनिया में श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, साथ जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों न हम ऐसे अपने आप को भी योग्य पात्र बनाए। उसकी जो महिमा गाई है वही योग्यता हमें अपने जीवन में भी धारण करनी है। उन्हें शुभ वचनों के साथ सबको पुनः

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: कुमारीज लेकर आए हैं अपने सभी दर्शकों के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड।
3: ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। श्री कृष्ण एक ऐसा नाम, एक ऐसी छवि जिसे परफेक्शन कहा जाए, जो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। 16 कला संपूर्ण, हर रूप में हमने उन्हें संपूर्णता में देखा। और जब उनके जन्म की सेलिब्रेशन होती है तो हर साल बहुत प्यार से, धूमधाम से उसे सेलिब्रेट करते हैं, कई तरह के रिचुअल्स निभाते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें, इस मंच पर हर बार हमने डीप जाकर अध्यात्म की नजर से हर त्योहार को समझने की कोशिश की है। आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम जानते हैं कि क्या है उसका स्पिरिचुअल रेलेवेंस। हमारे साथ है प्रमा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति।
4: ओम शांति
3: सिस्टर शिवानी। श्री कृष्ण का नाम आते ही जिसको बच्चे से प्यार है वो उन्हें लल्हा के रूप में देखती है, यू नो, नन्हे से कृष्ण के रूप में। जो लवर्स हैं, यू नो, जो लव की परिभाषा है, अनकंडीशनल लव, तो वो राधा कृष्ण को देखते हैं। जिन्हें वॉरियर चाहिए तो वो श्री कृष्ण को यू नो महाभारत के युद्ध में देखते हैं। पॉलिटिशियन चाहिए, शासक चाहिए, प्रशासक चाहिए, मतलब आई थिंक एनी रोल जो आज के समाज में, सोसाइटी में चाहिए, श्री कृष्ण रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट आज के वक्त में।
4: ब्यूटिफुल व्हाट यू हैव शेयर्ड जस्ट नाउ कि ही वाज परफेक्ट इन एवरी रोल। तो बच्चे के रूप में परफेक्ट, एक लवर के रूप में परफेक्ट, एक गाइड के रूप में, क्योंकि युद्ध में जो रोल था वो गाइड करने का था, एक शासक के रूप में, एक हर रोल में परफेक्ट परफेक्ट। एंड दिस इज समथिंग विच वी आर ऑल सीकिंग टू अचीव। हम सब ये चाहते हैं, क्योंकि आज हम भी कितने सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोशल लेवल पे। आज जितने रोल्स हैं उतने शायद पहले नहीं थे, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजों में हैं, यू नो, बहुत सारी चीजों में। सो वी हैव सो मेनी रोल्स टू प्ले, एंड हर रोल में हम परफेक्शन अचीव करने की जब कोशिश कर रहे हैं, एंड समवेयर वी फील वी नॉट बीइंग एबल टू डू दैट। एंड जितना हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, जब हम वो नहीं कर पाते तो वी फील डिसअपॉइंटेड, वी पुट इन मोर एफर्ट। नो, आई हैव टू बी अ परफेक्ट मदर, आई हैव टू बी अ परफेक्ट मदर, आई हैव टू बी अ परफेक्ट प्रोफेशनल। ये परफेक्शन रोल में हम मेहनत कर रहे हैं अचीव करने की। श्री कृष्ण ने रोल में परफेक्शन अचीव करने के लिए कुछ नहीं किया है। इट इज ओनली दैट द सोल वॉज परफेक्ट, यू नो। एंड अगर आज हम इस बात को वहां से ले लें, बिकॉज वी आर देन टचिंग इट एट द सीड लेवल, एट द फाउंडेशन लेवल,
3: यस,
4: कि ये इम्पोर्टेंट है। आत्मा 16 कला संपूर्ण, परफेक्शन मतलब 16 कला संपूर्ण, मतलब थोड़ी भी मार्जिन नहीं थे कुछ के, इतनी सी कमी किसी चीज के लिए। तो आत्मा जो 16 कला संपूर्ण होगी वो फिर जो भी करेगी उसके बाद, इट कैन बी नथिंग लेस देन परफेक्ट, वो परफेक्ट ही होगा। सो वी लेट्स लुक एट इट दिस वे, आज हमने जो अपनी इक्वेशन बनाई वो थी, अगर मेरा रोल परफेक्ट होगा देन आई विल बी हैप्पी, देन आई विल फील लव, देन आई विल फील रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे रोल में आई हैव अचीव्ड परफेक्शन। एंड ट्रूथ ये है कि इफ आई द सोल एम परफेक्ट, कि मैं आत्मा अगर परफेक्ट हूँ तो मेरा हर रोल अपने आप परफेक्ट हो जाएगा।
3: एंड मे बी यू नो मोमेंटरली इट माइट लुक टू द अदर्स, टू अदर्स कि शायद इसमें कमी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर आप देखते हो, जैसे ही पर्पस देख जाते हो, अनदर थिंग व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल विच श्री कृष्ण लाइफ, अगर हम इन दिनों जो आप देख रहे हैं कि उनका पर्पस, यू नो, हर एक्शन का जो पर्पस था वो इतना क्लियर था।
4: लेकिन पर्पस में एक ही शब्द बोला है, धर्म। हर चीज में पर्पस में क्या बताया, धर्म। आप देखो हर एक में किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन में किसी को भी गाइड करते हुए तो श्री कृष्ण ने क्या किया, धर्म को रखो ऊपर, बाकी सब चीजें, इवन रिश्ते, चलो बाकी सही और गलत क्या था वो भी नहीं, इवन रिश्तों को सेकंड रखा, फर्स्ट रखा धर्म. एंड धर्म मीन्स क्या, आत्मा का ओरिजिनल रिलीजन. व्हाट इज द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ द सोल? क्योंकि आज जब हम धर्म वर्ड सुनते हैं तो हम उसको रिलीजन्स ऑफ जो हमने क्रिएट किए कि मैं हिंदू मुस्लिम, जो श्री कृष्ण ने रेफर किया है धर्म से आत्मा का धर्म, जिसको हम कहते हैं स्वधर्म. व्हाट इज द रिलीजन ऑफ द सोल? तो आत्मा का धर्म शांति, प्योरिटी, प्यार, नॉलेज, विजडम, ये आत्मा का धर्म. मतलब आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कर्म के ऊपर धर्म को रखना है. कि कर्म धर्म के आधार से होना चाहिए, कर्म धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए होना चाहिए. आज हम कर्म किस लिए कर रहे हैं? वी नीड टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ, पहले क्या हमारा कर्म धर्म के आधार पर है, एंड दूसरा क्या हमारे कर्म का इंटेंशन कि हमें इस धर्म कर्म से रिजल्ट क्या चाहिए, हमें धर्म एस्टैब्लिश करना है. अगर हम भी ये कर लें, हमारे कर्मों की बहुत सारी क्वालिटी चेंज हो जाएगी पूरी तरह से. इट्स
5: वेरी इंपॉर्टेंट कि धर्म को समझें हम यहाँ पे. यू नो, हम बहुत सारे काम जो हम कहते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक है, धर्म के अनुसार कर रहे हैं, धर्म के से जुड़े हुए जितने भी हमारी रिचुअल्स हैं वो कर रहे हैं, धर्म को भी अपना रहे हैं, तो फिर क्यों हम गलत हो जाते हैं?
4: धर्म वर्ड को अगर हम देखें, वो स्व के धर्म से था. रिचुअल्स जो हमने शुरू किए करने और आज जिनको हम कर रहे हैं, वो रिचुअल्स के पीछे का मीनिंग क्या था कि इस रिचुअल को करके अपने धर्म को याद रखो.
5: मुझे याद रहे.
4: हाँ, मुझे याद रहे कि इस रिचुअल का ये मीनिंग है. इट्स अ रिमाइंडर. यू नो, रिचुअल कैन बी सिंबलाइज्ड टू, लेट्स से कि मुझे कल सुबह अगर 4 बजे उठना है तो मुझे 4 बजे एक्चुअली उठना है. नेचुरली आई कैन गेट अप नेचुरली एट 4 o'clock, लेकिन मैं अलार्म लगाती हूँ.
5: मैं कई सारे अलार्म लगाती हूँ,
4: कई सारे भी अलार्म लगा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन

0: alarm kya hai? Wo alarm is only a method to wake me up. It's for my awakening. Ki ye alarm bajega, mujhe uthna hai. Phir dheere dheere jab hum roz karne lag jaye, to dheere dheere to hum alarm nahi bhi lagaye, to hum uth sakte hain. Lekin kabhi kabhi to aisi bhi stage aa jati hai ki alarm bhi lagaye, alarm bhi baje aur phir bhi hum nahi uthe. तो रिचुअल को हम उसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि रिचुअल क्यों आया. रिचुअल केम एज एन अलार्म, यू नो, कि अगर हम चलते चलते कोई चीज भूल गए हैं तो इट्स एन अलार्म कि वापस उस धर्म को अपने जीवन में फॉलो करो. अगर हम रोज उसको कर रहे हैं, हमें रोज रिचुअल करने की जरूरत नहीं है. हम उस धर्म को अपने जीवन में बिना अलार्म लगाए भी कर सकते हैं. लेकिन आज कई बार तो हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अलार्म रोज बजता है, मतलब हम वो रिचुअल रोज कर रहे हैं लेकिन धर्म को नहीं अपने जीवन में यूज कर रहे. तो मतलब अलार्म बजा, बंद किया, हो गया काम.
1: एंड देन द वे यू सेड द स्वधर्म की बात, वो तो हम शायद भूल ही गए ना, बिकॉज हमने उन्हीं धार्मिक कर्मकांड को मान लिया या धर्म के भी उन एस्पेक्ट्स को देख लिया जो मुझे सूट करते थे. बेसिकली
0: धर्म के कोई एस्पेक्ट्स नहीं है. धर्म मीन्स क्वालिटी ऑफ द सोल. हर धर्म, आज अगर हम हर धर्म को भी देखें, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिख, ऑल द मेजर रिलीजन्स, वो रिलीजन क्या करने आया था, मतलब धर्म स्थापक हमें कुछ सिखाने आए थे. क्या सिखा रहे थे? पीस, लव, यूनिटी. ये तीन वैल्यूज हैं जो हर धर्म स्थापक हमें सिखाने आया. कोई भी धर्म स्थापक रिलीजन एस्टैब्लिश करने नहीं आए थे. यू नो, इफ यू स्टार्ट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, कोई कुछ बनाने थोड़ी आए थे कि ये इंस्टीट्यूशन बन रही है एज अ रिलीजन, या ये एक सेक्ट बन रहा है, या एक ये ग्रुप बन रहा है. नहीं, वो तो सिर्फ ज्ञान देने आए थे, वो तो सिर्फ सिखाने आए थे,
1: रिमाइंड करने आए थे.
0: रिमाइंड ही तो करने आए थे ना.
1: एवरीवन सेज दैट देयर इज नॉट इवन, यू नो, कोई ओरिजिनल नॉलेज ऐसा नहीं था. दे जस्ट हैड टू रिमाइंड अस.
0: हां, रिमाइंड अस ऑफ हु वी आर. तो हम धर्म किसको बोलेंगे? हम धर्म उनकी टीचिंग को बोलेंगे. और उनकी टीचिंग सबकी सेम थी, और उनकी टीचिंग उनकी हमारी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी के बारे में थी. तो अगेन धर्म मीन्स व्हाट? पीस, लव, यूनिटी, प्योरिटी, हमारी क्वालिटीज. हमने क्या किया, टीचिंग को धर्म नहीं कहा, टीचर को, और टीचर के साथ हमने धीरे धीरे जो मेथड्स यूज करने शुरू किए, विच इज ऑल्सो देयर, जो जिसको अब हम रिचुअल्स कह रहे हैं या कुछ भी याद करने का तरीका, हमने उसको धर्म कर दिया. एक्चुअली रिचुअल्स, या जैसे हम कहते हैं प्रे करना, नमाज पढ़ना, ये सब एक तरीका था उस धर्म को इंटीग्रेट करने का, उस परमात्मा से कनेक्ट करने के. वो अलग अलग तरीके थे, लेकिन धर्म फिर भी क्या था? धर्म वो नहीं था. धर्म इज नॉट इन द प्रेयर. धर्म इज नॉट इन द प्रेयर. धर्म इज इन द पावर दैट आई गेट आफ्टर रिसाइटिंग द प्रेयर. द प्रेयर इज द रिमाइंडर of my own religion. हर प्रेयर कह रही है लव. तो मतलब प्रेयर, वो प्रार्थना करो और अपने रिलीजन के बारे में याद करो, रिलीजन ऑफ द सोल. तो श्री कृष्ण ने भी हर स्टेप पे यही तो याद दिलाया. एंड वो भी क्यों? क्योंकि वो धर्म को हमने देखा कि उनके अपने जीवन में
1: उन्होंने जिया.
0: जिया,
1: you know why we love him so much?
0: Yes.
1: Because he actually is able to show us the perfection of
0: living embodiment. Na, embodiment of perfection in action. You know, ये क्या कि हम perfection के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी जीवन कहानी में हम देखते हैं कि हर स्टेप पे perfection. इसीलिए हम उनको कहते हैं सोला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम. मर्यादाओं में भी सबसे उत्तम पुरुष परफेक्शन.
1: जैसे शिवानी, वेरी ब्यूटिफुली ना अभी जो चीजें निकल कर आई उसमें ये आपने कहा कि धर्म को हमें इम्प्लीमेंट करना है. हम जो स्टोरीज भी देखते हैं श्री कृष्ण की, व्हाट इज वेरी नाइस इज दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज, यू नो, जो है, जो धर्म है, स्वधर्म, उसका हर रोल में यूसेज जो है. आज के वक्त में हम ये मानते हैं कि धर्म अलग और मेरा जीवन अलग. कोशिश करने, मतलब इंटीग्रेट करने की कोशिश भी करें तो इट लुक्स लाइक कि वो तभी हो सकता था जब श्री कृष्ण का टाइम था या वो वक्त था या माइथोलॉजी की वो चीजें थी. आज के वक्त में हम उसको सोच ही नहीं सकते दैट इट इज पॉसिबल.
0: सी आज हमें रिमाइंडर्स दिए जाते हैं कि धर्म को अपने कर्म में यूज करना है, एंड तो भी हम फील करते हैं कि धर्म के आधार पे कर्म. धर्म मींस लेट्स से माय रिलीजन ऑफ पीस, तो दैट मींस दैट आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा, एंड मुझे पूरा दिन शांत रहना है. अगर मैं आज का दिन पूरा दिन शांत रही, एंड शांत मींस मन से एक भी अशांत थॉट नहीं, अगर आज मैं पूरा दिन शांत रही, देन आई कैन से आज पूरा दिन मैं अपने धर्म में स्थित थी,
1: धर्म पे टिकी थी.
0: अब ये तो हो नहीं रहा, एंड दिस विल हैपन व्हेन, जब हम 100% फिर सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, तब वो ओरिजिनल क्वालिटीज अपने आप होंगी. जो निराकार परमात्मा हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हमें समय की पहचान मिलती है, उससे ये समझना बहुत इजी हो जाता है कि जो सृष्टि चक्र का सबसे पहले का समय था, मतलब जब आत्मा 100% चार्ज्ड थी, 100% सोल कॉन्शियस थी, तो उसको कोई ये अवेयरनेस थोड़ी करनी पड़ती थी कि मुझे ये पीसफुली करना है, मुझे ये प्यार से बात करनी है. नहीं, वो आत्मा थी ही 100% चार्ज्ड, तो उसका हर कर्म ऑटोमेटिकली धर्म पे था. अवेयरनेस नहीं थी कि ये धर्म है. सत्युग और त्रेता युग में हम आत्माओं को कहते हैं संपूर्ण, इसीलिए सत्युग और त्रेता युग की आत्माओं को हम कहते हैं देवी देवताएं, और देवी देवताओं की महिमा में हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी. ठीक है, त्रेता युग के एंड की पॉपुलेशन है 33 करोड़, और आज दिन तक हम सब गायन करते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं. मतलब ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं थे, ये सारा दिन हर पल धर्म में स्थित थे. मतलब एक्चुअली उनको इसके अलावा कुछ और नहीं पता था,
1: जैसे आज हम अधर्म में स्थित.
0: यस, बिल्कुल
1: कंप्लीट.
0: इट्स बिल्कुल लाइक दैट, बिकॉज टुडे वी आर कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर. वो सत्युग था, ये कलयुग है. तो सत्युग में हम 100% धर्म में स्थित थे, तो सत्युग और त्रेता युग में कोई रिचुअल्स, कोई पूजा पाठ प्रार्थना, मतलब कोई भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं थी उठने के लिए, क्योंकि सोए नहीं हुए थे. वी वर नॉट स्लीपिंग, वी वर अवेकन्ड, हम जागृत अवस्था में थे. तो कोई रिचुअल की जरूरत नहीं थी हमें धर्म की याद दिलाने के लिए. तो सत्युग त्रेता युग में नेचुरल धर्म, फिर द्वापर युग से अपने धर्म के विरुद्ध कुछ करना शुरू किया, विच मस्ट हैव मीन फर्स्ट टाइम एंगर, पहली बार गुस्सा, लस्ट, ग्रीड, जेलेसी, ये बहुत ही कम हुआ होगा इनिशियली. इट्स नथिंग कंपेयर टू जो अब है. जब ये सब हुआ, तब हमारे धर्म शास्त्र लिखे गए, और एक एक शास्त्र में फिर क्या सिखाया गया, हमें फिर से धर्म पे चलना सिखाया जा रहा था,
1: और फिर बताया गया कि धर्म है क्या बेसिकली.
0: आप देखो, सपोज एक बच्चा हमेशा सच बोलता है, फिर धीरे धीरे वो किसी के संग में आने से झूठ बोलना शुरू करता है, तो जैसे ही वो झूठ बोलना ही शुरू करता है, उसके पेरेंट्स का रोल क्या हो जाता है कि नहीं, तुम्हें वापस सच के रास्ते पे जाना है. सेम थिंग हैपेंड विद द्वापर युग. सत्युग त्रेता युग नेचुरल परफेक्शन. श्री कृष्ण सत्युगी दुनिया का फर्स्ट प्रिंस, इसीलिए आज तक भी कलयुग के एंड तक भी सबसे प्रिय क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड है. क्योंकि गॉड के बाद, मतलब निराकार परमात्मा के बाद, जो फर्स्ट परफेक्ट सोल है वो है श्री कृष्ण. तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, सत्युग का फर्स्ट राजा. लेकिन सत्युग और त्रेता युग में जो सभी आत्माएं होंगी, वो भी आत्माएं 16 कला संपूर्ण होगी. ये भी है, वो पूरी दुनिया ही देवी देवताओं की दुनिया है. लेकिन जैसे द्वापर युग आया, वही आत्माएं हैं धीरे धीरे धीरे धीरे द्वापर युग में आई, धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से ये सब करना शुरू किया. तो आप देखो, उस समय कुछ आत्माओं का रोल बना आकर उनको वो धर्म याद दिलाने के लिए, जिस धर्म पर वो ही सत्युग त्रेता युग में चल रहे थे,
1: जो उनका अपना धर्म है,
0: अपना धर्म है,
1: ना आत्मा का धर्म है।
0: हाँ, जैसे हम भी आज अपने आप को या औरों के साथ क्या याद दिलाते हैं, ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल नेचर। आज अगर हम करप्शन की तरफ भी जाते हैं तो कोई हमें याद दिलाता है, नहीं नहीं ये थोड़ी, ये तो आपने अब करना शुरू किया, इससे पहले आप कैसे थे।
1: अभी वैसे भी ऑनेस्टी, कई बार हम अपने बचपन के फ्रेंड्स को मिलते हैं, यू नो यंग जब हम थे या कॉलेज में थे, तो वो हमें याद दिलाते हैं, ओ द काइंड ऑफ यू नो एथिक्स एंड मॉरल्स यू हैड, यू रिमेम्बर। आज हमें लगता है कि हाँ हम उससे परे जा चुके,
0: परे जा चुके,
1: एक ही जीवन में,
0: एक ही जीवन में। तो सोचो इतने सालों, हजार सालों में क्या हुआ होगा। जैसे हम

0: पर युग में आते हैं और थोड़ा थोड़ा अधर्म करना शुरू करते हैं अपनी सोच में और कर्मों में, तब ये सारी माइथोलॉजी की सारी जो ये बातें हैं ये लिखी गई. एंड इट इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि परमात्मा आकर अभी हमें समझाते हैं कि श्री कृष्ण जब वास्तविकता में श्री कृष्ण जब इस सृष्टि पर थे वो सतयुग था. सतयुग में कोई दुर्योधन, कोई कंस, ये सब नहीं थे. सतयुग में कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि वो सतयुग था कि वो एक परफेक्ट दुनिया थी. लेकिन श्री कृष्ण सतयुग में थे. द्वापर युग में जब अधर्म शुरू हुआ तो अधर्म से वापस धर्म पे लाने के लिए ये सारी बातें लिखी गई, ज्ञान दिया गया. अब इसको अगर हम पूरे महाभारत को भी हम देखें तो एक एक ने जो रोल प्ले किया है वो अलग अलग संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है. जो अलग अलग किसी के अंदर जेलेसी आई, किसी के अंदर ईर्ष्या आई, किसी के अंदर अटैचमेंट आई, सब संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है. और श्री कृष्ण वो गाइड है उस माइथोलॉजी में, महाभारत में श्री कृष्ण वो गाइड है जो हरेक को सिखा रहा है कि कैसे उस संस्कार के साथ उसको वर्क करना है. और इसीलिए उसने हरेक को ये कहा कि ये धर्म नहीं है, तुम्हें धर्म पे चलना है. चाहे वो भीष्म पितामह है, चाहे वो द्रोणाचार्य है, चाहे वो कर्ण है, चाहे वो पांच पांडव भी है, उनको भी उसने धर्म का ज्ञान दिया. तो कितनी ब्यूटिफुली वो बनाई गई है कि हरेक संस्कार को श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण सतयुग में उसी धर्म के लिविंग एम्बोडिमेंट है. तो इसलिए श्री कृष्ण के पात्र को उस महाभारत के उस पूरे उसमें लिया जाता है टू गिव द ज्ञान.
1: नो, इवन इफ यू लुक एट इट, अगर आप ये कह रहे हो कि दिस इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ यू नो द नेगेटिविटी, तो तभी उनको किल करना भी जरूरी है.
0: You know, नहीं, look at it, नहीं तो अगर आज हम देखें कि परमात्मा का ज्ञान, अगर हम कहें श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण देवता है, वो हिंसा का ज्ञान कैसे दे सकता है? इवन चाहे कोई बात कितनी भी बड़ी हो, वो ये नहीं कह सकता कि उनको मार दो. हर बार हमने महाभारत में जैसे देखा और सुना, धर्म की पुनः स्थापना के लिए,
1: एंड अहिंसा परमो धर्म,
0: अहिंसा परमो धर्म. और हर बार वो अर्जुन को भी क्या कह रहे हैं, धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुझे ये त्याग करना है. द्रौपदी को भी क्या सिखाया कि हाँ तुम्हारे बच्चे जाएंगे लेकिन धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुम्हें अपने मोह का त्याग करना है. कौन से धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुम्हें हिंसा करनी होगी? अधर्म यूज करके धर्म की स्थापना नहीं हो सकती. लेकिन वो सिंबॉलिक है ना, एक्चुअली वो सिंबॉलिक किस चीज का है कि युद्ध यहाँ पे चल रही है. देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमारी अपना गुड, हमारा धर्म, और लेक बीच में ये जो संस्कार धीरे धीरे आने शुरू हुए थे द्वापर युग में.
1: और आज हमने जैसे शुरू में ही कहा कि दे आर आई थिंक सो पावरफुल,
0: टुडे दे आर पावरफुल,
1: दे आर 100, यू नो मोर देन 100 इन नंबर्स एक्चुअली.
0: इसीलिए क्यों कहते हैं कि आज भी महाभारत का वो गीता ज्ञान आज भी उतना रेलेवेंट है जितना उस समय था. रेलेवेंट क्यों है? वो रेलेवेंट तब तक रहेगा जब तक हमारे अंदर अभी तक वो वाले संस्कार रहे,
1: जब तक हमारी स्वधर्म की स्थापना
0: वापस नहीं स्थापना हो जाती. क्योंकि वो हमें कह ही रहा है ज्ञान स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना करनी है. तो श्री कृष्ण ने जो महाभारत में दिखाया गया हिंसक युद्ध नहीं है, वो सब सिंबॉलिक है अपने अंदर के इस अधर्म के संस्कारों की हिंसा करना. नहीं तो पांडवों को बताना कि भीष्म पितामह की हिंसा करना या द्रोणाचार्य जो आपका गुरु था ये कैसे हो सकता है, उसकी हिंसा करना? नहीं, उसके अंदर मोह का संस्कार था, उसकी हिंसा करना. तो ये सारी हिंसा, प्रतिज्ञा भी जो की भीष्म पितामह ने, उसका भी कितना ब्यूटीफुली मीनिंग कि आपने प्रतिज्ञा की लेकिन चेक किया कि हर जगह रिजल्ट धर्म के आधार पर हो रहा था. सो ब्यूटीफुल, एंड विच वी नीड टू नाउ चेक ऑल ओवर अगेन. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो द्वापर युग भी बीत गया. इन सभी धर्म शास्त्रों ने हमें ज्ञान दिया, हमें टिकाया, लेकिन हम अभी तक अपने धर्म की स्थापना वापस नहीं कर पाए हैं. नहीं तो द्वापर युग के बाद कलयुग ना आता. अगर धर्म की स्थापना हो जाती तो द्वापर युग के बाद कलयुग नहीं आएगा. कलयुग आया मींस हम अपने धर्म से और भी नीचे गिर गए. आज जिस युग में हम कहते हैं कलयुग नहीं, घोर कलयुग है. अब घोर कलयुग में निराकार परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, इस धरा पर अवतरित होकर हमें फिर से वो सारा ज्ञान देते हैं जिससे अब धर्म की स्थापना होनी है. क्योंकि कलयुग के बाद जो युग आना है वो तो सत्युग है, कलयुग के बाद तो सत्युग ही आ सकता है, लेकिन कलयुग से सत्युग में आने के लिए धर्म की स्थापना होनी पड़ेगी,
1: धर्म की सोसाइटी में और पहले मुझ में,
0: मुझ में ही, मुझ में होगी तो सोसाइटी बन जाएगी। तो कलयुग से सत्युग का शिफ्ट मीन्स अधर्म से धर्म की तरफ, एंड विच मीन्स हर आत्मा अधर्म से धर्म की तरफ।
1: वी हैव टू वेट
0: फॉर
1: द कृष्ण अवतार, और यू नो लाइक बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट कि कहीं भी धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान को ही आना पड़ता है।
0: यस, भगवान को आना पड़ता है। श्री कृष्ण है सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, 16 कला संपूर्ण देवता, निराकार परमात्मा शिव इस समय कलयुग के एंड में आते हैं। इस समय श्री कृष्ण यहाँ नहीं है, देखो आप, ये कलयुगी हम सारी आत्मा है, इस समय कोई भी आत्मा नहीं है जो संपूर्ण धर्म पे है। निराकार परमात्मा शिव आकर हमें ज्ञान देकर अपनी कमजोरियों से कैसे युद्ध करके उसको फिनिश करना है। हम सबके अंदर जो देवताई संस्कार है जिसको हम धर्म कहेंगे, तो हर आत्मा के अंदर परमात्मा आके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं, एंड जैसे ही हर आत्मा के अंदर पुनः धर्म की स्थापना होती है तो समाज धर्म वाला हो जाता है, जिसको हम सत्युग कहेंगे, एंड उस सत्युग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है। तो एक्चुअली बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब श्री कृष्ण इस धरा पर आ जाएंगे। ये बहुत जल्दी समय आने वाला है, क्योंकि सत्युग, टुडे एवरीबॉडी सेइंग न्यू एज, द न्यू एज इज कमिंग। तो वो न्यू एज क्या है? दिव्यता की, डिविनिटी की, प्योरिटी की, श्री कृष्ण का युग सत्युग। लेकिन श्री कृष्ण के सत्युग के आने से पहले परमात्मा को आना पड़ता है उस सत्युग की स्थापना करने के लिए। तो वो परमात्मा आ चुके हैं, हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। अब इस जन्माष्टमी पर हमें उस ज्ञान को लेना है, और श्री कृष्ण को जब हम याद करेंगे आज के दिन, उसको इन्वोक करते हैं, तो अब हमें सिर्फ ये याद रखना है, उसको ऐसे बाहर सिर्फ इन्वोक नहीं करना है, उस श्री कृष्ण को, मतलब उस धर्म को, उस दिव्यता को अपने अंदर इन्वोक करना है, और एक दिन के लिए नहीं, लेकिन अपनी हर सोच और कर्म में उस श्री कृष्ण वाले दैवी गुणों को अपने अंदर इन्वोक करना है, क्योंकि श्री कृष्ण और सत्युग और वो धर्म की दुनिया बहुत जल्दी आई की आई। लेकिन एक है वो दुनिया आनी है, लेकिन एक्चुअली है हमें वो दुनिया लानी है।
1: बेसिकली आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट, दैट वी विल हैव टू मेक दैट एफर्ट,
0: वी हैव टू ब्रिंग दैट वर्ल्ड, फर्स्ट ब्रिंग दैट वर्ल्ड हियर, एंड देन ऑटोमेटिकली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जब हम एक बड़ा संगठन उस धर्म को यहाँ स्थापन कर देंगे, महाभारत में भी क्या दिखाते हैं, कौरव इतने सारे, सेना उनकी इतनी बड़ी, 5 पांडव इस तरफ, और श्री कृष्ण कहते हैं 5 पांडवों को कि तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। मतलब आज भले 800 करोड़ की ये सृष्टि है, तो 800 करोड़ नहीं, लेकिन 5 पांडव, मतलब वन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी को बदल देगी, जिसको हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट, यू नो, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं सब कब बदलेंगे और दुनिया बदलेगी, सब बदलेंगे तो दुनिया नहीं बदलेगी, एक स्मॉल नंबर है जिसको हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं, वो बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तो लेट्स इन्वोक दैट डिविनिटी विद इन टुडे, दैट इज रियली देन जन्माष्टमी।
1: जैसे हम बिल्कुल ये भी कहते हैं कि जन्माष्टमी कृष्ण जन्म की बात करते हैं, तो अगर हमें उसको अनुभव करना हमारे अपने हाथ में है, अब हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, यू नो, वी कीप ऑन सेइंग दैट।
0: अब देखो क्यों कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे दिखाते हैं, रात को 12 बजे मतलब घोर कलयुग, घोर कलयुग का जब समय है तब श्री कृष्ण का जन्म होगा, उसके बाद मतलब घोर कलयुग में अब धर्म की स्थापना हो रही है, एंड वो धर्म मतलब दिव्यता का जन्म, उस डिविनिटी का जन्म, वो श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है।
1: वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। अभी तक हम यही सोचते थे कि मेरे इष्ट, जिन्हें हम प्यार से श्री कृष्ण बुलाते थे या माधव बुलाते हैं या हम याद करते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी पर हम कितनी सारी सेलिब्रेशंस करते हैं, लेकिन आज जो बात समझ में आई कि वो डिविनिटी, वो दिव्यता जो हम श्री कृष्ण में ढूंढते हैं, मुझे आज अपने अंदर कहीं एक से भी शुरुआत करेंगे, और आज वो दिन भी बहुत अच्छा है जब हम व्रत भी रख रहे हैं, तो उपवास और व्रत کیوں نہ اس چیز کا بھی کریں کہ ایک بھی وہ ڈیوائن جو کوالٹی ہے اسے میں اگر, کیونکہ دیٹ از پارٹ آف می بیسیکلی, جو وہ ساری 16 کلائیں ہیں میں سے ایک کلا کو بھی اگر میں آتمسات کر کے آج جاگرت کر پاؤں اور اسے پھر جیون میں یوز کر پاؤں اس دھرم کو, تو مجھے لگتا ہے کہ کرشن کا جو شری کرشن کا جو ہم انتظار کر رہے ہیں جنماشٹمی کے دن, وہ سمبھو ہو پائے گا جس طرح سے ہے, اور یہ میرے اپنے ہی ہاتھ میں ہے. من میں کوئی بات, کوئی سوال اٹھ رہا ہے, آپ ہمیں ای میل یا پھر فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. Awakening with Brahma Kumaris میں آج اتنا ہی, آگے پھر ملاقات کریں گے. Om Shanti.

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारे।
1: प्रेम धारा जमुना का प्यारा वो किनारा।
2: मीरा के गिरधर नागर, यशोदा के नंद लाला और हम सब के कृष्ण कन्हैया के जन्म का उत्सव है प्यार का, निर्मलता का और आनंद का। रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

पर वो अत्यंत बस एक पर हर विकार ने उनके सामने विकार का मिटाया अज्ञानता जिसके सुदर्शन चक्र जिसके हमें स्वयं का दर्शन कराया हमें स्वयं दिखाया हमें न्याय का रास्ता दिखाया हमें न्याय गीता जिसने सब कुछ हारा इन पर असल में वही जीता कृष्ण हमारा सच्चा साथी हैप्पी बर्थडे टू आवर अडोरेबल लॉर्ड कृष्णा कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी कृष्ण प्रेमियों को ढेर सारी बधाइयां।

आओ कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र घुमाएं, अपनी बुराइयों को खुद पहचानें और खुद ही मिटाएं। आप सभी कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मोर पंख सा पावन वो, क्यों ना हम भी उन जैसे पावन बन जाएं। विकारों भरे इस दलदल में भी क्यों ना कमल समान खिल जाएं।
1: आप सभी कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: आओ हम भी ज्ञान की ऐसी मुरली बजाएं, मिटाएं अज्ञान का अंधेरा, ज्ञान भरा सवेरा लाएं।
1: आप सभी कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की ओर से इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम है बहुत ही खूबसूरत क्योंकि जिंदगी से प्यार करना सिखाता है, खुद से हमें मिलवाता है, एक ऐसे डायरेक्शन में हमें ले जाता है जहाँ पे हम भूल जाते हैं कि उन परेशानियों को पहाड़ जैसा बनाते बनाते कहीं उसी में खो तो नहीं गए हम, बल्कि वापस आ जाते हैं खुद की तरफ, वापस आ जाते हैं खुशियों की तरफ। और आज इस कार्यक्रम में हम खुद से प्यार करना थोड़ा सा और सीखेंगे। कहते हैं वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता जो खुद से प्यार करना न जानता, और हम तो अपने रिश्तों में, जिंदगी में न जाने कितने लोगों से प्यार करते आए। तो क्या कुछ ऐसा प्यार भी है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक? आइए जानते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं कल्पना जी ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद अरुषि जी, फिर से एक बार श्रोताओं से मिलकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है।
0: थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए अपना समय निकालकर। और हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि जाने माने रेडियो मधुबन के RJP हैं और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। कल्पना जी नमस्कार, सभी हमारे श्रोता मित्रों को नमस्कार। हर बार रेडियो के जरिए ही सही, जब हम एक दूसरे से ऐसे मुलाकात करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हम एक दूसरे के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं, और यही हम सबको करना भी चाहिए।
0: और आजकल हम प्यार दिखाने का, दर्शाने का बहुत सारा मटेरियल भी हमें मिलता है ना। आजकल हम YouTube पे रील्स में भी देखते हैं, सरप्राइज करना, कुछ नया करना, कुछ बड़ा करना, कुछ क्रिएटिव करना, बहुत सारे तरीके हम अपना रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले अगर जानने की कोशिश करें कि, क्योंकि वर्ड सेल्फ लव शायद कुछ साल पहले तक हम इस बारे में बातचीत नहीं करते थे, पर सोशल मीडिया का कल्चर आज इतना है

है कि उनके अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, और उनसे कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं, तब हमें उनसे प्यार होता है। और जब हमें किसी से प्यार होता है, चाहे वो दोस्त हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, परंतु जब हमें किसी से प्यार होता है, तब हम उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करके वो जो जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करते हैं। तो वही चीज जब हम खुद से प्यार करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले मैं जो हूं, जैसा हूं, अपने आप को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आरुषि जी या श्रीनिधि भाई भी, सॉरी श्रीनिधि जी भी मेरे से सहमत होंगे कि खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है। अरे, आप अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर आप खुद ही खुद से प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो वो डेफिनेटली प्योर भी होगा, 100% भी होगा, सच्चा भी होगा, है ना? क्योंकि आप अपने आप से ऐसा प्यार कर सकते हैं जिस प्यार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं, कि मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत प्यार करने वाला हो, मुझे रिस्पेक्ट देने वाला हो, मेरी केयर करने वाला हो, मुझे समय देने वाला हो, मुझे अंडरस्टैंड करने वाला हो। सो जब हम अपेक्षा रखते हैं दूसरों से, ऐसे चाहे वो फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, तो कई बार हमें निराशा मिलती है, और फिर उस निराशा में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, या वो जो निराशा है उसको हम कैरी करते हैं अपने लाइफ में। क्यों ना हम सबसे पहले खुद से प्यार करें? खुद से प्यार करने का मतलब सबसे पहले मैं जो हूं, जैसा हूं, अपने आप को एक्सेप्ट करना, है ना? कुदरत ने हम सभी को बहुत सारे गुण, शक्तियां और पोटेंशियल से नहीं

0: कि जो खुद से प्यार करना नहीं जानता वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने सिबलिंग से, भाई बहनों से, दोस्तों से, कितने लोगों से, लेकिन खुद से प्यार करना के बारे में सोचा नहीं होता कभी। तो ये लाइन, इसका मतलब क्या है और क्या ये सच है?
1: जैसे अभी कल्पना जी ये बात कह रहे थे तो मेरे को वो शेर याद आया, खुद से ही जब मोहब्बत हो, खुद से ही जब मोहब्बत हो गई तब हर गम से राहत हो गई, ये बात कही जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि हम दुखी होते हैं या हमें किसी प्रकार का गम जिंदगी में देखने को मिलता है तो हम ये सोचते हैं कि उसकी वजह कोई और है। हम कहते हैं कि मुझे वो नहीं मिला या ये चीज नहीं मिली, या हम जो चीजें हमारे पास कमी पेशियां हैं उसकी वजह से हम नाराज या गमगीन होते हैं। अक्सर कभी कभार ये भी चीज देखने को मिलती है कि कुछ खराब हालतों में लोगों की सोच ऐसी हो गई होती है कि किसी और को मिला और वो चीज मुझे नहीं मिली, इसलिए वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो यहां पर देखने वाली बात यही है कि हमारा गम आखिर है क्या? हमारा गम कमी है किसी चीज की। हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी से हमें कोई चीज मिले, जरूरी नहीं ये चीज कोई फिजिकल चीज हो। ये मोहब्बत हो सकती है, प्यार हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, किसी ने मेरे मुझे पूछा नहीं, ये सिंपल सी बात पर भी लोग नाराज हो जाते हैं या वो दुखी हो जाते हैं। तो ये तब होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से होती हैं। मैं ये सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा, हालांकि कल्पना जी ने रिलेशनशिप्स का जिक्र किया। आज हम रिलेशनशिप्स में भी एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि सामने वाला या सामने वाली मुझे ये चीज दें और इस तरीके से मेरे साथ पेश आए। तो हमारी उम्मीदें दूसरों से कोई चीज की जो है वो हमें अक्सर परेशान करती है जब वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो अगर मुझे खुद ही से मोहब्बत हो जाए,

0: जैसे ये शेर कह रहा था कि अगर मुझे अपने आप से मोहब्बत है तो मैं हर गम से मेरी राहत हो गई है, मतलब मुझे राहत मिल गया, अब मुझे किसी और से गम ही नहीं है क्योंकि मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूँ। मुझे प्यार की जब बात कही जाती है, या प्यार का मतलब आई लव यू कहना नहीं है कि हर दिन हम आईने के सामने खड़े हो जाएं और सुबह सुबह उठ के बोले आई लव यू, हालांकि कहना भी चाहिए, अच्छी बात है, यदा कदाप कर भी लें, मगर कहने का भाव वो नहीं है कि मैं अपने आप को प्यार से इतना भरपूर कर लूं कि मुझे कहीं और से प्यार की तमन्ना या प्यार को भरने की जरूरत नहीं पड़े। अब जैसे आप ये बात कह रहे थे आरुषि जी, मैं आपके सवाल पर आता हूं। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो हम माँ बाप से प्यार करते हैं, भाई बहनों से प्यार करते हैं, हमारे दोस्तों से प्यार करते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने परिवार में बीवी बच्चों से या अपने पति से सबसे आप प्यार करते हैं, अगर आप मैरिड नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी संबंध आप हैं आप प्यार तो करते ही होंगे, मगर कभी कभार इंसान प्यार की कमी महसूस करता है, किसी से नाराज हो जाता है, या किसी ने टाइम पे मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे से ठीक से बात नहीं की, मेरी बात नहीं सुनी, तो इन लम्हातों में हम प्यार की कमी महसूस करते हैं क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं कि वो तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि प्यार देने का सिलसिला है, अगर हम उसे लेने के बारे में सोचने लगे तो शायद हमें तकलीफ होने लगती है। अक्सर
1: जी
0: करके हमें माँ बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं होती, खासकर तब समझ ले अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमारे साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो कभी कोई बच्चा अपने माँ बाप से ये शिकायत नहीं करता, मम्मी आप मेरे से प्यार नहीं करते, पापा मेरे से प्यार नहीं करते, नहीं करता ऐसा। हाँ, छोटे बच्चे जब घर में दो बच्चे होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, तो
1: हाँ
0: तब जरूर कंपेयर कर लेते हैं, आप मेरे से
1: होता
0: ज्यादा तुम भाई को प्यार करती हो, या मेरे से ज्यादा तुम बहन को प्यार करती हो, ये जरूर कह सकते हैं, मगर ये नहीं कहते कोई भी बच्चे कि माँ बाप उनसे प्यार नहीं
1: प्यार
0: करते।
1: नहीं करते।
0: हालांकि आप रिलेशनशिप्स में ये जरूर सुनेंगे कि एक समय के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी जिस प्रकार के संबंध है, पति पत्नी जो भी संबंधों में वो है, एक समय के बाद में लोग कह रहे थे तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते।
1: सालों बाद ऐसा डायलॉग सुनने को
0: ऐसा
1: मिलता है।
0: होता है क्यों? क्योंकि माँ बाप का प्यार देने का प्यार है, वो हमेशा ही इसे देते रहते हैं, उनसे उनको कभी उम्मीद नहीं होती कि बच्चे उनके लिए कुछ करें या उन्हें कुछ रिटर्न करें, नहीं। और दूसरे संबंधों में जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई नहीं वो हमसे प्यार नहीं करते, जब हम ये समझने लगते हैं इसका मतलब ये है कि हम उनसे उम्मीद लगा बैठे थे और वहां से वो चीज मिली नहीं। और इसलिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है कि जब मैं खुद को खुद मोहब्बत करने लगूं, यानी खुद ही अपने आप को फुलफिल्ड रखूं, मैं उस प्यार का स्रोत बना रहूं और अपने आप को भरता रहूं। हम प्यार तो देने का नाम है, ये कहते भी हैं कि हम प्यार देते हैं दूसरों को, मगर कभी कभार अगर हम अपने आप को भर लें, अपने आप को दे दें प्यार, तो शायद हम खाली होंगे ही नहीं, किसी और से मांगने की उम्मीद ही नहीं होगी।
1: मतलब वो भरपूर रखता है हमें जब हम खुद से प्यार रखते हैं, खालीपन की महसूसता नहीं होती। कल्पना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी कभी ऐसा होता है रिलेशनशिप्स की क्योंकि बात की कि मान लीजिए प्यार तो बहुत है लेकिन किसी ने मान लीजिए फोन नहीं उठाया, और कोई फोन ना उठाए उसमें इतना पैनिक हो जाता है कि उसको मतलब 40 बार 50 बार 100 बार भी कॉल मिला देते हैं, कैसे नहीं उठाया या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में या क्या कर रहे होंगे, मुझे क्यों नहीं बताया। वो जो एंजाइटी हो जाती है या वो ऊपर नीचे हो जाते हैं इतने सारे थॉट्स, और तब तक कुछ और नहीं सोचता जब तक वो बात ना हो जाए, तो क्या ये भी इस लेवल का प्यार है जो लेकिन वो मतलब ये सब चीजें भी लेकर आता है प्यार, उतार चढ़ाव ऐसी चीजें भी लेकर आता है प्यार।
2: आरुषि जी, जिनसे हम प्यार करते हैं चाहते हैं कि उनके साथ हम हमेशा जुड़े रहे, उनका अटेंशन हमें हमेशा मिलता रहे, ये तो एक कपल्स के बीच की बात है, अटेंशन प्यार मुझे चाहिए उनका। लेकिन बाकी सभी रिलेशंस में जब हम फोन करते हैं और बहुत लंबे समय तक हमारा फोन नहीं उठाया जाता है, समझो कि एक लड़की घर से निकलती है कॉलेज के लिए और शाम को वापस नहीं लौटती है, तो उसके माता पिता उसको हजारों बार कॉल करेंगे, और बेदरकार वृत्ति से अगर लड़की उन्हें जवाब न दे तो माँ बाप क्या सोचेंगे? सोचेंगे ना कि कहीं कुछ गलत हो गया है। सो इसलिए वो एंजाइटी तो नॉर्मल है, नेचुरल है, होगी ही. परंतु कोई व्यक्ति काम पर गया है, बिजी है, लोगों के बीच में है और वो हमारा फोन अटेंड नहीं कर रहा है केवल इस अहंकार के कारण कि मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड किया, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया,
1: मुझे इग्नोर कैसे
2: किया, इस बात को लेकर इग्नोर कैसे किया. तो ये दर्शाता है कि आप अंदर से कितने खाली हैं. तो अंदर से खाली जो व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों के अटेंशन, प्यार नहीं कहेंगे हम, अटेंशन के बारे में इनसिक्योर रहता है. उसको अटेंशन भी चाहिए, उसको पजेसिवनेस भी होती है कि ये व्यक्ति केवल मेरा है, ये किसी और से बात नहीं करना चाहिए, किसी और से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये मेरी अमानत है और हर समय मेरी आसपास रहनी चाहिए. तो ये जब चीजें आती है लाइफ में तब हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहना शुरू होते हैं, है ना. तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? सो सेल्फ लव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें अपने आप के साथ दोस्ती करनी चाहिए. अपने लिए एक बेस्ट फ्रेंड मैं बन जाऊं तो मैं अपने साथ टाइम, अकेले में टाइम बिताने में बहुत खुश रहूं. और मैं ढूंढू कि कब मैं लोगों से फ्री हूं और खुद के साथ टाइम स्पेंड करूं. जब हम खुद के साथ अकेले में बिना कुछ मोबाइल वगैरह यूज किए नेचर के सानिध्य में बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत सारी बातें हम अपने आप में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं, पुरानी घटनाओं से मिली हुई शिक्षा को दोहरा सकते हैं, प्रकृति के साथ संबंध बना सकते हैं, अपनी हार्ट बीट्स को सुन सकते हैं, अपने शरीर की, जो कई बार शरीर चीख पुकार करता है, कई बार शरीर मैसेज देता है, उनको हम साइलेंस में सुन सकते हैं. शरीर के साथ हम अपने मन की बात को सुन सकते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मेरा मन किस में लगता है, मुझे खुशी किस चीज में मिलती है. जब हम खुद के साथ बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं तो अपने आप से हमारी दोस्ती होने लगती है. तो अपने आप

0: मैंने देखा कि आपके लिए कोई भी हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता,
1: नहीं रह सकता है जी।
0: आपको खुद के लिए खुद अवेलेबल रहने की आवश्यकता है। सो मैं अपने लिए अवेलेबल नहीं हूं, बाकी सबके लिए अवेलेबल हूं। जैसे मैं मदर्स की बात करूं, तो किसी भी मदर को पूछो कि आपको क्या चाहिए, मैं अपने बच्चों की परिवार की खुशी चाहती हूँ, उनकी प्रोग्रेस। मैं फिर से पूछती हूँ उनको, आपको अपने लिए क्या चाहिए? नहीं, मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद ना मिले चलेगा, मुझे खाना ना मिले, कोई खाना नहीं बचे और मेरे बच्चे प्यार से खा ले मुझे चलेगा, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं आराम नहीं करूंगी जब तक मेरे बच्चों को मैं
1: बिल्कुल
0: स्टेबल या सेटल नहीं करूं। ये हैं महिलाओं के बीच में, माताओं के बीच में, स्पेशली अभी अभी रिसेंटली हमने मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया। और जब ये खुद को निग्लेक्ट करती है मदर्स अपने बच्चों के या अपने परिवार के

0: करती है मदर्स अपने कल थकावट हो रही है, मेरे घुटने और पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा सिर दर्द होता है, मुझे नींद पूरी नहीं मिल रही। तो किनारे करके अपने बच्चों के लिए दिन रात, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। परंतु ऐसी ही मदर्स को चाहिए, सेल्फ लव का मतलब है कि थोड़ा सा टाइम 24 घंटे में
1: लिए
0: अपने लिए
1: भी
0: भी निकाले। जब
1: जी
0: आप अपने मनपसंद की चीज बनाकर खुद एकांत में बैठ के आराम से एंजॉय करें, तो
1: जी
0: हमें अपने आप के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी
1: और बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपने बातें बताई कल्पना जी, मुझे ये समझ में आया उससे कि खुद के साथ टाइम बिताने को हम कभी कभी, खुद के साथ प्यार करने को हम ये समझते हैं जैसे किसी और का शेयर हमें बांटना पड़ेगा, इससे अच्छा बच्चों को प्यार कर लें, इससे अच्छा रिश्तों को प्यार कर लें, लेकिन ऐसा है नहीं। खुद के साथ प्यार करेंगे तो उनको भी ज्यादा दे पाएंगे, तो वो टाइम स्पेंड करना कितना जरूरी है खुद के लिए, वरना हम खाली होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे तो प्यार देना मुश्किल होता जाएगा, जैसा आपने बताया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात। श्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी श्रीनिधि जी, कि सेल्फ लव, क्या हमने कोई चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती कभी कभी, तो कैसी महसूसता होती है, मतलब क्या फील होता है जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, क्या अनुभव कैसा होता है वो?
2: सबसे पहला तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि कभी क्या मैंने अपने लिए वक्त निकाला है, कभी मैं नेचर में, प्रकृति के सानिध्य में, कहीं बगीचे में या कहीं बाहर सैर करने के लिए मैं निकलूं, कभी मैंने अपने पसंद का संगीत सुना, कभी मैंने अपने लिए वक्त निकाल कर मैंने अपनी दिल की धड़कनों को सुना हो। जब वो ये बात कह रहे थे तो मैंने कहा कि जब भी मैं ये चीज करता हूं अपने लिए, और मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूं जो प्रकृति के सानिध्य को पसंद करते हैं और मेरे आसपास प्राकृतिक सौंदर्य की छटाएं हर दिन मौजूद हैं, मैं एक हिल स्टेशन पर रहता हूं, तो इस वजह से मैं आबू की इन पहाड़ियों का लुत्फ लेता हूं और लगभग हर दिन ही मैं लेता हूं। और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं इस सौंदर्य को, ये जो खूबसूरती कुदरत ने बख्शी है, इसका आनंद खुद लूं और अपने लिए मैं लेता हूं ये चीजें। और जब भी हम अपने लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो हम सभी को अच्छा लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जब कल्पना जी बात कह रहे थे कि अपनी धड़कनों को कभी सुनना चाहिए, तो मुझे कैफी आजमी के लिखे हुए आशार याद आते हैं। उन्होंने कहा कि तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। बहुत ही सुंदर गाना भी है, फिल्म में इसका इस्तेमाल किया गया। तो
1: बहुत सुंदर गीत।
2: ये लाइनें याद दिलाती हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये रोमांटिक गाने जो लिखे गए हैं वो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए लिखे हैं, मगर कभी कभार अगर आप अपने लिए इन लाइनों को अप्लाई करके देखें तो अपने लिए भी कभी कभी जांच करके देख लें कि दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं नहीं, कि अपने लिए मैं कुछ कर रहा हूं या नहीं, ये भी पूछना बहुत जरूरी है। जब हम ये चीजें करते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि अपने साथ जो हमने वक्त बिताया है वो कितने खूबसूरत लम्हात हैं और वो लम्हे बेशकीमती होते हैं। कभी कभार आप देख रहे होंगे कि घर में कोई गृहिणियां होती हैं, घर का काम कर रही होती हैं, मगर वो अपने पसंद का म्यूजिक लगाकर या फिर रेडियो सुनते हुए, झूमते हुए गाना गाते हुए काम कर रही हैं। वो वही घर का काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही होंगी या घर की साफ सफाई कर रही होंगी या खाना बना रही होंगी, मगर वो एंजॉय करते हुए चीजें कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर दिन ऐसा कर पाना संभव है या नहीं, मगर जिस रोज उन्होंने इस तरीके से अपने काम को एंजॉय किया होगा, उस दिन के बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कहेंगे, वाह, आज का दिन तो क्या दिन गया है।
1: क्या दिन गया।
2: तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। जरूरी नहीं कि हम हॉलिडे पे चले जाएं, हम सोचें कि भैया चलो श्री जी माउंट आबू में रहते हैं, हम भी चले जाएं माउंट आबू में और ऊपर नक्की झील के
1: वही
2: किनारे हम
1: पहाड़ों
2: घूमें।
1: पे जाके सेल्फ लव हो पाएगा
2: नहीं, ऐसा नहीं है।
1: ऐसा नहीं है।
2: बिल्कुल, आपको कभी कभार अपने लिए ब्रेक लेना चाहिए, बिल्कुल जरूरी भी है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे आसपास ये चीजें मौजूद हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत सारी चीजें मौजूद होंगी। मैं आज से कई सालों पहले मैं बैंगलोर में रहता था, और बैंगलोर को जैसे आप जानते होंगे उसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि भारत की उद्यान नगरी उसको कहा जाता है, कि इतने सारे बगीचे और बाग और पार्क्स बैंगलोर में हैं, जिसकी वजह से उसे उद्यान नगरी कहा जाता है। तो कितने लोग होंगे जो बैंगलोर के इतने बड़े शहर में रहते हो, अपने आसपास के बगीचे को जानते होंगे या पार्क को जानते होंगे, और कितने लोग हर दिन अपना समय वहां बिताने जाते होंगे। ये भी एक प्रकार का सेल्फ लव है। आप अपने लिए समय निकाल कर बाहर जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो। चलिए, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस से आने के बाद भी या ऑफिस जाने से पहले आप अपने लिए क्या 5 मिनट 10 मिनट निकाल पा रहे हैं? तो ये चीजें बताती हैं कि हम एक्चुअली में क्या चीजें हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अपने आसपास ही कर सकते हैं, जैसा आपने बताया, अलग अलग शहरों का भी बताया। तो भले हम ट्रिप्स पे भी जाएं, लेकिन अपने आस उसका वेट ना करें कि ट्रिप पे जाएंगे तो ही खुद के साथ समय बिताएंगे। अभी भी छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी चीजें अपने लिए करना शुरू कर दें, और वो अनुभव करें कि खुद से प्यार करना कैसा होता है। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। आप दोनों ने, मुझे लगता है हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप जो जो बोल रहे थे साथ साथ, तो कुछ एक स्टेप तो और आगे लेंगे ही, क्योंकि अगर जिंदगी इससे बेहतर होती है, खूबसूरत होती है, सिर्फ इतना सा कदम बढ़ाने से, तो क्यों ना बढ़ाएं हम खुद से प्यार, सबसे पहले क्यों ना निभाएं हम। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आरुषि जी, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज आप अपने लिए कुछ कीजिए, अपने आप से प्यार करने के मायने समझें, अपने पसंद का गाना लगाइए, थोड़ा झूम लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, घर से बाहर निकलिए, या घर के काम करते हुए भी आपकी पसंद की चीजें जो हैं वो करें, और आप ये समझें कि मैं अपने आप को प्यार करते हुए ये चीज कर रहा हूं। अगर आपको ये सारी चीजें मुश्किल लगे तो आईने के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कभी कभार ये भी चीज कर लेने से हमारा दिन बेहतर हो जाता है।
1: मैं तो डेफिनेटली जाके अभी अपना फेवरेट गाना प्ले करने वाली हूँ, और अकेले में उसे एंजॉय करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप भी जरूर कीजिएगा ये, और बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके, हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी से कह दीजिए लव यू जिंदगी।

चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता भारतीय वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा है, जो हम सब ने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी भी होंगी। बाल्यावस्था से ही उनके साहस के किस्से चारों ओर फैल चुके थे और 29 वर्ष की अल्प आयु में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत देशभक्तों और क्रांतिकारियों के खून से सने हैं, जिन्होंने खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर वो पुरुष हो या महिला, उनमें से ही एक थी प्रीति लता वाड्डेदार, जो महज 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। जब अंतिम सांस ली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी प्रीति लता के देशभक्ति की कहानी।
1: निर्मल दा, हम सब ने सिस्टर निवेदिता, भिकाजी कामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं साहस की कहानी सुनी है। आखिर प्रीति लता ने देश के लिए कैसा बलिदान दिया?
2: अच्छा सवाल। प्रीति लता को बंगाल की अग्निकन्या भी कहते थे। वह किसी से डरती नहीं थी।
1: इतना साहस कैसे आया उनमें?
2: तनिक ठहरो, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस चटगांव में, जो आज बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और जिसे अब चटगांव नहीं चटग्राम के नाम से जाना जाता है।
0: चटगांव को हम मास्टर सूर्यदा यानी बंगाल के वीर क्रांतिकारी सूर्य सेन की वजह से जानते हैं। उसी चटगांव में रहती थी प्रीति लता, जिनके अंदर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की धुन लगी थी। एक सुबह उनके घर घबराई सी युवती प्रतिभा पहुंचती है और उन्हें कुछ दिखाती है।
3: दीदी दीदी देखो, आज के अखबार में क्या छपा है? मास्टर दा की ढोलघाट वाली मुठभेड़ के बारे में क्या लिखा है? उन्हें पुलिस तलाश रही है। मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या कहती हैं?
4: किस बात का डर प्रतिभा? डरना तो अंग्रेजों को चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है।
3: दीदी आपको डर नहीं लगता? आप स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, आपका सभी बहुत सम्मान करते हैं। माँ बाबा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और आप क्रांतिकारियों के साथ आजादी के सपने देख रही हैं।
4: प्रतिभा, जब पूरा देश एक बड़ी जेल बन चुका हो तो चार दीवारों की गृहस्थी में सुख कैसे मिल सकता है? माँ बाबा को समझा देना, उनकी बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई है, मेरा विवाह तो इस देश की आजादी से हो चुका है।
0: ये वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। और तभी जून 1932 में ढालघाट गांव में क्रांतिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर पहली बार प्रीति लता और सूर्यदा की भेंट होती है। उनके साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी थे।
4: मास्टर दा प्रणाम, मैं आ गई हमेशा के लिए।
5: आओ प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल्पना दत्त ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी थी, पर क्या तुम जानती हो कि इस गुप्त ठिकाने पर कदम रखने का वास्तविक अर्थ क्या है?
4: जानती हूँ मास्टर दा, यहाँ कदम रखने का अर्थ है मौत से सीधा सौदा।
5: तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोलकाता विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में ग्रेजुएट हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फिर इस कांटों भरे रास्ते पर क्यों आना चाहती हो? यहाँ भूखे पेट रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और किसी भी क्षण अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ सकता है।
4: खोमा कोर्बिन मास्टर दा, अगर देश के पढ़े लिखे युवा केवल अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से कौन आजाद कराएगा? यदि पुरुष इस लड़ाई में गोलियां खा सकते हैं तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए।
5: तुम्हारी आंखों की ये चमक बता रही है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आज से तुम हमारी सैन्य शाखा की सक्रिय सदस्य हो।
0: सूर्यदा के ठिकाने पर पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बन रही थी। वहां कल्पना, प्रीति, लता सभी पहुंचते हैं।
6: प्रीति, मास्टर दा चाहते हैं कि इस बार हमले की कमान तुम संभालो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है।
4: हाँ कल्पना, मैंने देखा है, इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह हमारे पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर रोज किए जाने वाला प्रहार है।
6: क्लब के चारों ओर कटीले तारों का घेरा है और हर वक्त ब्रिटिश सर्जेंट हथियारबंद सिपाहियों के साथ गश्त करते हैं। हमें रात के अंधेरे में पुरुष वेश धारण करके जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
4: बिल्कुल तैयार हो। हम धोती और शर्ट पहनकर पंजाबी नाविकों का भेष बदलेंगे। मास्टर दा, मुझे इस अभियान के लिए आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए।
5: तुम्हें पूरी अनुमति है प्रीति, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि अभियान के दौरान पकड़े जाने की स्थिति बने तो जीवित दुश्मनों के हाथ मत आना। अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों पर ऐसी यातनाएं ढाते हैं जो मौत से भी बदतर होती हैं।
4: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर दा, ये पोटेशियम साइनाइड हमेशा मेरे पास रहेगा। अंग्रेजों की गोली या उनकी जेल की काल कोठरी से बेहतर है कि मैं भारत माता की गोद में सो जाऊं।
0: फिर वो तारीख आई, 24 सितंबर 1932, जिस रात को क्लब पर क्रांतिकारियों को धावा बोलना था। प्रीति लता ने कमर कस रखी थी, वो अपने साथियों के साथ आखिरी तैयारी में जुटी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कोई चूक ना रह जाए।
4: सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जैसे ही मैं सीटी बजाऊं क्लब के भीतर बम फेंक देना और खिड़कियों से गोला बारिश।

0: बताते हैं कि क्लब के एक मुस्लिम बावर्ची क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत नाराज थे। उन्होंने ही क्रांतिकारियों को क्लब के रास्तों, बनावट आदि की पूरी जानकारी दी थी। सब बताया था कि क्लब में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, कहां कहां पुलिस तैनात रहते हैं आदि। ये भी तय था कि वो रसोई की खिड़की से टॉर्च लाइट से इशारा देंगे। उनके इशारे के बाद ही तीखी सीटी की आवाज आती है और रात करीब 10 बजे एक बहुत तेज धमाका होता है। कांच टूटने और अंग्रेजों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्तों पर क्रांतिकारी थे।
1: Help! Help! Terrorists! Terrorists! Run for your lives!
2: इनकलाब जिंदाबाद! आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद! साथियों, कोई भी गोरा अफसर बच कर ना जाने पाए, हमला तेज करो।
0: राइफलों और पिस्तौलों की अंधाधुंध तड़तड़ाहट हो रही थी। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी। अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया था।
3: Fire! Fire back! Shoot them down! Don't let these rebels escape!
0: तभी अचानक एक भारी गोली चलने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद प्रीति लता के मुंह से एक तेज करहा निकलती है।
2: आ, आ, मुझे, मुझे, मुझे शायद गोली लग गई।
4: प्रीति दीदी, आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, बहुत खून बह रहा है। चलिए चलिए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
2: नहीं नहीं, रुकना मत, मेरा आदेश है, तुम सब यहाँ से पीछे हटो। हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अगर तुम मुझे बचाने में समय गवाओगे तो सब पकड़े जाओगे।
0: कुछ देर के पश्चात गोलीबारी थम जाती है। केवल क्लब के अंदर लगी आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी और प्रीति लता की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो नारे लगा रही थी।
2: भारत माता, आज तुम्हारी ये 21 साल की बेटी तुम्हारे चरणों में अपने जीवन का अंतिम अर्घ दे रही है। मैंने जो मशाल जलाई है, उम्मीद है वह बुझेगी नहीं। घोरे सर्जेंट, मुझे

0: मातरम।
1: प्रीति लता ने कागज की पुड़िया खोली और गोली निगल ली। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद वहां ब्रिटिश साजन पहुंचे और टॉर्च जलाकर देखा।
2: ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ये तो एक युवा लड़की है। इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे हैं। बट शी इज डेड, इसने जहर खा लिया है। लेकिन चेहरे पर खौफ की जगह ये कैसा सुकून और मुस्कान है।
1: असल में ये क्रांतिकारी अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहते थे और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन क्लब पर हमले के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर चारों ओर अंग्रेज सिपाही पहुंच गए।
3: सर्च एवरी कॉर्नर, इस मरी हुई लड़की की जेब की तलाशी लो। मुझे इसके सारे मददगारों के नाम चाहिए। ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे मास्टर द सूर्य सेन का हाथ है।
4: यस सर, देखिए इसकी जेब से कुछ दस्तावेज और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला है।
3: क्या लिखा है इसमें?
4: सर जी, इसमें लिखा है,
5: भारत की महिलाएं अब किसी भी मामले में अपने भाइयों से पीछे नहीं रहेंगी। यदि हम देश के लिए जान दे सकती हैं, तो हथियारों से दुश्मनों का भी खात्मा कर सकती हैं।
3: Damn it! ये औरतें तो पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुरंत रेड मारो, कल्पना दत्त और सूर्य सेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो।
1: क्लब पर हमले के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर सूर्यदा भागने में सफल रहे। मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में भारी गहमा गहमी थी।
6: ऑर्डर, ऑर्डर! चटगांव आर्मरी रेड और पहाड़ तली क्लब हमले का स्पेशल ट्रिब्यूनल केस, किंग एम्परर वर्सेस कल्पना दत्त और अन्य।
7: माय लॉर्ड, 25 सितंबर 1932 की रात जो हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत थी। प्रीति लता वादेदार नाम की बागी लड़की ने खुदकुशी करके कानून से बचने का रास्ता चुना, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे यहाँ खड़ी मुलजिम कल्पना दत्त और फरार मास्टरदा सूर्य सेन का हाथ है। इन बागियों को सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
8: मुलजिम कल्पना दत्त, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?
9: मिलोर्ड, हमें किसी बचाव की जरूरत नहीं है। प्रीति लता वदेदार मरी नहीं है, उसने देश के आत्मसम्मान के लिए शहादत दी है। आप हमें बागी कहते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वाले सैनिक हैं। आप हमें जेल भेज सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की इस आग को कभी नहीं बुझा सकते।
1: अदालत में भारतीयों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के धीमे लेकिन दृढ़ नारे गूंजने लगे। जज उन्हें शांत रहने को कह रहे थे।
8: साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ये अदालत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा सुनाती है।
9: मुझे ब्रिटिश हुकूमत से इसकी ही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि प्रीति लता के बलिदान और उनके साथियों को जेल भेजकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। 21 साल की प्रीति लता वदेदार ने जो शहादत की मशाल जलाई थी, उसने पूरे देश की महिलाओं और युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। चटगांव की उस बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने सिखा दिया कि आजादी की कीमत अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं।
10: दादा,
0: जब प्रीतिलता शिक्षण से जुड़ ही चुकी थी तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई?
10: इसकी भी एक कहानी है। असल में ग्रेजुएशन के दौरान वे श्री संघ से जुड़ी हुई थी, जो लीलानाग के नेतृत्व में चल रहे दीपाली संघ का अंग था। आगे चलकर दीपाली संघ महिला क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन बना, जहां सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर राजनीतिक आंदोलनों और अन्य तत्कालिक घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने और आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रीतिलता कल्याणी दास के नेतृत्व में संचालित छत्री संघ से भी प्रेरित रही। उन्हीं दिनों प्रीतिलता की मुलाकात पूर्णेंदु दस्तीदार से हुई, जो चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे।
1: प्रीतिलता के क्रांतिकारी बनने की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा। जब प्रीतिलता मिलती है क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य पूर्णेंदु दस्तीदार से।
5: पूर्णेंदु जी, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए।
11: मुझे समय दो प्रीति, मैं ऐसे फैसले नहीं लेता। मुझे सूर्यदास से विचार विमर्श करना होगा।
5: ठीक है, आप कर लीजिए, मैं जवाब का इंतजार करूंगी।
1: पूर्णेंदु ने सूर्य सेन को प्रीतिलता के बारे में बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को लेकर कितनी उत्सुक है।
12: देखो पूर्णेंदु, मैं महिलाओं के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है, जैसे संदेश वाहक, क्रांतिकारियों को पनाह देना, किताबों को छिपाकर रखना आदि। जहां तक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने, हथियार चलाने की बात है, जिससे काफी खून खराबा होने की आशंका रहती है, वैसी गतिविधियों में महिलाओं को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं।
11: आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रीतिलता के इरादे भी काफी मजबूत है। वह मानसिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आप उसे एक मौका देकर देखें।

0: क्या पता कि हमें एक वीर महिला योद्धा मिल जाए।
1: अब तुम इतना कह रहे हो तो ले लो प्रीति लता को पार्टी में, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
2: इसके बाद ही प्रीति लता को चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चितगोंग आर्मरी रेड होता है। उसके बाद जलालाबाद की जंग हुई, जिसमें 14 से 19 वर्ष के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसके पश्चात कर्णफुली नदी के समीप यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला किया गया। कालरपोल की जंग हुई, काफी क्रांतिकारी शहीद हो गए। उधर प्रीति लता के सब्र का बांध टूटा जा रहा था।
3: पूर्णेंदुदा, मुझे सशस्त्र संघर्ष के लिए कब भेजा जाएगा?
0: मैं सूर्यदा से बात करता हूँ।
1: पूर्णेंदु, उसे धीरज रखने को कहो। पहले उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से जाकर मिलने को बोलो।
0: प्रीति, सूर्यदा ने तुम्हें रामकृष्ण से जेल जाकर मिलने को कहा है। उन्हें फांसी की सजा हुई है।
3: क्या क्या किया था उन्होंने?
0: उन पर चांदपुर रेल पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या का आरोप है।
3: ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उनसे जाकर मिलूंगी।
2: प्रीति लता रामकृष्ण से मिलने जेल गई। वो उनके कजन के रूप में उनसे मिलने गई, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह प्रीति लता करीब 40 बार से ज्यादा रामकृष्ण से मिली। असल में सूर्यदा ने उन्हें एक खास मकसद से वहां भेजा था। वो जानते थे कि रामकृष्ण से मिलकर प्रीति लता के अंदर क्रांति का भाव और गहरा होगा, उनमें स्थिरता आएगी।
4: जानती हो बन्नो, सूर्यदा का ये प्रयोग सफल भी रहा।
5: कैसे दादा?
4: प्रीति लता रामकृष्ण से मिलने के बाद रोजाना डायरी लिखा करती थी। उसमें वे अपनी भावनाएं और तमाम विचार लिखती, इससे उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती गई।
2: हालांकि रामकृष्ण की फांसी का प्रीति लता के मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपना समय जरा भी जाया नहीं करेंगी। खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतिन, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगी। इसीलिए वो सूर्यदा से मिलना चाहती थी। उन्होंने पार्टी में अपना संदेश भिजवाया।
1: प्रीति लता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें चटगांव में अंग्रेजों पर हमला करना है।
3: मैं कब से इंतजार कर रही हूँ दादा।
2: योजना के अनुसार अगले दिन ही यानी 13 जून को प्रीति लता को निकलना था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन कैमरून के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें निर्मल सेन की गोली से कैप्टन मारा गया, जबकि एक गोरखा सिपाही की गोली से निर्मल शहीद हो गए। गोलीबारी में अपूर्व की भी मौत हो गई। प्रीति लता और सूर्य सेन किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद प्रीति लता को वापस ढाल घाट लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रीति लता के घर की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पत्र और कई फोटो मिली। उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रीति को घर में नजर बंद कर दिया गया।
6: प्रीति लता घर में कैद होकर रहेगी। सूर्यदा, उन्हें बाहर निकालना होगा।
1: उसे संदेश भिजवाओ कि वह अब घर छोड़ने की तैयारी करे। उसे अब से अंडरग्राउंड रहकर काम करना है।
6: ठीक है, मैं संदेश भिजवाता हूँ।
2: प्रीति लता को सूर्यदा का संदेश मिलता है और 5 जुलाई 1932 को वो अपने घर से भाग जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित कर देता है, लेकिन प्रीति लता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट जाती हैं। इस समय तक वो रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बम चलाना सब सीख लेती हैं। आखिरकार उनके सपने के पूरा होने का दिन तय हो जाता है, 24 सितंबर 1932। सूर्यदा उन्हें पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसी हमले में प्रीति लता को गोली लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन उनका वही सर्वोच्च बलिदान आने वाली सदियों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के अंगारे सुलगाता रहेगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत, एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वीर सेनानी से। वंदे मातरम।
7: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

तो आज है गोकुल अष्टमी, जिसको जन्माष्टमी कहते हैं। तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। श्री कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद है, क्यों जरा विचार करिएगा। और जी हाँ, किशमिश कैसे फायदा करती है और माखन भी कैसे फायदा करता है, बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ, जरूर आप सुनिएगा। और आज हम रेडियो मधुबन में जन्माष्टमी ही मनाएंगे, इस त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे, तो आप जुड़ने के लिए तैयार रहिएगा। आज के दिन विशेष क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, जरूर बताइएगा। और रेसिपी में क्या पसंद करेंगे, भाई आज मक्खन का दिन है तो आपको मक्खन निकालना सिखाएंगे कि मक्खन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मीरा के गिरधर नागर, यशोदा के नंदलाला और हम सब के कृष्ण कन्हैया के जन्म का उत्सव है प्यार का, निर्मलता का और आनंद का। रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक

तो पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अर्चना कार्यक्रम में। आज का सुंदर सा विचार है, भगवान श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है माखन मिश्री। तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। देखिए माखन क्या है? मन ही माखन है। भगवान को मन रूपी माखन का भोग लगाना है, क्योंकि भोग तो भगवान लगाते हैं, भक्त तो प्रसाद ग्रहण करता है। इसलिए हम भोक्ता न बने, बस मन माखन जैसा कोमल हो, कठोर न हो। कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय नवनीत अर्थात माखन के जैसा कोमल होता है। इसलिए भगवान संतों के हृदय में वास करते हैं और वे उनके हृदय को ही चुराते हैं। अगर हमारा मन नवनीत जैसा है तो भगवान तो माखन चोर है ही, वह हमारा मन चुरा ले जाएंगे। माखन को नवनीत भी कहते हैं। ये नवनीत बहुत सुंदर शब्द है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। नवनीत का एक अर्थ है जो नित्य नया है, मन भी रोज नया चाहिए। बासी मक्खन भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए शोक और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाओ। पर ऐसा कब होगा? जब वर्तमान में विश्वास कायम करेंगे। कहते हैं ना, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर है, कृष्ण नाम मिश्री तो गोर गोर पी। अर्थात राम जी का नाम लड्डू जैसा है, जिस प्रकार यदि लड्डू एक साथ पूरा खाया जाए तभी आनंद आता है, और राम जी का नाम भी पूरा मुंह खोल कर कहे तभी आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार गोपाल नाम खीर है, अर्थात यदि हम गोपाल गोपाल गोपाल जल्दी जल्दी कहे तभी आनंद आता है, मानो जैसे खीर का सरपट्टा भर रहे हो। ठीक इसी तरह कृष्ण नाम मिश्री, जैसे मिश्री होती है, यदि मिश्री को हम मुंह में रखकर एकदम चबा जाएंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, जितना आनंद मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसने में आएगा। और जब हम मिश्री को मुंह में रखकर चूसते हैं तो हमारा मुंह भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है।

0: मिश्री का स्वाद मीठा होता है, ठीक इस प्रकार मीठे स्वाद की तरह ही मिश्री भी वाणी और व्यवहार में मिठास घोलने का संदेश देती है। जिस तरह इसको चूसने से अधिक आनंद मिलता है, ठीक उसी तरह मीठे बोल भी निरंतर सुख ही देते हैं। इसी तरह कृष्ण जी का नाम है धीरे धीरे कहो, मानो मिश्री चूस रहे हो तभी आनंद आता है, और जब हम कृष्ण कहते हैं तब हमारा मुंह भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो माखन का कोई भी हिस्सा नहीं बचता, उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। ठीक इस प्रकार से श्री कृष्ण को प्रिय माखन मिश्री से तात्पर्य है ऐसा हृदय जो प्रेम रूपी मिठास संपूर्णता पूरित हो। मिश्री के माखन के साथ खाने की बात है तो इसका अर्थ यह है कि माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। लेकिन माखन स्वाद में फीका भी होता है, उसके साथ मीठी मिश्री खाने का अर्थ है कि जीवन में प्रेम रूपी माखन हो तो वह प्रेम फीका यानी दिखावे से भरा न हो, बल्कि उस प्रेम में भावना और समर्पण की मिठास भी हो। ऐसा होने पर ही जीवन के वास्तविक आनंद और सुख को पाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री पसंद है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, आपने रख दिया है तो फिर से जुड़ सकते हैं, और यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: If we want to taste an essence of what it means when we say Krishna, the consciousness that we refer to as Krishna, if we have to be touched by this, we need Leela.

0: bring some Leela into your life. Just Leela through your life, that's all that matters. You just have to handle the immediate playfulness. I will handle the ultimate.
1: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, माखन मिश्री की मधुर सुगंध गूंजे हर गली गली, बांसुरी की तान सुनाकर प्रेम का संदेश दिया। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण ने जग को हर्षित किया। तो राधे कृष्ण की कृपा से सभी का जीवन सुखमय रहे, शांतिपूर्ण बना रहे। और आइए, बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। माखन, जिसको हम मक्खन भी कहते हैं, किस तरह हमारी हेल्थ को ठीक करता है, कौन सी बीमारी ठीक करता है जानेंगे। देखिए, त्वचा की नमी के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन चेहरे या सूखी त्वचा पर लगाइए, इससे त्वचा को नमी मिलेगी। त्वचा की नमी के लिए थोड़ा सा सफेद वाला मक्खन चेहरे और सूखी त्वचा पर लगाइए, इससे त्वचा को नमी मिलेगी। फटे होठों के लिए आप क्या करेंगे, होठों पर थोड़ा मक्खन लगाइए, इससे रूखापन कम हो जाएगा। होठों पर मक्खन लगाने से होठों का रूखापन कम होता है। जलन में भी आराम पहुंचाता है। कैसे? तो हल्की जलन होने पर ठंडे पानी से धोने के बाद थोड़ी मात्रा में मक्खन लगाने का पारंपरिक उपाय बहुत जने अपनाते हैं, लेकिन गंभीर जलन में डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, ठीक है? बाकी हाथ थोड़े बहुत जल गए हो तो आप पहले ठंडा पानी से धुलाई कर लीजिए, उसके बाद आप मक्खन लगा दीजिए, तो आपको ठंडक पहुंचेगी, राहत मिलेगी जलन में। और घर का ताजा मक्खन सीमित मात्रा में खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। कोई भी चीज लिमिट में ही फायदा करती है, ठीक है ना? लिमिट से बाहर कोई भी चीज नहीं खानी है। तो घर का ताजा मक्खन सीमित मात्रा में खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। गले की खराश में क्या करेंगे आप, मक्खन और मिश्री का थोड़ा सेवन करिए, गले को आराम मिलेगा और इसकी खराश ठीक होगी। तो गले की खराश के लिए आप मक्खन और मिश्री खा सकते हैं। तो ये गले और मतलब गले की खराश को ठीक करेगा, और वो गीला रहेगा ना तो गला अच्छा रहेगा। तो इस तरह मक्खन फायदेमंद है। तो किशमिश का कल सुना देंगे आपको, आज आपको मक्खन का सुनाया है। जरूर आप इन नुस्खों को आजमा सकते हैं। कोई भी उसमें ये है नहीं है नुकसान जैसी कोई बात कि भाई शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए आप इसको आजमा सकते हैं। लेकिन गंभीर बीमारी है तो फिर आप डॉक्टर से राय जरूर लीजिएगा। कहते माखन चुरा कर जिसने सबका मन जीत लिया, वही नटखट कन्हैया आज हर हृदय में बस गया। तो पुनः आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर से सुन लेते हैं एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: बहुत ही गहरा कृष्ण जी का संबंध रहा है। बांसुरी बजाते थे और सारे विश्व को आनंद देते थे। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि सबका जीवन अच्छा और सुखमय जाए।

0: जहाँ शांति की धारा बहती रहे, जहाँ प्रेम की ज्योति जलती रहे, वहाँ कृष्ण की याद जब आए, मन की हर उलझन मिटती रहे, मन की हर उलझन मिटती रहे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम जन्माष्टमी मनाएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं और आज के आनंद की बातें कर सकते हैं। इसके पहले मैं आज आपको टंग ट्विस्टर सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और आपको तीन से अधिक बार नहीं बोल के सुनाना है और दो से कम बार नहीं बोलना है। काना की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। अब मैं थोड़ा सा स्पेस दे करके सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काना की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। ये आज का टंग ट्विस्टर है, तो आपको तीन से अधिक बार नहीं बोलना है और कम से कम दो बार तो आपको बोल के सुनाना ही है। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में भी आप जुड़ सकते हैं, तो आज का टंग ट्विस्टर भी आप बोल के सुना सकते हैं। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु तो आज लगता है सुबह से ही जन्माष्टमी मनाने में बिजी हो गए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, आज का दिन तो खास है। जितना आनंद लिया जाए इस त्योहार का उतना ही कम है। तो क्या आप, चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शांति, सरोज भाई बोलता हूँ जताना से। कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी,
1: तो आपको, हमारे सभी मित्रों को, मधुबन परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा दिन है। देखो हर रोज हमारा और किसी का जन्मदिन रहता है, लेकिन आज भगवान का खुद का जन्मदिन है।
0: जी जी जी,
1: तो भगवान को भी हम हैप्पी बर्थडे तो जरूर कहना चाहिए, क्योंकि हर दम हमारे साथ में रहता है और हर दम हमारी मदद में तत्पर रहता है। तो भगवान को कैसे हम बोल पाते हैं, तो भगवान को भी शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान सबकी दुआएं पूरी करे, सबके मनोकामना पूरी करे और सबको एक सबकी मदद में भगवान रहे, ऐसी शुभकामना दे दी।
0: जी जी जी जी बिल्कुल जी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का टंग ट्विस्टर भी आपने सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ दीदी तीन बार।
0: हाँ जी।
1: काना की काली कमली, कमले में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। काना की काली कमली, कमले में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। काना की काली कमली, कमले में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया।
0: क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर
1: जी। और विषय के तो जो आज दिन है तो दिन की ही बात है।
0: जी
1: जी
0: हाँ, तो
1: पहले तो बताओ दीदी कि हमारे जो रात को भी मंदिर में 12 बजे इतना

0: जोर शोरों से कार्यक्रम होगा, क्या कि कार्यक्रम तो 9 बजे से शुरू हो जाएगा, 8-9 बजे से, लेकिन
1: जी
0: 12 बजे इतनी धुन बजेगी फटाखों के साथ, कन्हैया का जो जन्म उत्सव मनाया जाएगा
1: जी जी जी,
0: और कई सारे महिलाएं भजन मंडली और कई गांव के जो हमारे मंदिर है, राम जी मंदिर, रामचंद्र का मंदिर है, वहाँ इकट्ठा होता है
1: जी।
0: और इतनी अच्छी तरह से हम भगवान का जन्मदिन मनाता है, हम हर दिन जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान का तो हमारा मनाते हैं हर साल, हम तो भगवान का ही मनाना भी चाहिए
1: जी।
0: तो
1: जी
0: रात
1: जी
0: को रामधन होगी, कन्हैया का जो नारा गूंजेगा, और मटकी का भी कार्यक्रम रहता है हमारे यहाँ
1: जी जी,
0: छोटे बच्चे को तो मटकी में मटकी का फोड़ का कार्यक्रम रहता है, और छोटे कन्हैया भी की छोटे बच्चे को कन्हैया भी बनाते हैं
1: जी,
0: और कन्हैया का भी अच्छा एक कार्यक्रम करते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो ऐसा कार्यक्रम आज पूरे दिन रहेगा
1: जी।
0: और देखो हम गए थे वहाँ हरि यहाँ जो वृंदावन में और गोकुल में और जो मथुरा में, कई सारे दीदी इतने सारे कार्यक्रम होते हैं कि भगवान पता नहीं, इतने सारे भक्त, इतनी भीड़ रहती है वहाँ तीनों की जगह पे, और जो वहाँ राजा रानी का मंदिर है परसाना में, वहाँ भी राम बहुत धुन होगी वहाँ कन्हैया की चरों से
1: जी।
0: तो वहाँ तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, लेकिन गाँव भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बस हम तो दीदी ऐसा कहेंगे कि कन्हैया जैसा हम विचार करेंगे, कन्हैया जैसा तो हम बन नहीं पाते, लेकिन कन्हैया की जो बताई बात पर हम चल सकते हैं, अच्छा करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, और अच्छे कर्म करना, अच्छी मदद करना। देखो कन्हैया ने कितने लोगों की मदद की थी
1: जी, उनको ऐसे ही याद नहीं करते हैं, उनके गुणों को याद किया जाता है, उनके कर्मों को याद किया जाता है।
0: तो बस हम भी ऐसा कर्म अच्छा करेंगे तो हम जाने के बाद भी हम हमारी यादें सबके पर रहे, और वो सभी बोले के मैंने वो अच्छा था, बस ऐसा कहला कि हमको जाना है दीदी
1: जी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छी तरह बोल के सुनाया है, तो विषय को भी स्पष्ट किया है कैसे आप मनाने वाले, क्या होता है आपने बताया है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि आप कैसे इस त्योहार का आनंद ले रहे हैं, कैसे मनाने जा रहे हैं। और लीला जी चित्तौड़गढ़ से जुड़ चुके हैं, वो टंग ट्विस्टर बोलना चाहेंगे। चलिए, उन्होंने वो इस रिकॉर्डिंग करके भेजा है, तो सुन लीजिए।
2: कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो लीला जी आपके लिए भी ढेर सारी तालियां। तो आप अगर इस तरह जुड़ नहीं पाते हैं तो वो इस मैसेज करके भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज तो वैसे ही जन्माष्टमी हम धूमधाम से मना रहे हैं, ये त्योहार तो वैसे ही बच्चे भी, बड़े भी, वयस्क, युवा, बुजुर्ग सभी इस त्योहार का इंतजार करते हैं, क्योंकि सचमुच में ये त्योहार तो है ही अनोखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो सभी याद करते हैं और सभी प्यार करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को बच्चे के रूप में ले लीजिए, युवा के रूप में ले लीजिए, श्री कृष्ण जी से सभी प्रेरणा ही लेते हैं, और हर माँ यही सोचती है कि मेरे कृष्ण जैसा बच्चा हो। तो अब ऐसे ही तो नहीं सोचते हैं ना, जैसे कि आपने मक्खन और मिश्री के विशेषताएं जानी है विचार के द्वारा कि श्री कृष्ण जी को क्यों पसंद है, तो ऐसे ही देखे हम श्री कृष्ण जी को ऐसे ही याद नहीं करते हैं, ऐसे उनसे कोई प्यार नहीं करता है, उनके गुणों को, उनके कर्तव्यों को, उनके अच्छे कर्मों को याद किया जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें भी यही प्रेरणा देती है कि हम भी सभी के साथ प्यार से रहे, जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करें, और कुछ नहीं करें तो कम से कम प्रेम से तो रह सके, इधर उधर की बातें ना करें, और सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखे, तो भी हमारी जन्माष्टमी मनाने का सार्थक हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो कितनी भले हम चिकनी चुपड़ी बातें करें, लेकिन हमारा मन अगर निर्मल नहीं है, साफ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा खाली बातों से. कहते हैं ना कितने लोग बातें करके बस बातों में उलझाए रखते हैं लोगों को, तो फिर क्या कहते हैं, करे बातों से थोड़ा ना पेट भरता है, कुछ करोगे तभी पेट भरेगा. तो कोई कोई की ऐसी आदत होती है कि वो बातों से रिझाने की कोशिश करते हैं बाकी करते कुछ नहीं है. तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें कुछ करके बताना है, रहम दिल होकर के रहना है, नम्रता से पेश आना है, मीठी मधुर वाणी अगर हम बोलेंगे और किसी के काम में दुख दर्द में हम सहयोग करेंगे तभी सही मायने में हम जन्माष्टमी मना पाएंगे. हेलो हेलो नमस्ते. चलिए जो भी फोन करते हैं नई बात हो पाती फिर से कोशिश कर सकते हैं. हेलो
3: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: अर्जुन.
1: अर्जुन कैसे हो?
3: बढ़िया.
1: बहुत समय के बाद जुड़े हो, और सब ठीक है परिवार में?
3: जी, जी.
1: अच्छा और बोलो,
3: आज का प्रश्न,
1: आज का टंग ट्विस्टर है. टंग ट्विस्टर बोल के सुना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा. काना की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया, ये दो बार या तीन बार बोल के सुनाना है.
3: काले में वापस बोलिए.
1: काना की काली कमली, कमली में कमली में कन्हैया,
3: कमली में कन्हैया,
1: कन्हैया की कजरारी आंखें,
3: कन्हैया की कजरारी आंखें,
1: आंखों में कन्हैया,
3: आंखों में कन्हैया.
1: अब बोल के सुनाओ.
3: जी. काना के काली कमली, कमली में कन्हैया,
1: कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया,
3: कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया.
1: एक बार और बोलो.
3: काना के काली कमली, कमली कमलियों में कन्हैया, कन्हैया की आंखें कजराली, आंखों में कन्हैया.
1: चलिए फिर भी अच्छी कोशिश की है, बहुत बहुत आभार, अच्छी कोशिश की. और आज क्या कर रहे हो आठम पर?
3: जी?
1: आज क्या कर रहे हो, आज जन्माष्टमी मना रहे हो?
3: जी.
1: कैसे मनाओगे?
3: आज बाहर जाएंगे, घूमने वगैरह जाएंगे.
1: अच्छा घूमने जाओगे,
3: और कुछ नहीं, खाना वगैरह खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे.
1: और मटकी फोड़ोगे?
3: जी.
1: अच्छा चलिए बहुत बढ़िया. उपवास भी किया है क्या?
3: जी.
1: व्रत किया? व्रत
3: नहीं.
1: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि इस त्योहार को आप भी धूमधाम से मनाएंगे, पूरा आनंद लेंगे. चलो बहुत बहुत आभार अर्जुन. तो ये थे अर्जुन, पहले बहुत जुड़ता था, अभी बहुत समय के बाद जुड़ा है. चलो अच्छी बात है कि हमारे बिछड़े हुए वापिस लौट करके आ रहे हैं, तो अच्छी बात है. और चलिए यहाँ पर फिर से हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः इसी विषय पर बात करेंगे. तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM.
4: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन.
5: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें. धन्यवाद.
4: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: माया से मन को हटाए, आत्मिक शक्ति को पहचाने। कृष्ण के गीता यही पुकार, कर्म करो मत सोचो हार, कर्म करो मत सोचो हार। तो पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष है। आज तो हम सभी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं खास इस त्योहार पर, जरूर आप जुड़ करके बता सकते हैं। और इस त्योहार से आपको क्या मिलता है, किस तरह की शिक्षाएं मिलती है? त्योहार तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो हमें लेना ही चाहिए, अच्छे गुणों को धारण करना ही चाहिए। तो कैसे क्या कर रहे हैं जुड़िएगा जरूर। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा अच्छा है। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। ये आपको तीन से अधिक बार नहीं बोलना है और दो से कम बार नहीं सुनाना है। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और सुनाते हैं आज का टंग ट्विस्टर। और देखिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो मना रहे हैं, मनाइएगा इस त्योहार को, लेकिन कुछ बातें मुझे यहाँ याद आ रही। अक्सर क्या है, लोग शिकायत करते हैं प्रभु से, हे ईश्वर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने वैसा क्या किया। कुछ हमारे साथ गलत होते हैं तभी हम ईश्वर को दोष देते हैं, और अच्छा होता है तब हम नहीं कहते कि हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना कुछ दिया हमें, वो कहना हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे एक बात याद आ रही महाभारत की, जो आपके समक्ष रखना चाहूंगी। कहते हैं कि देखिए कर्ण कृष्ण जिसे पूछते हैं, मेरी माँ ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था, क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक लावारिस संतान के रूप में पैदा हुआ? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप भी दे दिया। बहुत पहले उन्हें पता चल गया था कि मैं कुंती का पुत्र क्षत्रिय हूं, फिर भी मेरे तीर से गलती से एक गाय को चोट लग गई और उसके मालिक ने बिना मेरी किसी गलती के मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ। यहाँ तक कि कुंती मेरी माँ ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए अंततः मुझे सच बताया। मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ वह दुर्योधन की दानशीलता से प्राप्त हुआ, तो फिर मैं उसका पक्ष लेने में गलत कैसे हूँ? श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, कर्ण मेरा जन्म एक जेल में हुआ था, मृत्यु मेरे जन्म से पहले मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मैं अपने जन्मदाता माता पिता से अलग हो गया। आप बचपन से ही तलवारों रथों घोड़ों धनुष और बाणों का शोर सुनकर बड़े हुए, मुझे केवल गाय के झुंड का शेड गोबर मिला और मेरे जीवन पर कई प्रयास हुए। यहाँ तक कि हर जगह मुझे कपटी बताया गया, न सेना न शिक्षा में लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि उनकी सभी समस्याओं का कारण मैं हूँ। जब आप सभी की वीरता की सराहना आपके अध्यापक कर रहे थे तब मैंने कोई शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। मैं केवल 16 वर्ष की उम्र में ऋषि संदीपिनी के गुरुकुल में शामिल हो गया। आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की से हुई, मुझे वह लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्रेम करता था, और इसके बजाय मैंने उनसे शादी कर ली जो मुझे चाहते थे या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के किनारे से जरासंध से दूर समुद्र तट पर ले जाना पड़ा। भागने के कारण मुझे कायर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीत गया तो आपको बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, यदि धर्मराज युद्ध जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और उससे जुड़ी सभी समस्याओं के लिए केवल दोष। एक बात याद रखना कर्ण, हर किसी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन किसी के लिए भी उचित और आसान नहीं है, लेकिन क्या सही धर्म है यह आपके दिमाग मन विवेक को पता है। चाहे हमारे साथ कितने भी नाइंसाफी हुई हो, हम कितनी बार अपमानित हुए, हमारा पतन हुआ, महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या हो। जीवन की अनुचितता आपको गलत रास्ते पर चलने का लाइसेंस नहीं देती। सदैव याद रखना, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वार पहने गए जूतों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। तो ये सिर्फ श्री कृष्ण और कर्ण की है वार्तालाप नहीं है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, यह हम सभी पर लागू होता है। हम क्या है अक्सर अपने जीवन का दोष देते हैं ईश्वर को, हे प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, आपने अगर ऐसा करते तो मेरे साथ वैसा हो जाता। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, कहते ना कि इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता, एक इच्छा पूरी होते ही तुरंत ही दो तीन इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कभी किसी को दोष न दे, हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहे, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे कि हे भगवान आपने मुझे स्वस्थ तन दिया, स्वस्थ मन दिया, दिव्य बुद्धि दी, परिवार बहुत अच्छा दिया। हम इतना धन्यवाद तो कर ही सकते हैं ना, जो चल नहीं सकते उनको पूछिए उनकी कैसी हालत है, जो देख नहीं सकते क्या वो इस दुनिया को देखना नहीं चाहेंगे, जो बोल नहीं सकते तो क्या वो बोलना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर से ही परेशान है, और जिनको स्वस्थ शरीर मिला है फिर भी वो अगर दूसरों को दोष देता रहे तो क्या कहा जाए फिर। इसलिए देखिए हम भगवान से भी शिकायत नहीं कर सकते, श्री कृष्ण जी ने भी अपनी समस्याएं बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी धर्म के रास्ते पर चलता रहा, फिर भी नेकी करता रहा, अच्छे कर्म करता रहा। तो यह हम सब पर निर्भर करता है, हम सब पर भी यही लागू करता है कि हम भी अच्छे कर्म करते रहे, चाहे हमारे साथ कैसा भी हुआ हो। ठीक है, कुछ जन्मों का भी हिसाब किताब होता है, कुछ जन्मों का विकर्म बना होता है, वो भी रिटर्न होकर के आता है। तो ये सब कुछ समझ करके हमें भी अच्छे कर्म करना है, श्री कृष्ण जी की तरह श्रेष्ठ कर्म करना है, हमें गलत राह पर नहीं चलना है, बस तो ही ये त्योहार मनाने का फायदा है। बाकी तो क्या है, आनंद मंगल तो वैसे ही ले लेते हैं। और हाँ ठीक है, त्योहार आया है, त्योहार पर थोड़ा झूम जाते हैं, भक्ति में कान कर्ण प्रिय हो जाते हैं तो मन अपने आप थिरकने लगता है और यह शरीर नाचने लगता है, तो हम भजन कीर्तन करते और बड़े खुश हो जाते हैं कि आज तो हमने बहुत कुछ कर लिया, आज तो बहुत भक्ति कर ली, लेकिन हमने दिया क्या लोगों को, समाज को दिया क्या। हमारा ज्ञान हमारी भक्ति तभी सार्थक होगी जब हम औरों को देंगे और दूसरे बोलेंगे कि वाह भाई वाह, इंसान हो तो आपके जैसा, तब सही मायने में हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। फिर भी उसका अभिमान नहीं करना है, ठीक कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, इस हाथ से करो तो उस हाथ को भी पता मत चलने दो, तब जा करके हमारा पूर्ण रूप से जुड़ेगा और हमारा भाग्य का दरवाजा खुलेगा। तो चलिए पुनः आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बात है, आज तो आठम मनाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपको समय ही नहीं मिल रहा है जुड़ने का। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप इस त्योहार का आनंद लीजिए। और आज का टंग ट्विस्टर सुना रही हूँ, ध्यान दीजिए, कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। अगर आपको जुड़ने का समय नहीं है तो आप वॉइस मैसेज करके भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, अभी मैं और भी आपको सुनाना चाहूँगी जिन्होंने वॉइस मैसेज करके भेजा है। मयूरी जी अहमदाबाद से इनके द्वारा टंग ट्विस्टर सुनेंगे।
1: कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की गजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया।
0: क्या बात है, बहुत फास्ट आपने तीन बार बहुत ही अच्छी तरह बोल के सुनाया है। और चलिए हमारे श्रोता बंधु इंतजार करे भाई, कोई बोल रहे होते हैं तो आप फोन पर

0: बने रहिए, काटिए मत, आपका भी फोन उठाएंगे, ठीक है? तो बहुत ही फास्ट स्पीड में मयूरी जी ने बोल के सुनाया है टंग ट्विस्टर, और अब हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग
0: जी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
1: चल रहा है लेकिन फोन बराबर लग नहीं रहे थे, अभी लग गया, बहुत ही शुक्रिया भगवान का कि रेडियो भी अच्छा चल रहा है और कनेक्ट हो रहा था दीदी, लेकिन आवाज ही नहीं आ रहा था, शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, इश्यू होगा। तो आज गोकुल अष्टमी की, जन्माष्टमी की, सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, रेडियो मधुबन परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी
0: जी। आपको भी
1: थैंक यू, शुक्रिया।
0: अच्छा, टंग ट्विस्टर बोल के सुनाएंगे? टंग ट्विस्टर
1: नहीं, मैं बोल नहीं सकता, सॉरी दीदी, सॉरी।
0: चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और अब दीपा जी कपासन से जुड़े हैं, वो टंग ट्विस्टर बोलना चाहेंगे, तो उनका सुन लेते हैं।
2: शांति, जय श्री कृष्णा। थाना की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। थाना की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। थाना की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। जय श्री कृष्ण।
0: बहुत सुंदर। तो दीपा जी के लिए भी ढेर सारी तालियां। आप भी इस तरह वॉइस मैसेज करके भी भेज सकते हैं या फिर जुड़ करके बोल के सुना सकते हैं। अब यहीं पर श्री कृष्ण जी का एक प्यारा सा भजन सुनने के बाद पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर, आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में मदन भाई मेहसाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते मदन भाई।
1: नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप?
0: हाँ जी, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बिल्कुल, मैं तो हमेशा अच्छा ही हूँ, अच्छा ही रहता हूँ। ईश्वर की आपने या हमारे सभी दोस्त हैं जो बोलते हैं, उनसे भी नहीं बोलते उनसे भी अच्छे रहते हैं हम, और आपको नमस्कार करते हैं। और आज जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामना उषा दीदी को, आशियाना को और हमारे सभी शो को और हमारे जो दोस्त सुन रहे इन सभी को। मना रहे होंगे शायद, चाहे मटकी फोड़ रहे होंगे तो
0: अभी तो इतनी जल्दी मटकी कहाँ फोड़ेंगे?
1: हम मटकी यादों में फोड़ते हैं वो यादों में फोड़ते हैं कि भाई हम कृष्णा की मटकी फोड़ते हैं। अब तो पहले जाता था और सब इंतजार करते थे, अभी तो उतना ठीक है, कोई कोई है।

0: वॉइस मैसेज। कान्हा की काली कमली, कमली में कन्हैया, कन्हैया की कजरारी आंखें, आंखों में कन्हैया। ठीक है, ये आज का टंग ट्विस्टर है। और आइए अब आज आपको आशियाना के किचन की तरफ ले चलते हैं, मक्खन बनाना सिखा देते हैं। देखिए, वैसे तो आजकल क्या है, हमारी बहनें मलाई ज़्यादा निकालती है दूध में से, उसका मक्खन निकालती रहती है। बाप की प्रॉपर मक्खन हम दही में से, है ना भाई, जिसके गाय भैंस है वो तो दही का बिलोना ही बिलोते हैं, उसमें से ही मक्खन निकालते हैं। ठीक है, तो दही आप पहले के समय में तो दही क्या है, बड़ा सा मटका होता था, मटका में ही दही जमाते थे और जमा करके उसमें बिलोना करते थे। हाँ, पहले तो दूसरे बर्तन में भर लेते थे भगोने में, फिर वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता, हल्का सा नव सेका रहता, मटके में डाल देते थे, फिर मटके में चावल डाल करके दही जमा देते थे। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में आप दही जमा कर देखिए, उसका स्वाद भी अच्छा होगा तो दही भी बहुत ही अच्छा गाढ़ा जमेगा। फिर बिलोना के लिए लकड़े का बिलोना हुआ करता था, जिसको एक खम्भे से बांध दिया जाता था बीच का पोर्शन, और फिर माताएं बहनें उसको गोल गोल वो रस्सी बांध करके गोल गोल घुमाते थे। दोनों रस्सी के छोर पर लकड़े की वो गिल्ली की तरह बंधे रहते थे डोर, उन दोनों को खींचते थे और बिलोना अंदर मटके में, और बिलोते थे और बिलोते बिलोते मक्खन ऊपर आ जाता था और छाछ नीचे बैठ जाती थी। सर्दी का मौसम होता तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते जिससे मक्खन जल्दी ऊपर आ जाए, और सर्दी का मौसम नहीं है तो ऐसे ही नॉर्मल पानी थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो मक्खन जल्दी से अलग हो जाए छाछ से। फिर इस मक्खन को निकाल लिया जाता है और मक्खन खाओ चाहे इसको गर्म करके इसका घी निकालो, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है। और आज माताएं बहनें देखिए, आज तो पशुपालन तो वैसे ही समाप्त होता जा रहा है, तो जो दूध होता है उसकी मलाई निकाल करके माताएं बहनें उस मलाई का मक्खन निकालती है, तो मलाई इकट्ठी करती जाती है। तो मलाई के साथ आप थोड़े थोड़े छाछ या दही डालते रहिए ताकि आपकी मलाई खराब भी नहीं होगी और इसमें खटास बढ़ता जाएगा, तो ये बाद में आप जब फेरोगे तब काम आएगा, आपको फेंकना नहीं पड़ेगी छाछ। फिर आप इस छाछ की कढ़ी बना सकते हैं, आप हांडवा बना सकते हैं, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब चीज़ फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में एकदम सेफ रहता है। तो मलाई आपने निकाल दी, ठीक है, मलाई में थोड़ा थोड़ा आप छाछ या दही डालते रहे, ठीक है। अब इसको आजकल तो बहने वैसे ही या तो हैंड मिक्सी से घुमाती है या फिर मिक्सर में, लेकिन आपको सिंपल तरीका सिखा रही हूँ। आप मलाई फेरने जा रहे हैं तो एक चम्मच ले लीजिए सब्जी का गोल वाला, फिर आप उसको एक ही दिशा में हिलाइए, एक ही दिशा में आप हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, धीरे धीरे धीरे वो छाछ अलग हो जाएगी, मक्खन आ जाएगा। फिर आप थोड़ा सा बर्फ डाल सकते हैं या एकदम फ्रिज का पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो मक्खन और भी अलग हो जाएगा छाछ से। फिर वो मक्खन को निकाल दीजिए, छाछ आप काम ले लीजिए और मक्खन का घी बनाइए, भले मक्खन खाइए। तो इस तरह मक्खन निकाला जाता है, ठीक है, बहुत आसान तरीका आपको सिखाया है, तो ज़रूर इस तरीके को आजमा सकते हैं। और अब यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा। हाँ, ये कहना चाहूँगी, श्री कृष्ण जी के मक्खन का भोग जरूर लगाइएगा आज, ठीक है। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
2: जी आई माँ जी।
1: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
2: जी माँ जी, आ गई, चलिए।
1: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
3: नमस्ते नमस्ते, बैठिए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है।
1: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है,
3: सोनोग्राफी। मगर क्यों?
1: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
3: मगर ऐसा करना तो गलत है, और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
3: देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद

0: सकती है और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं जैसे सुनीता विलियम कल्पना चावला इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूं
1: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है उसे हमें रोकना होगा यह कानूनी अपराध है इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है
2: प्यारे श्रोता बंधु समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में बहुत ही सुंदर आपको विचार दिया गया नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए मक्खन पर और जन्माष्टमी भी सभी ने अच्छी तरह धूमधाम से मनाई है तो मक्खन निकालना भी आपको सिखाया है कि कैसे मक्खन निकाला जाता है और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा अच्छा है जिसको मैं अब फास्ट गति से बोल के सुना रही हूँ काना की काली कमली कमली में कन्हैया कन्हैया की कजरारी आंखें आंखों में कन्हैया काना की काली कमली कमली में कन्हैया कन्हैया की कजरारी आंखें आंखों में कन्हैया काना की काली कमली कमली में कन्हैया कन्हैया की कजरारी आंखें आंखों में कन्हैया तो चलिए मैं पहले तो अपने लिए तालियां बजाना चाहूंगी ठीक है और ये जो टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है उनका नाम लेना चाहूंगी सुरेश भाई जोटाना से और लीला जी चित्तौड़गढ़ से मयूरी जी अहमदाबाद से दीपा जी कप्पासन से और अर्जुन आप सभी ने बोल के सुनाया है इसके लिए ढेर सारी तालियां विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से फिर आज और कोई जुड़े नहीं है सुभाष भाई ने शुभकामनाएं दी है और बाकी सभी ने मैसेज के द्वारा भेजा है टंग ट्विस्टर तो चलिए सुरेश भाई के लिए ढेर सारी तालियां और देखिए आज के जन्माष्टमी हमें यही संदेश देती है मैं श्री कृष्ण जी के लिए यही कहना चाहूंगी सुदर्शन जैसा देखिए सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो श्री कृष्ण है पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य रखते हैं तो वो श्री कृष्ण है द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो श्री कृष्ण है मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो श्री कृष्ण है सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो श्री कृष्ण है पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आज का मीठा मोती भी दोहराना चाहूंगी जो बहुत ही सुंदर है और देखिए जो भी आज जन्माष्टमी मनाई है वो भी बस त्यौहार का आनंद जरूर लीजिए लेकिन अपने गुणों को अपने कर्तव्यों को श्रेष्ठ कर्मों को अपनाए रखे ईश्वर को सर्व का पिता कहते हैं अगर वही सभी के अंदर है तो हर कोई पिता हो गए फिर किसी को पुत्र कहना तो असत्य हो गया अब मैं आपको अपना स्वरचित प्यारा सा भजन सुनाऊंगी श्री कृष्ण पर आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति कल फिर मिलेंगे कल क्या है शनिवार है और कल अंताक्षरी कार्यक्रम में थीम रहेगी श्री कृष्ण भजन छंद दोहे भजन आप सुना सकते हैं ठीक है तो आज के लिए राम राम सा जय श्री कृष्ण सा घनी खम्मा सा सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM

दरी बांधे गुजर को बांधे भगवान, गुजरी के चीर खींचू झपट के दही छीनू, फिर भी मैं बाज न आयो तो गुजरी रोवे मोरी माय। अरे नहीं नहीं श्याम ऐसी उधम नहीं करो, सारी सखियों के बीच मेरी लाज तो रखो, इन्हीं उधम से हुई पागल में तुम तो हो नादान।

0: देखूं आ उधर देखूं मोहे नजर न आएगा निशान।
1: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, कब कहेंगे कि हम ये जो जीवन जी रहे हैं इसी को जीना कहते। खास करके जब महिलाओं की बातचीत करते हैं तो एक मानसिक चित्र होता है कि महिला का मतलब शादीशुदा हो, बच्चे पाल रहे हो, घर का काम कर रही हो या फिर नौकरी कर रही हो। इससे ज्यादा तो हम ज्यादा उम्मीद या फिर ज्यादा चित्रण नहीं कर पाते हैं या ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, महिलाओं का काम या महिलाओं की जो प्रोफेशन इतना तक ही सीमित है या महिलाएं यहाँ तक सीमित है? नहीं, महिलाएं देश के हर वो काम करने के लिए तत्पर रहती हैं। न सिर्फ देशभक्ति लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी वो बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भावना है वो बहुत उनको आगे बढ़ाती है। दोस्तों, आध्यात्मिकता और हमारी जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहे कि हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो वो जीवन बहुत ही नीरस या दिशाविहीन होता है। ऐसे में आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपना कर ना सिर्फ अपनी जीवन को लेकिन अनेकों को मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय कविता दीदी जी आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में है। वो अपनी आध्यात्मिक जीवन से आप सभी को रूबरू कराएंगे और हम जानते हैं कि एक महिला होते हुए उन्होंने कैसे ये सादगी समर्पण जीवन को चुना है और वो कैसे इस जीवन में सफल रहे हैं। कविता दीदी जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति दीदी। हम सबसे पहले ही आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लौकिक जीवन है, आपने कहाँ जन्म लिया और आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली, और क्या आपके जीवन में या आपके बचपन में आपके परिवार में धार्मिक परिवार से थे, क्या वो जीवन रहा आपका बचपन और लौकिक जीवन?
2: हम लौकिक जन्म तो महाराष्ट्र गोंदिया में लिए हैं, जो नागपुर के बाजू में ही है, महाराष्ट्र में, और वहाँ से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। लौकिक में, हमारे लौकिक में चाचा जी और चाची ज्ञान में चलते थे। बचपन से ही वो गीता पाठशाला चलाते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो वो भी बहुत छोटे आयु में ज्ञान में आए। उनके बाद में उनका विवाह हुआ तो जो हमारी लौकिक चाची थी उनको भी ज्ञान में लेके आए और दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तो उसके बाद में लौकिक चाचा जी उनका गाँव

0: गोरेगांव था, तो इस कारण से वो गोंदिया में रहते थे और गोंदिया में हमारे पास रह करके प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर के। तो उस समय हमारी जो मम्मी थी बहुत भावभक्ति में पूजा आदि करती रहती थी। तो मात्र मेरी आयु जो 7 वर्ष की थी, तो जैसे वो पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, आरती करती थी, तो मैं उसको देख देख के वैसे ही करती रहती थी। तो चाचा जी को एक दिन बहुत संकल्प चले कि बाकी सब बच्चे तो सोए पड़े हैं, लेकिन यही मतलब मम्मी के पीछे पीछे जाके सब कुछ करती है, इसको लगता है बहुत इंटरेस्ट और इन सब बातें इसको अच्छी लगती है। तो देखते देखते मेरे एक बार मम्मी को कहा कि भाभी मैं घर जा रहा हूँ अपने, तो मैं इस गुड़िया को लेके जाऊँ, कुछ दिन मेरे पास रहेगी। तो छोटी थी तो उस समय को कोई बात नहीं, भाई के बेटी है तो भाई के पास ही जा रही है। तो बड़े इजीली माता पिता ने छुट्टी दिया और वो मुझे लेके गए। लेकिन वहां देखा तो लौकिक में तो पूजा आराधना चलती थी, लेकिन जब चाचा जी के पास गई तो वो सारा दिन बाबा को याद करना, मुरली पढ़ना, कोर्स करना, शिव बाबा के गीत सुनना, शिव बाबा करते रहते थे। तो मुझे कुछ परिचय नहीं था, कुछ समझ भी नहीं छोटी आयु के कारण। तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो बात हर बात मुझे सिखाते थे, समझाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो जैसे जैसे मुझे गाइड करते थे मैं वैसे करती जाती थी।
1: तो ये क्या उम्र रही है?
0: 7 साल की उम्र थी मेरी मात्र आयु।
1: जी, मतलब आपकी लौकिक और अलौकिक जीवन में बहुत सारा अंतर नहीं रहा, बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग से चलने लगे।
0: जी,
1: तो फिर आपकी पढ़ाई और ये सब चीजें कैसे
0: तो
1: आगे बढ़ी?
0: पढ़ाई चाचा जी के पास भी हुई और लौकिक माता पिता के पास भी हुई, क्योंकि जब मम्मी पापा के पास में थी तो गर्मी की छुट्टी में जो है तो चाचा अपने पास लेके चले जाते थे, बाकी तो मम्मी पापा के पास रह के पढ़ाई किया और कुछ पढ़ाई वहाँ किया। तो लेकिन ज्ञान में लगातार चलती रही हूँ, वो आते रहते थे, वहीं आते थे, एक सेंटर पर मुझे लेके जाते थे। और उस समय जो मेरा नाम था लौकिक में तीजा नाम अच्छा। था मेरा अभी तो जो कविता नाम है ये मेरा अलौकिक नाम है।
1: okay.
0: तीजा बाई बिसेन करके मुझे जाना जाता था।
1: okay.
0: मेरी सरनेम है बिसेन और मुझे तीजाबाई, क्योंकि तीजाबाई जो नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरा जो जन्म है, जो हरतालिका होती है ना, माताएं व्रत करती है, कन्याएं बहनें व्रत करती है, तो उस समय महाशिवरात्रि के लक्ष्य में भी करती है, तो हरतालिका बहुत ही धूमधाम से दुनिया में मनाई जाती है। तो मेरा उसी दिन सोमवार का दिन था, जन्म हुआ, तो उस त्योहार का नाम है तीज। तो तीज के बाद कहा कि इसका नाम हम तीज ही रखेंगे, क्योंकि गौरी पूजा के दिन इसका जन्म हुआ तो हमारे घर में गौरी ने जन्म लिया, ऐसे करके वो मानते थे हमारे महाराष्ट्र में। तो जब उन्होंने कहा कि गौरी माना देवी आई हमारे घर में, तो इसका नाम ही हम तीज रखते हैं, तो मेरा नाम ही तीज, तीजा से फिर तीजा कर दिया स्कूल में जा करके।
1: दीदी, फिर जैसे आप इस तरफ घर में आते हैं तो भक्ति मार्ग चल रहा था, और अब चाचा के पास जाते हैं तो फिर आध्यात्मिकता, मेडिटेशन और ये सारी जीवन, तो दोनों के चीजों के बैलेंस कहे या फिर आपकी घर में भाई बहन ने आपकी, उनका कैसा रहा आप लोगों का?
0: वो ज्ञान में नहीं चलते थे, काफी विरोध होता था, जैसे मुझे भोजन करने में बहुत तकलीफ होती थी। तो जैसे चाचा जी ने एक बात बताते कि जो ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान सुनते हैं वो तामसिक भोजन नहीं करते, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं जब घर में आती थी तो दूध के साथ भोजन लेती थी, या तो दही होता था घर में उसके साथ भोजन लेती थी। तो माता पिता बहुत विरोध करते थे कि ये कौन सा ऐसा धर्म है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, ऐसा तो हमने कभी कोई धर्म देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बहुत पूजा करते, परिवार पूरा धार्मिक था, वो भी शिव की पूजा करते थे, देवियों को मानते थे, आराधना करते थे, लेकिन वो लहसुन प्याज बहुत प्यार से खाते थे, कहते थे लहसुन प्याज मैंने एक औषधि है, और मुझे भी जबरदस्ती वो करते थे कि आपको खाना ही चाहिए, और नहीं खा देती तो थोड़ी सी डांट तो पड़ती ही थी, लेकिन फिर भी मैं बाबा बाबा करके चुपके चुपकाते करते बाद में खा लूंगी करके, ज्यादातर हमारे घर का ही दूध होता था, खेती के कारण गाय वगैरह रखी थी तो घर के दूध में ही दही इसी के साथ में रोटी खा लेती थी।
1: फिर आपकी कितने भाई बहन है? वो
0: तो हम 4 बहनें और 1 भाई, 5 लोग थे
1: जी।
0: तो सभी लोग मतलब मम्मी पापा के साथ मिलकर के मुझे छेड़ते रहते थे, और मैं फिर उनको ज्ञान सुनाती रहती थी कि देखो बाबा ऐसे कहते, बाबा वैसे कहते, तो पंडिता इन करके मुझे छेड़ते रहते थे देव जो, तो पंडिता इन लोग ज्ञान सुनाती है। मैं पढ़ाई भी करती थी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इसमें होता था, क्योंकि हमारे लौकिक चाचा ने एक ही बात सुनाई कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं ये सतयुग की पढ़ाई नहीं आएगी, लौकिक दुनिया की, लौकिक दुनिया में ही काम आएगी, लेकिन अगर हम नई दुनिया सतयुग के लिए जाते हैं तो उसमें ये पढ़ाई तो काम नहीं आएगी। तो इसलिए अधिक महत्व बाबा की मुरली में देना है, बाबा से योग करना है,
1: बाबा
0: तो
1: मैं मतलब
0: अधिक
1: परमात्मा,
0: परमात्मा के ऊपर परमात्मा का चिंतन करना है, और परमात्मा जो शिक्षाएं देते है और इसी अनुसार चलना है। तो ये बात मैंने अपने दिल में गांठ बांध ली कि जैसे परमात्मा की वाणी में बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं मुझे ऐसे ही चलना है। और मुझे एक लक्ष्य मिल गया था कि जैसे चाचा जी ने एक ही बात मुझे सिखाई थी कि अच्छे कर्म करते हैं तो हम देवी देवता बनते हैं और थोड़ा भी गलत कर्म करते हैं तो आसुरी वृत्ति के कारण हमारे पद भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण हमारा जीवन व्यर्थ चला जाए। और उन्होंने फिर एक बात मुझे बहुत अच्छा सिखाया था कि हम कुछ भी काम करते हैं तो सोचते भी है लेकिन भगवान सब देखते हैं, सब सुनते हैं। तो जब बचपन में भी ये बातें मुझे बहुत याद रहती थी कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ भले मुझे कोई ना देखे लेकिन भगवान मुझे देखते हैं। तो ये बात मुझे आज तक याद रहती है कि परमात्मा की संपूर्ण नजर हम पर होती है और हम क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या सुनती है, क्या करते है, वह हर प्रकार के हम पर अटेंशन रखते है। और
1: तो बाल्यकाल में ही आपको इन चीजों का अटेंशन था।
0: हाँ जी।
1: तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी छोटी हूँ, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपके भाई बहने भी वो भी अपनी जीवन एंजॉय कर रहे हैं और मैं पता नहीं क्या कौन सी रास्ते में जा रही हूँ?
0: नहीं, खेलती तो थी उनके साथ में, खेलती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उनके साथ जो वो भोजन करते थे उस समय अपने आप को साइड कर लेती थी क्योंकि वो चाचा ने बड़े प्यार से समझा के बताया था, चाची ने भी, कि आप खेलना जरूर लेकिन भोजन उनके साथ बैठ के नहीं करना है, भोजन अलग से करना है, वो भी घर में जो कुछ हो तो बाबा, और वो भी बाबा की याद करना है, पहले योग करना है तभी खाना है। तो विरोध सब करते थे लेकिन फिर मैं बाबा की मदद मिलती है और बाबा की मदद से ही चलती थी। बाबा पर उन्होंने जिस मुझे कोर्स कराया तो कोर्स में ही मेरा निश्चय हो गया और मुझे समझ में आने लगी सारी बातें और मुझे भी लक्ष्य। और फिर मुझे सेंटर पर लेके जाते थे, जो बड़ा सेंटर था हमारा, आश्रम था गोंदिया में, आज भी है, तो वहाँ लेके जाते थे और वहाँ दीदी लोग मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर वो भी मुझे सिखाती थी ऐसे करना ऐसे करना, तो मैं उसी अनुसार करती थी। फिर हमारे चाचा जी बताते, देखो ये ऐसे बनना है, ऐसी ड्रेस पहननी है, ऐसी सेंटर की सेवा करनी है, तो ऐसे तुम दीदी बन जाओगी। तो ये मुझे जैसे आकर्षण हो गया था।
1: तो ज्ञान में वो कौन सी बात थी जिसे आपको लगा कि ये सत्य ज्ञान है, यही मेरे जीवन परिवर्तित करेगा और मुझे ये फॉलो करना है?
0: अपनापन बहुत लगा मुझे दीदियों से, जैसे कोई परिचय नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन दीदी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मेरे तो मुझे स्कूल के लिए तैयार करना, मेरे बाल ठीक करना, मुझे ड्रेसेस तैयार करके देना, और वो अपने बेड पर भी बिठा के अपने साथ सुला लेती थी, मुझे गोद में का प्यार देती थी। और फिर जब भी डांस सिखाती थी सेंटर पर, जब प्रोग्राम होते थे तो मुझे डांस सिखाती थी, मैं स्टेज पर डांस करती, वेलकम डांस करती थी, और दीदियाँ जहाँ जाती थी मुझे अपने साथ साथ लेके जाती थी और कुछ मुरली की बातें अच्छी अच्छी सुनाती थी, तो वो मुझे बहुत आकर्षण किया।
1: लेकिन एक उम्र के बाद तो आपको समझ में आया होगा ना, वो तो बचपन में प्यार मोहब्बत अच्छे लगते हैं
0: जी,
1: लेकिन ज्ञान के ऊपर जो निश्चय है, जब आप थोड़ी सी उम्र आई और ज्ञान को समझने लगे, तो वो कौन सी बात थी जिसे आपको निश्चय?
0: जब मैं स्कूल में गई एक बार, स्कूल में मेरी फ्रेंड थी, मतलब बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन उनकी ना सातवीं क्लास में थे हम दोनों, तो उन दोनों के जुड़वा बहने थी और दोनों की शादी हो गई, तो शादी हुई और
1: छोटी उम्र में
0: दोनों की शादी हो गई। सातवीं क्लास में पढ़ते थे हम लोग, मतलब हम 14 साल की तो थी, नहीं 14 साल की भी नहीं थी, 12 साल की ही थी, तो 12 साल की उम्र में दोनों बहनों की शादी हो गई। फिर एक साल जैसे हम आठवीं कक्षा में गए, तो आठवीं कक्षा में गए और गर्मी के दिन में छुट्टी दिन होते हैं, तो उनकी शादी हुई, तो शादी हुई तो मुझे भी बुलाए, मैं भी देखने के लिए गई, मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था वो सब देखते हुए, पता नहीं ऐसा लग रहा था ये गलत हो रहा है, बैठ गया था। और फिर आठवीं क्लास के बाद तो मैं संपूर्ण चाचा के पास सेंटर पर ही आ गई थी। फिर उसके बाद में मैं,
1: तो फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई की?
0: पढ़ाई तो 12वीं तक क्लास में गई, लेकिन 12वीं के एग्जाम नहीं दे पाई, क्यों कि 12वीं की जिस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरे परिवार वाले बहुत प्रेशर देके, और क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी तो उनके भी शादी करनी थी, वो मेरे से कद कद काटे में छोटी लग रही थी और मेरे हेल्थ में अच्छी लग रही थी, तो सारे परिवार में एक ही कह रहे थे कि दोनों बहनों की शादी साथ में कर दी जाए। अब उनके तो शादी जुड़ी नहीं रही थी, तो कहा कि छोटी वाले की शादी जोड़ो तो बड़ी वाली की शादी जुड़ जाएगी। तो मेरी फोटो, मैं चाचा के पास रहती थी तो फोटो दिखा के उन्होंने शादी जोड़ लिया। अब शादी जोड़ लिया तो मुझे कहा देखिए आपको आना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, हम तो नॉर्मली फ्रॉक पहनते थे। फिर बहुत सारे लोग आए देखने के लिए, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हमको देखने के लिए आए घर के, तो पूरे परिवार में मेहमान आदि बैठे हुए हैं। मुझे कहा गुडे चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, तो मैं जैसे गई कहा आप भी बैठिए, तो हम भी बैठे। जब हम बैठे साथ में तो मुझे पूछा, मेरा नाम पूछा, तो हम तो बाबा के ज्ञान में चलते थे तो बाबा का नशा था, तो मैंने जैसे आपका नाम क्या है, तो हमने कहा मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम तीजाबाई बिसेन है। तो आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मैंने कहा मैं परमधाम निवासी हूँ, मेरे अलौकिक परमात्मा का नाम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में जाते हैं तो परमात्मा शिव कहते हैं, और मेरा जो नाम है वो कविता बिसेन है। तो वो कंफ्यूज हो गए कि बोल क्या रही है आत्मा परमात्मा। तो मेरे पिताजी गुस्से से मुझे देख रहे थे कि आप ऐसे कुछ नहीं बोलो, बस अपना सीधा सीधा नाम बताओ कि आपका अमुक नाम है। तो मैंने कहा मेरा ऐसा ही नाम है, मेरे को ऐसे ही बोला जाता है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये देह आपसे मिली है तो आप देहधारी पिता हो, आत्मा तो परमात्मा की है। तो वो सारे परिवार वाले मुझे देखने लगे। फिर कहा आपको खाना बनाना आता है, तो मैंने कहा हाँ जी बनाना आता है, मैं तो पहले खाना भगवान के लिए बनाती हूँ, फिर भगवान को भोग स्वीकार कराती है, फिर हम सब खाते हैं। तो कहा कौन से भगवान को खिलाती हो, तो मैंने कहा निराकार शिव परमात्मा, जिस परमात्मा की अब शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, उस परमात्मा को हम भोजन स्वीकार कराते हैं, उसके बाद हम और उन्हीं याद में बनाते हैं तो भोजन शक्तिशाली बनता है, फिर हम भोजन खाते हैं। फिर कहते हैं कि आपने खाना बनाया हो तो आपको पता है कि अगर 1 किलो चावल होगा तो उसमें कितने दाने हो सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत प्यार से, मैंने कहा कभी गिनती तो नहीं किया है मैंने, लेकिन गिनती करके मैं जरूर बताऊंगी आपको कल ऐसे मैंने कहा
1: जी।
0: फिर उसके बाद में उन्होंने और कोई सवाल किया, तो मैंने सोचा सवाल का करते ही जा रहे हैं, तो मैं बाबा को याद करने लगी, बाबा मुझे इनके जाल में फंसना नहीं है, मैं आपकी हूँ, आप आओ बाबा मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे इनके कोई सवालों के जवाब अभी देने नहीं, आप कुछ तो ऐसा युक्ति रचो कि ये मुझे इस जगह से मुक्त करे और मैं जल्दी चाचा के पास चली जाऊँ। तो ऐसे देखने लगी, जस्ट 2-4 लोगों के पास मुझे पेन दिखाई दी उनके जेब में, तो मुझे कभी संकल्प भी नहीं आया कि मुझे कुछ सवाल पूछने भी आएगा, पर जस्ट बाबा को याद किया और जस्ट टचिंग हुआ और उनका पेन को देखते हुए मुझे जैसे याद आया कि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ, तो मेरे जो पेरेंट्स बैठे थे मुझे आँख दिखाने लगे, बिल्कुल आपको अधिकार नहीं पूछने का, मैंने कहा बस मैं एक ही बार पूछना चाहती हूँ, तो कहा भले पूछो क्या पूछना है, क्योंकि बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने कहा पूछो। मैंने कहा आपके जेब में ना पेन है, आप इसे कितने अक्षर लिख सकते हो, आप बताएंगे इसमें। तो एकदम से गुस्से में आके खड़े हो गए, ये कैसे बेहुदा सवाल है। मैंने कहा सही बात है,
1: आप चावल पूछ सकते
0: हो, 1 किलो चावल आज तक किसी ने गिनती नहीं की है, दाने छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो वो कोई गिनती आज कर भी नहीं सकता, तो एक पेन है जिसमें कितनी स्याही होगी और कितने अक्षर आप लिख सकते हो, अगर आप हिसाब बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं भी कल चावल गिनती करके बताऊंगी। तो एकदम गुस्से में आके वो लाल चेहरा हो गया और खड़े हो गए, मेरे माता पिता भी साथ में थे, बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर, ये कैसे हमारी इंसल्ट कर दिया, इनको बहुत बुरा लगा, अभी क्या सोचेंगे। जैसे वो दरवाजे के बाहर विदाई करने के लिए गए, फिर मेरे पिताजी आए और बहुत गुस्सा होकर मुझे चमाट मारी, कहा आज के बाद तो तुमको बिल्कुल बाहर नहीं लेके आना, अब तो तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, अब जो भी मिले। तो बोले रिश्ता तो पक्का हो ही गया है, फिर उनके पास जाके मेरे पिताजी हाथ पैर जोड़े कि मेरी बेटी ने बहुत गलत सवाल किया, मेरी बेटी से आपने परेशान हुए होंगे, मैं माफी चाहता हूँ। मैं सब देख रही थी, रोते जाके देख रही थी क्या क्या हो रहा है। माताजी ने तो सर ही छोड़ दिया था, फिर पिताजी क्या किए, हमको घर में बंद कर दिए सारी बहनों को।
1: माताजी ने कब शरीर,
0: माताजी ने मुझे लगता है 25-30 साल हो गए सर ही छोड़ दिया था,
1: मतलब माता छोटी थी, ये 12वीं से पहले,
0: हाँ 12वीं से पहले माताजी ने सर ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में पिताजी ने क्या किया, हम सब बच्चों को गर्मी के दिन चले, सब बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिए, और घर के अंदर सब कुछ था तो वाड़ा था हमारा, तो उधर से क्या किया उन्होंने, पूरा घर बाहर से बंद करके चले गए और खेत में चले गए, कहा कोई लड़कियों को बच्चों को घर के बाहर निकलना नहीं है। तो सब रोने लगे, आपस में छोटे छोटे थे तो रोने लगे, अभी दीदी आपके कारण हमको ऐसे पनिशमेंट मिली, हम बाहर खेलने भी नहीं जा सकते ऐसे करके। तो मैं बोली बाबा है ना, उनको कुछ कुछ बातें सुनाने लगी अच्छी अच्छी। उसी बीच में हमारी पड़ोस में एक चाची रहती थी जिनको चाबी देके गए थे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ तो बीच में आप बच्चों का ध्यान रख लेना करके। तो वो आई और जैसे दरवाजा खोला और सब बच्चों को पूछने लगी कैसे हो, कुछ खाए नहीं खाए, और मैं रोने लगी। फिर मेरे को कुछ खिलाने लगी तो कुछ फल रखे हुए थे, अमृत रखा हुआ था, वो कहता तुम ये खा लो, तुम तो खाना नहीं खाओगे ना लहसुन प्याज का, तुम ये खा लो। तो मैंने वो खा लिया। फिर करते करते मुझे अचानक याद आया कि कुछ तो मैं करूं ऐसा और यहीं से छुटकारा पाऊं। तो बाजू में किराना की दुकान थी हमारे घर के सामने, तो बहुत अच्छे थे हमसे इस रिलेशन में, तो जस्ट वहां गई और ड्रिंग ड्रिंग वाले पहले टेलीफोन होते थे और चाचा का नंबर मालूम था मुझे, तो वहां जाके फोन किया और फोन करके तुरंत बोला कि चाचा ऐसे ऐसे हुआ, सारी कहानी सुनाई। तो कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो मेरी दादी थी पापा की मौसे भाई, क्योंकि चाचा जो थे पापा के मौसे भाई थे और वो ज्ञान में चलते थे। तो मेरी दादी, मेरी बुआएं, मेरे चाचा चाची फोर व्हीलर से आए। फिर जैसे वो चाची थी 15 मिनट लगते थे आने में, तो बैठी थी। तो कहा क्या हुआ कैसे हुआ, तो कहा हम तो इसको लेके जाएंगे गुड़िया को। तो कहा नहीं नहीं इसके पिताजी है नहीं, आप इसको कैसे लेके जा सकते हो। तो मेरे चाचा ने लेटर लिखा लेटर पैड पर, कहा देखो ये बेटी हमारी है और हमने इसको गोद ले लिया है और अब हम इसको लेके ही जाएंगे क्योंकि ये नहीं रहेगी यहाँ पर। और मैंने भी कहा मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ पर, ना मैं शादी के लिए तैयार हूँगी, अगर यहाँ रहूंगी तो फिर तो वो शादी कर देंगे मेरी और मुझे नहीं करनी शादी। बाबा मुझे पक्का निश्चय हो गया था। फिर उसके बाद में चाचा जी, और मैंने भी लिख दिया कि अभी मैं वापस कभी नहीं आऊंगी।
1: फिर समर्पण का कैसे हुआ?
0: फिर उसके बाद में चाचा के पास में रहने लगी। तो फिर शाम को, जैसे शाम हुई तो गांव के कुछ लोगों को मेरे पापा आए लेकर के कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए करके। तो चाचा ने तब तक मुझे बुआओं के पास छोड़ दिए थे, घर में थी नहीं, तो कहा बेटी आ है पर वो चली गई है यहाँ है नहीं। तो बहुत विरोध किया, झगड़े हुए कि हमारी बेटी वापस दो, को आपकी बेटी नहीं है, वो तो परमात्मा की बेटी है और वो हो गई है। तो काफी दिन चाचा और पापा से विरोध रहा, बातचीत नहीं रही। फिर रहती रही सेंटर पर, उसके बाद फिर बड़े सेंटर पर, मेरी बुआ भी सेंटर इंचार्ज थी तो उनके पास, मेरी बुआ के पास भेज दिया था, वहां पर ही रही। जब मेरा समर्पण होने का दिन आया तो समर्पण, चाचा बोले समर्पण कराना जरूरी है और जो भी खर्चा लगेगा तो हम करेंगे लेकिन हम तो को करना है। तो माता जी आई थी एक बार मिलने के लिए कि इसके पिताजी बहुत विरोध कर रहे हैं, हम साइन नहीं देंगे, तो कभी सिग्नेचर नहीं देंगे, माता पिता की साइन तो फाड़ के फेंक देंगे ऐसे ऐसे। और फिर आए एक दिन मिलने के लिए, दोनों भी समझाने लगे। तो मैंने कहा मैं तो शादी शिव बाबा से करूंगी, तो कहा ये फोटो से शादी करूंगी ऐसे ऐसे मुझे बोलने लगे। तो मैंने कहा फोटो नहीं है, ये परमात्मा शिव है, निराकार है, कितनी सारी बहने परमात्मा से शादी करके ब्रह्मा कुमारी बनी, सेंटर के उदाहरण दिए, नहीं मान रहे थे। फिर भी मैंने चाचा चाची को, मैंने कहा चाचा मैं तो करूंगी। ये चाचा चाची ने सिग्नेचर किया, सब कुछ किया, माता पिता का कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मेरी चाची गीत बहुत गाती थी तो मुझे भी गीत गाना सिखाया, तो मुझे कवि बोलती थी बहुत प्यार से। तो चाचा कहते हैं ऐसा करते हैं, इसके माता पिता तो सिग्नेचर देने वाले नहीं है, इसका नाम भी बदल देंगे, फिर तो क्यों इसका नाम रखे लौकिक नाम, तुम तो कवि कहती हो, इसको ता जोड़ देते हैं, बन गई बाबा की कविता। तो इस तरह से मेरा एक अलौकिक नाम हो गया और तब से मेरा सेंटर से लेके आज तक अलौकिक नाम ही चलता है।
1: बहुत सुंदर। तो फिर आप जब समर्पित हुए, आपकी भाई बहन भी आपसे मिलने आए?
0: हाँ मिलने आए, लेकिन जब समर्पण हुआ माउंट आबू में हुआ, दादी प्रकाशमन जी के रहते, लेकिन मेरे परिवार से, लौकिक परिवार से कोई भी नहीं आए, बल्कि वो और भी नफरत करने लगे कि ये क्या किया, पिताजी मान नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे है, फिर भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो चाचा जो ज्ञान में भाई बहने चलते थे, गीता पाठशाला थी, और कुछ रिश्तेदार तो जो ज्ञान में चलते थे वो सब आए। फिर क्या हुआ, जब स्टेज पर आए तो दादी जी कहने लगी कन्या के माता पिता को बुलाओ, कन्यादान करे, हाथों में हाथ देवे दादी जी के। जब मैं सभी बहनों को देख रही थी, सभी बहनों के साथ में उनके माता पिता साथ में थे और मेरे माता पिता तो थे ही नहीं जो मेरे हाथ में हाथ देवे। तो जैसे मैं चाचा को देखी और मैंने कहा मेरे तो माता पिता है ही नहीं जो दादी के हाथ में हाथ, और मुझे अचानक ही रोना शुरू आ गए और मैं रोने लगी। तो दादी कहती क्या क्यों रो रही हो, मैंने कहा दादी सबके माता पिता है, मैं तो कितना अच्छा काम कर रही हूँ परमात्मा से शादी, तो भी मेरे माता पिता नहीं आए हैं, तो मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ ना उनकी नजरों में, तो ऐसे करके मैं रोने लगी। तो फिर दादी प्रकाश मनी ने देखा कि रो रही है, तो कहा क्यों रो रही है आपकी लड़की, क्या हुआ? कहती इसके माता पिता नहीं आए ना, तो बोले क्यों इसके माता पिता नहीं ज्ञान में चलते? तो फिर दादी ने थोड़ा शॉर्ट में बताया कि विरोध करते हैं वो और ये पक्की चलना चाहती है, लेकिन हमें ना इनके साथ में ये चाचा चाची इसके माता पिता के रूप में ही है और हमें हाथ में हाथ देंगे, और ऐसे करके फिर दादी ने समझाया और फिर मेरा समर्पण हुआ, डायमंड हॉल में हुआ।
1: बहुत सुंदर। तो आपके जीवन में रोल मॉडल कौन थे, किनको आप ज्यादा आदर्श मानते थे?
0: तो मैं सेंटर की दीदियों को ही देखती थी, अपने लक्ष्य को देखती थी कि ऐसे बनना है, और जो लौकिक चाचा चाची थे तो मुझे समय प्रति समय बहुत अच्छी अच्छी धारणा की और मधुबन की मुरली की बातें सुनाते रहते थे, और जो प्रोग्राम होते थे तो आए दिन मुझे चाचा सेंटर पर लेके जाते थे, नागपुर सेंटर पर लेके जाते थे, तो पुष्पा रानी दीदी से मिलना, सावित्री दीदी जो हमको बहुत प्यार करती थी, और हमारी सेंटर की बहनें बड़ी बड़ी जो माला दीदी है अपने, उनको देखती थी, बड़ी बहनों को देखती थी कितना सुंदर जीवन है, तो उनकी ड्रेस मुझे बहुत भाती थी, जो व्हाइट साड़ी पहनती थी ना दीदी लोग, तो मुझे भी ऐसे बनना, मैं इनके जैसे सेवा करूंगी, इनके जैसे भाषण करूंगी, ऐसे मुझे बहुत आकर्षित मैं तो हुआ, और तब मुझे बहुत पक्का मान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगी। तब से मेरे परिवार से, मेरे परिवार वालों ने फिर मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया, तो कहा आपके बाद आप मर गई हमारे लिए, कभी नहीं आना हमारे पास। तो 7 साल तक कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा घर से, कुछ भी नहीं रहा।
1: चाहे आप उनकी पसंद की शादी करो या फिर अपनी पसंद की शादी करो, एक महिला के जीवन में संघर्ष तो देखना ही है
0: जी।
1: चाहे वो मायके से हो या फिर ससुराल से हो, हर बात में खुद का निश्चय, खुद के जीवन के प्रति खुद का मार्गदर्शन। तो आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी क्लैरिटी कि मुझे यही जीवन जीना है और इसी को जीवन जीना कहते हैं, ये कब महसूस हुआ?
0: मुझे ये महसूस तब हुआ जब मैं अमृत वेला मेरे लौकिक चाचा चाची करते थे, और वो बाबा से बहुत दृष्टि लेके, शक्ति लेकर के वो जो भी कहते थे वो सिद्ध होता था। बाबा की बातें सुनाते थे, गांव-गांव जाते थे, सेवा करते थे, गरीब आत्माओं को देखते थे, दान धर्म करते थे, अनेक आत्माओं के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाया, खुद भी परिवर्तन करते थे अपने जीवन में, और वो बातें सब मुझे देखती थी मैं आंखों से, और सीखती थी, खुद भी करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि ये जीवन बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन है, तो धीरे धीरे मुझे बहुत निश्चय होने लगा, और ऐसा लगता था जैसे बाबा की मुरली रोज मुझे पढ़ने के लिए देते थे, मैं स्टेज पर बैठ के मुरली पढ़ती थी, और एक बार तो ऐसा होता था हमारे लौकिक चाचा चाची कितना मतलब ध्यान खिंचवाते थे, जब प्रचंड मार्ग लगाई जाती थी तो मेरे लौकिक परिवार के कम से कम 10 लोग बैठे होते थे, अब मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ ना, तो लौकिक में बोलती थी हिरण दादी, शालिग्राम चाचा जी, सावित्री चाची, कहती थी कौन है आपका यहाँ चाचा चाची, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हम आत्मिक रूप से बैठे हैं, इस दीवार के बाद जाओगी ना तुम्हारा लौकिक परिवार आएगा, यहाँ कोई लौकिक नहीं, यहाँ सब अलौकिक और बाबा के बच्चे बैठे होते, जब तक तुम हम शालिग्राम भाई नहीं बोलोगे, हिरण बहन नहीं बोलोगे, तब तक हम ओम शांति भी नहीं बोलेंगे, इतना मुझे उन्होंने पक्का कराया था। तो जब मैं अपने लौकिक चाचा चाची का नाम लेती थी, दादी का, मेरे फूफा जी, मेरे मौसा जी सब बैठते थे, जब तक हमारा नाम नहीं लोगी तुम, हम ओम शांति नहीं करेंगे, बाकी सबका नाम लेती हो तो हमारा भी नाम लो, तो इतना उन्होंने आत्मिक स्थिति को भी पक्का कराया, तो मुझे एक दृढ़ निश्चय हो गया कि परमात्मा आए हैं हमारे लिए और हमें अपना संपूर्ण जीवन इतना सच्चाई से, अच्छे से, श्रेष्ठ जीवन जीना है ताकि हम अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सके।
1: बहुत सुंदर। तो जब आप इतनी दृढ़ता और इतनी क्लैरिटी के साथ अपने जीवन का निर्णय लिया और उस पे अडिग रहे हैं, और पिछले 4 दशकों से अधिक समय से आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, इस पवित्र जीवन को जी रहे हैं, सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसी क्या उपलब्धियां या प्राप्तियां या जीवन में ऐसे कौन से परिवर्तन को आप देखते हैं?
0: कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी मुझे चिड़चिड़ापन होता था, तो जब कोई भी कुछ कहता था तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता था, लेकिन जब मैं माउंट आबू आई, मैंने दादियों को देखा, जब माउंट आबू सेंटर पर रहने लगी, बाद में मेरा परिवर्तन हो गया, माउंट आबू आने लगी, और माउंट आबू मैंने मनोहर दादी, दादी प्रकाश मनी, दादी ईशो जी, मैंने सब दादियों को देखा, तो सब दादियों में जैसे ना गुणों की खान, इतना प्यार, इतनी शांति, इतनी सुकून, हर प्रकार से जब उनको जीवन को देखती थी तो लगता था कि दादियों को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता है, ना कभी जोर से भी नहीं बोलते हैं, कभी इसे गुस्से में आंख भी नहीं दिखाते, कितना प्यार। तो उनकी सब दादियों को देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि इन जैसे बनना है, ऐसे दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करना। और निश्चय मेरा बढ़ता गया कि जो दादियों ने बाबा की शिक्षाओं को लेके इतना ऊंचा जीवन बनाया, आज विश्व में नंबर वन जीवन जी रही, आदर्श जीवन है सभी दादियों का। दादी ने कहते लेकिन दादी माँ के रूप में प्रत्यक्ष हो गई है। तो बस ये मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे दादियाँ, और आज भी वही है कि उन जैसा बनना है और बाबा की शिक्षाओं को, जो बाबा शिक्षा देते उनको संपूर्ण रीति से अपने जीवन में धारण करना है। ऐसी कोई बात न हो जाए जो मेरे से छूट जाए। तो इसीलिए मैं रोज अमृत वेला भी 2 बजे उठती हूँ, 2 बजे उठ के स्नान करके मैं 3-3 तक अमृत वेला करने बैठ जाती हूँ, और 5:30 तक मेरा अमृत वेला चलता है। उसके बाद भी स्नान करके फिर मुरली क्लास में जाती हूँ। तो ये मेरे लाइफ का एक लक्ष्य है कि मुझे जीना है। संकल्प बचपन से एक था कि जीवन जीना है तो ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीना है, जीना है तो एक आदर्श जीवन जीना है, और सच्चाई और अच्छाई के साथ जीना है।
1: बहुत सुंदर।

0: वर्तमान समय में आप इस ब्रह्म कुमारी मुख्यालय परिसर में रहते हैं, तो आपकी क्या सेवाएं होती है?
1: अभी तो खास मतलब इस प्रकार की दीदियों ने विशेष मुझे निर्धारित नहीं किया सेवा के लिए, लेकिन जो सेवाएं सुचारू रूप से दादी जी के कॉटेज में चलती थी कि काफी भाई बहने मिलने आते हैं, उनसे हम मिलते हैं, ज्ञान की रोरियान करते हैं और आध्यात्मिक रीति से जो भी स्टूडियो में बुलाते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, कई जगह मुरली सुनाने के लिए जाते हैं, ज्ञान की रोरियान चलती रहती है, तो जहाँ भी बुलाते हैं ऑल इंडिया में वहाँ भी हम जाते रहते हैं और हमारी सेवाएं हम देते रहते हैं।
0: बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच दीदी जी। आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में आए और एक महिला और उसमें भी खास एक छोटी सी बच्ची को जब आध्यात्मिक ज्ञान की स्पष्टता जब मिलती है, उनके अंदर एक दृढ़ता और उनकी अपनी जीवन को सजने संवारने की एक ताकत क्या होती है और वो कैसे आगे बढ़ती है, आज हमने आपके जीवन से देखा और इसे ही कहते हैं जीना, इसी का नाम है। थैंक यू सो मच दीदी।
1: ओम शांति।
0: दोस्तों यहीं पर हम आप सभी से विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए अनुभव एक नई योगी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: फंक्शन।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: आज श्री कृष्ण जयंती की, जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, बधाइयां, मुबारक हो, मुबारक हो। श्री कृष्ण की जन्म जयंती आते ही सारे भारत भर में एक ऐसा हर्षोल्लास छा जाता है, उमंग, उत्साह और खुशी हर एक के जीवन में भर जाती है। जो चारों ओर देखो तो हर कोई विभिन्न तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं। कई जगह देखो तो बहनें, माताएं लड्डू गोपाल के रूप में उसको झूला झूलाते हैं। कहीं देखो तो कुमार या भाई लोग मिलकर के संगठित होकर के बहुत ऊंची मटकी बांधते हैं और उस मटकी को फोड़ते हैं। तो कहीं देखो तो श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों की झांकियां सज रही है और हर कोई उन झांकियों को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। श्री कृष्ण की जयंती में ऐसी क्या खास बात है जो इतना हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और किसी देवी देवताओं की जयंती नहीं मनाए? वहां तक

श्री कृष्ण को पाने की या श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने की रहती है। और यही सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण साक्षात में इस भारत भूमि पर थे उस समय का नजारा कैसा होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा, काश हम भी उस समय में होते थे। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहेंगे कंस के कारावास में हुआ, घोर अंधेरी रात्रि थी, खूब तूफानी रात थी और ऐसे समय में उसका जन्म होता है। और दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि चारों ओर पानी ही पानी था और एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आया। अब दोनों बात अगर देखा जाए एक तो नहीं है, अब दोनों में से सत्य क्या है? यह सचमुच श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, जिस श्री कृष्ण की दुनिया के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब इस संसार में थे तो उसकी महिमा में गाते हैं वो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न अवस्था में थे। उस समय का समाज कैसा था? तो नेचुरल है, जहां इतनी पावन आत्मा जन्म लेती हो वो समाज कितना श्रेष्ठ होगा। तो उस श्रेष्ठ समाज में सबसे पहली बात क्या कारावास होता है, जेल होती है? नहीं, ये भी किसी बात का प्रतीक है या किसी बात की ओर संकेत कर रही है। और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जरूर मनाए लेकिन समझ के साथ मनाए। कहने का भावार्थ यही है कि कारावास यानी बंधन कलयुग के अंदर आज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कितने बंधन हैं और उस बंधन वाली बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कारावास यानी अज्ञानता की अंधकार रात्रि जहां विकारों का तूफान चरम सीमा पर था। आज चारों ओर दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात है जहां विकार चरम सीमा पर है, अनेक और बुराइयां छाई हुई है, हर एक मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की बंधनों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो नेचुरल है श्री कृष्ण को कहते ही है कि जब वो हर आत्मा को मुक्त करने आते हैं अर्थात कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तब ऐसी स्थिति होती है और तब उन आत्माओं को उन बंधनों से मुक्त कर अनेक प्रकार के दुख दर्द परेशानियों के बंधनों से मुक्त कर श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाते हैं। और इसीलिए वो श्री कृष्ण की दुनिया जहां इस कलयुग के बाद आने वाली सत्युगी श्रेष्ठ दुनिया जहां श्री कृष्ण जैसे पावन आत्मा का जन्म होता है। इसीलिए दूसरी ओर जो दिखाया कि चारों ओर पानी ही पानी और ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आता है, अर्थात ये कलयुगी अज्ञानता की दुनिया जब समाप्त होती है और पावन सत्यों की दुनिया जब इस संसार में आती है तो उस समय भारत ही होता है, बाकी चारों ओर दुनिया जलमय हो जाती है लेकिन भारत खंड अविनाशी माना जाता है।

और अनेक आसपास के देश जो है भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए भारत को भारत नहीं महाभारत कहा जाता है। और वो महाभारत की आकृति उस समय एक पीपल के पत्ते की तरह, चारों ओर पानी ही पानी, और उस पानी में भारत भूमि पीपल के पत्ते की तरह, जहां से कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन उस भारत जो पीपल के पत्ते की तरह था, वहां पर अंगूठा चूसता हुआ आता है। और जो कहा देवकी और वासुदेव का पुत्र था, भावार्थ यही, जो देव कुल की आत्माएं थी, उन सब देव कुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त कर ऐसे सतयुगी पावन सृष्टि में ले जाते हैं, जो पीपल के आकार की भारत भूमि थी। आज भी थोड़ा सा हिस्से नीचे का तो पीपल के पत्ते जैसा ही आता है, लेकिन उस समय भारत खंड एक पीपल के पत्ते की तरह होता है। और ऐसे पीपल के पत्ते पर अकेला से कृष्ण नहीं होगा, उसके साथी भी होंगे। ऐसी पावन दुनिया जहां पूरी राजधानी बनती है, और जहां वो देव कुल की आत्माएं सब जन्म लेती है, और इस संसार को स्वर्ग कहो, कृति युग कहो, हेवनली किंगडम कहो, बहिस्त कहो, जन्नत कहो, अनेक धर्मों में उसको अनेक नामों से जाना गया है। ऐसी दुनिया में वो जन्म लेगा, और वो सतयुग के अंदर उसके कितने जन्म होते हैं, तो श्री कृष्ण के 8 जन्म दिखाए हैं। 8 जन्म होने कारण, और हर जन्म इतने श्रेष्ठ होने कारण, उसकी जन्म अष्टमी मनाई जाती है, अर्थात 8 जन्म की जयंती हर भारतवासी मनाते हैं। क्योंकि ऐसी पावन आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा कि जन्म जयंती मनाने में भी हमें इतनी खुशी होती है, या उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने के योग्य बने, हम भी उस दुनिया में जाए जहां सब आत्माएं इतनी पावन, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण हो। तो वहां जाने की इच्छा, लालसा हर आत्मा को होती है कि जहां हम साक्षात श्री कृष्ण के एक जन्म की जयंती नहीं, 8 जन्म की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। और इसीलिए जन्माष्टमी के बाद 9वे नंबर पर श्री राम आते हैं, इसीलिए राम नवमी कहा जाता है। 8 जन्म की जयंती फुल हमने मनाई, उसके बाद 9वे नंबर पर श्री राम आए, तो राम नवमी कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए ये भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ, ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, थोड़ा और बड़ा हुआ, रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और फिर जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो उसको नाथ नारायण कहते हैं। तो एक ही जन्म के ये विभिन्न अवस्था है। अगर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग में हो तो उसका बचपन श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? अवश्य सतयुग में ही होना चाहिए। श्री कृष्ण द्वापर में नहीं, लेकिन सतयुग का पहला राजकुमार, इसीलिए कहा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण इस संसार में आता है। जब चारों ओर दुनिया जलमय हो गई है, ऐसे समय पर नए भारत की वो पहली संतान है, पहला राजकुमार है, और वही नाथ नारायण बनते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य जब था, उसको कहते हैं सूर्यवंशी। और जब पूरा सतयुग सूर्यवंश बन जाता है,
सूर्य के समान चमकती हुई आभा मंडल में हर कोई आत्मा सोले कला संपूर्ण स्थिति में है। और फिर जैसे सतयुग से दूसरा युग आता है त्रेता युग, तो वहां चंद्रवंश आरंभ होता है। इसीलिए कहा जाता है श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ। इसीलिए श्री राम चंद्र कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग का अर्थात श्री नारायण का ही बचपन का स्वरूप और श्री राम त्रेता युग। तो आइए क्यों न हम पुनः श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर जयंती मनाएं, आठों जन्म की जयंती मनाएं और अपने जीवन में भी ये प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी अब इस कलयुगी दुनिया के बाद जो सतयुग आने वाला है, तो उस दुनिया में श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, साथ जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों न हम ऐसे अपने आप को भी योग्य पात्र बनाएं। उसकी जो महिमा गाई है वही योग्यता हमें अपने जीवन में भी धारण करनी है। उन्हीं शुभ वचनों के साथ सबको पुनः

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: कुमारीज लेकर आए हैं अपने सभी दर्शकों के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड।
3: ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। श्री कृष्ण एक ऐसा नाम, एक ऐसी छवि जिसे परफेक्शन कहा जाए, जो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। 16 कला संपूर्ण, हर रूप में हमने उन्हें संपूर्णता में देखा। और जब उनके जन्म की सेलिब्रेशन होती है तो हर साल बहुत प्यार से, धूमधाम से उसे सेलिब्रेट करते हैं, कई तरह के रिचुअल्स निभाते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें, इस मंच पर हर बार हमने डीप जाकर अध्यात्म की नजर से हर त्योहार को समझने की कोशिश की है। आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम जानते हैं कि क्या है उसका स्पिरिचुअल रेलेवेंस। हमारे साथ हैं प्रभा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत। ओम शांति।
4: ओम शांति
3: सिस्टर शिवानी। श्री कृष्ण का नाम आते ही जिसको बच्चे से प्यार है वो उन्हें लल्हा के रूप में देखती है, यू नो, नन्हे से कृष्ण के रूप में। जो लवर्स हैं, यू नो, जो लव की परिभाषा है, अनकंडीशनल लव, तो वो राधा कृष्ण को देखते हैं। जिन्हें वॉरियर चाहिए तो वो श्री कृष्ण को यू नो महाभारत के युद्ध में देखते हैं। पॉलिटिशियन चाहिए, शासक चाहिए, प्रशासक चाहिए, मतलब आई थिंक एनी रोल जो आज के समाज में, सोसाइटी में चाहिए, श्री कृष्ण रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट आज के वक्त में।
4: ब्यूटिफुल वॉट यू शेयर जस्ट नाउ कि ही वॉज परफेक्ट इन एवरी रोल। तो बच्चे के रूप में परफेक्ट, एक लवर के रूप में परफेक्ट, एक गाइड के रूप में, क्योंकि युद्ध में जो रोल था वो गाइड करने का था, एक शासक के रूप में, एक हर रोल में परफेक्ट परफेक्ट। एंड दिस इज समथिंग विच वी आर ऑल सीकिंग टू अचीव। हम सब ये चाहते हैं, क्योंकि आज हम भी कितने सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोशल लेवल पे। आज जितने रोल्स हैं उतने शायद पहले नहीं थे, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजों में हैं, यू नो, बहुत सारी चीजों में। सो वी हैव सो मेनी रोल्स टू प्ले, एंड हर रोल में हम परफेक्शन अचीव करने की जब कोशिश कर रहे हैं, एंड समवेयर वी फील वी नॉट बीइंग एबल टू डू दैट। एंड जितना हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, जब हम वो नहीं कर पाते तो वी फील डिसअपॉइंटेड, वी पुट इन मोर एफर्ट। नो, आई हैव टू बी अ परफेक्ट मदर, आई हैव टू बी अ परफेक्ट मदर, आई हैव टू बी अ परफेक्ट प्रोफेशनल। ये परफेक्शन रोल में हम मेहनत कर रहे हैं अचीव करने की। श्री कृष्ण ने रोल में परफेक्शन अचीव करने के लिए कुछ नहीं किया है। इट इज ओनली दैट द सोल वॉज परफेक्ट, यू नो। एंड अगर आज हम इस बात को वहां से ले लें, बिकॉज वी दे आर देन टचिंग इट एट द सीड लेवल, एट द फाउंडेशन लेवल, यस, कि ये इम्पोर्टेंट है। आत्मा 16 कला संपूर्ण, परफेक्शन मतलब 16 कला संपूर्ण, मतलब थोड़ी भी मार्जिन नहीं थे कुछ के, इतनी सी कमी किसी चीज के लिए। तो आत्मा जो 16 कला संपूर्ण होगी वो फिर जो भी करेगी उसके बाद, इट कैन बी नथिंग लेस देन परफेक्ट, वो परफेक्ट ही होगा। सो वी लेट्स लुक एट इट दिस वे, आज हमने जो अपनी इक्वेशन बनाई वो थी, अगर मेरा रोल परफेक्ट होगा देन आई विल बी हैप्पी, देन आई विल फील लव, देन आई विल फील रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे रोल में आई हैव अचीव्ड परफेक्शन। एंड ट्रूथ ये है कि इफ आई द सोल एम परफेक्ट, कि मैं आत्मा अगर परफेक्ट हूँ तो मेरा हर रोल अपने आप परफेक्ट हो जाएगा।
3: एंड मे बी यू नो मोमेंटरली इट माइट लुक टू द अदर्स, टू अदर्स कि शायद इसमें कमी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर आप देखते हो, जैसे ही पर्पस देख जाते हो, अनदर थिंग व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल विच श्री कृष्ण लाइफ, अगर हम इन दिनों जो आप देख रहे हैं कि उनका पर्पस, यू नो, हर एक्शन का जो पर्पस था वो इतना क्लियर था।
4: लेकिन पर्पस में एक ही शब्द बोला है, धर्म। हर चीज में पर्पस में क्या बताया, धर्म। आप देखो हर एक में किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन में किसी को भी गाइड करते हुए तो श्री कृष्ण ने क्या किया, धर्म को रखो ऊपर, बाकी सब चीजें, इवन रिश्ते चलो बाकी सही और गलत क्या था वो भी नहीं, इवन रिश्तों को सेकंड रखा, फर्स्ट रखा धर्म. एंड धर्म मीन्स क्या, आत्मा का ओरिजिनल रिलीजन. व्हाट इज द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ द सोल? क्योंकि आज जब हम धर्म वर्ड सुनते हैं तो हम उसको रिलीजन्स ऑफ जो हमने क्रिएट किए कि मैं हिंदू मुस्लिम, जो श्री कृष्ण ने रेफर किया है धर्म से आत्मा का धर्म, जिसको हम कहते हैं स्वधर्म. व्हाट इज द रिलीजन ऑफ द सोल? तो आत्मा का धर्म शांति, प्योरिटी, प्यार, नॉलेज, विजडम, ये आत्मा का धर्म. मतलब आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कर्म के ऊपर धर्म को रखना है. कि कर्म धर्म के आधार से होना चाहिए, कर्म धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए होना चाहिए. आज हम कर्म किस लिए कर रहे हैं? वी नीड टू स्टॉप एंड आस्क ourselves, पहले क्या हमारा कर्म धर्म के आधार पर है, एंड दूसरा क्या हमारे कर्म का इंटेंशन कि हमें इस धर्म कर्म से रिजल्ट क्या चाहिए, हमें धर्म एस्टैब्लिश करना है. अगर हम भी ये कर लें, हमारे कर्मों की बहुत सारी क्वालिटी चेंज हो जाएगी पूरी तरह से. इट्स
5: वेरी इंपॉर्टेंट कि धर्म को समझें हम यहाँ पे. यू नो, हम बहुत सारे काम जो हम कहते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक है, धर्म के अनुसार कर रहे हैं, धर्म के से जुड़े हुए जितने भी हमारी रिचुअल्स हैं वो कर रहे हैं, धर्म को भी अपना रहे हैं, तो फिर क्यों हम गलत हो जाते हैं?
4: सी, धर्म वर्ड को अगर हम देखें वो स्व के धर्म से था. रिचुअल्स जो हमने शुरू किए करने और आज जिनको हम कर रहे हैं, वो रिचुअल्स के पीछे का मीनिंग क्या था कि इस रिचुअल को करके अपने धर्म को याद रखो,
5: मुझे याद रहे.
4: हाँ, मुझे याद रहे कि इस रिचुअल का ये मीनिंग है. इट्स अ रिमाइंडर. यू नो, रिचुअल कैन बी सिंबलाइज्ड टू, लेट्स से कि मुझे कल सुबह अगर 4 बजे उठना है तो मुझे 4 बजे एक्चुअली उठना है. नेचुरली आई कैन गेट अप नेचुरली एट 4 o'clock, लेकिन मैं अलार्म लगाती हूँ.
5: मैं कई सारे अलार्म लगाता हूँ,
4: कई सारे भी अलार्म लगा सकती हूँ, ठीक है. लेकिन वो अलार्म क्या है? वो अलार्म इज ओनली अ मेथड टू वेक मी अप. इट्स फॉर माई अवेकनिंग कि ये अलार्म बजेगा, मुझे उठना है. फिर धीरे धीरे जब हम रोज करने लग जाएं, तो धीरे धीरे तो हम अलार्म नहीं भी लगाएं तो हम उठ सकते हैं. लेकिन कभी कभी तो ऐसी भी स्टेज आ जाती है कि अलार्म भी लगाएं, अलार्म भी बजे और फिर भी हम नहीं उठे. तो रिचुअल को हम उसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि रिचुअल क्यों आया. रिचुअल केम एज एन अलार्म. यू नो कि अगर हम चलते चलते कोई चीज भूल गए हैं तो इट्स एन अलार्म कि वापस उस धर्म को अपने जीवन में फॉलो करो. अगर हम रोज उसको कर रहे हैं, हमें रोज रिचुअल करने की जरूरत नहीं है. हम उस धर्म को अपने जीवन में बिना अलार्म लगाए भी कर सकते हैं. लेकिन आज कई बार तो हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अलार्म रोज बजता है, मतलब हम वो रिचुअल रोज कर रहे हैं लेकिन धर्म को नहीं अपने जीवन में यूज कर रहे. तो मतलब अलार्म बजा, बंद किया, हो गया काम.
5: एंड देन द वे यू सेड द स्वधर्म की बात, वो तो हम शायद भूल ही गए ना, बिकॉज हमने उन्हीं धार्मिक कर्म कांड को मान लिया या धर्म के भी उन एस्पेक्ट्स को देख लिया जो मुझे सूट करते थे. बेसिकली
4: धर्म के कोई एस्पेक्ट्स नहीं है. धर्म मीन्स क्वालिटी ऑफ द सोल. हर धर्म, आज अगर हम हर धर्म को भी देखें, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी सिख ऑल द मेजर रिलीजन्स, वो रिलीजन क्या करने आया था, मतलब धर्म स्थापक हमें कुछ सिखाने आए थे. क्या सिखा रहे थे? पीस, लव, यूनिटी. ये तीन वैल्यूज हैं जो हर धर्म स्थापक हमें सिखाने आया. कोई भी धर्म स्थापक रिलीजन एस्टैब्लिश करने नहीं आए थे. यू नो, इफ यू स्टार्ट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, कोई कुछ बनाने थोड़ी आए थे कि ये इंस्टीट्यूशन बन रही है एज अ रिलीजन, या ये एक सेक्ट बन रहा है, या एक ये ग्रुप बन रहा है. नहीं, वो तो सिर्फ ज्ञान देने आए थे, वो तो सिर्फ सिखाने आए थे,
5: रिमाइंड करने,
4: रिमाइंड ही तो करने आए थे.
5: एवरीवन सेज दैट देयर इज नॉट इवन, यू नो, कोई ओरिजिनल नॉलेज ऐसा नहीं था. दे जस्ट हैड टू रिमाइंड अस.
4: हां, रिमाइंड अस ऑफ हु वी आर. तो हम धर्म किसको बोलेंगे? हम धर्म उनकी टीचिंग को बोलेंगे. और उनकी टीचिंग सबकी सेम थी, और उनकी टीचिंग उनकी हमारी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी के बारे में थी. तो अगेन धर्म मीन्स व्हाट? पीस, लव, यूनिटी, प्योरिटी, हमारी क्वालिटीज. हमने क्या किया, टीचिंग को धर्म नहीं कहा, टीचर को और टीचर के साथ हमने धीरे धीरे जो मेथड्स यूज करने शुरू किए, विच इज ऑल्सो देयर, जो जिसको अब हम रिचुअल्स कह रहे हैं या कुछ भी याद करने का तरीका, हमने उसको धर्म कर दिया. एक्चुअली रिचुअल्स या जैसे हम कहते हैं प्रे करना, नमाज पढ़ना, ये सब एक तरीका था उस धर्म को इंटीग्रेट करने का, उस परमात्मा से कनेक्ट करने के. वो अलग अलग तरीके थे, लेकिन धर्म फिर भी क्या था? धर्म वो नहीं था. धर्म इज नॉट इन द प्रेयर. धर्म इज नॉट इन द प्रेयर. धर्म इज इन द पावर दैट आई गेट आफ्टर रिसाइटिंग द प्रेयर. द प्रेयर इज द रिमाइंडर of my own religion. हर प्रेयर कह रही है लव. तो मतलब प्रेयर, वो प्रार्थना करो और अपने रिलीजन के बारे में याद करो, रिलीजन ऑफ द सोल. तो श्री कृष्ण ने भी हर स्टेप पे यही तो याद दिलाया. एंड वो भी क्यों? क्योंकि वो धर्म को हमने देखा कि उनके अपने जीवन में
5: उन्होंने जिया.
4: जिया.
5: You know why we love him so much? Yes. Because he actually is able to show us the perfection of
4: living embodiment. Na embodiment of perfection in action. You know, ek hai ki hum perfection ke bare mein sun rahe hain, pad rahe hain, lekin unki puri jeevan kahani mein hum dekhte hain ki har step pe perfection. Isliye hum unko

0: કે તે 16 કલા સંપૂર્ણ સંપૂર્ણ નિર્વિકારી મર્યાદા પુરુષોત્તમ, મર્યાદાઓ મે ભી સબસે ઉત્તમ પુરુષ, પરફેક્શન.
1: જિસે શિવાની વેરી બ્યુટિફુલી ના અભી જો ચીઝે નિકલ કર આઈ ઉસમે યે આપને કહા કે ધર્મ કો હમે ઇમ્પ્લીમેન્ટ કરના હે. હમ જો સ્ટોરીઝ ભી દેખતે હૈ શ્રી કૃષ્ણ કી, વોટ ઇઝ વેરી નાઇસ ઇઝ ધેટ ઇમ્પ્લીમેન્ટેશન ઓફ ધેટ નોલેજ, યુ નો, જો હે જો ધર્મ હૈ સ્વધર્મ ઉસકા હર રોલ મે યુસેજ જો હૈ. આજ કે વક્ત મે હમ યે માનતે હૈ કે ધર્મ અલગ ઓર મેરા જીવન અલગ, કોશિશ કરને મતલબ ઇન્ટીગ્રેટ કરને કી કોશિશ ભી કરે તો ઇટ લુક્સ લાઈક કે વો તભી હો સકતા થા જબ શ્રી કૃષ્ણ કા ટાઈમ થા યા વો વક્ત થા યા મેથોલોજી કી વો ચીઝે થી. આજ કે વક્ત મે હમ ઉસકો સોચી નહીં સકતે ધેટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ.
0: સી આજ હમે રિમાઇન્ડર્સ દિયે જાતે હૈ કે ધર્મ કો અપને કર્મ મે યુઝ કરના હૈ, એન્ડ તો ભી હમ ફીલ કરતે હૈ કે ધર્મ કે આધાર પે કર્મ. ધર્મ મીન્સ લેટ સે માય રિલિજન ઓફ પીસ, તો દેટ મીન્સ દેટ આઈ એમ અ પીસફુલ સોલ, મે શાંત સ્વરૂપ આત્મા, એન્ડ મુજે પૂરા દિન શાંત રહેના. અગર મે આજ કા દિન પૂરા દિન શાંત રહી, એન્ડ શાંત મીન્સ મન સે એક ભી અશાંત થોટ નહીં, અગર આજ મેં પૂરા દિન શાંત રહી, દેન આઈ કેન સે આજ પૂરા દિન મેં અપને ધર્મ મેં સ્થિત થી,
1: ધર્મ પે ટિકી થી.
0: અબ યે તો હુનેરા, એન્ડ ધીસ વિલ હેપન વેન જબ હમ 100% ફિર સોલ કોન્શિયસ હો જાયેંગે, તબ વો ઓરિજિનલ ક્વોલિટીઝ અપને આપ હોંગી. જો નિરાકાર પરમાત્મા હમે સૃષ્ટિ ચક્ર કા જ્ઞાન સુનાતે હૈ, જિસે હમે સમય કી પહેચાન મિલતી હૈ, ઉસસે યે સમજના બહોત ઈઝી હો જાતા હૈ કે જો સૃષ્ટિ ચક્ર કા સબસે પહેલે કા સમય થા, મતલબ જબ આત્મા 100% ચાર્જ્ડ થી, 100% સોલ કોન્શિયસ થી, તો ઉસકો કોઈ યે અવેરનેસ થોડી કરની પડતી થી કે મુજે યે પીસફુલી કરના હૈ, મુજે યે પ્યાર સે બાત કરની હૈ, નહીં, વો આત્મા થી હી 100% ચાર્જ્ડ, તો ઉસકા હર કર્મ ઓટોમેટિકલી ધર્મ પે થા, અવેરનેસ નહીં થી કે યે ધર્મ હૈ. સતયુગ ઓર ત્રેતા યુગ મે હમ આત્માઓ કો કહેતે હૈ સંપૂર્ણ, ઇસીલિયે સતયુગ ઓર ત્રેતા યુગ કી આત્માઓ કો હમ કહેતે હૈ દેવી દેવતાએ, ઓર દેવી દેવતાઓ કી મહિમા મે હમ કહેતે હૈ 16 કલા સંપૂર્ણ સંપૂર્ણ નિર્વિકારી. ઠીક હૈ, ત્રેતા યુગ કે એન્ડ કી પોપ્યુલેશન હૈ 33 કરોડ, ઓર આજ દિન તક હમ સબ ગાયન કરતે હૈ 33 કરોડ દેવી દેવતાએ. મતલબ યે જો 33 કરોડ દેવી દેવતાએ થે, યે સારા દિન હર પલ ધર્મ મે સ્થિત થે. મતલબ એક્ચુઅલી ઉનકો ઇસકે અલાવા કુછ ઓર નહીં પતા થા,
1: જૈસે આજ હમ અધર્મ મે સ્થિત.
0: યસ, બિલકુલ
1: કમ્પ્લીટ,
0: ઇટ્સ બિલકુલ લાઈક ધેટ, બીકોઝ ટુડે વી આર કમ્પ્લીટલી ઓપોઝિટ ઓફ વોટ વી આર. વો સતયુગ થા, યે કલયુગ હૈ, તો સતયુગ મે હમ 100% ધર્મ મે સ્થિત થે, તો સતયુગ ઓર ત્રેતા યુગ મે કોઈ રિચ્યુઅલ્સ કોઈ પૂજા પાઠ પ્રાર્થના, મતલબ કોઈ ભી અલાર્મ લગાને કી જરૂરત નહીં થી ઉઠને કે લિયે, ક્યોંકી સોઈ નહીં હુએ થે ના, સોઈ નહીં હુએ થે, વી વર નોટ સ્લીપિંગ, વી વર અવેકન્ડ, હમ જાગૃત અવસ્થા મે થે, તો કોઈ રિચ્યુઅલ કી જરૂરત નહીં થી હમે ધર્મ કી યાદ દિલાને કે લિયે. તો સતયુગ ત્રેતા યુગ મે નેચરલ ધર્મ. પર દ્વાપર યુગ સે જૈસે જૈસે હમ બોડી કોન્શિયસ મે આયે, તો હમને થોડા થોડા અપને ધર્મ કે વિરુદ્ધ કુછ કુછ કરના શરૂ કિયા, વિચ મસ્ટ હેવ મીન ફર્સ્ટ ટાઈમ એંગર, પહેલી બાર ગુસ્સા, લસ્ટ, ગ્રીડ, જેલસી, યે બહોત હી કમ હુઆ હોગા ઇનિશિયલી, ઇટ્સ નથિંગ કમ્પેર્ડ ટુ જો અબ હૈ. જબ યે સબ હુઆ તબ હમારે ધર્મ શાસ્ત્ર લિખે ગયે, ઓર એક એક શાસ્ત્ર મે ફિર ક્યા સિખાયા ગયા, હમે ફિર સે ધર્મ પે ચલના સિખાયા જા રહા થા,
1: ઓર ફિર બતાયા ગયા કે ધર્મ હૈ ક્યા બેસિકલી.
0: આપ દેખો, સપોઝ એક બચ્ચા હમેશા સચ બોલતા હૈ, ફિર ધીરે ધીરે વો કિસી કે સંગ મે આને સે ઝૂઠ બોલના શરૂ કરતા હૈ, તો જૈસે વો ઝૂઠ બોલના હી શરૂ કરતા હૈ, ઉસકે પેરેન્ટ્સ કા રોલ ક્યા હો જાતા હૈ કે નહીં, તુમે વાપસ સચ કે રાસ્તે પે જાના હૈ. સેમ થિંગ હેપન્ડ વિથ દ્વાપર યુગ. સતયુગ ત્રેતા યુગ નેચરલ પરફેક્શન. શ્રી કૃષ્ણ સતયુગ એ દુનિયા કા ફર્સ્ટ પ્રિન્સ, ઇસીલિયે આજ તક ભી, કલયુગ કે એન્ડ તક ભી સબસે પ્રિય ક્યો હૈ, ક્યોંકે નેક્સ્ટ ટુ ગોડ હૈ, એક્ચુઅલી નેક્સ્ટ ટુ ગોડ હૈ, ક્યોંકે ગોડ કે બાદ, મતલબ નિરાકાર પરમાત્મા કે બાદ જો ફર્સ્ટ પરફેક્ટ સોલ હૈ, ફર્સ્ટ પરફેક્ટ સોલ હૈ, વો હૈ શ્રી કૃષ્ણ. તો સતયુગ કા ફર્સ્ટ પ્રિન્સ, સતયુગ કા ફર્સ્ટ રાજા, लेकिन सत्युग और त्रेता युग में जो सभी आत्माएं होंगी वो भी आत्माएं 16 कला संपूर्ण होंगी, ये भी है। वो पूरी दुनिया ही देवी देवताओं की दुनिया है, लेकिन जैसे द्वापर युग आया वही आत्माएं हैं धीरे धीरे धीरे धीरे द्वापर युग में आई, धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से ये सब करना शुरू किया, तो आप देखो उस समय कुछ आत्माओं का रोल बना आकर उनको वो धर्म याद दिलाने के लिए जिस धर्म पर वो ही सत्युग त्रेता युग में चल रहे थे,
1: जो उनका अपना धर्म है, basically.
0: अपना धर्म है,
1: you know, आत्मा का धर्म है।
0: हाँ, जैसे हम भी आज अपने आप को या औरों के साथ क्या याद दिलाते हैं, ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल नेचर। आज अगर हम करप्शन की तरफ भी जाते हैं तो कोई हमें याद दिलाता है, नहीं नहीं ये थोड़ी, ये तो आपने अब करना शुरू किया, इससे पहले आप कैसे थे।
1: अभी वैसे भी ऑनेस्ट, कई बार हम अपने बचपन के फ्रेंड्स को मिलते हैं, यू नो यंग जब हम थे या कॉलेज में थे, तो वो हमें याद दिलाते हैं, ओ द काइंड ऑफ यू नो एथिक्स एंड मॉरल्स यू हैड, यू रिमेम्बर। आज हमें लगता है कि हाँ हम उससे परे जा चुके,
0: परे जा चुके,
1: एक ही जीवन,
0: एक ही जीवन में। तो सोचो इतने सालों, हजार सालों में क्या हुआ होगा। जैसे हम द्वापर युग में आते हैं और थोड़ा थोड़ा अधर्म करना शुरू करते हैं अपनी सोच में और कर्मों में, तब ये सारी माइथोलॉजी की सारी जो ये बातें हैं ये लिखी गई, एंड इट इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि परमात्मा आकर अभी हमें समझाते हैं कि श्री कृष्ण जब वास्तविकता में, श्री कृष्ण जब इस सृष्टि पर थे वो सतयुग था। सतयुग में कोई दुर्योधन, कोई कंस, ये सब नहीं थे। सत्युग में कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि वो सत्युग था कि वो एक परफेक्ट दुनिया थी। लेकिन श्री कृष्ण सत्युग में थे, द्वापर युग में जब अधर्म शुरू हुआ तो अधर्म से वापस धर्म पे लाने के लिए ये सारी बातें लिखी गई, ज्ञान दिया गया। अब इसको अगर हम पूरे महाभारत को भी हम देखें तो एक एक ने जो रोल प्ले किया है वो अलग अलग संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है, जो अलग अलग, किसी के अंदर जेलेसी आई, किसी के अंदर ईर्ष्या आई, किसी के अंदर अटैचमेंट आई, सब संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है। और श्री कृष्ण वो गाइड है उस माइथोलॉजी में, महाभारत में श्री कृष्ण वो गाइड है जो हरेक को सिखा रहा है कि कैसे उस संस्कार के साथ उसको वर्क करना है। और इसीलिए उसने हरेक को ये कहा कि ये धर्म नहीं है, तुम्हें धर्म पे चलना है, चाहे वो भीष्म पितामह है, चाहे वो द्रोणाचार्य है, चाहे वो कर्ण है, चाहे वो पांच पांडव भी है, उनको भी उसने धर्म का ज्ञान दिया। तो कितनी ब्यूटिफुली वो बनाई गई है कि हरेक संस्कार को श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण सत्युग में उसी धर्म के लिविंग एम्बोडिमेंट है, तो इसलिए श्री कृष्ण के पात्र को उस महाभारत के उस पूरे उसमें लिया जाता है टू गिव द ज्ञान।
1: नो, इवन इफ यू लुक एट इट, अगर आप ये कह रहे हो कि दिस इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ यू नो द नेगेटिविटी, तो तभी उनको किल करना भी जरूरी है।
0: नहीं तो अगर आज हम देखें कि परमात्मा का ज्ञान, अगर हम कहें श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण देवता है, वो हिंसा का ज्ञान कैसे दे सकता है। इवन चाहे कोई बात कितनी भी बड़ी हो, वो ये नहीं कह सकता कि उनको मार दो। हर बार हमने महाभारत में जैसे देखा और सुना, धर्म की पुनः स्थापना के लिए,
1: एंड अहिंसा परमो धर्म,
0: अहिंसा परमो धर्म, और हर बार वो अर्जुन को भी क्या कह रहे हैं, धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुझे ये त्याग करना है। द्रौपदी को भी क्या सिखाया कि हाँ तुम्हारे बच्चे जाएंगे लेकिन धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुम्हें अपने मोह का त्याग करना है। कौन से धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुम्हें हिंसा करनी होगी। अधर्म यूज करके धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, लेकिन वो सिंबॉलिक है ना। एक्चुअली वो सिंबॉलिक किस चीज का है कि युद्ध यहाँ पे चल रही है, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमारी अपना गुड, हमारा धर्म, और ले बीच में ये जो संस्कार धीरे धीरे आने शुरू हुए थे द्वापर युग में।
1: और आज हमने जैसे शुरू में ही कहा कि दे आर, आई थिंक, सो पावरफुल,
0: टुडे दे आर पावरफुल,
1: दे आर 100, यू नो, मोर देन 100 इन नंबर्स एक्चुअली।
0: इसीलिए क्यों कहते हैं कि आज भी महाभारत का वो गीता ज्ञान आज भी उतना रेलेवेंट है जितना उस समय था। रेलेवेंट क्यों है, वो रेलेवेंट तब तक रहेगा जब तक हमारे अंदर अभी तक वो वाले संस्कार रहे,
1: जब तक हमारी स्वधर्म की स्थापना
0: वापस नहीं स्थापना हो जाती।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो हमें कह ही रहा है ज्ञान स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना करनी है। तो श्री कृष्ण ने जो महाभारत में दिखाया गया हिंसक युद्ध नहीं है, वो सब सिंबॉलिक है अपने अंदर के इस अधर्म के संस्कारों की हिंसा करना। नहीं तो पांडवों को बताना कि भीष्म पितामह की हिंसा करना या द्रोणाचार्य जो आपका गुरु था ये कैसे हो सकता है, उसकी हिंसा करना नहीं, उसके अंदर मोह का संस्कार था उसकी हिंसा करना, तो ये सारी हिंसा प्रतिज्ञा भी जो की भीष्म पितामह ने उसका भी कितना ब्यूटीफुली मीनिंग कि आपने प्रतिज्ञा की लेकिन चेक किया कि हर जगह रिजल्ट धर्म के आधार पर हो रहा था, सो ब्यूटीफुल एंड विच वी नीड टू नाउ चेक ऑल ओवर अगेन। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो द्वापर युग भी बीत गया, इन सभी धर्म शास्त्रों ने हमें ज्ञान दिया, हमें टिकाया, लेकिन हम अभी तक अपने धर्म की स्थापना वापस नहीं कर पाए हैं। नहीं तो द्वापर युग के बाद कलयुग ना आता। अगर धर्म की स्थापना हो जाती तो द्वापर युग के बाद कलयुग नहीं आएगा। कलयुग आया मींस हम अपने धर्म से और भी नीचे गिर गए। आज जिस युग में हम कहते हैं कलयुग नहीं घोर कलयुग है, अब घोर कलयुग में निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, इस धरा पर अवतरित होकर हमें फिर से वो सारा ज्ञान देते हैं जिससे अब धर्म की स्थापना होनी है। क्योंकि कलयुग के बाद जो युग आना है वो तो सतयुग है, कलयुग के बाद तो सतयुग ही आ सकता है, लेकिन कलयुग से सतयुग में आने के लिए धर्म की स्थापना होनी पड़ेगी,
1: धर्म की सोसाइटी में और पहले मुझ में,
0: मुझ में ही, मुझ में होगी तो सोसाइटी बन जाएगी। तो कलयुग से सतयुग का शिफ्ट मीन्स अधर्म से धर्म की तरफ एंड विच मीन्स हर आत्मा अधर्म से धर्म की तरफ।
1: We have to wait for the Krishna avatar, or you know, like because this is what we've been taught.
0: हाँ।
1: कि कहीं भी धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान को ही आना पड़ता है।
0: Yes, भगवान को आना पड़ता है। श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, 16 कला संपूर्ण देवता, निराकार परमात्मा शिव इस समय कलयुग के एंड में आते हैं। इस समय श्री कृष्ण यहाँ नहीं है, देखो आप, ये कलयुगी हम सारी आत्मा है, इस समय कोई भी आत्मा नहीं है जो संपूर्ण धर्म पे है। निराकार परमात्मा शिव आकर हमें ज्ञान देकर अपनी कमजोरियों से कैसे युद्ध करके उसको फिनिश करना है। हम सबके अंदर जो देवताई संस्कार है जिसको हम धर्म कहेंगे, तो हर आत्मा के अंदर परमात्मा आके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। एंड जैसे ही हर आत्मा के अंदर पुनः धर्म की स्थापना होती है तो समाज धर्म वाला हो जाता है जिसको हम सत्यु कहेंगे। एंड उस सत्यु का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है। तो एक्चुअली बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब श्री कृष्ण इस धरा पर आ जाएंगे। ये बहुत जल्दी समय आने वाला है क्योंकि सत्यु टुडे एवरीबडी सेइंग न्यू एज, द न्यू एज इज कमिंग। तो वो न्यू एज क्या है, दिव्यता की, डिविनिटी की, प्योरिटी की, श्री कृष्ण का युग सतयुग। लेकिन श्री कृष्ण के सतयुग के आने से पहले परमात्मा को आना पड़ता है उस सतयुग की स्थापना करने के लिए। तो वो परमात्मा आ चुके हैं, हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। अब इस जन्माष्टमी पर हमें उस ज्ञान को लेना है और श्री कृष्ण को जब हम याद करेंगे आज के दिन, उसको इन्वोक करते हैं, तो अब हमें सिर्फ ये याद रखना है, उसको ऐसे बाहर सिर्फ इन्वोक नहीं करना है, उस श्री कृष्ण को मतलब उस धर्म को, उस दिव्यता को अपने अंदर इन्वोक करना है। और एक दिन के लिए नहीं, लेकिन अपनी हर सोच और कर्म में उस श्री कृष्ण वाले दैवी गुणों को अपने अंदर इन्वोक करना है। क्योंकि श्री कृष्ण और सतयुग और वो धर्म की दुनिया बहुत जल्दी आई की आई, लेकिन एक है वो दुनिया आनी है, लेकिन एक्चुअली है हमें वो दुनिया लानी है।
1: बेसिकली आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट, दैट वी विल हैव टू मेक दैट एफर्ट,
0: वी हैव टू ब्रिंग दैट वर्ल्ड, फर्स्ट ब्रिंग दैट वर्ल्ड हियर एंड देन ऑटोमेटिकली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जब हम एक बड़ा संगठन उस धर्म को यहाँ स्थापन कर देंगे, सी महाभारत में भी क्या दिखाते हैं, कौरव इतने सारे, सेना उनकी इतनी बड़ी, पांच पांडव इस तरफ, और श्री कृष्ण कहते हैं पांच पांडवों को कि तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। मतलब आज भले 800 करोड़ की ये सृष्टि है, तो 800 करोड़ नहीं, लेकिन पांच पांडव, मतलब वन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी को बदल देगी, जिसको हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट, यू नो, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं सब कब बदलेंगे और दुनिया बदलेगी, सब बदलेंगे तो दुनिया नहीं बदलेगी, एक स्मॉल नंबर है जिसको हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं, वो बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी. तो लेट्स इन्वोक दैट डिविनिटी विद इन टुडे, दैट इज रियली देन जन्माष्टमी.
1: जैसे हम बिल्कुल ये भी कहते हैं कि जन्माष्टमी कृष्ण जन्म की बात करते हैं, तो अगर हमें उसको अनुभव करना हमारे अपने हाथ में है, अब हमें वेट करने की जरूरत नहीं है. यू नो, वी कीप ऑन सेइंग दैट.
0: अब देखो क्यों कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे दिखाते हैं. रात को 12 बजे मतलब घोर कलयुग. घोर कलयुग का जब समय है तब श्री कृष्ण का जन्म होगा. उसके बाद मतलब घोर कलयुग में अब धर्म की स्थापना हो रही है, एंड वो धर्म मतलब दिव्यता का जन्म, उस डिविनिटी का जन्म, वो श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है.
1: वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. अभी तक हम यही सोचते थे कि मेरे इष्ट जिन्हें हम प्यार से श्री कृष्ण बुलाते थे या माधव बुलाते हैं या हम याद करते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी पर हम कितनी सारी सेलिब्रेशंस करते हैं, लेकिन आज जो बात समझ में आई कि वो डिविनिटी, वो दिव्यता जो हम श्री कृष्ण में ढूंढते हैं, मुझे आज अपने अंदर कहीं एक से भी शुरुआत करेंगे. और आज वो दिन भी बहुत अच्छा है जब हम व्रत भी रख रहे हैं, तो उपवास और व्रत क्यों ना इस चीज का भी करें कि एक भी वो डिवाइन जो क्वालिटी है उसे मैं अगर, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ मी बेसिकली, जो वो सारी 16 कलाएं हैं में से एक कला को भी अगर मैं आत्मसात करके आज जागृत कर पाऊं और उसे फिर जीवन में यूज कर पाऊं उस धर्म को, तो मुझे लगता है कि कृष्ण का जो, श्री कृष्ण का जो हम इंतजार कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन, वो संभव हो पाएगा जिस तरह से है, और ये मेरे अपने ही हाथ में है. मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आप हमें ईमेल या फिर फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति.

संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुण के बारे में जिसकी जरूरत शायद हमें हर रिश्ते में पड़ती है, वो है कामनेस, यानी कि शांत चित्तता। क्योंकि हर बार कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो हमें लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी हमारी प्रतिक्रिया उससे बना देती है अक्सर उतनी बड़ी समस्या होती नहीं है। इसी विषय को समझने के लिए हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ओंकार चंद जी। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ब्रह्मा कुमारीज के साथ आप बाल्यकाल से ही जुड़े हुए हैं। देश विदेश के साथ साथ कॉरपोरेट वर्ल्ड में हर जगह पर जाकर के आपने अपने मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं। बहुत सारे युवा वर्ग को आपने मोटिवेट किया है। इसके साथ साथ आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो प्रोफेसर ओंकार चंद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: ओम शांति। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कामनेस है, यानी कि हम शांत रहना कह सकते हैं, शांत चित्तता, इसे आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्या सिर्फ चुप रहना ही शांत रहना है?
1: शांत रहना केवल चुप रहना नहीं कहा जा सकता। चुप तो व्यक्ति अक्सर रहता भी है, कभी बोलता है, कभी चुप भी रहता है। पर कामनेस का मतलब है कि जब कोई नेगेटिव, कोई अपोजिंग सिचुएशन आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए जो हमें अच्छी नहीं लग रही, जो हमारे अनुसार सही नहीं है, उस वक्त अपने मन को शांत रखना, वो कूलनेस या कामनेस या शांत, जो आपने कहा शांत चित्तता, हिंदी में अगर शुद्ध कहें तो उसको कहें। इसमें मुख के मौन से ज़्यादा मन का चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मन अगर शांत है तो कैसी भी सिचुएशन होगी उसका हम सामना कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम मन से उस वक्त पॉजिटिव रहें, सही सोचें, उसे हम कामनेस कह सकते हैं।
0: जी, मन से पॉजिटिव कैसे रहें, कैसे सही सोचें, इस विषय पर हम जानेंगे, आगे जानते जाएंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स के द्वारा। तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारे रिश्तों में अक्सर छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल जाती है। हम कहते हैं कि हम राई को पहाड़ बना देते हैं कई बार, तो ऐसे क्या होता है कि एक छोटी घटना के बाद हमारी भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती है और हम सहन नहीं कर पाते छोटी छोटी बातें?
1: ये अक्सर हम सबके साथ होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हम उसमें उलझ जाते हैं और नेगेटिव वे में उसको रिस्पोंड करते हैं, जिसे हम रिएक्ट करना कह सकते हैं। अब बातें तो होती हैं, कोई ना कोई जीवन में रुकावटें आएंगी, समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम उस को अच्छे से सिचुएशन का सामना ना कर सके, नेगेटिव वे में उसका सामना करें, तो उसे रिएक्ट करना कहा जाता है। और वो हमारे लिए, खुद के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो चीज़ हमें दर्द देगी। अगर हम उसको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम उसको नॉर्मल वे में लेंगे, और अगर उस सिचुएशन को देख के हम घबरा गए, डर गए, और उसका कारण भी ये है कि हम अंदर से कमज़ोर हैं, मन हमारा मजबूत नहीं है। अब वही सिचुएशन 10 आदमी अगर उसको फेस कर रहे हैं, एक जैसी सिचुएशन, तो क्या 10 वे एक ही तरीके से रिस्पोंड करेंगे? सबका रिस्पोंड करने का तरीका अलग होगा। कोई उसको राई को पहाड़ बना देगा, कोई राई को और रूई बना देगा, कहेगा कोई भी बात, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगी, आज प्रॉब्लम है, आज कुछ हुआ है, कल को ठीक हो जाएगा। एक तरीका ये है उसको रिएक्ट करने का, और एक तरीका है, अरे इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो इंसल्ट हो गई, मैं कैसे दूसरों को मुंह दिखाऊंगा, तो ये तो मुझे समझते कुछ नहीं है, तो वो भी एक तरीका है। तो इसका मतलब हमारे मन में उस वक्त क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि हम उस सिचुएशन में पॉजिटिव वे में रिस्पोंड करेंगे या नेगेटिव वे में करेंगे।
0: ओके, तो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं अक्सर एक दिन में तो वो थॉट्स नहीं क्रिएट होते होंगे ना, तो कई दिनों के प्रैक्टिस या कई सालों के प्रैक्टिस
1: हैबिट में जो आ जाता है।
0: जी जी
1: जी
0: ओके। तो मान लीजिए जब हमें किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो पसंद नहीं आता तो हमारे मन में तुरंत जैसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो क्या हमारी सोच से ही हमारे रिश्तों की दिशा तय होती है? ऐसा लगता है
1: हर चीज सोच से ही डिसाइड होती है, चाहे वो रिश्तों की दिशा हो, चाहे जीवन की दशा हो, चाहे हमारे जीवन में हम जो भी सुख या दुख महसूस कर रहे हैं, वो हर चीज का आरंभ तो सोच से ही होता है। सोच ही हमें कुछ भी बना सकती है। वो कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है।
0: जी।
1: तो मानना और ठानना, हार और जीत, सुख और दुख, जो भी है तो सोच ही।
0: जी।
1: तो सोच अगर सही हो जाए जीवन में तो हर चीज सही हो सकती है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए किनारे मिल जाएंगे।
0: क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत ये पोएम है। तो जानना चाहेंगे कि सोच को बदलने के तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
1: पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जब भी हम सोचने लगे तो चेक करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ।
0: क्या इतना चेक करने का टाइम मिलेगा?
1: वो टाइम आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि मैं ये जो सोच रहा हूँ, इस सोच से मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर मैं सही फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सही सोच नहीं है, वो नेगेटिव सोच है, वेस्ट सोच है। और अगर मैं उस सोचने के बाद मैं लाइट, खुश, हल्का और सुख की फीलिंग आ रही है, गुड फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स वो सही सोच है। तो जैसे ही आपको फीलिंग से आपको पता चल जाएगा कि मेरी सोच सही है या खराब है, अगर फीलिंग खराब है तो सोच खराब है, तो उसी वक्त रुको और अपने मन को पूछो, क्या मैं ऐसे ही सोच सकता हूँ या इसके अलावा भी इस घटना में मैं कोई और तरीके से भी सोच सकता हूँ। जैसे ये घटना घटी तो क्या मैं इसी तरीके से सोचूंगा तो दुख मिलेगा क्योंकि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, तो उसके अपोजिट क्या हो सकता है जो मैं सोच लूं। मान लो आज मुझे किसी ने नौकरी से निकाल दिया या मेरा कोई और नुकसान हो गया, अब मैं भगवान को कोस रहा हूँ, भगवान तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, या मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूँ कि मेरे भाग्य में, मेरे मुकद्दर में सही नहीं लिखा, एक दरवाजा था जीवन में जिससे कुछ आ रहा था वो भी बंद कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहीं का नहीं रहा, तो ये होगी नेगेटिव थॉट।
0: तो यही तो हम देखते हैं।
1: उसके बजाय अगर उस वक्त हम ये सोच लें कि कोई बात नहीं, एक दरवाजा बंद हुआ, मैंने सुन रखा है कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो 10 खोल देता है, लगता है 10 और खुलने वाले हैं।
0: ओके, तो अपने तरीके को
1: एक नई होप पैदा हो जाएगी। मेरे एक दोस्त हैं विवेक भाई, बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं,
0: बिल्कुल रेडियो मधुबन पर भी काफी बार हमने सुना है,
1: सुनते रहे और
0: आपकी बात विवेक के साथ।
1: हाँ जी, तो उनके साथ 2-3 साल पहले वो दिल्ली गए हुए थे, तो दिल्ली में वो मार्केट में गए किसी शॉप में, तो कार में अपना सामान ब्रीफ केस रखा हुआ था, वो कार में रखा हुआ था और चले गए। जैसे वापस आए तो कार का शीशा टूटा हुआ था, ब्रीफ केस गायब था, उनके सारे पहनने के कपड़े और कीमती चीजें गायब हो गई। उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उनको थोड़ा हिम्मत देने के लिए कहा कि ऐसा ऐसा करो, तो वो कहते नहीं नहीं कोई गलत बात नहीं हुई है, अगर एक थोड़ा सा लॉस हुआ है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब कुछ बड़ी चीज मिलने वाली है। तो वो उल्टा मेरे को हिम्मत देने लग गए।
0: जी,
1: हिम्मत मैंने उनको देनी थी पर वो मुझे हिम्मत देने लग गए, क्योंकि मुझे भी बुरा लगा कि चोरी हो गई तो अब क्या किया जाए। तो हम उस सिचुएशन को इस तरह से भी ले सकते हैं कि मेरा लॉस हुआ है तो लॉस के बाद जरूर भगवान अब बहुत बड़ा प्रॉफिट करने वाला है, अब मेरी बहुत कहीं से बड़ी चीज आने वाली है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आप सोचेंगे हो भी जाता है। आप सोचेंगे कि कहीं से कोई बड़ी चीज आने वाली है तो आ भी जाएगी, अगर आप सोचेंगे जाने वाली है तो चली जाएगी। तो क्यों ना हम अपनी सोच को वो वाली करें जो हम देखना चाहते हैं, जो हो रहा है वो वाले बात पे चिंतन करने के बजाय हम उस बात पे फोकस करें जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो हम मन को ट्रेनिंग दे दें, समझा दें कि अब ऐसे भी सोचा जा सकता है।
0: राइट,
1: पहले हम सोचते नहीं थे, हमें लगता था यही तरीका है, किसी ने कुछ किया, मान लो किसी ने मारा आपको, आप कहेंगे जी इसने एक मारा, चार आप मारो, दुनिया में यही सिखाया जाता है, उसके अलावा कोई सोच ही नहीं है कि और भी कोई तरीका होता है
0: जी।
1: लेकिन अगर हम अपने पास पॉजिटिव थॉट्स रखें, सही थॉट्स रखें, तो उस लॉस को भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं। कितना भी बड़ा लॉस हो जाए तो मन में सोच लिया करो कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग, ये घटना मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगाड़ लेगी, तो हम भी सोच लें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या बिगाड़ा जाएगा।
0: राइट,
1: पॉजिटिव सोचा जा सकता है ना। आपको मैं एक असली कहानी सुनाता हूँ। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था
0: जी,
1: तो जैसे ही उनकी दीक्षा पूरी हुई तो वो गुरुजी के पास, महात्मा बुद्ध बाबा के पास गए कि मुझे आपकी शिक्षाओं का प्रचार करना है, एक इलाका मैंने ढूंढ लिया है, वहां आज तक आपका कोई शिष्य नहीं गया है, मैं वहां जाके आपका प्रचार करूंगा, तो मुझे परमिशन दीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, आप जानते हो कि आज तक वहां दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं गया? वो कहता, जी मैं नहीं जानता। अरे भाई, वो बहुत बिहार का एक ऐसा इलाका है जहां बहुत खतरनाक किस्म के लोग रहते हैं उस गांव में, तुम जाओगे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उल्टा फुल्टा बोल देगा, कोई गाली देगा, कोई इंसल्ट करेगा, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं उनका धन्यवाद करूंगा, मैं कहूंगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपने शब्दों से मेरा अपमान किया, मेरे ऊपर हाथ तो नहीं उठाया, तो मैं उनका थैंक यू करूंगा। महात्मा बुद्ध ने दोबारा प्रश्न पूछा, अरे भाई उस गांव में ना ऐसे भी कोई होंगे जो हाथ भी उठा सकते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम धर्म की बात करोगे, वो लोग उल्टे दिमाग के हैं, कोई हाथ उठा देगा फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने वही जवाब दिया कि मैं कहूंगा उनका थैंक यू करूंगा, कहूंगा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, हाथ से मारा पर मुझे डंडे से तो नहीं मारा। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, अरे भाई तुम बात समझ नहीं रहे, वहां के लोगों का दिमाग कब पलट जाए कोई बात का पता नहीं है, कोई ना कोई डंडे से भी मार सकता है। तो शिष्य ने फिर वही जवाब दिया कि मैं कहूंगा जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत काइंड हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे डंडे से मारा, आपने मुझे तलवार से तो नहीं मारा
0: जी,
1: आपने मुझे जान से तो नहीं मारा। महात्मा बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया कि भाई कोई पता नहीं उस गांव के लोगों का, हो सकता है कोई तुम्हें जान से मार दे, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने फिर वही जवाब दोहराया कि मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपने मुझे खुद ही मोक्ष दे दिया, अगर मैं खुद मरता तो आत्महत्या होती, आपने तो मुझे फ्री में ही मोक्ष दे दिया
0: जी,
1: मुक्ति दे दी
0: जी।
1: तो भी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई तुम पास हो, तुम अब कहीं भी जाके धर्म के प्रचार का काम कर सकते हो। तो शिष्य ने देखो आप कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि इन्होंने इतना नुकसान किया पर इतना बड़ा तो नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी जान भी चली गई
0: जी।
1: तब भी उसने यही कहा कि जान भी चली जाए तब भी क्या हो जाएगा, आत्मा तो अविनाशी है और खुद तो मर नहीं सकते, अगर किसी ने मार ही दिया तो भी मुक्ति तो मिल ही जाएगी मुझे।
0: राइट, तो ये शांत रहने से पॉजिटिव सोच सकते हैं।
1: हाँ, पहले तो शांत रहना है
0: जी।
1: अगर आप डिस्टर्ब हो गए फिर तो नेगेटिव ही थॉट चलेंगे। अगर आपने किसी घटना को देख के, सिचुएशन को देख के जरा भी आपने दर्द की फीलिंग आपके अंदर आई तो उस दर्द की फीलिंग में फिर आप उल्टा सोचेंगे, सही नहीं सोचेंगे।
0: ओके।
1: तो उसी वक्त जब दर्द की फीलिंग आने लगे अपने मन को समझाओ, रोको कि नहीं भाई मुझे दर्द में नहीं रहना है, मैं इस घटना को इस तरह से भी तो ले सकता हूँ
0: जी। ओके।
1: मैं इस सिचुएशन में ऐसे भी तो सोच सकता हूँ। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको। आम तौर पे आदमी जिनसे उनके विचार नहीं मिलते, जब कुछ टकराव हो जाता है तो लोग दुश्मनी ले लेते हैं, एनिमिटी की फीलिंग, शत्रुता की फीलिंग के साथ चलते हैं और बदला लेने के थॉट्स मन में आते हैं। अब जब हमारे मन में बदला लेने के थॉट्स आते हैं, नफरत के थॉट्स आते हैं, उस वक्त कैसी फीलिंग है? बिल्कुल दुख वाली फीलिंग है, दर्द वाली फीलिंग है। उस वक्त अगर हम चेहरा अपना देखें तो अपना चेहरा ही अच्छा नहीं लगेगा मिरर में।
0: राइट।
1: लेकिन फिर भी हम क्योंकि हमें सिखाया ही गया कि कोई आपका करे तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, बदला लेना है, लेकिन वो सही चीज नहीं है। पर आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छा शेर सुना, वो इस चीज को बड़ा अच्छा से डिफाइन करता है, और जिसके मन में भी अगर बदले की भावना आए इस शेर को जरूर याद कर लेना कि मेरे दुश्मन को इस बात का पता ही नहीं जो दुश्मनी मेरे से रखता है, मेरे दुश्मन को इस बात का पता ही नहीं कि दुश्मनी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं।
0: जी,
1: तो यही सजा है
0: दुश्मनी,
1: और मित्रता रखना
0: जी
1: सजा के उल्टा है
0: जी,
1: गुड फीलिंग वाली बात है, सुखद फीलिंग सुखद आपको फीलिंग देगा। और अगर आपने किसी से शत्रुता रखी तो वो तो कर गया जो उसने करना था, और आपने जब तक बदला नहीं लिया तब तक आपको लगेगा, तब तक आपको ना नींद आएगी, ना चैन आएगी, ना सुकून की फीलिंग आएगी, क्योंकि वही बदले का भाव। तो सजा तो आपको मिल रही है,
0: गलती उसने की,
1: सजा आप प्राप्त कर रहे हैं, तो समझदारी नहीं है। तो सजा से बचने का तरीका है उसको भूल जाओ, माफ करो जो उसने किया, क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा हमारा, याद कर लो भी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, कितना बड़ा नुकसान कर देगा। जो हमारे भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है आया हुआ भी भाग जाएगा।
0: राइट,
1: तो फिर काहे की चिंता
0: जी, जो
1: काहे को किसी से शत्रुता रखनी, जो हमारा है वो आना ही आना है, कितना भी कोई ले जाए, जो गया समझो मेरा
0: नहीं
1: था ही नहीं, तो है ही नहीं, तो उसका दुख क्या बनाए।
0: सही बात,
1: जो मेरा है वो मेरे पास रहना है, मेरा भाग्य दूसरा नहीं बिगाड़ सकता। देखो कितना बड़ा ज्ञान है, हमने ब्रह्मा कुमारी में आके सीखा, हम खुद अपने भाग्य विधाता हैं। हमें दुख की फीलिंग तब आती है, हम रिएक्ट तब करते हैं, क्योंकि उस वक्त लगता है कि मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन ज्ञान ये कहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता सिवाय मेरे। आत्मा अपना खुद का मित्र खुद है, अपना शत्रु भी खुद है, मेरे सिवाय मेरा कोई कुछ ना बना सकता है
0: ना
1: बिगाड़ सकता है। मेरे अपने कर्म ही मेरा भाग्य बनाएंगे, मेरे अपने कर्म ही मेरे भाग्य बिगाड़ेंगे, दूसरे के कर्म मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकते। मान लो उसने चोरी करके ले गया, हम कहेंगे मेरा भाग्य तो बिगड़ गया, मेरी चीज ले गया, चोरी उसने की, पर उसके पीछे गहराई ये है कि वो वही ले गया जो उसका था, वो मेरा था ही नहीं।
0: राइट, तभी हम
1: मुझे गलत फहमी थी कि मेरे पास है तो मेरा है, वो मेरा था ही नहीं, वो उसका था तो ले गया।
0: तभी हम मन को शांत रख सकते हैं, पॉजिटिव विचार से।
1: तो ऐसे विचार जब तक मन में नहीं आएंगे तब तक हम रिएक्ट करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे
0: जी।
1: तो मन को समझाना आना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये है कि हम अपने मन को समझाएं कि वो वाले थॉट्स लाओ जो हमें सुखद फीलिंग देते हैं।
0: ओके, मेडिटेशन के द्वारा पॉजिटिव चिंतन बढ़ती है
1: क्योंकि मेडिटेशन में हम मन को यही तो ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे सोचना है, ऐसे पॉजिटिव विचार लाने हैं, और वो आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है
0: जी।
1: लेकिन परिस्थिति को देख के घबराना नहीं है, आगे मैं उसका बताता हूँ। कई बार हम घबरा जाते हैं
0: जी,
1: तो फिर गड़बड़ होती है।
0: ओके, मान लीजिए घर में किसी ने हमारी बात नहीं मानी
1: जी,
0: और हमें गुस्सा आया और हमने तुरंत कह दिया कि आप मेरी बात कभी समझते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कामनेस को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सकता है?
1: सपोज किसी ने हमारी बात नहीं मानी और हम गुस्से में आ गए कि आप तो मुझे समझते ही नहीं, आप मेरी बात सुनते ही नहीं, यही आप कह रहे हैं
0: जी,
1: तो उस वक्त भी मन को समझाना है कि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति मेरी बात माने, हर वक्त माने, ये संभव है ही नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: चाहे मेरे बच्चे क्यों नहीं है, और मेरी पत्नी या मेरा पति क्यों नहीं है, कोई भी कितना मेरे क्लोज है, मेरा दोस्त है, ये इस दुनिया में संभव नहीं है कि दूसरा व्यक्ति मेरी बात माने और हर वक्त माने। कभी मान सकता है, कभी नहीं मान सकता है, और क्योंकि हर एक का सॉफ्टवेयर अलग है, हर एक का सोचने का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, तो क्यों वो मेरी बात मानेगा? अब मेरे से कोई एक्सपेक्ट करे कि आप मेरी हर बात मानो तो मैं मानूंगा? नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा जी मेरे को भी सोचने की शक्ति है, मेरे पास भी दिमाग है, मुझे भी सही गलत का पता है,
0: मुझे भी स्पेस चाहिए,
1: मुझे भी स्पेस चाहिए, मुझे भी फ्रीडम चाहिए, तो जो मैं चाहता हूँ दूसरा भी चाहता है, तो दूसरे को अगर नहीं मानता बात, उस वक्त भी अपने मन को समझाना है, कोई बात नहीं, लेकिन हम समझाते नहीं, हमें लगता है मेरा बेटा है, गलती है, उसको डराएंगे, कर गलती, भुगतेगा, सजा मिलेगी ना, जब गिरेगा तो पता चलेगा
0: जी,
1: ऐसा हो कोसने लग जाते हैं पेरेंट्स, कोसना भी नहीं है, हर एक को गलतियां करेगा, मान लो गलत भी कर रहा है तब भी क्या हो जाएगा, गलतियों से भी तो आदमी सीखता है, जरूरी थोड़ी है हर चीज पढ़ने से सीख लेता है आदमी, या सुनने से या समझाने से सीखता है, कई चीजें हम गलतियां करने के बाद सीखते हैं।
0: राइट राइट जी, तो कई बार सामने वाले गुस्से में ऐसी बात कह देता है लेकिन कि बहुत हर्ट करती है वो बात, तो उसी मोमेंट में पहले शांत रहना चाहिए कि तुरंत अपनी बात क्लियर करनी चाहिए?
1: जब वो कुछ उल्टा कह रहा है सामने वाला, उस वक्त तो पहली चीज तो शांत ही रहना चाहिए।
0: ओके जी,
1: अगर हम क्लियर करने लगे तो वो अभी सुनने के मूड में ही नहीं है, उसे गुस्सा उसके ऊपर हावी है, तो उसे हमारी बात सुनाई भी नहीं देगी, तो पहला स्टेप तो शांत रहो, जब उसका मूड सही हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए वो, तो फिर अपनी बात उन्हें समझाई जा सकती है तुरंत, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो चांसेस ये है कि हम भी पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड कम करेंगे, हम भी इरिटेट होके, हो सकता है हम भी रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट कर जाए, ऐसे चांस ज्यादा है, तो बेहतर तो यही है कि वो जब बोल रहा है वहां से 9-2-11 हो जाओ, उसकी बात सुनी अनसुनी करके, ज्यादा ध्यान ना देके, ज्यादा उसको सीरियस ना लेके, उसके अगर सीरियस लिया तो आपको लगेगा कि ये होता कौन है मुझे बोलने वाला, इतना सारा सुना गया मुझे, मैं कोई बहरा हूँ, मुझे नहीं सुनाई देता, सबके सामने बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, ऐसे थॉट्स आते ना मन में, तो इसको तो अभी करेक्ट किया जाए, नहीं, उसको उस वक्त करेक्ट नहीं करना है, उस वक्त तो करेक्ट करने के मूड में नहीं है, बाद में जब आप भी सही हो और वो भी सही हो
0: तभी
1: बात करें तो ज्यादा अच्छा है
0: जी। तो क्या आप कोई 10-30 सेकेंड्स के टेक्निक्स बता सकते हैं, जब सामने वाला मतलब गुस्सा आने पर हम क्या अपने मन को थॉट्स दे उस टाइम, क्या इस्तेमाल करें ऐसे टेक्निक्स?
1: जब सामने वाले की गलती से हमें गुस्सा आ रहा है, उस वक्त हम तरस करें, हम सोचें ये गलती कर रहा है, बेचारा है, इसे समझ नहीं है, तो उसको छोटा समझ के उसके ऊपर मर्सी दिखाएं, रहम दिखाएं, मर्सी इज द बेस्ट एंटीडोट टू एंगर, उसे सोचें कि इसे समझ नहीं है, कोई बात नहीं, इग्नोर करें, पहला स्टेप तो ये है, इग्नोर करें, और उसके ऊपर दया खाएं कि ये बेचारा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा, ये कितना दर्द में है, ये अगर हम मन में आएगा कि ये गुस्सा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आत्मा बहुत दर्द में है, परेशानी में है, ये मेरे साथ तो अभी बोल रहा है लेकिन ये अंदर ही अंदर इसके जो गुस्सा है 24 घंटे इसे परेशान कर रहा है, तो ये आदमी कमज़ोर हो गया है, गुस्से का जवाब इसके साथ गुस्से से दिया तो इसे और दर्द होगा, और परेशान व्यक्ति होगा, तो वो तरीका नहीं है उसको हील करने का, उसका तरीका ये है ये गुस्सा करे, मैं उससे प्यार से बात करूं या प्यार से मुस्कुराऊं या बाद में उससे प्यार से बात करूं, ताकि उसका जो घाव है, जो दर्द है, जो चोट उसको लगी है कहीं ना कहीं से, वो ठीक हो जाए, वो कमज़ोर आत्मा है, तो कमज़ोर आत्मा को मुझे पावरफुल बनाना है, और पावरफुल बनाने का तरीका है कि मैं उसको पावर दूं, और वो पावर है प्रेम की
0: जी,
1: वो पावर है उसको माफ़ करने की, उससे उसकी हीलिंग होगी, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी के जख्म हो रखे हों शरीर में, तो जख्म हो जाते हैं ना किसी को, तो बेचारा ज़्यादा चिल्लाता है, आपने देखा हो कभी स्ट्रीट डॉग हो तो उसको कहीं से कुछ हो जाए तो बेचारा और दर्द में चिल्लाता है, ज़्यादा भौंकता है, अब कोई नमक डाला है वहाँ तो बेचारा और चिल्लाएगा, तो हम यही करते हैं, वो गुस्से में चिल्ला रहा है, हम भी गुस्सा करते हैं, तो गुस्से का जवाब गुस्से से देना मतलब घाव के ऊपर नमक छिड़कना, तो सोचो कि ये वो है, हम क्या कहें, अनकंट्रोल में है बेचारा, इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है इसलिए गुस्सा कर रहा है, इसे समझ नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है, ये बीमार है
0: जी।
1: जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो या कोई पागल व्यक्ति हो तो हम रिएक्ट थोड़ी करते,
0: जी
1: हम खुद किनारे हो जाते हैं, भैया पीछा छुड़ाओ ये तो पागल है।
0: सही बात जी।
1: तो आप सोचो कि वो थोड़ी देर के लिए, एंगर इज टेम्परेरी मैडनेस, वो थोड़ी देर के लिए पागल हुआ होता है। तो पागल से टकराओगे तो फिर आपको भी पागल बनना पड़ेगा। वो आपको खुद तो डिस्टर्ब है, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा।
0: राइट।
1: तो उसका तरीका है कि टकराना नहीं है, उससे किनारा कर लो। और पागल हाथी को ही आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो आप टकरा खड़े हो गए तो फिर तोड़ा के फेंकेगा, या फिर आप ही हाथी की तरह ताकतवर बन जाओ, या फिर दोनों भिड़ेंगे तब भी दोनों का नुकसान होगा ही। कई बार हाथी हाथी से भी टकरा जाता है, बैल बैल से लड़ते देखे होंगे आपने
0: जी।
1: तो फिर भी दोनों का नुकसान ही है। तो टकरावने से कोई फायदा नहीं है, उसके ऊपर रहम करो कि ये बेचारा है, तरस करो। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों पे तरस करते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट के क्रॉस पे चढ़ाया गया, उन्होंने उनको गुस्सा नहीं किया कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ओ गॉड फॉर गिव दिस पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि इनको पता ही नहीं है ये बेचारे हैं, इनको माफ़ करो
0: जी।
1: तो आप भी उनको बेचारा समझ के आ जाओ तो अच्छा। फिर दूसरा क्या है कि वो गुस्सा कर रहा है, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ, अपने आप से पूछो कि मैं उसकी नकल करूँ। वो गुस्सा कर रहा है तो मैं भी अगर गुस्सा कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसकी बैड क्वालिटी के प्रभाव में आ गया, और मेरे अंदर जो गुड क्वालिटी थी प्यार वाली वो मैंने छोड़ दी।
0: राइट।
1: उसके इम्प्रेशन में आके होना ये चाहिए कि मेरी जो अंदर प्रेम भरा है वो इतना ताकतवर हो कि वो गुस्सा करे और मेरा प्रेम पावरफुल हो, मेरे प्रेम से प्रभावित होके वो अपना गुस्सा करना छोड़ दे और वो भी प्रेम से बात कर ले। तो क्या इतनी ताकत मेरे प्रेम में है? अगर नहीं है तो मतलब मैं भी खाली हूँ, मुझे भी प्रेम भरने की जरूरत है अपने अंदर, मुझे भी अपनी एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। तो मुझे अपने को इतना पावरफुल बनाना है कि मेरी

0: अच्छाई को देख के वो अपनी गुस्से की बुराई छोड़ दे, ना कि मुझे इतना कमजोर बनाना है कि उसकी गुस्से की बुराई को देख के मैं भी उसकी बुराई को अपने अंदर ले आऊं, उसको कॉपी कर लूं। मुझे लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना। वो गुस्सा कर रहा है, उसको देख के मैं गुस्सा कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं फॉलोअर हूँ। वो गुस्सा कर रहा है, मैं प्रेम कर रहा हूँ और मेरे प्रेम को देख के वो भी प्रेम करने लग गए तो वो मेरा फॉलोअर बनेगा, मैं लीडर बनूंगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: लेकिन इसके लिए शक्ति चाहिए।
1: हाँ,
0: अगर शक्ति नहीं होगी, हम बाहर बाहर से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला।
1: शक्ति के लिए
0: मेडिटेशन चाहिए। नहीं तो एक मुझे कहानी याद आती है, तो अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
1: जी बिल्कुल।
0: अभी महीने दो महीने बाद रामलीला आएगी। कल मैंने योग शिविर में भी ये बताई थी, बड़ी हंसने वाली बात है। रामलीला में क्या होता है कि लोग सब रामलीला देखने जाते हैं, आप लोगों ने भी बचपन में देखी होगी। तो उस रात को सीता की खोज का प्रसंग आना था। हनुमान जी सीता की खोज में जा रहे थे। अब दिन में जो हनुमान बना था व्यक्ति, वो बीमार हो गया
1: जी।
0: उसकी तबीयत खराब हो गई। तो जो रामलीला के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्हें चिंता हुई कि आज रात को अब हनुमान किसको बनाया जाए। तो वो चले, उन्होंने कहा ढूंढना तो पड़ेगा कोई ना कोई। तो मार्केट की तरफ चल पड़े मांटा वो, की मार्केट में कि किसी को ढूंढा जाए, किसको रोल दिया जाए
1: जी,
0: जो उसके हनुमान की तरह दिखे भी। तो देखा कि एक हलवाई समोसे तल रहा है, मोटा ताजा। उनको लगा ये व्यक्ति कर सकता है, देखने में तो लग रहा है हनुमान की तरह। तो उससे पूछा आपका नाम क्या है, कहता जी कल्लू हलवाई
1: जी।
0: तो कल्लू हलवाई जी से रिक्वेस्ट की गई कि आज आप हनुमान बनेंगे। जैसे ही हनुमान का नाम सुना उसने, वो घबरा गया, डर गया। कहता सॉरी सॉरी सॉरी भाई, मैं आज तक स्टेज पे नहीं गया, मेरी तो टांगे कांपती है, मैं कभी हनुमान नहीं बना
1: जी,
0: तो मेरे से नहीं होगा। ऑर्गेनाइजर्स ने उसको हाथ पैर पकड़े, बार बार कहा कि भाई इमरजेंसी है, कोई मिल नहीं रहा, आप बन जाओ, कुछ ज्यादा आपने नहीं करना, आपने बस एक दो डायलॉग आप ले बताएंगे आपको, वो आप रट लो, बस आपने वो बताने हैं वहाँ। कहता क्या बोलना है, कहते आप रावण के सामने जाएंगे, रावण पूछेगा तुम कौन, आपने बस एक लाइन बोलनी है कि मैं पवन पुत्र हनुमान, इतना तो बोल सकते हो। कहता हाँ जी इतना तो बोल सकता हूँ। कहता फिर दूसरा रावण आपसे पूछेगा क्यों आए हो यहाँ रावण के दरबार में, तो आपने कहना जी मैं सीता माता की खोज में आया हूँ। कहता भाई इतना तो बोल सकते हो। कहता जी हाँ इतना बोल दूंगा
1: जी।
0: अब वो चले गए, लेकिन उसको चिंता होने लगी कि क्या बोलना है। उसने समोसे रखे दूसरी तरफ, तलने बंद किए, शटर किया बंद और डायलॉग रखने शुरू किए कि क्योंकि आज भाई उसकी परीक्षा होनी थी, स्टेज फियर सबको होता है। तो रटता गया कि मैं पवन सुत हनुमान, मैं पवन पुत्र हनुमान, मैं सीता माता की खोज में आया हूँ, सीता माता की खोज में आया हूँ, पूरे रट लिए उसने। अब जैसे ही रामलीला स्टार्ट हुई रात को
1: जी,
0: तो उसको चोगा पहना दिया गया हनुमान का और गदा भी दे दी गई। तो वो एकदम हनुमान बन के स्टेज पे जैसे ही गया तो देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी रावण बना हुआ है
1: जी,
0: और वो रावण बड़े ऊंचे सिंहासन पे है, उससे भी 4 फुट ऊंचा, हनुमान से भी ऊंचा और भयंकर सी शक्ल, बड़ी बड़ी मूंछें। और जोर से रावण चिल्लाया मैं लंकापति रावण तुम कौन। तो कल्लू हलवाई भूल गया मैं कौन हूँ, वो घबरा गया, कहता जी मैं कल्लू हलवाई। तो रावण को और गुस्सा आया क्यों आए हो यहाँ पर। कहता जी मैं माफ करना, मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। तो वो भूल गया मैं हनुमान हूँ। जैसे ही जीवन में उसके परिस्थिति आई, समस्या आई, चुनौती आई, वो अपनी आइडेंटिटी भूल गया, वो भूल गया कि मैं अंदर से क्या हूँ, आज हनुमान बन के आया हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। ऐसे तो हम कहते हैं मैंने गुस्सा नहीं करूँगा, मैं जी पॉजिटिव बोलूँगा, अच्छा करूँगा, सब ठीक है, लेकिन जब समस्या आती है तो हम अपनी असली चीज़ को भूल जाते हैं और जो हमारी कमजोरी है वो याद आ जाती है और उसी के दोबारा से शिकार हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि अगर जीवन में, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आए, जब भी कोई समस्या आए और वो आपसे पूछे तुम कौन
1: जी,
0: तो घबराना नहीं, डरना नहीं, सीना तान के खड़े हो जाना और कहना मैं अपने जीवन का असली हीरो हूँ, मैं हर समस्या का सामना कर सकता हूँ। तब अपने अंदर के हनुमान को जगा देना। तो हम सब हनुमान की तरह ताकतवर हैं, पर हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं
1: जी। और सही टाइम पे भूल
0: सही टाइम पे भूल जाते हैं। अब बस वो नहीं भूलना, उसका तरीका यही है कि मन अपना पावरफुल बनाना है, अंदर तक उस चीज का अभ्यास करना है कि मैं गुस्से को मैंने छोड़ दिया, अब गुस्से के मैंने शिकार नहीं होना है। बार बार ये अभ्यास करें, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, तो वो अंदर तक तब जाएगी जब बात, तो फिर मुझे दूसरों के दुख दर्द दूर करने हैं, दूसरों के दर्द दुख को देख के खुद दर्द में नहीं आना है, दूसरों के गुस्से को देख के खुद गुस्सा नहीं करना है, मुझे उसे छोड़ना है, उसका भी छुड़ाना है। इतनी ताकत अपने अंदर भरनी है कि मैं बुरे व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित कर सकूं, और बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता,
1: बुराई को अच्छाई से खत्म किया जा सकता,
0: अच्छाई से, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल
1: प्यार
0: से ही मिटाया जा सकता है।
1: जी, तो इसके लिए जैसे आपने कहा कि निरंतर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, शक्ति अपने अंदर होगा तब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि नॉलेज तो हम बहुत सारे आजकल यूट्यूब पॉडकास्ट और इसके माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाते हैं।
0: वही है कि नॉलेज सही टाइम पे याद ही नहीं आती।
1: तो क्यों नहीं याद आती है?
0: क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते, बार बार याद करना पड़ेगा।
1: इसीलिए हनुमान कैरेक्टर जो है वो कल्लू हलवाई,
0: बार बार उस करेक्टर को, नहीं तो हम जो कल्लू हलवाई वाली जो करेक्टर है वो याद आएगा, जो हमारी कमजोरियां हैं, जैसे भी हम बुराइयों के अधीन हैं, वो वाली आएंगी। अच्छाइयों को इतनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, बार बार नॉलेज को रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे दर्द में नहीं आना है, मुझे दूसरों का दर्द दूर करना है, मुझे सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। हर दिन इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, तो राइट टाइम पे राइट बात याद आएगी। अब हमारे पास अस्त्र शस्त्र सब हैं, पर जब दुश्मन हमला कर रहा है तो मिल ही नहीं रहे कौन सा निकालें, ना तलवार मिल रही है, ना धनुष बाण मिल रहा है, और हम युद्ध हार जाएंगे
1: जी।
0: तो ये ज्ञान के हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आई, अब उसका तोड़ क्या है, सोच का तोड़ सोच है, बुराई बुरी सोच का तोड़ अच्छी सोच है। जब बुरी सोच एक सोच है तो उसकी विपरीत भी तो कुछ होगी, तो मुझे वो ढूंढ के ले आनी है, लोगों की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कहेंगे अरे तुम कमजोर हो, तुमने हार मान ली, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया, और तुम एक भी लाइन नहीं बोले, उनको कहना मैं बोलता ही नहीं, उनकी बातों में नहीं आना, कहना जी मैं बोलता नहीं, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैंने गुस्सा छोड़ रखा।
1: ओके जी, तो हमें जैसे हम कोई कोई चीजों से परहेज करते हैं खाने पीने में, तो हम कहते हैं कि हम नहीं खाते हैं, तो हम नहीं खाते हैं, तो वैसे ही
0: कहना जी मैं करता ही नहीं,
1: करता ही
0: मैंने गुस्से को छोड़ रखा, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, ये भी अपना ही भाई है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब होगा। एक बार हमारे दादी जी थे यहाँ, मेरे ख्याल मनोहर इंदिरा दादी जी, उनसे कोई कोई व्यक्ति उनके पास आया और बड़ा कुछ उनको बोल के चला गया, तो तीसरे ने बाद में पूछा कि दादी आपके लिए इतना कुछ बोल गया तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? दादी कहती मैंने सुना ही नहीं क्या बोल रहा था,
1: फिल्टर लगाए हुए थे,
0: मुझे लगा कि ये व्यक्ति डिस्टर्ब है, इतना पता चला कि दुखी है, तो मैं मन ही मन उसको शक्ति दे रही थी कि भगवान इसके दुख दूर हो जाए और ये शांत हो जाए।
1: राइट,
0: तो हम भी यही सोचे कि कोई जब ऐसा करता है तो सोचो ये अपसेट हो रखा है, डिस्टर्ब हो रखा है, ये बीमार हो रखा है, मुझे इसे ठीक करना है, भगवान से भी दुआ करो कि इसको सद्बुद्धि मिले, ये सही हो जाए।
1: तो इस प्रकार के चिंतन से हम अपने जो शांतता है उसे डेवलप कर सकते हैं। जी, तो जैसे आपने कहा कि हमारी भाई है ना, और हमने कई बार सुना है कि कितने भी नेगेटिविटी हो लेकिन हर एक के अंदर उसकी अच्छाइयाँ यूनिकनेस को देखने की कोशिश करो, लेकिन जो व्यक्ति लगातार आपको हर दिन परेशान कर रहा हो तो उसकी अच्छाई देखना प्रैक्टिकली कैसे संभव है?
0: प्रैक्टिकली है,
1: हर दिन मान लीजिए
0: आपकी बताई ना, वो हर दिन उसको बड़े से बड़े नुकसान करने वाले भी आ गए, यहाँ तक कि मारने के लिए भी बात तैयार हो गई, फिर भी उसने कहा कि उसको भी पॉजिटिव लिया, तो जो हमें बार बार हमारे पीछे पड़ गया है, हर बार ही कर रहा है, सोचो कर्मों का हिसाब किताब है, मैंने दुख दिया होगा वही दुख लौट के आ रहा है।
1: तो उस टाइम दुख के फीलिंग भी ना हो और आप शांत भी रहो, मान लो घर में आपकी सास है, ननंद है, या फिर आपके पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं और आपको उनके

0: जी ओके
1: वो दर्द देने वाला नहीं रुक रहा, तो मैं दर्द लेना मैं भी ना रुकूं, मुझे भी बैड फीलिंग लेने से
0: तो अच्छे अच्छे
1: रोके
0: चिंतन के
1: रखना।
0: स्टॉक जमा करना पड़ेगा,
1: हाँ
0: तभी
1: बस
0: हम
1: अच्छे थॉट्स, आपके
0: सही टाइम पे
1: आपके
0: याद आएंगे।
1: आपके दोस्त आपके थॉट्स ही हैं, वही आपको साथ निभाएंगे। बाकी लोग थोड़ी देर के लिए आएंगे जाएंगे, कोई साथ देंगे कोई साथ नहीं देंगे, कोई रास्ता रोकेंगे कोई रास्ते में मदद करेंगे, पर सबसे ज्यादा जो आपकी मदद करेंगे
0: वो
1: आपके
0: आपके
1: विचार
0: अच्छे
1: हैं,
0: विचार हैं।
1: आपकी सोच है। चंगी सोच मन चंगा, कटौती पे गंगा। तो मन को ही तो सही करना है, मन सही हो गया, मन शुद्ध हो गया, दुनिया कुछ भी करे लेकिन हम ठीक हैं तो हमें देख के वो भी तो सही हो जाएंगे, कब तक करेंगे। आखिर हार उनको माननी पड़ेगी, हमें नहीं हार माननी पड़ेगी। एक प्रेयर है बड़ी अच्छी, मैं याद करता हूँ कभी कभी, बचपन में हम सब गाते थे, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। कि हम नेकी पे चलते जाएं, बुराई से बचते रहें, तब हंसते हुए इस दुनिया से जाएंगे। और इसका ही अगला अंतरा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि जब जुल्मों का हो सामना, आप भी कह रहे हैं ना कि वो बार बार तंग कर रहा है, तो जुल्म कर रहा है, बेइंसाफी कर रहा है, जो भी कर रहा है, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करें हम भलाई भरें, ना ही बदले की हो कामना। वो बुराई करता जाए, वो बुराई करने से ना थके, और हम भलाई भरे, मतलब हम भलाई करने से ना थके,
0: जी
1: और फिर भी वो बुराई करे पर हमारे मन में बदले की भावना ना पैदा हो, इतनी शक्ति हमें देना
0: दाता।
1: दाता। तो प्रेयर में गर कह रहा है, तो हम सब गाते आए इस प्रेयर को,
0: जी जी
1: कितनी बार ये भजन हमने सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग कितना गहरा है कि हम बदले का भाव फिर भी ना लाएं, हम अच्छाई के रास्ते पे चलते रहें, सामने वाला कितना भी बुरा करेगा आखिर झुकना उसे पड़ेगा, हमें नहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम तो हैं ही अच्छे रास्ते पे, उसे ही झुकना पड़ेगा और उसे बुराई छोड़नी पड़ेगी।
0: छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए निरंतर शक्ति की आवश्यकता है परमात्मा से।
1: हाँ बस हम परमात्मा से जुड़े रहें, वो हमारी हर मुसीबत हर कठिनाई में मदद करेगा और हमें ताकत देगा कि हम अच्छाई पे चलते रहें।
0: चलते रहे जी, और हम दूसरों को जज भी ना करें।
1: हाँ
0: हम
1: दूसरों
0: कई
1: को क्यों
0: बार
1: जज करना,
0: छोटी छोटी बातों पे जज कर लेते हैं, तभी अगर जज नहीं करेंगे तो भी हम शांत
1: शांत
0: रहेंगे।
1: रहेंगे। हाँ ये भी एक कारण है, हम हर किसी को चलते चलते सबको जज कर रहे हैं, सबके मुकद्दर का फैसला कर रहे हैं, ये ठीक कर रहा है ये गलत कर रहा है, इसे ये नहीं ये करना चाहिए, ये ऐसा है वैसा है। भाई उसकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, जो मेरे लिए सही है जरूरी नहीं है सबके लिए वही सही हो। हर एक की सही और गलत की डेफिनेशन भी तो अलग अलग है, या एक ही है। एक व्यक्ति 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो दूसरा कहता है भाई बहुत स्लो चला रहे हो, दूसरा 120 की स्पीड से गाड़ी चलाता है वो कहता है बड़ी फास्ट चला रहे हो, फिर राइट स्पीड क्या है, इसको कहेगा जी 100। किसने डिसाइड किया कि 100 से राइट स्पीड है, उसी ने किया ना, क्योंकि उसके हिसाब से 100 सही है, 80 वाला स्लो है, 120 वाला ज्यादा है। और कोई मेरी तरह हो वो कहेगा जी 60 की स्पीड स्लो है और 100 की ज्यादा है, 80 की ठीक है, तो मेरे हिसाब से 80 राइट स्पीड है, दूसरे के हिसाब से 100 राइट स्पीड है, तो सबके अपने अपने हिसाब हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि वही राइट है वही रॉन्ग है। तो हम कोई हेडमास्टर तो लगे नहीं कि चलते चलते सबको करेक्टर सर्टिफिकेट देते चले कौन सही है कौन गलत
0: उससे
1: है,
0: हमारे मन ही डिस्टर्ब होता है।
1: हम डिस्टर्ब होंगे, हम अपने को ही देख लें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, बजाय उसके कि दूसरों को देखते रहें। सारे मसरूफ हैं यहाँ दूसरों के नुक्स निकालने में, सारे मसरूफ हैं यहाँ दूसरों के नुक्स निकालने में, इतनी शिद्दत से अगर खुद को घड़ते तो फरिश्ते बन जाते।
0: क्या बात है। तो ज़रूर हमारे जो श्रोता मित्र सुन रहे हैं, तो पूरी शिद्दत के साथ अपने को गढ़ने की कोशिश हम कर ही रहे हैं निरंतर, आज से थोड़ा बेहतर तरीके से करेंगे। तो आपको लगता है जो एक्सपेक्टेशंस भी हम कर लेते हैं ना एक दूसरे से, तो वो भी कई बार मन की शांतता को हानि
1: जी
0: पहुंचाती है।
1: हाँ, जब हम दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उन्हें ये करना

0: चाहिए, उन्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एक्सपेक्टेशंस तो दुख देती ही देती हैं, और उसमें भी कईयों की ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ज़्यादा परेशानियां पैदा करेगी।
1: मतलब हमारा अगर बेटा है तो उसको ये करना चाहिए, पति है पत्नी है तो हमारे लिए ये करना चाहिए।
0: हर जगह ही हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होना कोई गलत भी नहीं है, पर ज़्यादा जब एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं तो डिस्टर्बेंस तो होगी ही होगी। तो उन एक्सपेक्टेशंस को दूर करने का तरीका है कि हम एक्सेप्ट करना सीखें,
1: स्वीकार कर लें।
0: चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी ही रहेंगी, सब चीज़ें वैसी नहीं होंगी जो मैं चाह रहा हूँ। ये दुनिया माई वे इज द हाईवे, ये इस कंसेप्ट पे नहीं चलती कि जहाँ से मैं चल रहा हूँ वही हाईवे बन जाएगा। हर एक ने अपने अपने हाईवे बना रखे हैं, वो अपने हाईवे से चलेंगे, मेरे वाले से क्यों चलेंगे? माई वे इज द बेस्ट वे नहीं, दूसरे का भी बेस्ट हो सकता है। दूसरे को स्वीकार करो और उनको फ्रीडम दो कुछ नया करने की। अगर फ्रीडम नहीं देंगे तो कुछ न्यूनेस होगी नहीं दुनिया में, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करके एक्सेप्टेंस को लाना है, और तो जी फिर हलचल मन में नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हमारा मन अपसेट नहीं होगा। जिसका माइंड सेट है उसकी लाइफ सेट है, और लाइफ सेट करने का तरीका है अपने एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज करो, इच्छाओं को कम करो। इच्छाएं कभी भी आपको सुख नहीं देंगी, क्योंकि इच्छाएं हैं ही ऐसी। कभी हम खिलौने वाली कार से भी खुश हो जाते थे, आज असली वाली कार से भी खुश नहीं हो रहे। कभी हम दो जोड़ी कपड़े पहन के खुश थे, आज अलमारी भरी पड़ी है, फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। पहले हम थोड़े में संतुष्ट हो जाते थे, आज सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है और चाहिए और चाहिए। तो समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कम है, हमारे पास कम मिला है जीवन में, समस्या ये है कि जो मिला है उसको एंजॉय करना हम छोड़ देते हैं।
1: छोटी छोटी चीजों पे खुशियां मनाना
0: छोटी चीजों से खुशियां छोड़ देते हैं, बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। इसलिए खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला है उसका गम नहीं
1: जी।
0: जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है।
1: क्या बात है जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार हम एक दूसरे को सुनते नहीं है शायद, तो इसलिए रिलेशनशिप्स में वो कामनेस और अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं?
0: अच्छा, हम एक दूसरे को सुन ही नहीं पाते।
1: आजकल कोई सुनने को रेडी नहीं होता, जवाब देने के लिए रेडी सब होता है, तो इसीलिए शायद हम शांत चित होकर के उनकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो रही है।
0: ये बात तो सही है, लिसनिंग भी एक कला है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, इसके ऊपर भी लेक्चर्स दिए जाते हैं कि किसी को अगर सुन लिया जाए आधी समस्या उसकी हल हो जाती है। अगर डॉक्टर पेशेंट की बात ध्यान से सुन ले तो आधी बीमारी उसकी दूर हो जाती है। अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, इतने डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर होता है, पेशेंट बहुत होते हैं। वो अभी पेशेंट बता ही रहा होता है कि जी मुझे ये है, उससे पहले वो 10 दवाइयाँ लिख के दे देता है, जाओ भाई हो गया तुम्हारा काम, सुनने का टाइम ही नहीं। वही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, दवाई वही लिखेगा वो डॉक्टर, वो आपको बैठाएगा, हाँ भाई क्या हुआ, पूरी डिटेल लेगा आपसे, आपको लगेगा तसल्ली भी मेरे पूरी बीमारी सुन ली गई है। आप फटाफट उसको पैसे भी दे देंगे क्योंकि प्राइवेट है, तो सुनने से आपको लगेगा कि ठीक हो गया मैं। तो सुनना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि सुनना, सुनेंगे नहीं किसी की तो समझेंगे कैसे, तो दूसरे की बात क्या, जो भी दर्द है हम क्या करते हैं, कोई सुनाता है हम फटाफट रिएक्ट कर देते हैं, उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, या पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये यही कह रहा है, तो उसका जवाब पहले ही देना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो व्यक्ति हमसे क्लोज नहीं आता, हमसे खुलता नहीं है, और उसे अपनापन नहीं लगता है, वो कहता है इन्होंने तो मेरे लिए एक इमेज बना रखी है, बस वही है। और उसके बजाय अगर हम उनकी बात सुने प्यार से, चाहे वो कितना भी हमारे एंटी भी हो, कैसा भी हो, वो सुनाना चाहता है तो उसकी बात सुन ली जाए, और सुनने के बाद जब वो सुनाना बंद कर दे तो फिर उससे अगली बात की जाए
1: जी।
0: सुनना बहुत जरूरी है।
1: कामनेस पर सवाल तो बहुत है, लेकिन समय धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, कोई भी मैसेज हमें बुरा लगे तो रिप्लाई करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे शांत रहना चाहिए?
0: सोशल मीडिया में क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही, हम उसमें रिएक्ट करें ही ना, हमारा काम ही नहीं है रिएक्ट करना। पहले तो फालतू की चीज़ें पढ़ें ही ना, फिर भी अगर आपके आ जाती हैं तो इन्हें इग्नोर करें। ये तो ज़्यादा कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि किसी ने कुछ लिखा और हम उसको रिस्पॉन्ड करने लग गए। इसका मतलब तो ये है कि वो छेड़ रहा है, हमें तंग कर रहा है और हम तंग होके हम जवाब देने लग गए। उसे इग्नोर करें, वो जो करता है करने दो उसको, उसकी फ्रीडम है। हम उसमें ज़्यादा ना उलझें, हम रील के बजाय रियल लाइफ में रहें
1: जी,
0: वो ज़्यादा बेहतर है।
1: बिल्कुल, तो रियल लाइफ में रहे रील के बजाय वो बेहतर है, हमारे शांतता के लिए भी और सोशल मीडिया पे शांतता को बरकरार रखने के लिए।
0: हर ओपिनियन पे, हर मैटर पे अपनी ओपिनियन देना जरूरी नहीं,
1: जरूरी नहीं होती।
0: कोई हम उस फील्ड के चाहे कितने भी एक्सपर्ट हों, जब आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है तो आप क्यों अपनी ओपिनियन दे रहे हैं,
1: क्यों कमेंट दे रहे हैं जी।
0: लोगों को लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते हैं तो एक चिल्लाएगा फिर दूसरा चिल्लाएगा फिर तीसरा चिल्लाएगा। गली में आप गुजरते हैं, हाथी गुजरता है, एक कुत्ता भौंकता है फिर दूसरा भौंकता है फिर तीसरा भौंकता है। अब हाथी उनका जवाब देने लग जाए तो हाथी किस चीज़ का
1: राइट।
0: इसलिए कहते हैं हाथी चले मस्त होके बाजार में और कुत्ते चाहे कितने भी भौंकते रहें। हम चलो उनको कुत्ते भी ना कहें, किसी को कहना ही नहीं कुछ, उनका कहने दो, जो कर रहा है उनका अपना रोल है, मुझे हर जगह रिएक्ट नहीं करना है। अब दुनिया इतनी बड़ी है, किसकी जुबान पकड़ोगे आप, किसको रोकोगे?
1: राइट
0: आपने रिएक्ट कर भी दिया तो आपका ही दिमाग ख़राब होगा, वो उनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसमें ना उलझा के, ज़्यादा उस चीज़ों में ना जाके अपने काम से काम रखो, वो ज़्यादा बेहतर है,
1: तो ही कामनेस को बरकरार रख सकते।
0: हालांकि वहाँ जो उलझाते भी हैं वो लास्ट में उनको भी यही करना पड़ता है।
1: राइट, तो एक क्वेश्चन ये है कि कामनेस का मतलब हर बात सह लेना है, या फिर कोई अगर बार बार गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें थोड़ा सा शांत रहते हुए अपने आप को स्पेस देना है, बाउंड्रीज मेंटेन करना है, थोड़ा किनारा भी कर लेना है?
0: हमें किनारा भी कर सकते हैं, बाउंड्रीज भी मेंटेन कर सकते हैं। मेन बात है कि हम मन से डिस्टर्ब ना हों, हम शब्दों से दुश्मनी ना करें, शब्दों से कुवचन ना बोलें, पीड़ा वाले वचन ना बोलें दूसरे के बिहेवियर को देख के। हाँ, अगर अवॉइड करना भी पड़ जाता है तो अवॉइड भी किया जा सकता है। फिर भी उनके मन में यदि कि अवॉइड कर दिया, बाहर से कह दिया मैं आपसे बात नहीं करूँगा, और अंदर बात उसी की हो रही है, मन में वही सोचा जा रहा है, और होता ऐसा ही है, जिसको हम कह देते ना कि मैंने इसको इनसे मैंने कटी कर लिया, अब इनसे कोई बात नहीं होगी, मन ही मन सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति से बात होती है। जिसको हम ब्लॉक कर देते हैं वो ब्लॉक बाहर से तो हो जाता है पर मन में वही चलता है। तो बाहर से कुछ होने वाला नहीं है, मन ही मन, मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस मेन ध्यान ये रहना है कि कैसे भी करके इग्नोर करो, शांत रहो, जो भी करो, पर मैंने मन में उसके लिए ना नेगेटिविटी लानी है, ना मन में उसके लिए, मन में उसको ज़्यादा स्पेस देना है। स्पेस देने का मतलब उसके बारे में अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं उसको स्पेस दे रहा हूँ, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट ना बनाओ, अटेंशन से हटा दो, इतना इम्पोर्टेंट ना बनाओ कि वो आपके मन पे ही हावी हो जाए।
1: राइट,
0: अगर मन पे हावी नहीं होगा तो फिर आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा।
1: बिल्कुल, तो शांत रहने का मतलब ये नहीं है केवल कि सह जाओ सब कुछ, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप किनारा कर सकते हैं अपने वाइब्रेशन।
0: सहना है पर खुशी से सहना है,
1: खुशी से सहन
0: करना अच्छी चीज है, पर मजबूरी से नहीं कि अब क्या करें, कोई चारा ही नहीं है, चलो चुप रहो, कहीं नुकसान ही ना कर दे मेरा, तो वो हो गया मजबूरी से। और एक है खुशी से, समझ से सहन करना कि इसमें सहन करना ही बुद्धिमता है।
1: जी ओके, क्योंकि उस टाइम अगर हम बोलेंगे तो कुछ का कुछ और हो जाएगा,
0: और बात बिगड़ेगी,
1: बात बिगड़ेगी,
0: जो अभी एक बात है वो 10 बातों में फैल जाएगी।
1: राइट जी, तो अभी वक्त हो गया यहाँ से अलविदा कहने का, तो लास्ट में इस कार्यक्रम में शांतता को लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे?
0: हम यही कहना चाहेंगे कि अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को शांत रखो। जितना हम शांति की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे ये दुनिया शांतमय बन जाएगी, शांति की दुनिया बन जाएगी, और चारों तरफ अभी जो नेगेटिव बिहेवियर करते भी हैं वो कलयुग में कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शांत रहेंगे ये दुनिया सतयुगी दुनिया बनेगी, हमारा सतयुग आएगा, हमारे मन में सतयुग आएगा, हमारे घर परिवार में सतयुग आएगा और हमारा जीवन स्वर्गमय बन जाएगा, सुखी बन जाएगा। शांत रहने का ये सबसे बड़ा फायदा हमें होगा।
1: बिल्कुल, तो इसी नोट के साथ यहीं पर रुकना चाहेंगे, क्योंकि शांत रहने से हमारे मन में पहले सतयुग आएगा, फिर बाद में घर और दुनिया में है। तो मन में सतयुग लाने के लिए शांतता को बरकरार रखना पड़ेगा। कभी कभी बीच बीच में छोटा सा पॉज लेने की भी जरूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं,
0: उसको थोड़ा ब्रेक लगाओ,
1: ब्रेक लगा
0: और उसकी जगह सोचो कि इसकी जगह क्या मैं इससे बेहतर वो सोच सकता हूँ जो मुझे खुशी देगा, जो मेरे इस दर्द की फीलिंग से मुझे दूर करेगा।
1: जी बिल्कुल। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। प्रोफेसर ओंकार चंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति। उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे लिसनर्स को ऐसे ही गाइड करते रहेंगे।
0: थैंक यू जी। वेलकम
1: जी।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: टीचर्स डे पर रेडियो मधुबन के पूरे परिवार के ओर से आप सभी शिक्षक गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ओम शांति। आज है 5 सितंबर 2026 और आज भारत भर में विशेष सभी स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सभी भाई बहनों को टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी आत्माओं का सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा है। वास्तव में ये टीचर्स डे का सेलिब्रेशन भारत में क्यों किया गया? क्योंकि भारत के दूसरे राष्ट्रपति श्री राधा कृष्णन, उनका जन्मदिन 5 सितंबर को है और जब स्टूडेंट्स ने उनके जन्मदिन मनाने का संकल्प किया तो राधा कृष्णन ने कहा कि नहीं, ये दिन विशेष एजुकेटर्स के लिए हो, जो शिक्षक वर्ग है जो इतनी मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स का भविष्य बनाने के लिए, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिवस के रूप में मनाया जाए। और तब से लेकर भारत भर में हर साल 5 सितंबर को हर स्कूल कॉलेज में टीचर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए स्टूडेंट्स विभिन्न रंग बिरंगी कलरफुल एकदम कोई ना कोई विशेष पात्र के पोशाक में जाते हैं। कई स्कूलों में स्टूडेंट्स टीचर बन करके जो उन्होंने पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं और हर एक अपने टीचर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे लिए भी हमारे सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा जो परम शिक्षक है, ये संगम युग में आकर के जब कलयुग का अंत और सत्ययुग की आदि का संधिकाल का समय होता है, इस संगम के समय पर आकर के हम सबको ज्ञान रत्नों से संवारते हैं, हमारा चरित्र हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, हमारे संस्कारों की रक्षा करते हैं और हमारे अनादि संस्कारों को उजागर करते हैं। तो ऐसे परम शिक्षक के प्रति आज हम सभी बीके परिवार के भाई बहने भी गॉडली स्टूडेंट बनकर के परम शिक्षक सुप्रीम टीचर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे सुप्रीम टीचर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने मेरे श्रेष्ठ संस्कारों की रक्षा की और मेरे जीवन को श्रेष्ठ दिशा दी और आने वाले समय के लिए हमें तैयार किया। तो इसीलिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आज सभी भाई बहनों को टीचर्स डे की अर्थात हमारे सुप्रीम टीचर परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा ने मुरली के अंदर विशेष पुरुषोत्तम बनने की प्रेरणा दी है। बाबा कहते हैं, बाप का सहयोगी बनने के लिए सबको एक ही महामंत्र दो मन मना भव का और सदा सुप्रीम टीचर को फॉलो करो। पुरुषोत्तम बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो और अपने जीवन को धन्य करो। एक परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहो, उसको याद करो। बाबा कहते हैं, पुरुषोत्तम वही बनता है जिसके ऊपर बृहस्पति की दशा है। तो कभी भी हमें श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, यही कृतज्ञता है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का सहयोगी बनने के लिए सबको मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो। आज की मुरली से प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत ही बाबा का हाथ और साथ है, जो हाथ और साथ लेकर के हम चलते हैं, जिससे इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बात को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है, वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते हैं, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है, जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे बाबा मिसाल भी कितना सुंदर देते, जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। इसी तरह राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य, फिर रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है, यह है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है, रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं, तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसे दुनिया वैसे रहने वाले गाया भी जाता है, भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं, नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है।

तुम बनने से ही बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। क्या बना रहे? सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे। यह ही बहुत बहुत सहज, न कोई खाने की दवा है, न कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है। इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है, यह तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते मैं सर्व का सदगति दाता हूं, तो जरूर मनुष्य के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। बाप तैयारी करा रहे हैं क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है, बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे वह बाप को देख फॉलो करो, सभी को मेरा मंत्र देते जाओ। बाबा कहते सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप कल्प कल्प आकर कहते पतित से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूं क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाप यह सभी बातें डिटेल में समझाते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है, तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आता है, यह अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, ये तो कॉमन बात है। क्या पवित्र जाकर पवित्र के आगे माथा टेके? पतित पावन बाप को न जानने कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती और भागंती डिसर्विस करंती बन जाते हैं। बाबा कहते उसमें भी कोटों में कोई में भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती और भागंती डिसर्विस करंती बन जाते हैं। सर्विस और डिसर्विस दोनों होती रहती है। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते हैं। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। रावण तुमको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिसर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा कहते हैं

बच्चे बैठ पापात्मा बनते हैं तो बहुत विघ्न डालते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो ये भी कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिसर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहां बाप का बनकर फिर डिसर्विस करते हैं तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसीलिए बाप कहते, बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिसर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा। कितना बाबा रहम दिल बन करके समझाते हैं, सावधान करते हैं कि बच्चे बाप के मददगार बन कोई उल्टा काम नहीं करना। डिसर्विस करेंगे तो जो बांधेलियां हैं उन पर कितना विघ्न पड़ेगा। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं, बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। पहले है माता, पीछे है पुरुष, परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूं, पति ईश्वर हूं, स्त्री मेरी दासी है। यहां बाप निरहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। तुम थक गई हो, कितना प्यार से बाबा कहते, तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए ही आया हूं। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया, सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं, कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं, रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाप कहते, मैं किसको भटकाता नहीं हूं, बाबा तो किसी को भटकाता नहीं है, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूं। माया आकर दुखी करती है, ये भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वरीय धंधा नहीं करते हैं। यह तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं है। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कब कर्म नहीं कूटना पड़ेगा, कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करते हैं। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है, मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते, मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूं। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है, ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है, बनाने वाला टीचर वह है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाप कहते, मन मना भव, तुम कर्म योगी हो, याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है।
तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देंगे। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है, ज्ञान समझने में कोई अड़चन नहीं है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी, नई आत्मा कहां से आती नहीं है। बाबा कहते हैं नई आत्मा कहां से आती नहीं है, जो आत्माएं हैं वही है, कम जास्ती हो नहीं सकती। एक्टर सब पूरे हैं, तुम बेहद के एक्टर्स हो, तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में है। जितने एक्टर्स देखते हैं बाबा के उतने एक्टर ड्रामा में है, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं, मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहता है परंतु छूट नहीं सकते। जो पाठ बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाप कहते मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है, कल्प कल्प में आता हूं। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूं। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने कोई। वह गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो, मूल बात है कौन सी याद की। फिर अंधों की लाठी बनना है, ये है पुरुषोत्तम युग। ये 5000 वर्ष के बाद आता है, पुरुषोत्तम युग 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वह सब है भक्ति मार्ग, उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं, यहां तो वह बात ही नहीं है। भक्ति न करने वालों को इरिलीजियस कहते हैं, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे, शास्त्र में उनको कहा गया है अजामिल। अजामिल सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पापात्मा वह है जो यहां आकर मेरा बनकर मुझे फारगति दे देते हैं, मेरी निंदा कराते हैं, उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रतिज्ञा कर फिर डिसर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है, इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके नर से नारायण बनने का। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक ठौर न पाए, वह कौन सा ठौर है, वह ठौर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है, यहां कोई पावन होते नहीं, अभी सबको पावन बनना है। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो यह सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या, परंतु माया ऐसी है जो उच्च प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। तो बाबा क्या कहते हैं, जब माया गिरा देती है, अहो मम माया, क्या किया तुमने। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट,
कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए आज बाबा ने कर्म की गुह्य गति भी बताई कि कैसे अगर अवज्ञाएं की, डिससर्विस के निमित्त बने, विघ्न रूप बने, ट्रेटर बने, तो उनके लिए फिर ऊपर ट्रिब्यूनल भी बैठती है। याद रहे कि बाप के साथ धर्मराज भी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं न कि साधना। अरे सिद्धि चाहते न कि साधना। सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से एक सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। आज का स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब यह गेट बंद करो। आज का व्यक्ति इशारा, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, आप भाग्य के लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हो, इसलिए सदा आपके भंडारे भरपूर रहे। किसको भी खाली हाथ जाने नहीं देना। सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की भावनाएं, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। महादानी वरदानी बनो, यही आपका स्वरूप है, यही आपका स्वरूप है। अच्छा,